मीडियम वेव 401.61 मीटर अर्थात 747 किलो हर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है। आज रविवार है, शक संवत 1948 के आषाढ़ माह की सातवीं तिथि, तदनुसार 28 जून सन 2026। इस समय प्रातः के 5:55 और 48 सेकंड हुए हैं। आरंभ हो रही है आज की प्रातःकालीन सभा।

ये आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है। सुबह का आगमन सूर्योदय के साथ हो चुका है। सुबह की निर्मल शीतल वायु शरीर में नव ऊर्जा तरंगों का संचार भर रही है। मन नव संभावनाओं का अनूठा प्रवाह लिए लक्ष्य की ओर बढ़ने को तत्पर है। प्रातः की अनूठी आभा देख मन प्रसन्न हो रहा है और नव चेतना के साथ नए दिन की शुरुआत के लिए तैयार होने का संदेश दे रहा है। हम भी आ चुके हैं स्टूडियो लेकर आपके लिए मॉर्निंग प्रोग्राम। नमस्ते लखनऊ, आप सभी को सुप्रभात, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। हमारे श्रोता 747 किलोहर्ट्ज पर अपने रेडियो सेट को ऑन कर चुके हैं और उन्हें इंतजार है देश दुनिया की खबरों को जानने का। तो चलते हैं दिल्ली स्टूडियो, सुन लेते हैं।

0: समाचार आकाशवाणी दिल्ली से।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नास। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। यह मासिक रेडियो कार्यक्रम की 135वीं कड़ी होगी। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी नेटवर्क, एआईआर न्यूज वेबसाइट और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर किया जाएगा। इसका सीधा प्रसारण एआईआर न्यूज, डीडी न्यूज, प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनलों पर भी होगा। हिन्दी प्रसारण के तुरंत बाद आकाशवाणी से प्रादेशिक भाषाओं में भी ये कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हमानी के साथ बातचीत करेंगे। दोनों नेता द्विपक्षीय सहयोग की व्यापक समीक्षा करेंगे और आपसी हित के क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। गृहमंत्री अमित शाह आज गांधीनगर में पीएम फैमिली केयर टेकर पायलट प्रोजेक्ट का शुभारंभ करेंगे, जिससे कल्याणकारी योजनाओं की ट्रैकिंग और स्वास्थ्य सेवा पहुंचाने के कार्य को बेहतर बनाया जा सके। इस कार्यक्रम से पहले गृहमंत्री अहमदाबाद के चांदलोडिया में साबरमती विधानसभा क्षेत्र के बूथ अध्यक्षों और शक्ति केंद्र प्रभारियों के साथ विचार विमर्श करेंगे। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने कहा है कि भारत ने पिछले 12 वर्षों में स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में महत्वपूर्ण प्रगति की है और वह सभी के लिए स्वास्थ्य कवरेज के व्यापक लक्ष्य की ओर अग्रसर है। इसका उद्देश्य प्रत्येक नागरिक के लिए सुलभ, किफायती और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित करना है। एक निजी मीडिया चैनल के कार्यक्रम के 9वें डॉक्टर्स डे कॉन्क्लेव में सुश्री पटेल ने कहा कि सरकार ने अपने स्वास्थ्य दृष्टिकोण को बीमारों की देखभाल से उनके बेहतर स्वास्थ्य की ओर था उपचारात्मक देखभाल से मरीजों के व्यापक कल्याण की ओर मोड़ दिया है। उन्होंने आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को विश्व के सबसे बड़े स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमों में से एक बताया, जिसमें लगभग 62 करोड़ लोग शामिल हैं। चारधाम यात्रा के लिए हेलीकॉप्टर सेवा का पहला चरण पूरा हो गया है। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने बताया कि इस दौरान हर दिन लगभग 400 हेलीकॉप्टर उड़ानें भरी गईं। मंत्रालय ने यह भी बताया कि 12,000 से ज्यादा शटल उड़ानों के जरिए 67,000 से ज्यादा तीर्थयात्रियों ने यात्रा की। मौसम विभाग ने आज असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई क्षेत्रों और सिक्किम में मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। अगले दो दिनों में बिहार, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, कोंकण, गोवा, उड़ीसा, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकल, तेलंगाना, विदर्भ, लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में तेज बारिश की संभावना है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दिल्ली के कोचिंग सेंटरों को चेतावनी दी है कि अनिवार्य सुरक्षा मानकों का पालन न करने पर उन्हें संचालित करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। वीडियो संदेश में उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार जल्द ही एक मजबूत नियामक कानून लाएगी, जिससे कड़ी निगरानी, अधिक जवाबदेही और छात्रों की बेहतर सुरक्षा सुनिश्चित हो सकेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि छात्रों को अपने कोचिंग सेंटर में किसी भी प्रकार की लापरवाही या सुरक्षा उपायों की कमी की रिपोर्ट ईमेल, संदेश या फोन से करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। गोवा में 14 वर्षीय एथन वॉज ने बोस्निया और हर्जगोविना में आयोजित सराजेवो जीएम मिक्स शतरंज टूर्नामेंट में तीसरा और अंतिम ग्रैंड मास्टर नाम हासिल कर लिया है और वे भारत के 96वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। इस उपलब्धि के साथ ही एथन अनुराग महामल और लियोन मेंडोगा के बाद गोवा से तीसरे ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। एथन ने 10 ग्रैंड मास्टरों को पीछे छोड़ते हुए ये खिताब अपने नाम किया। फीफा फुटबॉल विश्व कप में इंग्लैंड ने आज सुबह पनामा को 2-0 से हरा दिया। अमेरिका के न्यू जर्सी में खेले गए ग्रुप एल के मैच में इंग्लैंड के जूड बेलिंगम में और हैरी केन ने एक एक गोल किया। इसके साथ ही इंग्लैंड ग्रुप एल में शीर्ष पर पहुंच गया है। इसी ग्रुप के अन्य मैच में क्रोएशिया ने घाना को 2-1 से हराया। क्रोएशिया ग्रुप में दूसरे जबकि घाना तीसरे स्थान पर रहा। वेनेजुएला में भूकंप से मरने वालों की संख्या 1,430 हो गई है। वेनेजुएला में बुधवार को 7.2 और 7.5 तीव्रता के दो शक्तिशाली भूकंप आए थे, जिसमें काफी नुकसान हुआ था। देश में 68,000 से अधिक लोगों के लापता होने की भी खबर है। लागुएरा क्षेत्र में सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। अमेरिका ने ईरान के कई ठिकानों पर हमले किए हैं। इससे दोनों पक्षों के बीच हुई संघर्ष विराम समझौते को लेकर अनिश्चितता की स्थिति उत्पन्न हो गई है। सोशल मीडिया पोस्ट में अमेरिका की सेंट्रल कमांड ने कहा है कि शुक्रवार को एक तेलवाहक जहाज कीकू पर हुए हमले के जवाब में अमेरिका ने ईरान के सैन्य ढांचों, संचार प्रणालियों, वायुसेना ड्रोन और बारूदी सुरंग बिछाने की क्षमताओं को

0: पटना ने बनाया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: आकाशवाणी का ये लखनऊ केंद्र है। नमस्ते लखनऊ, कार्यक्रम में स्वागत है आप सभी श्रोताओं का। 747 किलो हर्ट्स के अलावा आप आकाशवाणी लखनऊ के कार्यक्रमों को सुन सकते हैं न्यूज ऑन AIR ऐप और DTH पर भी। समय है कृषि चर्चा कार्यक्रम का। आज की कृषि चर्चा में आइए सुनते हैं धान रोपाई में आवश्यक सावधानियां विषय पर डॉक्टर चंद्रमणि त्रिपाठी से की गई भेंटवार्ता। भेंट करता है डॉक्टर सुशील कुमार राय।
2: नमस्कार किसान भाइयों बहनों, जहां खरीफ में धान उत्पादन की योजना है तो धान उत्पादन और खास करके धान की रोपाई में कौन कौन सी आवश्यक सावधानियां हैं, इसी विषय पर जानकारी के लिए आज हमारे साथ हैं कृषि विज्ञान केंद्र गोपाल ग्राम गोंडा से वरिष्ठ वैज्ञानिक और अध्यक्ष डॉक्टर चंद्रमणि त्रिपाठी साहब। स्वागत है कार्यक्रम में। डॉक्टर साहब, धान उत्पादन और खास करके धान की रोपाई में कौन कौन सी खास बातें हैं जिसको किसान भाई बहन ध्यान में रखें?
3: सर्वप्रथम किसान भाइयों को हमारा राम राम। धान की रोपाई में मुख्य रूप से बीज के चयन से खेत की तैयारी से लेकर के और कटाई मड़ाई और मार्केटिंग तक बहुत सी ऐसी सावधानियां हैं जिसको किसानों भाइयों को ध्यान में रखना चाहिए। सर्वप्रथम हम प्रजाति की बात करेंगे कि कौन सी प्रजातियों का हमको चयन करना चाहिए, सिंचित अवस्था में है या असिंचित अवस्था में है, देर से पकने वाली है या मध्यम, इसका चयन हमको करना चाहिए। जैसे शीघ्र और सिंचित पकने वाली जो प्रजातियाँ हैं 100 से 110 दिन में जो है उसमें पूसा बासमती है 2511 है, नरेंद्र 80 है, सुगंधा 5 है, रत्ना गोविंद, इस तरह की प्रजातियाँ हैं। मध्यम अवधि में 120 से 140 दिन की जो प्रजातियाँ हैं उसमें पंत धान 4 है, 10 है, 12 है, IR 50 है। देर से पकने वाली प्रजातियाँ और कुछ समय तक बारिश वहाँ पे रुकती है, खेत में पानी भरा रहता है, ऐसे क्षेत्रों में जो है नरेंद्र धान 2026, 2064, 2065, नरेंद्र 359, सांभा मसूरी इत्यादि का प्रचलन हमको करना चाहिए। दूसरा, जल भराव जहाँ पे बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है तो वहाँ पे हमको चकिया 61 है, मधुकर है, जलमग्न है, नरेंद्र की जो है 2064 प्रजातियाँ हैं जी, इसको हमको चयन करना चाहिए।
2: डॉक्टर साहब, ये तो रही प्रजातियों की बात, बहुत जगह किसान भाई बहन नर्सरी डाल चुके हैं तो नर्सरी की देखभाल में कौन सी आवश्यक सावधानियां हैं?
3: अब नर्सरी यदि किसान भाइयों ने डाल रखा है तो उसमें कुछ पीलापन यदि दिखाई देता है या सफ़ेद उसमें से पत्तियां कुछ दिखाई देती हैं तो उसके लिए हमको कुछ पोषक तत्वों की कमी हो जाती है जिसके कारण ये समस्या आती है।
2: जैसे
3: जैसे उसमें सफ़ेद होता है लोहा की कमी हो गई या जिंक की कमी हो गई, तो किसान भाइयों को इसमें 10-11 दिन की अवस्था पे नर्सरी जब हमारी हो जाए तो उसमें हमको जिंक और फेरस सल्फेट का जो है
2: पानी छिड़काव
3: कर देना चाहिए जिससे ये समस्या हमारे पास जो है खत्म हो जाती है।
2: डॉक्टर साहब, जिस खेत में धान की रोपाई करनी है उसकी तैयारी भी महत्वपूर्ण है?
3: जी, तैयारी भी बहुत महत्वपूर्ण है। खेत की अच्छी तरह से जुताई हमको कर लेना चाहिए, खेत अच्छी तरह से तैयार हो जाए, खरपतवार भी रीत हो जाए तब हमको रोपाई करना चाहिए। और दूसरा एक पद्धति और रहता है कि हम डायरेक्ट सीडेड राइट्स कि मैंने धान की सीधी बुआई भी हम बिना पलेवा लगाए भी खेत में कर सकते हैं। और एक और पद्धति आती है कि बीज को हम अंकुरित कर लें और खेत अच्छी तरह से तैयार कर लें, हम उसमें बीज को डाल दें,
2: यानी ड्रम सीडर के माध्यम से
3: ही हम उसकी बुआई उस खेत में कर सकते हैं।
2: लेकिन आज हम लोग धान रोपाई में आवश्यक सावधानियों की चर्चा कर रहे हैं तो पलेवा करने में कौन कौन सी बारीकी करनी है?
3: अब पलेवा, पानी समुचित मात्रा में रहना चाहिए खेत में और अच्छी तरह से खेत को जुताई कर दें, जो भी चारा खरपतवार है वो पूर्ण रूप से नष्ट हो जाए और पानी हमारा जो स्थिर हो जाए तो उस अवस्था में हमको बीज डालना चाहिए कि जिससे हमारा बीज जो है नर्सरी के लिए डाला है जमीन के अंदर ना जाने पाए, ऐसा सावधानी बरतना।
2: और जैसे नर्सरी से पौध उखाड़ करके रोपाई में,
3: रोपाई करते समय भी खेत में थोड़ा नमी होना चाहिए, प्रॉपर नमी होना चाहिए और उस अवस्था में हम खेत को उखाड़ें, लगभग 15-20 दिन के बाद जो है नर्सरी तैयार हो जाती है और हम उसको रोपाई के लिए खेत में लगा सकते हैं।
2: जैसे जो धान की नर्सरी है उसको उखाड़ने के बाद रोपाई के पहले क्या पौध जड़ उपचार भी कर सकते?
3: जी, जड़ उपचार उसको करना चाहिए और यदि हम उसको उपचारित कर लेंगे तो हमारी जो फसल में जो बीज में समस्या आती है

0: वो उससे निदान हो जाएगी। जैसे बायो फर्टिलाइजर है, जेक्टोबैक्टर है या फंजीसाइड बाविस्टिन है, इससे हमको जो है उसको सीडलिंग को उपचारित करके फिर खेत में लगाना चाहिए।
1: डॉक्टर साहब, किसान भाइयों बहनों के मन में अभी भी ढेर सारे सवाल होंगे धान रोपाई में आवश्यक सावधानियों के बारे में। अगर इसके लिए आपसे सीधे संपर्क करना चाहें या आपके कृषि विज्ञान केंद्र आना चाहें तो अपना मोबाइल नंबर बता दें।
0: जी, 820-88-73-126, 8208-73-126, 820-88-73-126।
1: डॉक्टर चंद्रमणि त्रिपाठी साहब, आज आप कार्यक्रम में आए और धान रोपाई में आवश्यक सावधानियां कौन कौन सी हैं इनके बारे में आपने ढेर सारी जानकारी दी। डॉक्टर साहब बहुत बहुत धन्यवाद।
2: धान रोपाई में आवश्यक सावधानियां, इस विषय पर अभी हमारे किसान भाई जानकारी प्राप्त कर रहे थे डॉक्टर चंद्रमणि त्रिपाठी से की गई भेंट वार्ता द्वारा। भेंट करता थे डॉक्टर सुशील कुमार राय। हमें अपने अनुभवों, विचारों और कर्मों का गहराई से विश्लेषण करके ही जीवन के वास्तविक सत्य और अर्थ को समझने का प्रयास करना चाहिए। दूसरों की गलतियों पर विचार करने से मन अशांत होता है, लेकिन जब हम अपनी गलतियों पर विचार करते हैं तो आत्म सुधार का मार्ग प्रशस्त होता है। आइए सुनते हैं आज का सुविचार।
3: अक्सर लोगों को कहते सुना है कि अच्छे से अच्छा काम करने पर भी बुराइयां सामने आती हैं, चाहे समाज सेवा का कार्य हो अथवा बड़ा से बड़ा धार्मिक आयोजन हो, और चाहे जितने निस्वार्थ भाव से कार्य किया जाए फिर भी आलोचनाएं और बुराइयां बाधाएं अवश्य आती हैं, और बहुधा अच्छा कार्य करने वाले निराश हो जाते हैं। वे ये नहीं समझ पाते कि ऐसा क्यों हो रहा है। वास्तव में प्रकृति का नियम ही है कि जीवन मंथन के प्रारंभ में विष ही मिलता है। हमारी पौराणिक कथाओं में समुद्र मंथन का वर्णन आता है। जब असुरों ने देवताओं को परास्त कर स्वर्ग पर अधिकार कर लिया, तब देवताओं को अमृत पिलाकर अमर बनाने के उद्देश्य से समुद्र मंथन किया गया। मंदराचल पर्वत को मथानी और बासुकी नाग को रस्सा बनाया गया। साक्षात ईश्वर ने कछुए का अवतार लेकर अपनी पीठ पर मंदराचल पर्वत को धारण किया। देव और दानवों ने मिलकर समुद्र मंथन किया। समुद्र मंथन से सबसे पहले विष बाहर आया, बाद में अमृत। साक्षात ईश्वर के आदेश से किए गए समुद्र मंथन में पहले विष ही निकला। संदेश मिलता है कि मंदराचल रूपी मन को ईश्वर के आधार पर स्थिर करके बासुकी नाग रूपी प्रेम की डोर से मंथन करोगे तो भी पहले विष ही निकलेगा, और अगर विष को सहलोगे तो बाद में अमृत भी मिलेगा। समुद्र मंथन की तरह जीवन का मंथन भी 16वें वर्ष में प्रारंभ होता है, जिसमें पहले विषय रूपी विष आते हैं। चाहे कोई कितना ही महान क्यों न हो, उसके जीवन में विविध कष्टों के रूप में विष आते हैं। महापुरुष हंसते हंसते विष का पान करते हैं, अर्थात कष्टों को सहन करते हैं, और बाद में उन्हें अमृत के रूप में ज्ञान का अमृत मिल जाता है। जीवन में हर अच्छे कार्य में जो बुराइयां मिलती हैं वे ही विष हैं, परंतु विष को कैसे सहन किया जाए इसका उत्तर भी समुद्र मंथन की कथा में स्पष्ट किया गया है। ज्यों ही समुद्र से विष बाहर निकला, देवता घबरा गए। विष की दुर्गंध उनसे सहन न हुई तो प्रभु ने विषपान हेतु शंकर जी को बुलाया। जिसके सिर पर ज्ञान की गंगा होती है वो विष को पचा सकता है। इस संसार में निंदा और कर्कश वाणी का विष सभी को सताता है, परंतु ज्ञानियों को नहीं। जब शिव जी से विष पीने के लिए कहा गया तब वे मान गए, क्योंकि जो दूसरों को सुखी करने के लिए दुख सहता है वही शिव है, तथा जो दूसरों को दुख देता है वो जीव है। अतः शिव ने विष का पान किया, परंतु एक महानतम सूत्र दे दिया कि विष को गले में धारण करना है, पेट में नहीं ले जाना है और बाहर भी नहीं लाना है। आशय स्पष्ट है कि कर्कश वाणी एवं निंदा आदि का जो विष है उसका स्थान गला होना चाहिए। अगर वो पेट में गया तो मृत्यु हो जाएगी और बाहर निकला तो संघर्ष होगा। समुद्र मंथन का पौराणिक वर्णन अनेक सूत्रों का प्रतिपादन करता है, जो जीवन के लिए प्रेरणादायी ही नहीं मार्गदर्शक सिद्धांत भी है। समुद्र मंथन में दूसरे नंबर पर गौ माता कामधेनु निकली। कामधेनु को ऋषि मुनियों और तपस्वियों को दे दिया गया, अर्थात जीवन में जब भी प्रथम संपत्ति मिले उसी पर उपकार में लगाओ। तीसरे नंबर पर उच्चश्रवा नाम का घोड़ा निकला, जो कीर्ति का प्रतीक है। सद्गुणी को कीर्ति

0: से बचना चाहिए क्योंकि इससे अहंकार आता है। अतः घोड़ा राक्षसों को दे दिया गया। चौथे नंबर पर निकला ऐरावत हाथी। इसकी आंखें छोटी होती हैं जो सूक्ष्म दृष्टि का प्रतीक है। अतः ऐरावत हाथी देवताओं को दे दिया गया। पांचवें नंबर पर पारिजात का वृक्ष और अप्सरा निकली जिन्हें सद्गुणों के प्रतीक देवों को दिया गया। छठे नंबर पर लक्ष्मी जी निकली। वे सर्वगुण संपन्न नारायण का वर्णन करती हैं। लक्ष्मी जी ऋषियों के क्रोधी स्वभाव, देवों के कामी स्वभाव, परशुराम के निष्ठुर स्वभाव, मार्कंडेय ऋषि के अनाशक्त भाव तथा शिव के अमंगल वेश के कारण उनकी तरफ नहीं जाती। अर्थात जीवन मंथन में लक्ष्मी उन्हीं के पास आती है जो धीर वीर गंभीर सदाचारी होते हैं। मंथन की क्रिया में सातवें नंबर पर मदिरा आती है। वो राक्षसों को तथा अंत में अमृत कलश लेकर धनवंतरी जी प्रकट होते हैं। समुद्र मंथन की कथा में विष से अमृत प्राप्त होने का क्रम अत्यंत सांकेतिक है। लक्ष्मी अर्थात धन प्राप्त करना है तो कर्म करते ही कुबेर का खजाना नहीं मिलेगा। कार्य प्रारंभ करते ही विष रूपी कष्ट प्रारंभ होंगे। विष को धारण करने के बाद छठवें नंबर पर लक्ष्मी जी आएंगी और लक्ष्मी जी भी सीधे आपकी तिजोरी में तब तक नहीं जाएंगी जब तक आपका तिजोरी रूपी मन साफ स्वच्छ और परोपकारी नहीं है। रातों रात अमीर बनने वाले लोग भले ही नकली नोट छापकर या डकैती लूट हत्या या नकली माल बेचकर पैसा कमा लें, परंतु वो लक्ष्मी उनके पास टिकने वाली नहीं है। अतः अमृत मंथन के आध्यात्मिक चिंतन से धैर्य के साथ मेहनत करते हुए ज्ञान का अमृत पाने हेतु अपने जीवन का मंथन करना चाहिए। हमें विश्वास रखना होगा सत्कर्म का मंथन चलता रहे और एक दिन अमृत अर्थात उद्देश्य लक्ष्य और सफलता की पूर्ति में कोई संदेह नहीं होगा।
1: जीवन मंथन ये विषय था आज के सुविचार का। संसार में रहते हुए यदि मन प्रभु के चरणों में जुड़ा रहे तो जीवन सरल शांत और सार्थक हो जाता है। आइए मन को प्रभु स्मरण में लगाएं। सुनते हैं भक्ति संगीत का कार्यक्रम आराधना।

भक्त और भगवान के बीच प्रेम का जो संबंध होता है अटूट विश्वास और समर्पण का होता है। सिर्फ पूजा पाठ ही नहीं बल्कि आत्मा का परमात्मा से मिलन है, जहां भक्त अपने अहंकार को मिटाकर प्रभु की शरण में परम शांति और आनंद की अनुभूति प्राप्त करता है।

माँ की शरण में सारा जग सुकून पाता है। ममता की छांव है माँ, दुआओं का गांव है माँ। जितना कहें उतना कम है, अनमोल वरदान है माँ।

कभी कभी भक्ति समर्पण बन जाती है, जब भक्त कह उठता है अब सब कुछ तुम्हारे हवाले है प्रभु, और यही भाव यही समर्पण ही ईश्वर के प्रति सच्ची भक्ति है, सच्चा प्रेम है।

747 किलोहर्ट्ज़ पर अपने रेडियो सेट पर आपने ट्यून इन किया है आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र और सुन रहे हैं मॉर्निंग प्रोग्राम नमस्ते लखनऊ वैशाली के साथ। और अब आइए करते हैं प्रभु श्री राम की भक्ति, सुनते हैं श्री रामचरितमानस से आज के प्रसंग की संगीतमय प्रस्तुति। आज सुनेंगे भाग 215 में चित्रकूट में वनवासियों का प्रभु श्री राम के प्रति स्नेह और अयोध्या वासियों की सेवा और सत्कार का प्रसंग।

0: श्रोताओं नमस्कार। स्वस्थ।
1: श्री राम को अयोध्या लौटा लाने के लिए भरत जी के साथ गुरुजन तथा पुरवासियों का एक बड़ा समूह चित्रकूट पहुंचा था। पिता के स्वर्गारोहण का समाचार सुन श्री राम, सीता तथा लक्ष्मण शोक सागर में डूब जाते हैं। गुरु वशिष्ठ द्वारा बताई गई विधि से ज्येष्ठ पुत्र श्री राम एक बार फिर पिता की क्रिया आदि करके अयोध्या वासियों से वापस नगर लौट जाने का अनुरोध करते हैं। पुरवासियों का दुख गुरु वशिष्ठ भली भांति समझते हैं और श्री राम के निकट वहां दो दिन रहकर शांति प्राप्त करने का परामर्श देते हैं। वन के निवासी कोल, भील, किरात आदि यथा सामर्थ्य अयोध्या वासियों का आदर सत्कार करते हैं। उनसे अमृत के समान स्वादिष्ट मधु, कंदमूल और फल प्राप्त करके नगर निवासी उन वस्तुओं का मोल चुकाना चाहते हैं, किंतु वनवासी राम की दुहाई देते हुए दाम वापस कर देते हैं। प्रेम सनी वाणी में कहते हैं,

साधु जन प्रेम पहचान कर उसका सम्मान करते हैं। आप साधु जन हैं, अतः हमारे प्रेम का मूल्य चुकाकर उसका तिरस्कार करना आपको शोभा नहीं देता।

0: अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरितमानस से आज के प्रसंग की संगीतमय प्रस्तुति। गायक कलाकार थे रंजना जोंगलकर और श्रीकांत पारगांवकर, आकाशवाणी की इस प्रस्तुति के संगीत संयोजक सतीश भाटिया। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से प्रसारित किया जा रहा था। आकाशवाणी लखनऊ के कार्यक्रमों का प्रसारण आप सुन सकते हैं न्यूज ऑन AIR ऐप और DTH पर भी। प्रायोजित कार्यक्रम NCERT आप सुनेंगे सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे से। KHz पर आकाशवाणी लखनऊ से आप सुन रहे हैं मॉर्निंग प्रोग्राम नमस्ते लखनऊ वैशाली के साथ। कुछ ही पलों में प्रातः के 6:55 होने वाले हैं। सुनेंगे संस्कृत समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।
1: इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचकः पुनीत त्रिपाठी।

0: चर्चा सेगमेंट का। जैसे बूंद बूंद से सागर भरता है, वैसे ही पानी की हर एक घूंट शरीर को ऊर्जा और नया जीवन देती है। आज की स्वास्थ्य चर्चा में आइए सुनते हैं जानकारी जीवन का आधार जल विषय पर। जानकारी दे रही हैं नीना सोनकर।
1: श्रोताओं नमस्कार, स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम में मैं हूं नीना सोनकर और एक बार फिर आप सबका स्वागत करती हूं। श्रोताओं, हम बात करेंगे एक ऐसी चीज के बारे में जो हमारी जिंदगी का आधार है, यानी जल। पानी न सिर्फ हमारे शरीर के हर अंग के लिए आवश्यक है, बल्कि ये हमारी सेहत को भी संपूर्ण रखता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि पानी को पीने के सही तरीके क्या हैं और इसके क्या क्या स्वास्थ्य लाभ हो सकते हैं? तो आज विस्तार से हम इसी बात की चर्चा करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं, पानी हमारे शरीर के लिए क्यों है इतना महत्वपूर्ण। हमारा शरीर लगभग 60% पानी से बना होता है और हर अंग हर कोशिका को सुचारू रूप से काम करने के लिए पानी की जरूरत होती है। पानी शरीर से विषाक्त पदार्थों को बाहर निकालता है, पाचन को बेहतर बनाता है और शरीर के तापमान को संतुलित रखता है। जब हम पर्याप्त मात्रा में पानी पीते हैं तो हमारे शरीर के सभी अंग अच्छे से काम करते हैं और हम ताजगी से भरे रहते हैं। अब बात करेंगे पाचन तंत्र की। पानी का सबसे बड़ा लाभ यही है कि ये हमारे पाचन तंत्र को बेहतर बनाता है। अगर आप खाने से पहले या खाने के दौरान थोड़ा सा पानी पीते हैं तो इससे आपका खाना आसानी से पचता है। इसके अलावा गुनगुना पानी पीने से पाचन में सुधार होता है और पेट की समस्याएं जैसे गैस और कब्ज दूर रहती हैं। त्वचा के लिए भी पानी पीना बेहद फायदेमंद है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी त्वचा स्वस्थ और चमकदार बनी रहे तो पानी पीना बहुत जरूरी है। पानी त्वचा को अंदर से हाइड्रेट करता है और उसे नमी प्रदान करता है। अगर हम पर्याप्त मात्रा में पानी नहीं पीते हैं तो त्वचा रूखी और बेजान हो सकती है। पानी का नियमित सेवन त्वचा में चमक बनाए रखता है और उसे स्वस्थ बनाता है। वजन घटाने के लिए भी पानी का सेवन बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आप वजन घटाने की कोशिश कर रहे हैं तो पानी आपका सबसे अच्छा साथी हो सकता है। खाना खाने से पहले एक गिलास पानी पीने से भूख कम हो जाती है और हम अतिरिक्त कैलोरी से बच सकते हैं। इसके अलावा पानी शरीर के मेटाबॉलिज्म को भी बढ़ाता है, जिससे फैट बर्निंग की प्रक्रिया तेज होती है। अब बात करेंगे इम्यूनिटी की। पानी हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी बढ़ाता है। पानी का सेवन शरीर में मौजूद विषाक्त पदार्थों को बाहर निकालता है, जिससे हमारी इम्यूनिटी बेहतर होती है और हम बीमारियों से बचे रहते हैं। अगर आपको कभी गले में खराश या सर्दी जुकाम हो रहा हो तो गर्म पानी पीने से गले को आराम मिलता है और हमारा इम्यून सिस्टम भी मजबूत बनता है। सिरदर्द से बचने में भी पानी बहुत मददगार होता है। अक्सर सिरदर्द की समस्या पानी की कमी के कारण भी हो सकती है। अगर आप दिन भर में पर्याप्त मात्रा में पानी नहीं पीते हैं तो सिरदर्द हो सकता है और शरीर में थकान भी महसूस हो सकती है। इसलिए जरूरी है कि आप दिन भर में कम से कम 8 से 10 गिलास पानी जरूर पिएं, ताकि शरीर में पानी की कमी ना हो और आप ताजगी महसूस करें। अब ये जानने की कोशिश करेंगे कि पानी पीने के सही तरीके क्या हैं। सबसे पहले तो कोशिश करें कि आप सुबह उठते ही खाली पेट एक या दो गिलास गुनगुना पानी पिएं। इससे शरीर से विषाक्त पदार्थ बाहर निकलते हैं और पाचन तंत्र को ऊर्जा मिलती है। दिन भर में थोड़ी थोड़ी मात्रा में पानी पिएं, ताकि शरीर में पानी का संतुलन बना रहे। एक साथ बहुत सारा पानी पीने से बचें, क्योंकि इससे पाचन तंत्र पर दबाव पड़ सकता है। इसके अलावा कोशिश करें कि आप बैठकर पानी पिएं, खड़े होकर नहीं। बैठकर पानी पीने से पानी का प्रभाव शरीर पर बेहतर होता है और पाचन तंत्र को भी फायदा मिलता है। पानी को धीरे धीरे घूंट घूंट करके पिएं, ताकि शरीर उसे अच्छे से अवशोषित कर सके। और हाँ, बहुत ठंडा पानी पीने से बचें, क्योंकि ये पाचन तंत्र को नुकसान पहुंचा सकता है। इसके बजाय गुनगुना या सामान्य तापमान वाला पानी पीना सबसे अच्छा होता है। श्रोताओं, पानी का महत्व तो हम सभी जानते हैं, लेकिन इसे सही तरीके और पर्याप्त मात्रा में पीना ही असली कुंजी है। पानी हमारे शरीर की सेहत के लिए बहुत आवश्यक है और इसके बिना हमारा शरीर अच्छे से काम नहीं कर सकता। इसलिए ध्यान रखें कि आप रोजाना पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं और अपने शरीर को स्वस्थ बनाए रखें। कल फिर इसी समय किसी नए विषय के साथ हम हाजिर होंगे। नीना सोनकर को दीजिए अनुमति। सभी को नमस्कार।

तो जल ही जीवन का आधार है, ये तो आप जान ही गए होंगे। और स्वच्छ जल ही अच्छे स्वास्थ्य की सच्ची पहचान है। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम स्वास्थ्य चर्चा। जानकारी दे रही थी जीवन का आधार जल के बारे में नीना सोनकर। और अब आपको बता दें आज प्रसारित होने वाले मुख्य कार्यक्रमों के बारे में।

आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से आज पूर्वाह्न 11 बजे से प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी रेडियो पर साझा करेंगे मन की बात। मन की बात के प्रसारण के बाद आप सुनेंगे इसका उर्दू अनुवाद। आईसीसी विमेंस टी20 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2026 के अंतर्गत लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड लंदन में भारत और ऑस्ट्रेलिया के मध्य खेले जाने वाले टी20 क्रिकेट मैच का आंखों देखा हाल आप सुनेंगे आज शाम 6:30 से मैच की समाप्ति तक। मैच का आंखों देखा हाल आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किया जाएगा। सुबह 9:15 पर सामयिक चर्चा में सुनिए उत्तर प्रदेश में मानसून पिछड़ने के कारणों और बारिश के पूर्वानुमान पर लखनऊ मौसम विज्ञान विभाग के वरिष्ठ वैज्ञानिक अतुल कुमार सिंह से तनवीर फातिमा की बातचीत। सुबह 9:30 पर उर्दू कार्यक्रम में आकाशवाणी लखनऊ की पेशकश के तहत सुनिएगा खत के लिए शुक्रिया कार्यक्रम। मेजबानी सुरेंद्र राजेश्वरी और शाजिया खान की होगी, पेशकश आसिफ इकबाल की। दिन में 3:15 पर सुनना ना भूलें डॉक्टर अनुज चौबे की संस्कृत वार्ता वाल्मीकि रामायण ज्योतिष तत्वम। फोन इन कार्यक्रम हेलो डॉक्टर का प्रसारण समय होगा दिन में 3:30। आज इस कार्यक्रम में विषय है श्वसन संबंधी विभिन्न विकार, कारण, लक्षण और बचाव। विशेषज्ञ होंगे प्रोफेसर डॉक्टर अजय कुमार वर्मा, विभागाध्यक्ष श्वसन रोग विभाग, राम मनोहर लोहिया, लखनऊ। संचालन सुभाष खन्ना का होगा। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में सुबह 7:31 पर सुनिएगा पंडित भजन सोपोरी का राग नट भैरव में संतूर वादन। आपकी पसंद के लोकगीत सुनवाए जाएंगे सुबह 10 से और दोपहर 12 हमारे नन्हे मुन्ने सुनेंगे कार्यक्रम बाल गोपाल। आज इस कार्यक्रम में गौरी शंकर वैश्य की कहानी सुनवाई जाएगी खिलौनन की दुनिया। आज इतवार है में दिन में 1:15 पर सुनना ना भूलें इरफान ह्यूमन की लिखी झलकी यादों की सवारी। संपादन एवं प्रस्तुति सहयोग कीर्ति श्रीवास्तव का, निर्देशक और प्रस्तुतकर्ता होंगे अतिश कुमार श्रीवास्तव। दिन में 1:30 पर अक्षवट कार्यक्रम में डॉक्टर दिविता श्रीवास्तव होम्योपैथिक फिजिशियन से की गई भेंटवार्ता प्रसारित की जाएगी बढ़ती उम्र और होम्योपैथी सुरक्षित और सहज उपाय विषय पर भेंट करता होंगी डॉक्टर अलका चौधरी। खरीफ में तिलहन उत्पादन सुनिए डॉक्टर आनंद कुमार श्रीवास्तव से की गई भेंटवार्ता। विज्ञान और किसान कार्यक्रम में दिन में 2:30 पर भेंट करता होंगे डॉक्टर सुशील कुमार राय। शाम 4 संकल्प कार्यक्रम में सुनना ना भूलें दृष्टिबाधित दिव्यांग बालिकाओं के लिए सामाजिक सुरक्षा और जागरूकता विषय पर संतोष कुमारी गुप्ता प्राचार्य स्पर्श बालिका विद्यालय से की गई भेंटवार्ता। भेंट करता होंगे देवाशीष। शाम 5:10 पर युवा तरंग कार्यक्रम में हमारे युवा साथी सुनेंगे डॉक्टर अनूप कुमार भारती से की गई भेंटवार्ता युवा और नशे का दलदल। इस विषय पर बातचीत करेंगे डॉक्टर नगेंद्र सिंह रघुवंशी। नई उड़ान कार्यक्रम में शाम 5:45 पर अर्बन चौपाल क्रम में ओबी आधारित जानकारी का विषय होगा महानगरों के मानसिक तनाव और मन की तलाश। सुरेश प्रसाद कुशवाहा और साथी के गाए भोजपुरी लोकगीत सुनवाए जाएंगे लोक झंकार कार्यक्रम में शाम 4:30 पर। तो ये थी जानकारी आज प्रसारित होने वाले मुख्य कार्यक्रमों की जिन्हें आप सुन सकेंगे 747 kHz पर आकाशवाणी लखनऊ से। आकाशवाणी लखनऊ के कार्यक्रमों को आप सुन सकते हैं न्यूज ऑन AIR ऐप और DTH के माध्यम से भी। हाजिर होते हैं श्रोताओं बस कुछ ही पलों में कार्यक्रम विविधा के साथ।

स्वागत है आप सभी श्रोताओं का आज की विविधा में। आप सभी को वैशाली का प्यार भरा नमस्कार। कभी सोचा है कि इंसान को सबसे ज्यादा ताकत किस चीज से मिलती है? पैसे से, पद से, शरीर की शक्ति से, या फिर किसी बड़े सहारे से? दोस्तों, असली ताकत मिलती है ज्ञान से, क्योंकि धन छीना जा सकता है, पद बदल सकता है, हमारा शरीर भी कमजोर हो सकता है, लेकिन सही ज्ञान अगर एक बार भीतर उतर जाए तो वो इंसान को अंधेरे से निकाल कर प्रकाश की ओर ले जाता है। श्रीमद् भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाते हुए कहा था, नहि ज्ञानिन सदृशम पवित्र मिहि विद्यते, अर्थात ज्ञान मनुष्य को भीतर से ही शुद्ध करता है। ये केवल एक श्लोक नहीं है, इस एक पंक्ति में समाया है पूरा ब्रह्मांड। और आज की विविधा में बात इसके भीतर छिपे उस रहस्य की, जो हजारों सालों से इंसान को बदलता आया है, चाहे वो राजा हो, फकीर हो, वैज्ञानिक हो या एक आम इंसान। बात नहि ज्ञानेन सदृशम की, ये वो ज्ञान है जो हमें समझाता है क्या सही है, क्या गलत है, हमें क्या करना चाहिए, हमारा कर्तव्य क्या है और मैं वास्तव में कौन हूँ। ये बताता है कि ज्ञान सिर्फ किताबों में लिखी बात नहीं, बल्कि वो रोशनी है जो मनुष्य के विचार, व्यवहार, निर्णय और जीवन की दिशा बदल देती है। इस संसार में ज्ञान के समान पवित्र करने वाली कोई दूसरी वस्तु नहीं है। जब इंसान के भीतर ये समझ आ जाती है, तब उसके जीवन में अंधकार कम होने लगता है। जैसे एक कमरे में वर्षों से अंधेरा हो और कोई एक दीपक जला दे तो अंधेरा अपने आप भाग जाता है। उसी तरह जीवन में सच्चा ज्ञान आते ही भ्रम, डर, लालच, क्रोध और मोह धीरे धीरे कम होने लगते हैं। जब ज्ञान आता है तो इंसान समझता है कि हर परिस्थिति में धैर्य, विवेक और कर्म सबसे जरूरी है। एलन मस्क ने रॉकेट साइंस खुद पढ़ी जब उनके पास स्पेस एक्स के लिए इंजीनियर्स नहीं थे। एपीजे अब्दुल कलाम मछुआरे के बेटे थे, कोई नेटवर्क नहीं था, कोई पैसा नहीं था, लेकिन ज्ञान था और वही ज्ञान उन्हें राष्ट्रपति भवन तक ले गया। दोस्तों, धन लूट सकता है, पद जा सकता है, स्वास्थ्य छीन सकता है, लेकिन ज्ञान कोई नहीं छीन सकता। लेकिन हमारा ज्ञान कोई भी नहीं छीन सकता। आज के समय में मोबाइल खोलते ही हजारों बातें, हर जानकारी हमारे सामने है, हर सवाल का जवाब इंटरनेट पर मिल जाता है, लेकिन क्या हर जानकारी ज्ञान है? नहीं, सूचना का मतलब है कोई बात जान लेना, लेकिन ज्ञान का मतलब है उस बात को समझना और जीवन में सही स्थान पर लागू करना। उदाहरण के लिए, सभी जानते हैं कि समय की कीमत होती है, ये सूचना है, लेकिन जो व्यक्ति सच में समय का सदुपयोग करता है वो ज्ञानवान है। सभी जानते हैं कि क्रोध नुकसान पहुंचाता है, ये सूचना है, लेकिन जो व्यक्ति क्रोध आने पर भी स्वयं को संभाल ले वो ज्ञानवान है।

हम सभी जानते हैं कि माता पिता का सम्मान करना चाहिए, लेकिन ये सूचना है, जो व्यक्ति अपने व्यवहार में सम्मान दिखाता है वो ज्ञानवान है। यानी ज्ञान वो है जो चरित्र में हमारे व्यवहार में नजर आए।

महाभारत युद्ध भूमि में जब अर्जुन के सामने अपने ही लोग खड़े थे, गुरु पितामह, संबंधी, मित्र, वो धर्म संकट में पड़ गए थे। ऐसे समय में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को ज्ञान दिया कि जीवन में केवल भावुकता से निर्णय नहीं लिए जाते, धर्म, कर्तव्य, सत्य और न्याय को समझकर निर्णय लेना पड़ता है, और यही ज्ञान उन्हें कर्तव्य के मार्ग पर लौटाता है। ज्ञान इंसान को सही और गलत में फर्क करना सिखाता है। ज्ञान केवल पढ़ाई का विषय नहीं, जीवन जीने की कला है। सच्चे ज्ञान की सबसे बड़ी पहचान होती है दोस्तों, विनम्रता, जो हमें सिखाता है कि हम हर दिन बेहतर हो सकते हैं। आज के टेक्नोलॉजी युग में जहां साधन और सुविधाएं बढ़ रहे हैं, वहीं तनाव, भ्रम, तुलना, गुस्सा और बेचैनी भी बढ़ रही है। ऐसे में न ही ज्ञानेन सदृशम और भी जरूरी हो जाता है। आज हम इंसान के पास सूचना बहुत है, लेकिन शांति कम है। बोलने के साधन बहुत हैं, पर समझ कहीं कम है। दिखावा बहुत है, आत्मचिंतन कम है। आज आवश्यकता बाहरी ज्ञान की नहीं, बल्कि आंतरिक ज्ञान की भी है। हमें यह समझना होगा कि सफलता के साथ संतुलन कैसे रखा जाए, प्रतिस्पर्धा के साथ करुणा कैसे रखी जाए, और आधुनिकता के साथ संस्कार कैसे बचाए जाएं। न ही ज्ञानेन सदृश्यम, ज्ञान सबसे बड़ी पूंजी है, सबसे बड़ी ताकत है। और जब मनुष्य ज्ञान के प्रकाश में चलता है, तो उसका जीवन केवल सफल नहीं होता, उसका जीवन सार्थक हो जाता है। तो दीजिए अनुमति विविधा से वैशाली को नमस्कार।

0: ये आकाशवाणी लखनऊ है, सुनेंगे गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार कुछ ही पलों में, कृपया प्रतीक्षा।
1: कहा था अगर आप कुछ नहीं करोगे तो आपके पास कोई परिणाम नहीं होगा।
2: सफलता एक सोच है, अगर आप चाहें तो उसे आप हासिल कर सकते हैं। महात्मा गांधी।
1: जीवन का लक्ष्य है आत्मविकास। अपने स्वभाव को पूर्णतः जानने के लिए ही हम इस दुनिया में आए हैं। ऑस्कर वाइल्ड।
2: अगर हम अपने सामर्थ्य के अनुसार कर्म करें तो खुद को भी अचंभित कर सकते हैं। थॉमस एडिसन।
1: हर तरफ फैल रहा है कूड़ा कचरा, दिन प्रतिदिन पर्यावरण पर गहराता जा रहा है खतरा।
2: प्रदूषण की समस्या आज इतनी बड़ी हो गई है कि पर्यावरण के रास्ते में बाधक बनकर खड़ी हो चुकी है। निल्सन मंडेला।
1: प्रदूषण एक गंभीर समस्या है जिसे ज्यादा टाला नहीं जा सकता है। प्रदूषण को मिटाना है, पर्यावरण को स्वच्छ बनाना है।
3: असली शिक्षा एक इंसान की गरिमा को बढ़ाती है, उसके स्वाभिमान में वृद्धि करती है। यदि हर इंसान द्वारा शिक्षा के वास्तविक अर्थ को समझ लिया जाता और उसे मानव गतिविधि के प्रत्येक क्षेत्र में आगे बढ़ाया जाता तो ये दुनिया रहने के लिए कहीं अच्छी जगह होती। APJ अब्दुल कलाम।
4: वृद्धों का सम्मान करें, मर्यादा का ध्यान रखें, बड़े बुजुर्गों की करें मदद, आशीर्वाद मिले वही बड़ी दौलत।

0: बुलेटिन के साथ मैं प्रमोद कुमार सिंह। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मन की बात कार्यक्रम में देश और विदेश के लोगों से साझा करेंगे अपने विचार। मासिक रेडियो कार्यक्रम की श्रृंखला में 135वें एपिसोड का होगा सीधा प्रसारण। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गौतम बुद्ध नगर में 2478 करोड़ रुपए लागत की विभिन्न विकास परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। कहा, डबल इंजन सरकार के नेतृत्व में प्रदेश बन रहा इलेक्ट्रॉनिक्स निर्माण का प्रमुख हब। श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय और ट्रस्टी अनिल मिश्रा का इस्तीफा हुआ स्वीकार। ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष ने कहा, दान की गई चांदी की ईंटों और गहनों का पूरा है हिसाब किताब। और गोरखपुर समेत पूर्वांचल के कई हिस्सों में आज सुबह तेज हवाओं के साथ हुई बारिश। अगले कुछ घंटों में प्रदेश के कई हिस्सों में गरज चमक के साथ बारिश को लेकर मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में देश और विदेश के लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। यह मासिक रेडियो कार्यक्रम का 135वां एपिसोड होगा। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों, AIR न्यूज की वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर किया जाएगा। साथ ही AIR न्यूज, DD न्यूज, प्रधानमंत्री कार्यालय और सूचना और प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनलों पर इसका सीधा प्रसारण होगा। हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद क्षेत्रीय भाषाओं में भी कार्यक्रम का प्रसारण होगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल गौतम बुद्ध नगर में नोएडा प्राधिकरण के नवनिर्मित मुख्य प्रशासनिक भवन समेत 2478 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इसके साथ ही यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण क्षेत्र में दो बड़े इलेक्ट्रॉनिक्स और सोलर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट की आधारशिला रखी। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री के साथ केंद्रीय रेल, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव और केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव भी मौजूद थे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि डबल इंजन की सरकार के नेतृत्व में प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक्स निर्माण का प्रमुख हब बन रहा है। ये निवेश, रोजगार सृजन, औद्योगिक विकास और आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को नई गति प्रदान करेगा।
1: सेमीकंडक्टर, यानी यह आज की दुनिया की सबसे बड़ी ताकत है और उस ताकत का केंद्र बिंदु या क्षेत्र बने और आज इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट के नए हब के रूप में इस क्षेत्र को स्थापित करने के लिए जो चीज दुनिया से हम आयात करते हैं वह हमारे यहाँ बने।
0: कार्यक्रम को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि भारत पहले PCB सर्किट आयात करता था, अब इसे जेवर में ही बनाया जाएगा।
2: उत्तर प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री योगी जी, जिन्होंने एक ऐसा विजन दिया कि प्रधानमंत्री जी के इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग को आज उत्तर प्रदेश में जेवर में ले आए,
3: तो अब सेमीकंडक्टर के बाद में इलेक्ट्रॉनिक्स का बहुत बड़ा सेंटर जेवर बन रहा है।
0: प्रधानमंत्री के बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट का जिक्र करते हुए श्री वैष्णव ने कहा कि दिल्ली से लखनऊ, वाराणसी, पटना और सिलीगुड़ी तक बुलेट ट्रेन चलेगी। लखनऊ से जेवर तक का सफर 1 घंटा 40 मिनट में पूरा हो जाएगा। कार्यक्रम में अपने संबोधन में भूपेंद्र यादव ने कहा कि प्रदेश में इलेक्ट्रॉनिक्स और सेमीकंडक्टर उद्योग की इकाइयां लगने से बड़ी संख्या में रोजगार सृजित होंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल नोएडा में यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो के चौथे संस्करण की कर्टन रेजर सेरेमनी में शामिल हुए। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में 96 लाख से अधिक MSME इकाइयां कार्य कर रही हैं, जिनमें 3 करोड़ से अधिक लोग काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि विकसित भारत की संकल्पना तभी साकार होगी जब हमारी मैन्युफैक्चरिंग इकाई मजबूत होगी।
4: कोई भी बड़ा उद्योग का आधार बनता है सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम। बड़ा उद्यम तभी सफल हो सकता है जब हमारे पास आधार होगी, उसके बगैर आगे नहीं बढ़ सकता। विकसित भारत की संकल्पना तब पूरी होगी जब खुशहाल किसान भी होगा, लेकिन उतनी ही तेजी के साथ हम वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर भी दें और इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ अपनी मैन्युफैक्चरिंग पावर को भी उतनी ही मजबूती के साथ आगे बढ़ा सकें।
0: कार्यक्रम को प्रदेश के औद्योगिक विकास मंत्री नंदगोपाल गुप्ता नंदी ने भी संबोधित किया। इससे पहले मुख्यमंत्री ने कल गोरखपुर में भारतीय जनता पार्टी द्वारा आयोजित पंडित दीनदयाल उपाध्याय प्रशिक्षण महाअभियान 2026 का

0: कार्यक्रम में हिस्सा लिया। उन्होंने कहा कि भाजपा आज सबसे बड़े राजनीतिक दल के रूप में लोकतांत्रिक मूल्यों पर विश्वास का प्रतीक बनी है।
1: पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने स्वतंत्र भारत में सरकारों को इस बात के लिए आह्वान किया कि हमारी आर्थिक उन्नयन का जो आधार है और आर्थिक नीतियां उनके हित को ध्यान में रखकर के बनाई जानी चाहिए, जो अंतिम पायदान पर बैठा हुआ व्यक्ति है। इस पूरे अभियान को भारतीय जनता पार्टी ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के मूल्यों और आदर्शों के साथ जोड़ते हुए इस प्रशिक्षण के माध्यम से एक एक कार्यकर्ता के मन में पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के मूल्य आदर्श ये संस्कार समाहित हो सके, इसको ध्यान में रख करके इस प्रशिक्षण महाभियान को पूरे देश के अंदर प्रारंभ किया।
0: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और एक्स हैंडल AIR न्यूज _GKP पर भी उपलब्ध है। श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने महासचिव चंपत राय और ट्रस्टी अनिल मिश्रा के इस्तीफे को आधिकारिक तौर पर स्वीकार कर लिया है। श्रीराम

ये समाचार बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और एक्स हैंडल AIR न्यूज _GKP पर भी उपलब्ध है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने महासचिव चंपत राय और ट्रस्टी अनिल मिश्रा के इस्तीफे को आधिकारिक तौर पर स्वीकार कर लिया है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के कोषाध्यक्ष स्वामी गोविंद देव गिरी महाराज ने कल इस मामले में बयान जारी किया। बयान में कहा गया है कि इस्तीफों पर अगली बैठक में चर्चा की जाएगी। उन्होंने ये आश्वासन भी दिया कि दान में दी गई चांदी की ईंटों और गहनों का पूरा हिसाब किताब मौजूद है। ट्रस्ट अयोध्या में राम मंदिर में हाल की घटनाओं पर बेहद दुखी, आहत और परेशान है। ट्रस्ट ने यह भी पुष्टि की कि दान से जुड़े मामलों में SIT जांच की अंतरिम रिपोर्ट के आधार पर प्राथमिकी दर्ज की गई है और कानूनी कार्रवाई की जा रही है। नागर विमानन मंत्री राममोहन नायडू ने कल वाराणसी से भारत की पहली हब एंड स्पोक अंतर्राष्ट्रीय विमानन सेवा के शुभारंभ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के व्यक्तिगत प्रोत्साहन और संदेश के लिए आभार व्यक्त किया। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री मोदी का संदेश साझा करते हुए श्री नायडू ने कहा कि इस पहल से भारत के विमानन केंद्रों को मजबूती मिलेगी और दूसरे और तीसरे स्तर के शहरों को एकीकृत यात्रा के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय गंतव्यों से निर्बाध रूप से जोड़ा जा सकेगा। प्रधानमंत्री ने अपने संदेश में इस शुभारंभ को भारत के नागरिक उड्डयन क्षेत्र में ऐतिहासिक उपलब्धि बताया। उन्होंने कहा कि इस पहल की शुरुआत वाराणसी को स्पोक एयरपोर्ट, दिल्ली को हब एयरपोर्ट और लंदन को अंतिम गंतव्य के रूप में हुई है। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल कल 2 दिवसीय दौरे पर अयोध्या पहुंची। इस अवसर पर राज्यपाल ने राज्य स्मार्ट सिटी मिशन योजना के अंतर्गत अयोध्या धाम क्षेत्र में ब्रह्मा कुंड गुरुद्वारे के निकट नवनिर्मित 2 आंगनबाड़ी केंद्रों और स्मार्ट क्लासरूम का उद्घाटन किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राज्यपाल ने कहा कि बच्चों के समुचित शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक विकास के लिए प्रारंभिक अवस्था में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और संतुलित पोषण अत्यंत आवश्यक है। इसके बाद उन्होंने डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय पहुंचकर विकास कार्यों और शैक्षणिक गतिविधियों की समीक्षा की। राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान की शुरुआत आज से होगी। प्रदेश के सभी जनपदों में बूथों पर 0 से 5 वर्ष तक के बच्चों को पोलियो की खुराक दी जाएगी। इसके बाद 29 जून से 3 जुलाई तक घर घर जाकर बच्चों को पोलियो की दवा पिलाई जाएगी। कुशीनगर में कल दोपहर एक तेज रफ्तार कार और बाइक में हुई टक्कर में 3 लोगों की मौत हो गई। कसिया क्षेत्राधिकारी ने बताया कि यह हादसा अहिरौली बाजार थाना क्षेत्र के हाटा पिपराइच मार्ग पर सोनबरसा पट्टन के पास हुई। गोरखपुर समेत पूर्वांचल के कई हिस्सों में आज सुबह तेज हवाओं के साथ हुई बारिश से मौसम खुशनुमा हो गया है। मौसम विभाग ने अगले कुछ घंटों में प्रदेश के कई इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया है। जारी चेतावनी के अनुसार प्रदेश के जौनपुर, प्रतापगढ़, आजमगढ़, सुल्तानपुर, अयोध्या, उन्नाव, लखनऊ, रामपुर, बांदा, संभल, मुरादाबाद, बुलंदशहर और अमरोहा समेत आसपास के जनपदों में गरज चमक के साथ मध्यम से तेज वर्षा होने की संभावना है। और अंत में बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मन की बात कार्यक्रम में देश और विदेश के लोगों से साझा करेंगे अपने विचार। मासिक रेडियो कार्यक्रम की श्रृंखला में 135वें एपिसोड का होगा सीधा प्रसारण। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गौतम बुद्ध नगर में 2,478 करोड़ रुपए लागत की विभिन्न विकास परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। कहा, डबल इंजन सरकार के नेतृत्व में प्रदेश बन रहा इलेक्ट्रॉनिक्स निर्माण का प्रमुख हब। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय और ट्रस्टी अनिल मिश्रा का इस्तीफा हुआ स्वीकार। ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष ने कहा, दान की गई चांदी की ईंटों और गहनों का पूरा है हिसाब किताब। और गोरखपुर समेत पूर्वांचल के कई हिस्सों में आज सुबह तेज हवाओं के साथ हुई बारिश। अगले कुछ घंटों में प्रदेश के कई हिस्सों में गरज चमक के साथ बारिश को लेकर मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का यह बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला समाचार अब से थोड़ी देर बाद सुबह 8 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।

0: असली शिक्षा एक इंसान की गरिमा को बढ़ाती है, उसके स्वाभिमान में वृद्धि करती है। यदि हर इंसान द्वारा शिक्षा के वास्तविक अर्थ को समझ लिया जाता और उसे मानव गतिविधि के प्रत्येक क्षेत्र में आगे बढ़ाया जाता तो यह दुनिया रहने के लिए कहीं अच्छी जगह होती। एपीजे अब्दुल कलाम। असली शिक्षा एक इंसान की गरिमा को बढ़ाती है, उसके स्वाभिमान में वृद्धि करती है। यदि हर इंसान द्वारा शिक्षा के वास्तविक अर्थ को समझ लिया जाता और उसे मानव गतिविधि के प्रत्येक क्षेत्र में आगे बढ़ाया जाता तो यह दुनिया रहने के लिए कहीं अच्छी जगह होती। एपीजे अब्दुल कलाम।
1: बढ़ते हुए या धीमे से है सब परेशान, शुद्ध वायु दुर्लभ, खतरे में है मनुष्य की जान। कूड़ा और प्लास्टिक जो लोग जलाएं, प्रदूषण के कारण बन जाएं, सांस लेने में तकलीफ आए, आरोग्य को हानि पहुंचाए।
2: स्वागत है आप सभी श्रोताओं का 747 किलो हर्ट्स पर आकाशवाणी का ये लखनऊ केंद्र है और प्रोग्राम नमस्ते लखनऊ में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज इस कार्यक्रम में मैं हूँ वैशाली आप सबके साथ और वक्त है शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम का। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में आइए सुनते हैं पंडित भजन सोपोरी का राग नट भैरव में संतूर वादन।

0: शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे पंडित भजन सोपोरी का राग नट भैरव में संतूर वादन। आप सुन रहे हैं मॉर्निंग प्रोग्राम नमस्ते लखनऊ, आकाशवाणी लखनऊ से, जिसे वाइंड अप करने का वक्त हो चला है। तो दीजिए अनुमति कार्यक्रम से वैशाली को नमस्कार। सुनते रहिए आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र 747 किलोहर्ट्ज पर। हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। कुछ ही पलों में प्रातः के 8 बजने वाले हैं, सुनेंगे समाचार प्रभात आकाशवाणी दिल्ली से।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हरमाइनी के साथ वार्ता करेंगे। वे सेशल्स की नेशनल असेंबली को संबोधित करेंगे और भारतीय समुदाय के लोगों से भी बातचीत करेंगे। प्रधानमंत्री आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। विदेश मंत्रालय ने भारतीय नागरिकों को सभी आवश्यक दस्तावेजों के साथ ही कैलाश मानसरोवर की यात्रा करने की सलाह दी है। अमेरिकी सेना ने लगातार दूसरे दिन ईरान के कई ठिकानों पर हमले किए। वेनेजुएला में भूकंप से मरने वालों की संख्या 1430 हो गई है और किदांबी श्रीकांत अमेरिकी ओपन बैडमिंटन के पुरुष सिंगल्स के फाइनल में पहुंचे।

0: अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हरमाइनी के साथ बातचीत करेंगे। दोनों नेता द्विपक्षीय सहयोग की व्यापक समीक्षा करेंगे और आपसी हित के क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। एक रिपोर्ट।
1: आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेशल्स की राष्ट्रीय असेंबली को संबोधित करेंगे और वहां रहने वाले भारतीय समुदाय के लोगों से भी मुलाकात करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी रोशकेमन में आयोजित राष्ट्रीय दिवस समारोह में हिस्सा लेंगे। विदेश मंत्रालय के अनुसार समारोह में भारतीय रक्षा बलों का एक दल और भारतीय नौसेना के 2 युद्धपोत भी भाग लेंगे। प्रधानमंत्री मोदी सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस और स्वतंत्रता के स्वर्ण जयंती समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हो रहे हैं। यह यात्रा भारत और सेशल्स के बीच मजबूत और लंबे समय से चले आ रहे मित्रतापूर्ण संबंधों को और मजबूत करने का है। साथ ही यह दोनों देशों की हर क्षेत्र में द्विपक्षीय सहयोग और संबंधों को आगे बढ़ाने की साझा प्रतिबद्धता को दर्शाती है। अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से विचार साझा करेंगे। ये मासिक रेडियो कार्यक्रम की 135वीं कड़ी होगी। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी नेटवर्क, AIR न्यूज वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर किया जाएगा। इसका सीधा प्रसारण AIR न्यूज, DD न्यूज, प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनलों पर भी होगा। हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद आकाशवाणी से प्रादेशिक भाषाओं में भी कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने कहा है कि भारत ने पिछले 12 वर्षों में स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में महत्वपूर्ण प्रगति की है और वो सभी के लिए स्वास्थ्य कवरेज के व्यापक लक्ष्य की ओर अग्रसर है। इसका उद्देश्य प्रत्येक नागरिक के लिए सुलभ, किफायती और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित करना है। एक निजी मीडिया चैनल के कार्यक्रम के 9वें डॉक्टर्स डे कॉन्क्लेव में सुश्री पटेल ने कहा कि सरकार ने स्वास्थ्य दृष्टिकोण को बीमारों की देखभाल से उनके बेहतर स्वास्थ्य की ओर तथा उपचारात्मक देखभाल से मरीजों के व्यापक कल्याण की ओर मोड़ दिया है।
2: Today we have a new national health policy.
3: आज हमारे पास एक नई राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति है। यह रोग के उपचार से स्वास्थ्य सुरक्षा की ओर एक परिवर्तनकारी कदम है, जिसमें बीमारी की रोकथाम को केंद्र में रखा गया है। भारत सरकार ने इन 12 वर्षों में कई योजनाएं शुरू की हैं। इनमें सबसे परिवर्तनकारी योजना आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना है। इसे दुनिया का सबसे बड़ा स्वास्थ्य कार्यक्रम माना जाता है, जिसके दायरे में लगभग 62 करोड़ लोग शामिल हैं।
2: 62 करोड़ इंडिविजुअल्स।
0: महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने महाराष्ट्र शिक्षक पात्रता परीक्षा TET पेपर लीक मामले की जांच के लिए विशेष जांच दल बनाने का आदेश दिया है। इस टीम की अगुवाई ठाणे के संयुक्त पुलिस आयुक्त पंजाब राव उगले करेंगे। मुख्यमंत्री ने स्कूल शिक्षा मंत्री दादा भूसे और पुलिस महानिदेशक सदानंद दाते से भी बातचीत की और गिरोह में शामिल सभी लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का निर्देश दिया। मुंबई अपर आयुक्त अशोक दुबे ने बताया कि पेपर लीक मामले में 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है।
4: महाराष्ट्र में जो TET की एग्जाम होने वाली है, उस एग्जाम में जो पेपर आने वाले थे, वो पेपर भिवंडी में बेचने के लिए कुछ लोग आने वाले हैं। ये इन्फॉर्मेशन यहाँ के DCP जोन 2 पवन बंसोड़ इनको मिले थे। वहाँ पे 3 लोगों को टीम ने हिरासत में लिया। उनके पास से कुछ मोबाइल, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, कुछ पैसे बरामद किए। कल इस्तेमाल होने वाले TET के 4 पेपर जब्त किए है। आगे की जाँच हमारी चल रही है।
0: इस घटना के बाद आज होने वाली TET परीक्षा स्थगित कर दी गई है। परीक्षा की नई तारीख की घोषणा बाद में की जाएगी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। विदेश मंत्रालय ने भारतीय नागरिकों को सलाह दी है कि वे सभी आवश्यक दस्तावेज होने पर ही कैलाश मानसरोवर की यात्रा करें। हमारे संवाददाता ने बताया है कि मंत्रालय ने यह परामर्श उन भारतीय नागरिकों के सहायता अनुरोध के बाद जारी किया है जो निजी टूर ऑपरेटरों के माध्यम से चीन के लिए आवश्यक प्रवेश परमिट और बिना वीजा के नेपाल में फंस गए हैं।
5: विदेश मंत्रालय ने कहा है कि कुछ भारतीय श्रद्धालु निजी टूर ऑपरेटरों के जरिए कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए नेपाल तो पहुंच गए, लेकिन उनके पास चीन में प्रवेश के लिए जरूरी वीजा और परमिट नहीं थे। इस कारण कई श्रद्धालुओं को यात्रा के समय समस्याएं पेश आई हैं और उन्होंने मंत्रालय से मदद मांगी है। मंत्रालय ने कहा है कि श्रद्धालु सभी जरूरी यात्रा दस्तावेज मिलने के बाद ही यात्रा शुरू करें। उसने कहा है कि केवल इस उम्मीद में यात्रा शुरू न करें कि आगे चलकर परमिट या वीजा मिल जाएगा, क्योंकि इससे यात्रा के दौरान परेशानी हो सकती है। मंत्रालय ने श्रद्धालुओं कहा है कि यात्रा पर जाने से पहले यह सुनिश्चित कर ले कि उनका टूर ऑपरेटर पंजीकृत और अधिकृत है। मंत्रालय का कहना है कि इस सलाह का उद्देश्य

0: श्रद्धालुओं की यात्रा को सुरक्षित सुगम और परेशानी से मुक्त बनाना है। रोहन के साथ अंकित कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: चार धाम यात्रा के लिए हेलीकॉप्टर सेवा का पहला चरण पूरा हो गया है। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने बताया कि इस दौरान हर दिन लगभग 400 हेलीकॉप्टर उड़ानें भरी गईं। जम्मू कश्मीर में 3 जुलाई से शुरू होने वाली 57 दिन की वार्षिक अमरनाथ यात्रा के लिए जम्मू के पुरानी मंडी स्थित श्रीराम मंदिर अमरनाथ यात्री आधार शिविर से में साधुओं का आगमन शुरू हो गया है। इससे पहले सुरक्षा एजेंसियों ने बहुस्तरीय व्यापक सुरक्षा व्यवस्था का अभ्यास किया। हमारी विशेष श्रृंखला प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ के अंतर्गत आज हम छत्तीसगढ़ के गार्बेज कैफे के प्रभारी रितेश सैनी के साथ परिचर्चा प्रसारित कर रहे हैं। अंबिकापुर नगर निगम द्वारा संचालित इस कैफे में प्लास्टिक कचरे के बदले में भोजन उपलब्ध कराया जाता है।
2: मन की बात में जब प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसका उल्लेख किया, उसके बाद क्या प्रभाव पड़ा?
3: उसके बाद ये प्रभाव पड़ा कि इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे अंबिकापुर का नाम आना, उससे बहुत सारे लोग थे जो गार्बेज कैफे के बारे में जान पाए।
4: हमारे यहाँ डोर टू डोर कलेक्शन हो रहा है, प्रतिदिन 50 से 55 टन कचड़े का हम प्रोसेसिंग कर रहे हैं। विश्व के समस्त देशों तक गार्बेज कैफे वर्ड जो है वो अंबिकापुर से वहां तक पहुंच गया। सबसे महत्वपूर्ण पहलू होता है प्लास्टिक रिसाइकलिंग का, कि प्लास्टिक की गुणवत्ता अच्छी होनी चाहिए। प्लास्टिक यदि नालियों में चला गया, मिट्टी में चला गया या वो खाद्य पदार्थ से मिक्स हो गया, उसकी रिसाइकलिंग करना कठिन हो जाती है।
5: प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ।
1: ये कार्यक्रम आज सुबह 9:10 पर आकाशवाणी के FM गोल्ड 100.1 MHz पर प्रसारित किया जाएगा। पर्यावरण वन जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने सरिस्का बाग अभयारण्य में बाघों के पुनर्स्थापना के 18 वर्ष पूरे होने पर देशवासियों और प्रकृति प्रेमियों को बधाई दी है। अमरीकी सेना ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के निर्देश पर लगातार दूसरे दिन ईरान में कई ठिकानों पर हमले किए हैं। सेना ने कहा कि उसने लगातार दूसरे दिन ईरान के कई ठिकानों पर हमले किए हैं। इससे दोनों पक्षों के बीच हुए संघर्ष विराम समझौते को लेकर अनिश्चितता की स्थिति उत्पन्न हो गई है। सोशल मीडिया पोस्ट में अमरीका की सेंट्रल कमान ने कहा है कि शुक्रवार को तेल से लदे एक व्यापारिक पोत कीकू पर हुए हमले के जवाब में अमेरिका ने ईरान के सैन्य ढांचों, संचार प्रणालियों, वायुसेना के अड्डों, ड्रोन और बारूदी सुरंग बिछाने के क्षमताओं को निशाना बनाया। वेनेजुएला में भूकंप में से मरने वालों की संख्या 1,430 हो गई है। वेनेजुएला में बुधवार को 7.2 और 7.5 तीव्रता के 2 शक्तिशाली भूकंप आए थे, जिसमें काफी नुकसान हुआ है। देश में करीब 68,900 से अधिक लोगों के लापता होने की खबर है। लागवेरा क्षेत्र में सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। फीफा फुटबॉल विश्व कप में आज सुबह कांगो ने उज्बेकिस्तान को 3-1 से हरा दिया। इसके साथ ही कांगो की टीम इतिहास रचते हुए पहली बार प्रतियोगिता के नॉकआउट चरण में पहुंच गई है। एक अन्य मुकाबले में आज पुर्तगाल और कोलंबिया के बीच मैच बिना कोई गोल के ड्रॉ पर समाप्त हुआ। अब राउंड ऑफ 32 में शुक्रवार को पुर्तगाल का सामना क्रोएशिया से होगा, जबकि शनिवार को कोलंबिया और घाना आमने सामने होंगे। इससे पहले अमरीका के न्यूजर्सी में खेले गए ग्रुप एल के मैच में इंग्लैंड के जूड बेलिंगहम और हैरी केन के एक एक गोल की बदौलत आज इंग्लैंड ने भी पनामा को 2-0 से हराया। इसके साथ ही इंग्लैंड ग्रुप एल में शीर्ष पर पहुंच गया है। इसी ग्रुप के एक अन्य मैच में क्रोएशिया ने घाना को 2-1 से पराजित किया। क्रोएशिया ग्रुप में दूसरे, जबकि घाना तीसरे स्थान पर है। और अब खेल की अन्य खबरों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
6: जी लवली, इन खेल खबरों में शुरुआत करते हैं बैडमिंटन से। भारत के किदांबी श्रीकांत अमरीकी ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप के पुरुष सिंगल्स के फाइनल में पहुंच गए हैं। अमरीका के कैलिफोर्निया के टाइटन जिम में श्रीकांत ने सेमीफाइनल में जापान के युदाई ओकोमोतो को 22-20, 15-21 और 21-19 से हराया। इस बीच पुरुष सिंगल्स के एक अन्य सेमीफाइनल में आज भारत के रौनक चौहान का मुकाबला चीनी ताइपे के सूली यांग के साथ होगा। महिला सिंगल्स में भारत की देविका सिहाग सेमीफाइनल मुकाबले में डेनमार्क की लाइने क्रिस्टोफर सेन से हार गईं। उधर क्रिकेट का मक्का कहे जाने वाले लंदन के लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड में आज ICC महिला T20 क्रिकेट विश्व कप के ग्रुप ए के अपने अंतिम मैच में भारत का मुकाबला ऑस्ट्रेलिया से होगा। ये मैच भारतीय समय के अनुसार शाम 7 बजे से शुरू होगा। और अगर बात करें शतरंज की बाजी की, तो गोवा के 14 वर्षीय एथन वाज ने बोस्निया और हर्जेगोविना में आयोजित साराजेवो GM मिक्स शतरंज टूर्नामेंट में तीसरा और अंतिम ग्रैंड मास्टर नॉम हासिल कर लिया है और वे भारत के 96वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। जी लवलीन, खेल जगत से बस आज इतना ही।
1: मौसम विभाग ने असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों, सिक्किम में आज तेज वर्षा तथा कुछ स्थानों

0: पर मूसलाधार बारिश की चेतावनी दी है। बिहार, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, कोंकण, गोवा, ओडिशा, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकाल, तेलंगाना, विदर्भ, लक्षद्वीप और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में अगले दो दिन में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया गया है। दक्षिण पश्चिम मानसून गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार और उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में अगले दो से तीन दिन में आगे बढ़ सकता है। आंध्र प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, पूर्वी उत्तर प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में कल तक बिजली कड़कने और तेज हवा का अनुमान व्यक्त किया गया है। इस बीच दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, बिहार में आज लू चलने के आसार हैं। अमेरिका के वाशिंगटन में भारतीय दूतावास ने कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण एपिडार, वाणिज्य विभाग तथा डुपोंट सर्कल बिजनेस इंप्रूवमेंट डिस्ट्रिक्ट के सहयोग से वार्षिक आम महोत्सव का आयोजन किया। इसमें अल्फांसो, केसर, दशहरी, लंगड़ा और बैंगनपल्ली जैसी लोकप्रिय भारतीय आम की किस्मों का प्रदर्शन किया गया। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newzoneair.gov.in और हमारे न्यूज़ोन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज।
1: धन्यवाद लवलीन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सेशल्स यात्रा को अमर उजाला ने मैत्री संबंध बताते हुए लिखा है, हिंद महासागर पर बढ़ेगा सहयोग। नवभारत टाइम्स की सुर्खी है, सेशल्स में प्रधानमंत्री ने मेड इन इंडिया गस्ती पोत सौंपा। पत्र आगे लिखता है, श्री मोदी 194 साल के कछुए जोनाथन से मिले। अयोध्या में श्रीराम मंदिर में चढ़ावा चोरी मामले में कुछ और लोगों के इस्तीफे की खबर हिंदुस्तान सहित सभी अखबारों में है। पत्र ने ट्रस्ट की तरफ से इस आश्वासन को दिया है कि श्रद्धालुओं के मूल्यवान समर्पण सुरक्षित हैं। अमेरिका और ईरान के बीच भिड़ंत शीर्षक से दैनिक जागरण ने संपादकीय में लिखा है कि दोनों देशों के बीच शांति समझौता होने के 10 दिन के भीतर ही फिर से सैन्य झड़पें शुरू हो जाना पश्चिम एशिया और साथ ही विश्व के लिए बुरी खबर है। अफगानिस्तान में कल आए भूकंप की खबरें सभी अखबारों में हैं। देशबंधु कहता है, दिल्ली NCR तक डोली धरती। उधर राजस्थान पत्रिका ने वेनेजुएला में भूकंप के बाद तबाही से जीवन की किरण शीर्षक से लिखा है, मलबे से 18 दिन के नवजात को निकाला, राहत और बचाव कार्य तेज। इसरो ने सेमी क्रायोजेनिक इंजन का सफल परीक्षण किया, देशबंधु की खबर है। पत्र ने इसे भारत की अगली पीढ़ी के प्रक्षेपण यान के विकास में महत्वपूर्ण उपलब्धि बताते हुए लिखा है, अब गगनयान मिशन की तैयारियां तेज। अमर उजाला की खास खबर है, सितंबर में रोशन हो जाएगा लद्दाख, सियाचिन तक पहुंची बिजली। पत्र ने इसे बुनियादी ढांचे और स्थानीय विकास के मोर्चे पर मील का पत्थर बताते हुए लिखा है कि इससे सेना और सुरक्षा बलों को मिलेगी बड़ी ताकत। राजधानी दिल्ली में शनिवार को भीषण गर्मी और उमस पर हिंदुस्तान कहता है, 51 डिग्री सेल्सियस तापमान जैसी तपिश महसूस हुई। दैनिक भास्कर की खास खबर है, इस साल रिकॉर्ड तोड़ गर्मी के बीच बाजारों में छाछ लस्सी अपना बाजार मजबूती से बना रहे हैं। पत्र कहता है, अब कोल्ड ड्रिंक्स पीछे, छाछ और लस्सी की बिक्री में चौगुनी वृद्धि।
0: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हरमाइनी के साथ वार्ता करेंगे। वे सेशल्स की नेशनल असेंबली को संबोधित करेंगे और भारतीय समुदाय के लोगों से भी बातचीत करेंगे। प्रधानमंत्री आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। विदेश मंत्रालय ने भारतीय नागरिकों को सभी आवश्यक दस्तावेजों के साथ ही कैलाश मानसरोवर की यात्रा करने की सलाह दी। अमरीकी सेना ने लगातार दूसरे दिन ईरान के कई ठिकानों पर हमले किए और किदाम्बी श्रीकांत अमरीकी ओपन बैडमिंटन के पुरुष सिंगल्स के फाइनल में पहुंचे। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम नरेश मागो। द हेडलाइंस। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी टू होल्ड टॉक्स विद प्रेसिडेंट ऑफ सेशेल्स पैट्रिक हर्मिनी टुडे टू ऑल्सो एड्रेस सेशेल्स नेशनल असेंबली एंड इंटरैक्ट विद मेंबर्स ऑफ इंडियन डायस्पोरा। Prime Minister to share his thoughts in Mann Ki Baat program on Akashvani at 11 this morning. Ministry of External Affairs asks Indian citizens not to undertake Kailash Mansarovar Yatra without all required travel documents. US military strikes multiple targets in Iran for second day at the direction of President Donald Trump. Death toll in Venezuela's earthquakes rises to 1,430 as rescuers continue search for survivors. And India's Kidam

0: कलेक्शन हो रहा है प्रतिदिन 50 से 55 टन कचरा।
1: वी हैव अ टोटल कलेक्शन ऑफ 50 टू 55 टन्स ऑफ गार्बेज एवरी डे। गार्बेज कैफे हैज रीच्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड फ्रॉम अंबिकापुर। द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ प्लास्टिक रिसाइकलिंग इज दैट द क्वालिटी ऑफ प्लास्टिक शुड बी गुड। इफ द प्लास्टिक गेट्स मिक्स्ड विद सीवेज, सॉइल और अदर वेस्ट, इट बिकम्स डिफिकल्ट टू रिसाइकल।
2: प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ।
3: To listen to the conversation, tune into 100.1 Akashvani Gold this morning at 9:10 a.m. You can also listen to it on news on

0: हम अपनी सीरीज प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ के हिस्से के तौर पर छत्तीसगढ़ के गार्बेज कैफे के बारे में एक मुजाकरा नशर करेंगे। ये कैफे अंबिकापुर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन चलाती है, जिसमें प्लास्टिक कचरे के बदले में खाना पेश किया जाता है। इस प्रोग्राम में हमने गार्बेज कैफे के इंचार्ज रितेश सैनी से बात की।
1: मन की बात में जब प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसका उल्लेख किया जी, उसके बाद क्या प्रभाव पड़ा?
2: उसके बाद ये प्रभाव पड़ा कि इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे अंबिकापुर का नाम आना, उससे बहुत सारे लोग थे जो गार्बेज कैफे के बारे में जान पाए।
3: हमारे यहाँ डोर टू डोर कलेक्शन हो रहा है, प्रतिदिन 50 से 55 टन कचड़े का हम प्रोसेसिंग कर रहे हैं। विश्व के समस्त देशों तक गार्बेज कैफे वर्ड जो है वो अंबिकापुर से वहां तक पहुंच गया। सबसे महत्वपूर्ण पहलू होता है प्लास्टिक रिसाइकलिंग का, कि प्लास्टिक की गुणवत्ता अच्छी होनी चाहिए। प्लास्टिक यदि नालियों में चला गया, मिट्टी में चला गया या वो खाद्य पदार्थ से मिक्स हो गया, तो उसकी रिसाइकलिंग करना कठिन हो जाती है।
4: प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ।
0: इस बातचीत को आप 100.1 आकाशवाणी गोल्ड पर आज सुबह 9:10 से सुन सकते हैं। आप हमारा ये प्रोग्राम न्यूज ऑन AIR ऐप और न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर भी सुन सकते हैं। बैडमिंटन में भारत के किदाम्बी श्रीकांत कैलिफोर्निया में जारी अमरीकी ओपन चैंपियनशिप के मर्दों के सिंगल्स के फाइनल में पहुंच गए हैं। श्रीकांत ने सेमीफाइनल में एक सख्त मुकाबले में जापान के खिलाड़ी युदाई वुकीमोतो को 22-20, 15-21, 21-19 से हराया। ये थी खबरें, अब अखबारात के आईने के साथ है मोहम्मद अम्मार।
5: शुक्रिया फैसल। राजधानी दिल्ली से शाये होने वाले आज के तकरीबन सभी उर्दू अखबारात ने वज़ीर आज़म ने मोदी के सेशल्स पहुंचने की खबर को अव्वलियत के साथ शाये किया है। रोजनामा प्रताप ने सुर्खी लगाई है, सेशल्स बहर हिंद खित्ते में भारत की बहरी सलामती और खुशहाली की हिकमत अमली का कलीदी हिस्सा है। वज़ीर आज़म मोदी सेशल्स की कौमी असम्बली से खिताब भी करेंगे। इसी अखबार ने उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ के बयान को शह सुर्खी बनाया है, रिहाइश के लिए ज़रूरतमंद लोगों के इलाज और मकान का इंतज़ाम करेगी हुकूमत। रोजनामा इनकलाब ने अपने अंदरूनी सफ़े पर एक अहम खबर को शाये करते हुए सुर्खी लगाई है, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे पर मुल्क की पहली 8-लेन सुरंग खोल दी गई। इसी अखबार ने अपने आलमी सफ़े पर एक अहम खबर को नुमाया तौर पर शाये किया है, ईरान के मुतअद्दिद फौजी अहदाफ पर अमरीका की बमबारी, तेहरान का जवाबी हमला।
0: आखिर में खास खबरें एक बार फिर। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी आज सेशल्स के सदर पैट्रिक हर्मनी के साथ बातचीत करेंगे। वो सेशल्स की कौमी असम्बली से खिताब करेंगे और वहां मुकीम भारतीय बिरादरी से बातचीत करेंगे। वज़ीर आज़म आज दिन में 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात प्रोग्राम में अपने ख्यालात का इजहार करेंगे। वजारत खारजा ने भारतीय शहरियों से कहा है कि वो तमाम जरूरी सफरी दस्तावेजात के बगैर कैलाश मानसरोवर यात्रा पर न जाएं। अमरीकी फौज ने सदर ट्रंप की हिदायत पर लगातार दूसरे दिन ईरान में मुतअद्दिद ठिकानों पर हमले किए हैं। वेंजवेला में जलजले से हलाकतों की तादाद बढ़कर 1,430 हो गई है। बचाव टीमें अभी जिंदा बच जाने वाले अफराद की तलाश में मसरूफ हैं। इसके साथ ही ये खबरनामा खत्म हुआ।

मीडियम वेव 401.61 मीटर अर्थात 747 किलो हर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। समय हुआ है सुबह के 8:45 का। ये समय होता है आपके पसंदीदा कार्यक्रम आपके मेल आपके गीत का। अगर आप भी सुनना चाहते हैं अपने फरमाइशी फिल्मी गीतों को तो हमें ईमेल लिख भेजिए। हमारा ईमेल आईडी है आपके पत्र आपके मेल @gmail.com। नमस्कार, आज इस कार्यक्रम में मैं हूं वैशाली आप सभी के साथ। और आज जो सबसे पहले हमें मेल भेजा है ग्राम पोस्ट पैंतेपुर जिला सीतापुर से बसंत कुमार सचिन कुमार और उनके परिवार के बहुत सारे सदस्यों ने। और एक मेल और है, इसे भेजने वाले हमारे श्रोता हैं मेहर नगर उमरखेड़ महाराष्ट्र से अभिजीत गवाड़कर, सरिता प्रिंस, एकांश बदलापुर मुंबई से, प्रणीता सिद्धांत टुकटुक और उनके बहुत सारे मित्र बंधु। और बहादुरा नागपुर से मेल है वैशाली शैलेश श्वेता सुमित कुमारी ध्वनि और परी का। और इन्होंने भी अपनी फरमाइश हमें

लिख भेजी है। एक मेल है बक्सर बिहार से, शरफुद्दीन अंसारी, फातिमा खातून, सुरीत, रमेश साहू, डुमराव बिहार से मेल भेजा है डब्लू सोनम अदीबा और दानिश अंसारी ने, और इन्होंने भी नमस्कार के साथ अपने फरमाइशी गीत को लिख भेजा है। ये हैं जलालाबाद वेस्ट से सुरेश गगनेजा, पूनम, विशाल, प्रिया, दिशानी और निमिता हुजा, इन्होंने मेल भेजा है और लिखा है राम राम, आपको भी प्यार भरा नमस्कार। और गांव नथाना पंजाब से हरजिंदर छिंदा, जसवीर और इनके बहुत सारे मित्र बंधु सीता और गीता, और इन्होंने भी अपनी फरमाइश लिख भेजी है। और आप सभी सुनना चाहते हैं कर्तव्य फिल्म का गीत, जिसे गाया है कुमार सानू और अलका याग्निक ने।

0: हेलो
1: राजेश जी, मैं पुलिस थाने से बोल रहा हूँ।
0: फिर से
2: आप डिजिटल अरेस्ट में हो, दूसरे कमरे में जाइए अकेले। आपके पार्सल में ड्रग्स मिले हैं, लंबे जाएंगे।
3: 10 लाख दीजिए, बच जाएंगे।
0: सर इतने कहाँ से?
3: एक लिंक भेजा है, अभी प्रोसेसिंग के लिए
2: 2 लाख भेजिए, बाकी बाद में।
0: 2 लाख
4: क्या हुआ पापा?
0: बेटा ये कह रहे हैं कि मेरे पार्सल में से ड्रग्स मिले हैं।
2: अरे
0: काट दिया।
4: पैनिक मत कीजिए पापा, डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता है, ये सब फ्रॉड है।
0: फ्रॉड?
4: पुलिस, बैंक, RBI इत्यादि के नाम से आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें, उन्हें कोई पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें। अगर समझदारी नहीं दिखाओगे
0: तो पैसे गवाओगे।
5: RBI कहता है
6: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

नमस्कार, ग्राम पंचायत काईमऊ कुआरियापुर सैंडी हरदोई उत्तर प्रदेश से मेल भेजने वाले श्रोता हैं मोदित, विजेंद्र, अनवी, सुनीता, शोभा, दीपा, रामफेरे, कपिल राजपूत, प्रांजल और अनन्या, कृष्णा और इनके परिवार के बहुत सारे सदस्य, और इन्होंने अपने फरमाइशी नगमे को सुनना चाहा है। और ये हैं नलेश्वर नगर नरवेल महाराष्ट्र से पीएस नहावकर, निर्मला नहावकर, विशाल, और मलकापुर महाराष्ट्र से मेल है सोपान तायडे, नारायण इंगले, आशीष मोहिरकर और इनके बहुत सारे सदस्यों का परिवार के। बटिन रोड मंडी डब्वाली से मेल भेजा है राजेंद्र नारंग, अंजू, मोहित, तानिया ने, और नमस्कार के साथ इन्होंने अपने फरमाइशी गीत को भी लिख भेजा है। एक मेल है ये भेजने वाले हमारे श्रोता हैं कुंभार गली श्री रामपुर से अशोक, सविता, अनिकेत, ऋषिकेश, जीविका, और पुनावली पुणे से अजय, सोनाबनी, करिश्मा, अविका, विशाखा, और इन्होंने सप्रेम नमस्कार लिख भेजा है। और आप सभी सुनना चाहते हैं किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाज़ में मौसम फिल्म का प्यारा सा ये गीत।

0: प्लेटफॉर्म नंबर 2 से चलने वाली सुपर फास्ट एक्सप्रेस के यात्रियों
1: को तुमने इसे मोबाइल चार्ज करना,
2: दिमाग चार्ज कर अपना।
3: ऐसे पब्लिक पोर्ट से फोन चार्ज किया तो पर्सनल डेटा होगा पब्लिक।
2: देखा
1: पापा, रुको मैं पे करता हूँ। नो सिग्नल।
3: अब क्या करोगे?
1: फ्री वाईफाई है ना?
2: बुद्धू सुधर जा।
3: पेमेंट्स के लिए नो ओपन वाईफाई,
1: यानी फ्रॉड को करो बाय बाय।
3: RBI कहता है
4: करो सही शुरुआत, बनो फाइनेंशियली स्मार्ट।
5: स्वागत है आप सभी श्रोताओं का आपके पसंदीदा कार्यक्रम आपके मेल आपके गीत में, जिसे आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से। और ये मेल है बीड शहर महाराष्ट्र से संगीता, साक्षी, जयश्री, अंजलि, बाला साहेब, नंद किशोर घटे का। और इन्होंने नमस्कार लिखा है, अपनी फरमाइश का ये गीत सुनना चाहते हैं। और मोताला महाराष्ट्र से मेल है विजय, रतन, आराध्या, ओम कुमार का, और आपने भी फरमाइश हमें लिख भेजी है। ये एक और मेल है, ये हैं हमारे श्रोता जिन्होंने अपने फरमाइशी गीत के साथ ही सप्रेम नमस्कार भी लिख भेजा है। ये हैं देवशंकर तामुरिया, अजय देव, तुषार बेबी, पूजा, राधिका और प्रभा देवी। इन्होंने हमें मेल लिख भेजा है डोंडी लोहारा बालोद छत्तीसगढ़ से, और बहुत ही प्यारे से गीत की इन्होंने फरमाइश हमें लिख भेजी है। एक मेल है टीडी मल्होत्रा, ऋतिक, प्रतीक, अनिल, जयवी, डॉक्टर अमनदीप। और कालका से मेल है शुभचंद्र बजाज, साहिल बजाज, बिट्टा बजाज का। और आप भी अपनी पसंद का गीत सुनना चाहते हैं, आप सभी की फरमाइश पर प्रस्तुत है भयानक फिल्म का गीत जिसे गाया है हेमलता ने।

0: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख।
3: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प।
2: और अब तो आप घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग।
3: आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता।
2: बुकिंग है तो संपर्क करें 8700001-4242 पर।
3: 8700001-4242।
4: रिंग रोड नर्मदा नगर से मेल भेजा है सूरज वर्मा, ऋषभ कनक भावना। ग्राम खैगांव तहसील महेश्वर से मेल आया है प्रेमलाल, निकेश धर्मेंद्र और ममता बाई वर्मा जी का, और इन्होंने गुड मॉर्निंग लिखा है। आपको भी गुड मॉर्निंग और अपना पसंदीदा गीत ये सुनना चाहते हैं। ये हैं जिला खरगोन सनावद मध्य प्रदेश से अशोक अर्चना, अनुज आयुषी, रमेश चंद्र, मूसा भाई, राजकुमार बोड़ाना। और सुदामा नगर खंडवा से मेल है लक्ष्मी, नंदिनी, रोहित, ऋतु, मुकेश जी का, और इन्होंने लिखा है आपका हर पल खुशियों भरा हो। और ये हैं आदरणीय नमस्कार लिखते हैं हमारे श्रोता हैं ग्राम व पोस्ट ललहवा जिला खीरी से विजयपाल जी, शुभम यादव, शिखा, ऋचा गुड़िया, राजेश कुमार, विजय पांडे और बबलू यादव। इन्होंने मेल भेजा है, अपना पसंदीदा गीत ये सुनना चाहते हैं। एक मेल है ये बाजार रोड मुंगीसापुर से मोहम्मद जाकिर, कमरुन निशा, शबिस्ता मोहम्मद, नसीब, पलक, लुबना और यश मंसूरी का। आप सभी की फरमाइश पर आइए सुनते हैं लता मंगेशकर, किशोर कुमार का गाया खुद्दार फिल्म का ये गीत।

0: प्रोग्राम में आपका हार्दिक अभिनंदन करते हैं। नमस्कार, लिखा है हमारे श्रोता चंडीगढ़ सिटी से सतीश अनेजा, बिमला अनेजा जी ने, और इन्होंने अपना गीत सुनना चाहा है। और ये हैं शाहजी नगर देगलूर जिला नांदेड़ महाराष्ट्र से सुकन्या, सविता, सुनैना और इनके परिवार के बहुत सारे सदस्य हैं। इन्होंने हमें मेल लिख भेजा है। एक हमारे श्रोता हैं, ये हैं भवानीगढ़ संगरूर पंजाब से परमिंदर सिंह, लखनपाल रंधावा, सुरेंद्र कौर, जसवीर सिंह ने मेल भेजा है। और अगला मेल है गांव लोहगढ़ ठाकुरावाला जिला फिरोजपुर पंजाब से ही स्वर्ण सिंह, दलजीत, राजदीप, गुरनूर, शुभदीप, गुरलाल, अविराज सिंह का। और इन्होंने भी अपना गीत जो इन्हें बेहद पसंद है ये सुनना चाहते हैं आकाशवाणी लखनऊ के माध्यम से। और ये हैं ग्राम जसवाड़ी जिला खंडवा मध्य प्रदेश से दुर्गेश, बिंदु, गोलू, कुसुमबाई, सूरज, दिव्यांश और इनके बहुत सारे परिवार के अन्य सदस्य भी। तो आप सभी की फरमाइश पर प्रस्तुत है चलती का नाम गाड़ी फिल्म का गीत, जिसे गाया है आशा भोसले और किशोर कुमार ने।
1: क्या ख्याल है आपका,

0: श्रोताओं, इस गीत के साथ ही वक्त हो चला है कि हम आपके मेल आपके गीत कार्यक्रम से अनुमति लें, तो दीजिए इजाजत वैशाली को। नमस्कार। मीडियम वेव 401.61 मीटर अर्थात 747 किलो हर्ट्स पर हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। हमारा अगला कार्यक्रम थोड़ी ही देर में होगा। ये आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है। आइए सुनते हैं सामयिक चर्चा।
1: सामयिक चर्चा। सामयिक चर्चा में आज आप सुनेंगे उत्तर प्रदेश में मानसून के पिछड़ने के कारणों और बारिश के पूर्वानुमान पर लखनऊ मौसम विज्ञान विभाग के वरिष्ठ वैज्ञानिक अतुल कुमार सिंह से खास बातचीत। वार्ताकार हैं आकाशवाणी संवाददाता तनवीर फातिमा।
2: उत्तर प्रदेश समेत पूरा भारत इन दिनों भीषण गर्मी की चपेट में है। लोगों को बेसब्री से मॉनसून का इंतजार है, लेकिन मॉनसून अपने अनुमानित आगमन से थोड़ा पीछे चल रहा है। क्या है मॉनसून के पिछड़ने के कारण और कब से प्रदेश में शुरू होगा बारिश का दौर, इन्हीं विषयों पर बात करने के लिए आज हमारे साथ हैं मौसम विज्ञान विभाग के वरिष्ठ वैज्ञानिक अतुल कुमार सिंह।
3: अतुल जी, आकाशवाणी के इस विशेष कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
4: जी नमस्कार।
3: सर, जिस तरह से उत्तर प्रदेश और पूरा उत्तर भारत इस वक्त तेज गर्मी से जूझ रहा है, बहुत ही ज्यादा तापमान और लू देखने को मिल रही है, जनजीवन अस्त व्यस्त हो रहा है, ऐसे में सभी को इंतजार था, ये उम्मीद थी कि मॉनसून के आने का समय हो।

0: गया है और थोड़ी राहत मिलेगी, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला है, कहीं कोई ज्यादा बारिश या इस तरह का तापमान में कोई कमी। तो ये जो मॉनसून है अभी इसकी क्या स्थिति है और क्या लगता है आपको कि कितने दिनों में ये उत्तर प्रदेश में आ सकता है?
1: देखिए, वर्तमान स्थिति जो है इस समय उत्तर प्रदेश में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, हालांकि एक पश्चिमी विक्षोभ है उत्तरी पश्चिमी उत्तर प्रदेश के ऊपर चक्रवाती प्रसंचरण के रूप में, लेकिन पूर्वी उत्तर प्रदेश में कोई भी सक्रिय मौसमी तंत्र नहीं है। यदि छिटपुट बारिश कुछ एक जगहों पर हो रही है, परंतु कोई सक्रिय मौसमी तंत्र न होने के कारण पछुआ हवाएं आ रही है, जिसके कारण की पूर्वी उत्तर प्रदेश में कुछ जगहों पर हीट वेव या लू की स्थितियां बनी हुई हैं। और जहां तक मानसून की बात है, जो वर्षा है वो 28 जून से पूर्वी उत्तर प्रदेश में वर्षा का एक नया दौर आरंभ होगा और 29 जून को पूर्वी उत्तर प्रदेश में स्कैटर्ड यानी कि कुछ जगहों पर जो है वो मध्यम वर्षा होने की संभावना है। उसी समय जो है मानसून के आगमन के लिए परिस्थितियां अनुकूल होंगी। तो अभी मोटे तौर पर अगर हम कहें तो ये कह सकते हैं कि जून के आखिरी दिनों में जो है वो प्रदेश में मानसून आने के लिए परिस्थितियां अनुकूल हो रही हैं, वो 28 जून के बाद किसी भी समय प्रवेश कर सकता है।
0: सर, मानसून में देरी की वजह क्या मानते हैं आप लोग? जो आप लोगों ने अभी तक रीड करा है, जिस तरह से आप कह रहे हैं कि स्थितियां नहीं बन पा रही थी, इसका कारण क्या है?
1: देखिए, मानसून की जो परिस्थिति है वो कई सारे कारकों पर निर्भर करती है। कुछ क्षेत्रीय कारक होते हैं और कुछ सेमी परमानेंट फीचर होते हैं। तो जो सेमी परमानेंट फीचर थे वो सारे के सारे जो हैं इस समय अनुकूल नहीं थे, चाहे वो जो भी हो, मैस्करन हाई दक्षिणी हिंद महासागर में होता है वो फेवरेबल पोजीशन में नहीं था। इसके अतिरिक्त हीट लोक जो पाकिस्तान के जैकोबाबाद के आसपास बनता है उसका भी पोटेंशियल कम था, मतलब वो कमजोर था, जिसके कारण की जो मौसमी द्रोणी है वो भी बहुत ही कमजोर थी। इसके अतिरिक्त वेस्ट कोस्ट पर एक ऑफशोर ट्रफ बनती है और वहां पे भी जो है दाब प्रवणता न होने के कारण वो भी अभी तक प्रदर्शित नहीं हो रही थी। तिब्बतन एंटी साइक्लोन या तिब्बतियन चक्रवात वो भी अपनी सामान्य स्थिति से खिसका हुआ था। तो ये सारी ही परिस्थितियां थी जिसके कारण की जो मानसून का फ्लो था वो 10 दिनों के आसपास तक स्टेग्नेंट रहा। लेकिन अभी फिर से एक सिस्टम बना बंगाल की खाड़ी में और उसकी वजह से ये पिछले 48 घंटों के दौरान दोनों ही शाखाएं आगे बढ़ी, बंगाल की खाड़ी और अरब सागर की, और आने वाले दिनों में एक और सिस्टम बनने की संभावना है जिसके कारण की इसके फिर से आगे बढ़ने और उत्तर प्रदेश में पहुंचने की संभावना बन रही है।
0: अतुल जी, एक ये इस तरह की भी खबर है कि इस बार कम वर्षा होगी हर बार की तुलना में और इस तरह के संकेत लगातार प्राप्त हो रहे हैं और इसको लेकर सरकार तैयारी भी कर रही है कि कहीं सूखा पड़ने की भी आशंका जताई जा रही है। तो क्या इस तरह की कोई बात है कि क्या इस बार नॉर्मल से कम बारिश होगी?
1: जी बिल्कुल, देखिए जो दीर्घावधि पूर्वानुमान है मानसून के लिए दो चरण में जारी किए जाते हैं। प्रथम चरण में जो दीर्घावधि पूर्वानुमान जारी किया गया था उसमें ये बताया गया था कि इस साल कुल समेकित वर्षा अखिल भारतीय समेकित वर्षा सामान्य की तुलना में 92% होने की संभावना है और उसको फिर मई के आखिर में 29 मई को फिर से अपडेट किया गया और ये आंकड़ा जो है 92 से 90% पर आ गया। लेकिन ये अखिल भारतीय वर्षा है। उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में भी बात करें तो ज्यादातर मॉडल्स जो है वो यही इंडिकेट कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में लगभग सभी स्थानों पर या ज्यादातर स्थानों पर मानसूनी वर्षा जो जून से सितंबर के दौरान होती है वो सामान्य की तुलना में कम रहेगी और इसके लिए पहले ही संबंधित विभागों और स्टेक होल्डर्स को सूचित किया जा चुका है, जिससे कि वो अपनी लॉन्ग टर्म प्लानिंग और स्ट्रेटजी इस हिसाब से निर्धारित कर सकें और उसके अनुसार योजनाओं पर अमल किया जा सके। तो कुल मिला के इस साल जो है वो बारिश सामान्य की तुलना में कम होने की संभावना है। हर साल की तुलना में कम ऐसा हम नहीं कह सकते, पहले भी सामान्य से कम बारिश हुई है कई बार तो, लेकिन ये है कि जो दीर्घावधि औसत है उसकी तुलना में कम होने की संभावना।
0: सर, अलिनो का भी क्या इसमें कोई योगदान है?
1: एलिनो का भी योगदान है। एलिनो एक्चुअली एक रिमोट सोर्सिंग है और एक मेजर ड्राइवर है इंडियन समर मानसून का। और एलिनो का जब भी वार्म फेज होता है, वार्म फेज का मतलब जब भूमध्य रेखीय प्रशांत महासागर में नीनो 3.4 रीजन में जो है वो समुद्री सतह का तापमान जो है वो 0.5 डिग्री सेल्सियस या इससे अधिक सामान्य की तुलना में बढ़ जाता है, तो उस स्थिति को हम वार्म फेज इंसो या एल नीनो बोलते हैं। और इसका सीधा तौर पर प्रभाव प्रशांत महासागर का नहीं होता है, लेकिन ये दो तरीके से प्रभावित करता है। पहला, इसका जो एल नीनो सदर्न ऑसिलेशन का जो एटमॉस्फेरिक ब्रांच होती है

0: है सदर्न ऑसिलेशन, उसके थ्रू भारत के ऊपर एक एनोमलस एंटी साइक्लोन बनता है और जिसके कारण की जो कन्वेक्टिव एक्टिविटीज होती हैं वो उसको सप्रेस करता है और यहाँ पे गर्म हवाओं का दोगमन कराता है, मौसम जो है वो बिगड़ने से रोकता है। और दूसरी चीज जो होती है वो ये जो है मानसून फ्लो को कमजोर करता है, तो उस मानसूनी हवाओं के कमजोर पड़ने से भी जो वर्षा की तीव्रता और उसका कुल परिमाण है पर प्रतिकूल तौर पर प्रभाव पड़ता है। लेकिन एल्निनो सिर्फ अकेला एक ड्राइवर नहीं है, कई और फैक्टर होते हैं एल्निनो के साथ जो कि इसको प्रभावित करते हैं। ये भी एक कारण है के कारण की सामान्य से कम वर्षा होने की प्रायिकता जो है वो सर्वाधिक प्रायिकता व्यक्त की जा रही है। इसके अतिरिक्त कुछ एक क्षेत्रीय कारक भी होते हैं जो कि समय समय पर इन चीजों को निर्धारित करते हैं और उसके आधार पर आगे का हम निर्णय लेते हैं।
1: सर, अगर हीट वेव पैटर्न की बात करें तो हमने देखा कि लगातार यूपी के कई ऐसे जिले हैं जो देश के सबसे गर्म जिलों में शामिल रहे, तो क्या ये गर्मी और हीट वेव पिछले सालों के मुकाबले बढ़ी है, इसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ी है या एक सामान्य तौर पर चल रहा है अभी?
0: तराई इलाकों को छोड़ दें तो बाकी सारी जगहों पर फ्रीक्वेंसी और अवध उत्तर प्रदेश के कॉन्टेक्स्ट में बढ़ी है, लेकिन जो प्रदेश के दक्षिणी जिले सर्वाधिक गर्म रहे इसके पीछे एक भौगोलिक और वैज्ञानिक कारण भी है। वो ये है कि इस समय मतलब समर सॉल्स्टिस होती है 21-22 जून में, उस समय सूर्य जो है वो सीधा कर्क रेखा के ऊपर होता है और कर्क रेखा जो है वो प्रदेश के दक्षिणी भाग के पास से होकर गुजरती है, तो मतलब सूरज जो है वो प्रदेश के दक्षिणी भाग के सीधा ऊपर होता है। इस वजह से सर्वाधिक गर्मी इस समय वहां पर वो देता है। और इसके अतिरिक्त वहां का जो भूभौतिकी स्थिति है उसके कारण भी वहां पर हीट जो है वो ज्यादा एब्जॉर्ब होती है और उसका हीटिंग पोटेंशियल बढ़ता है। तो ये कई सारे कारक हैं जो कि उसको वैज्ञानिक तौर पर परिभाषित करते हैं कि प्रदेश के दक्षिणी भागों में तापमान जो है वो बाकी जगहों की तुलना में ज्यादा हो।
1: पर जैसा कि आप बता रहे हैं कि फ्रीक्वेंसी पहले के मुकाबले बढ़ी है, इसके पीछे क्या कारण देखते हैं आप लोग?
0: देखिए, जिस भी चीज की फ्रीक्वेंसी बढ़ना या घटना ये तो एक सतत प्रक्रिया है, मतलब जिसको हम जलवायु परिवर्तन कहते हैं, और ये अभी बढ़ी या घटी है ऐसा नहीं है। जैसे हमने बताया तराई इलाकों में घटी है, तो कुल मिला के जो जलवायु परिवर्तन एक्सेलरेट हो गया है और इस कारण जो उसके प्रभाव पहले काफी दिनों के बाद या एक जनरेशन के बाद दिखाई देते थे, अब वो जल्दी सेम जनरेशन में उसी पीढ़ी में दिखाई देने लगे हैं और वो लोगों को महसूस भी हो रहा है।
1: जिस तरह आप कह रहे हैं कि जलवायु परिवर्तन है उसके कारण ये सारी चीजें एक्सिलरेट हो गई हैं, तो क्या आने वाले दिनों में कहा जा सकता है कि एक न्यू नॉर्मल हो गया है कि जो सीजन है हम उसमें एक्सट्रीम वर्षा देखते हैं या एक्सट्रीम गर्मी, एक्सट्रीम सर्दी, या फिर सर्दियों का मौसम बीत जाता है, सर्दी नहीं पड़ती, या एक न्यू नॉर्मल के तौर पर आगे बना रहे?
0: बिल्कुल, देखिए इस समय की जो वर्तमान स्थिति है 21वीं सदी में अगर हम देखें तो ज्यादातर समय ये स्थितियां रही हैं कि जब भी तापमान जो है, चाहे वो वर्षा हो चाहे तापमान हो, जो वेदर एक्सट्रीम्स हैं वो बढ़ गई हैं और जो लाइट टू मॉडरेट एक्टिविटीज होती थी वो घट गई हैं, तो सीधे तौर पर जलवायु परिवर्तन की वजह से जो है वो क्लाइमेटिक एक्सट्रीम्स जो है उसमें अप्रत्याशित तौर पर बढ़ोतरी देखी गई है और ये एक न्यू नॉर्मल है।
1: अतुल जी, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।
2: सामूहिक चर्चा में आज आपने सुना उत्तर प्रदेश में मानसून के पिछड़ने के कारणों और बारिश के पूर्वानुमान पर लखनऊ मौसम विज्ञान विभाग के वरिष्ठ वैज्ञानिक अतुल कुमार सिंह से खास बातचीत। वार्ताकार थी आकाशवाणी संवाददाता तनवीर फातिमा।
3: आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से अभी आप सुन रहे थे सामूहिक चर्चा। और अब आइए सुनते हैं संवेद स्वर में देश गान।

0: अभी आप संवेद स्वर में देशगान सुन रहे थे। ये आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है। हमारा अगला कार्यक्रम थोड़ी ही देर में होगा। हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। पेश है उर्दू कार्यक्रम। आज इस कार्यक्रम में आइए सुनते हैं खत के लिए शुक्रिया कार्यक्रम। मेजबानी की है सुरेंद्र राजेश्वरी और शाजिया खान ने। पेशकश आसिफ इकबाल की है।
1: लफ्ज जब कागज पर उतरते हैं तो महज स्याही नहीं रहते, एहसास बन जाते हैं। कभी किसी मुस्कुराहट का पैगाम, कभी किसी याद की खुशबू और कभी किसी कीमती आरा की तर्जुमान।
2: और जब यही एहसास खत की शक्ल में हम तक पहुंचते हैं तो यूं लगता है जैसे दूर बैठे हमारे सामाईन हमारे रूबरू आ बैठे हों।
1: आपके खतूत, आपकी मोहब्बत, आपकी राय और उर्दू जबान से आपकी वाबस्तगी को सलाम पेश करते हुए हम हाजिर हैं लेकर आपका अपना पसंदीदा प्रोग्राम
2: खत के लिए शुक्रिया। एक ऐसा प्रोग्राम जहां गुफ्तगू का आगाज आपकी खतूत से होता है और इख्तिताम आपकी मोहब्बतों पर।
1: मैं हूं शाजिया खान
2: और मैं हूं सुरेंद्र राजेश्वरी।
1: आइए खोलते हैं आज के खतूत का दरीचा और मिलते हैं अपने सामईन से। हमारा पहला खत आया है खदरा लखनऊ से और लिखने वाली हैं सना खातून। लिखती हैं, आज का प्रोग्राम बहुत ही शानदार रहा और आज के उर्दू प्रोग्राम से हमको बहुत शिद्दत से एहसास हुआ कि वाकई आज के दौर में वालिदैन अपने बच्चों को वक्त नहीं देते हैं जिससे उनकी परवरिश अच्छी नहीं हो रही है, जबकि आज के दौर में वालिदैन को बच्चों को पूरा वक्त देना चाहिए और उनकी हर बात को समझना चाहिए और उनके एहसासात को भी समझना चाहिए। आज के प्रोग्राम से बहुत ही अच्छे से इस बारे में गुफ्तगू हुई और बहुत अच्छा रहा आज का प्रोग्राम।
2: सना खातून साहिबा, आपका बेहद शुक्रिया कि जो मुबाहिसा आपने सुना है दे हाजिर में वालिदैन की जिम्मेदारियाँ। शाजी, वाकई इस वक्त ये बेहद ज़रूरी है कि हमारे जितने सामीन हैं उनके घर में जो बच्चे खासतौर से तालिबे इल्म हैं उनकी अपनी एक जिम्मेदारी है कि वालिदैन जो बात

0: तक पहुंचाते हैं, वालिदैन की जो कही बातें हैं वो हमारे मुस्तकबिल को बनाने में बहुत मददगार साबित होती है। इसलिए वालिदैन की भी जिम्मेदारियां हैं और जो उनके घर में बच्चे हैं उनकी भी एक जिम्मेदारी है कि मुस्तकबिल को कैसे खूबसूरत बनाया जाए। और हमारी कोशिश भी ये थी कि आप तक वो बातें पहुंचे कि वालिदैन किस तरह से अपनी जिम्मेदारियां निभाएं। सना खातून साहिबा, आपने प्रोग्राम सुना और हम अच्छा लगा कि और भी कुछ तफसील से लिखें ताकि हम और बेहतर तरीके से अपने सुनने वालों तक पहुंचा सकें। बहरहाल आपकी समातों का बेहद शुक्रिया।
1: इसी खत की मुनासिबत से हमारे पास अगला खत है उर्फी वसीम साहब का, जो लखनऊ से हैं और लिखते हैं कि सैयद मोहम्मद उमर साहब, आपका आज का उर्दू प्रोग्राम वालिदैन को लेकर सुना बहुत खुश हुई, बहुत अच्छा लगा। इसी मुनासिबत से हमारे पास एक और खत है नजमी हसन साहब का, नजमी हसन साहब जो कि रुदौली शरीफ से लिखते हैं, शुक्रिया आकाशवाणी उर्दू प्रोग्राम, आपके इस प्रोग्राम का आने वाली नस्लों पर बहुत कुछ सीखने का मौका मिलेगा। डॉक्टर परवीन शुजात साहिबा, मौलाना साहब और जो इस प्रोग्राम की निजामत कर रहे थे और इतने अच्छे अंदाज में पेश किया, वो काबिले तारीफ हैं। इसी खत की मुनासिबत से हमारे पास एक और खत है मंतशा खातून का और ये लखनऊ से ही हैं। ये लिखती हैं, उर्दू प्रोग्राम दिल को छू जाने वाला एक बहुत ही अच्छा प्रोग्राम होता है। कल का प्रोग्राम अहद हाजिर में वालिदैन की जिम्मेदारियाँ बहुत अच्छा रहा और बहुत कुछ सीखने और सुनने को मिला, बहुत शुक्रिया।
0: उर्फी वसीम साहब, नजमी हसन साहब और मंतशा खातून साहिबा, बहुत शुक्रिया आप सबका कि ये मुबाहिसा आपको इस कदर पसंद आया है। अहद हाजिर में वालिदैन की जिम्मेदारियाँ, ये जो दौर इस वक्त चल रहा है, टेक्निकल एरा में हम लोग चल रहे हैं शाजिया खान
1: जी,
0: सोशल मीडिया का जमाना है और इस दौर में कैसे वालिदैन अपने बच्चों की तालीम तरबियत करेंगे, तो ये बहुत बड़ा मसला है। और आपने ये मुबाहिसा सुना, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।

0: करके एक साथ शामिल करती हूँ, जिनका मैं नाम एक बार पूरी तरह ले दूं। दुर्गेश नागनपुरे, राधेश्याम नागनपुरे, वंदना, भावना, बिंदु, गोलू, कुसुमबाई, बाबू दिव्यांश और सूरज कुमार ढाक से। हमें आपका उर्दू प्रोग्राम काफी अच्छा लगता है। हमें दिनांक 30 मई 2026 का उर्दू प्रोग्राम बहुत अच्छा लगा। इस कार्यक्रम में उर्दू अदब में जदीद अफसाना निगारी विषय पर मेहमान अतिया बी से सैयद मोहम्मद उमैर जी की गुफ्तगू बहुत अच्छी लगी। इसी के साथ इनका अगला खत आया है हमारे प्रोग्राम क्लाइमेट चेंज, बदलता मौसम, बढ़ती बीमारियां के मुताबिक, और ये लिखते हैं, हमें आकाशवाणी लखनऊ के सभी कार्यक्रम बहुत अच्छे लगते हैं। हमें आपका उर्दू कार्यक्रम बेहद पसंद है। दिनांक 5 जून 2026 का उर्दू प्रोग्राम बहुत अच्छा लगा। इस कार्यक्रम में क्लाइमेट चेंज, बदलता मौसम, बढ़ती बीमारियां, इस विषय पर डॉक्टर जगदम्बा दुबे, डॉक्टर मोहम्मद अहमद जी, सैयद मोहम्मद उमैर जी की उनसे गुफ्तगू बहुत अच्छी और लाभदायक लगी। कार्यक्रम की सफल प्रस्तुति के लिए आसिफ इकबाल साहब को हार्दिक बधाई। इसी तरह से इन्होंने हमारे 6 जून के कार्यक्रम उजाले अपनी यादों के मुतालिक भी लिखा है और लिखते हैं कि इस प्रोग्राम में उजाले अपनी यादों के विषय पर डॉक्टर बशीर बद्र की चुनिंदा शायरियां शम्सुल आरफीन और आसिफ इकबाल जी की आवाज में बहुत अच्छी लगी। आसिफ इकबाल जी को हार्दिक बधाइयां। इसी के साथ इनका एक और खत है हमारा 12 जून का प्रोग्राम बचपन की दिलचस्प यादें के मुतालिक, और ये लिखते हैं, इस कार्यक्रम में बचपन की दिलचस्प यादें, पुरानी बातें, हसीन यादें विषय पर नुसरत फातिमा हुसैन अफसार जी से मोहम्मद उमैर जी की गुफ्तगू बहुत अच्छी लगी।
1: भाई शाहजी खान साहब कमाल करते हैं दुर्गेश जी।
0: जी
1: आप देखें कि ये कितने शिद्दत से तमाम प्रोग्राम का जिक्र इन्होंने किया है, खासतौर से जो बातचीत जदीद उर्दू अदब में अफसाना निगारी जिसमें आतिया भी हमारी मेहमान थी और सैयद मोहम्मद उमैर साहब ने बातचीत की थी, अच्छा लगा। क्लाइमेट चेंज के जहाँ तक जिक्र किया आपने, बदलता मौसम, बढ़ती बीमारियों पर आपने ये प्रोग्राम सुना, हम आपकी मुबारकबाद डॉक्टर जगदम्बा दुबे, डॉक्टर मोहम्मद अहमद साहब को, सैयद मोहम्मद उमैर जी को, उजाले अपने यादों के। शाहजी ये प्रोग्राम तो वाकई बहुत ही खूबसूरत था। डॉक्टर बशीर बद्र की चुनिंदा शायरी पर मबनी ये प्रोग्राम, शम्सुल आरफीन भाई ने बहुत अच्छी कोशिश की, बचपन की दिलचस्प यादें, क्या मौजू आपने इंतखाब किया था, और नुसरत फातिमा साहिबा और हुसैन अफसार साहब और मोहम्मद उमैर साहब, आपका बेहद शुक्रिया। दुर्गेश जी आप सबका, क्योंकि पूरे फैमिली के साथ आप प्रोग्राम को सुनते हैं, शाहजी ये भी बहुत बड़ी बात है। मेरे ख्याल से सुबह का वक्त होता है, 9:30 से उर्दू प्रोग्राम आप तक पहुंचता है, और ये वक्त बड़ा मसरूफियात का होता है, क्योंकि ऑफिस वाले ऑफिस को तैयार हो रहे होते हैं, बच्चे स्कूल भी जा रहे होते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आप वक्त निकालते हैं उर्दू प्रोग्राम के लिए। शाजिया
0: जी
1: कैसे शुक्रिया अदा करें इनका, रिवायतन करना तो पड़ेगा।
0: बिल्कुल, बहुत जरूरी है, ये हकदार हैं।
1: दुर्गेश जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका खत लिखने के लिए।
0: और हमारे हाफिज मसूद महमूदाबादी खैराबाद सीतापुर, अगर हम इनका खत शामिल ना करें राजेश्वरी जी, तो क्या लगता है आपको?
1: आपने खैराबाद कहा तो मैं समझ गया था
0: जी,
1: ये हो ही नहीं सकता, क्योंकि बहुत प्यारे हमारे सुनने वाले हैं
0: जी,
1: और बहुत अच्छा लिखते हैं, बहुत अच्छा कहते भी हैं।
0: वाकई इनके बगैर मुझे लगता है कि हमारा प्रोग्राम खत के लिए शुक्रिया अधूरा रह जाएगा।
1: बेशक।
0: तो इनका पहला खत जो हमें मिला है,
1: अच्छा कई खत आए हैं
0: जी, इनके भी कई खतूत हैं।
1: अच्छा,
0: तो पहला खत हमारे प्रोग्राम अहद हाजिर में वालिदैन की जिम्मेदारियों के मुतालिक है, और ये लिखते हैं, मोहतरम, बड़ी खुशी के साथ मैं इस बात का इजहार करता हूँ कि आकाशवाणी लखनऊ से नश्र उर्दू प्रोग्राम 31 मई 2026 बरोज इतवार खत के लिए शुक्रिया प्रोग्राम सुनकर मैं ही क्या, मेरे दोस्त अहबाब खुसूसन बेहतरीन शायर महमूद खैराबादी, मेरे उस्ताद सईदुल हसन खान गुहर खैराबादी और गुलशन खैराबादी बेहद खुश हुए, और मोहतरमा शाजिया खान साहिबा और मोहतरम सुरेंद्र राजेश्वरी साहब की जमकर तारीफें की। मैं बेहद शुक्रगुजार हूँ मोहतरम आसिफ इकबाल साहब और मोहतरम सुरेंद्र राजेश्वरी साहब, मोहतरमा शाजिया खान साहिबा का, कि मेरे खतूत को खुसूसी जीनत बख्शी और जितने भी खतूत मौसूल हुए सबको बेहतरीन अंदाज में पेश किया, इसलिए भाई सुरेंद्र राजेश्वरी साहब, मोहतरमा शाजिया खान साहिबा और आकाशवाणी लखनऊ की पूरी टीम को दिली मुबारकबाद। इसी तरह से हमारे हाफिज मसूद साहब का एक और खत हमें मौसूल हुआ है, वो हमारे प्रोग्राम उजाले अपनी यादों के डॉक्टर बशीर बद्र इस मुतालिक है, और ये लिखते हैं, आकाशवाणी लखनऊ से नशर उर्दू प्रोग्राम मोहतरम आसिफ इकबाल साहब और शम्सुल आरफीन साहब की मेजबानी में बहुत अच्छा लगा। आकाशवाणी लखनऊ की जानिब से मोहतरम डॉक्टर बशीर बद्र साहब को बेहतरीन खराज अकीदत पेश की गई। यकीनन डॉक्टर बशीर बद्र साहब उर्दू अदब के वो मायानाज शायर थे जिन्हें भुलाना मुमकिन ही नहीं, नामुमकिन है। मैं भी दिल की अमीख गहराइयों से उन्हें खराज अकीदत पेश करता हूँ। आज का प्रोग्राम कई मायनों में बेहद अहम रहा, शुक्रगुजार हूँ मैं मोहतरम आसिफ इकबाल साहब, शम्सुल आरफीन साहब का, जिन्होंने डॉक्टर बशीर बद्र साहब को खराज अकीदत पेश करते हुए उनकी शख्सियत पर रोशनी डालते हुए तमसील में उनके बेहतरीन अशार भी पेश फरमाए। इस उम्दा पेशकश के लिए मोहतरम आसिफ इकबाल साहब, शम्सुल आरफीन साहब, जौहर कानपुरी साहब और आकाशवाणी लखनऊ के सभी जिम्मेदारान को दिली मुबारकबाद।
1: हाफिज मसूद साहब तारीफ वो भी जम के
0: जी, दिल खोल के।
1: कमाल।

0: करते हैं आप तारीफ जम के होती है तो शाहजहां खान साहब, इसमें चाय तो बनती है
1: बिल्कुल, चाय तो हम उनके नाम की भी एक पी लेंगे यहाँ पे।
0: बहुत शुक्रिया हाफिज मसूद साहब, खास तौर पर जो मुबाहिसा आपने सुना है हाजिर में वालिदैन की जिम्मेदारियाँ। अच्छा, हमारी कोशिश होती है कि दुनिया जमाने में जितनी भी चीजें हम लोग देख रहे हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, जो हमारे साथ हो रहा है, उसको और हम किस ढंग से देख रहे हैं, उसको किस ढंग से हम रेडियो के हवाले से आप तक पहुंचा सकते हैं। मुआशरे में कुछ तरह की चीजें हैं जो आपको लगता है इस पर प्रोग्राम बनना चाहिए, होना चाहिए, आसपास कोई भी ऐसा प्रोग्राम आपका हो रहा होता है तो उसका जिक्र हमें जरूर कर दें, क्योंकि आपके पास व्हाट्सएप नंबर भी है, ईमेल एड्रेस भी है, तो उस पर जिक्र कर देंगे तो हो सकता है उस मौजू पर हम कोई खास तौर पर आपके लिए प्रोग्राम बना सकें। बहरहाल शुक्रिया भी, आपने इतनी तारीफ जम के की है तो हमारी तरफ से भी जम के आपको बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम सुनने के लिए।
1: बहुत शुक्रिया,
0: आइंदा भी ये मोहब्बत बनाए रखिएगा। बेहद शुक्रिया आपके समातों का।
1: और राजेश्वरी जी, हमारा जो अगला खत है बहुत ही प्यारा खत है, एक प्यारी सी फरमाइश के साथ है। शहर पंजाब के चकला बाजार समाना से लिखने वाले हैं पप्पू राजा खुशदिल, संगीता रानी जिंदल, पप्पू मह खुशदिल, सुनीता रानी जिंदल, आरजू पप्पू खुशदिल, हसमुख लाल जिंदल, बुलबुल शक्ति खुशदिल, संजीव बंटी जिंदल, पूरा ही खुशदिल परिवार। गाना कोई भी सुनाओ, हम आपका बहुत ही ज्यादा धन्यवाद करते हैं गुलाब के फूलों के साथ।
0: पप्पू राजा भाई और परिवार के दोस्तों, बहुत शुक्रिया आपका, आपने आकाशवाणी लखनऊ के इस प्रोग्राम से अपने आप को जोड़े रखा है। और शाहजो फरमाइश भी देखें आप, कि मैं तो सोच ही रहा था काश कोई ऐसा लिखता कुछ कहता, ये मौका फराहम हो ही गया है। बेहद शुक्रिया। इन्हों कैसे मालूम है कि मैं ये कहीं सुना प्रोग्राम में, मुझे लगता है
1: कहते हैं ना कि दिल को दिल से राह होती है। बस ये वही बात है।
0: क्या बात है, क्या बात है, बहुत शुक्रिया।
1: हमारे इतने प्यारे सामीन हैं, इतने प्यारे प्यारे खतूत हमें भेजते हैं। यकीनन ये जो एक राबता हमारे दरमियान है खतों के सिलसिले से, ये इस बात की तर्जुमानी भी करता है कि किस तरह से हमारे तमाम सामीन आपकी इस सलाहियत से भी वाकिफ है, बखूबी वाकिफ है।

0: क्या बात है, बहुत उम्दा।
1: ये पप्पू राजा भाई बड़ा आजमाइश में डाल दिया आपने। खैर चलिए, बहुत शुक्रिया आपका।
0: सामीन, लम्हाते रुखसती पाएगीर हो चली है, लेकिन आपके खतूत का इंतजार बदस्तूर रहेगा,
1: क्योंकि ये खतूत महज अल्फाज नहीं होते बल्कि आपके दिल की आवाज, आपकी सोच का अक्स और हमारे दरमियान कायम एक खूबसूरत रिश्ता होते हैं।
0: अपनी मोहब्बतों, दुआओं, कीमती आरा और तजावीज से हमें यूं ही नवाजते रहिए,
1: ताकि अल्फाज और एहसासात का ये सफर इसी तरह जारी रहे।
0: अगर आप भी अपने ख्यालात, तासुरात, मशवरे या किसी खास प्रोग्राम के बारे में अपनी राय हम तक पहुंचाना चाहते हैं, तो हमें जरूर लिख भेजिए। हमारा ईमेल एड्रेस है kklsurdu@gmail.com और हमारा व्हाट्सएप नंबर भी है 7991778157।
1: आपके ख्यालात, आपके तासुरात और उर्दू से आपकी मोहब्बत के नाम
0: खत के लिए शुक्रिया। शाजिया खान
1: और सुरेंद्र राजेश्वरी को
0: अब इजाजत दीजिए। आदाब।
2: अभी आप सुन रहे थे उर्दू कार्यक्रम। आज इस कार्यक्रम में खत के लिए शुक्रिया कार्यक्रम आप सुन रहे थे। मेजबानी की थी सुरेंद्र राजेश्वरी और शाजिया खान ने, और पेशकश आसिफ इकबाल की थी। आज का उर्दू कार्यक्रम आकाशवाणी के लखनऊ मरकज से नश्र किया जा रहा था।

हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं 747 किलो हर्ट्स पर। समय हुआ है सुबह के 9:50 का। आइए सुनते हैं लोक संगीत का कार्यक्रम लोक रंग। आज इस कार्यक्रम में सुनेंगे डॉक्टर प्रतिभा मिश्रा के गाए अवधि लोकगीत। डॉक्टर प्रतिभा मिश्रा के स्वर में आइए सुनते हैं देवी गीत।

मैया देवो दर्शन हमारे अंगना। अभी आपने डॉक्टर प्रतिभा मिश्रा के स्वर में देवी गीत सुना और अब प्रस्तुत है सोहर, स्वर डॉक्टर प्रतिभा मिश्रा का।

राजा जनक जी की बगिया। अभी आपने डॉक्टर प्रतिभा मिश्रा के स्वर में ये सोहर सुना। इसी के साथ लोक संगीत का कार्यक्रम लोक रंग अब समाप्त होता है। श्रोताओं, आपको बता दें, डॉक्टर प्रतिभा मिश्रा के गाए अवधि लोकगीतों का आप आनंद ले सकते हैं लोक माधुरी कार्यक्रम में दिन में 2:45 पर। हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं 747 kHz पर। सुबह के 10 का समय है। प्रस्तुत है आपकी पसंद के लोकगीत कार्यक्रम। आप सभी श्रोताओं को हमारा प्यार भरा नमस्कार। आज सबसे पहले सुनेंगे मीनू खरे और रश्मि खरे के स्वर में देवी गीत, और इसे सुनने के लिए हमें पत्र लिख भेजा है राजेश कुमार, राकेश कुमार, अनुराग, अंशुल, आस्था, अंजलि, केशरी मिश्रा ने नरहरपुर सेमरी पुरुषोत्तमपुर जिला सुल्तानपुर से। आप सबकी फरमाइश पर प्रस्तुत है मीनू खरे और रश्मि खरे के स्वर में देवी गीत।

करगैना बरेली उत्तर प्रदेश से हमें पत्र लिख भेजा है बेनी सिंह, पन्नीलाल, आशीष कुमार, अमर सिंह, राजेश कुमार, रूबी, एकता, दिव्या, रचना, ओमवती, रौनक, शगुन, सारांश, अयांश, अदिति, शिवांश और प्रथव सिंह ने। और आप सभी सुनना चाहते हैं अनुभा राय के स्वर में सोहर।

0: अभी आप अनुभा राय के स्वर में सोहर सुन रहे थे। श्रोताओं, इसी के साथ आपकी पसंद के लोकगीत कार्यक्रम को हम यहीं विराम देते हैं। हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। आपकी पसंद के लोकगीत कार्यक्रम पुनः सुन सकेंगे 10:20 से। ये आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है। सुबह के 10:10 होने वाले हैं। सुनेंगे न्यूज बुलेटिन विश्व दर्पण आकाशवाणी दिल्ली से।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से विश्व दर्पण के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हलमाइनी के साथ वार्ता करेंगे। वे सेशल्स की नेशनल असेंबली को संबोधित करेंगे और भारतीय समुदाय के लोगों से भी बातचीत करेंगे। विदेश मंत्रालय ने भारतीय नागरिकों से सभी आवश्यक दस्तावेजों के साथ ही कैलाश मानसरोवर की यात्रा करने की सलाह दी है। अमरीकी सेना ने लगातार दूसरे दिन ईरान के कई ठिकानों पर हमले किए। वेनेजुएला में भूकंप से मरने वालों की संख्या 1430 हुई और फीफा फुटबॉल विश्व कप में कांगो ने उज्बेकिस्तान को 3-1 से हराकर इतिहास रचते हुए पहली बार प्रतियोगिता के नॉकआउट चरण में प्रवेश किया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हलमाइनी के साथ बातचीत करेंगे। दोनों नेता द्विपक्षीय सहयोग की व्यापक समीक्षा करेंगे और आपसी हित के क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। एक रिपोर्ट।
2: आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेशल्स की राष्ट्रीय असेंबली को संबोधित करेंगे और वहां रहने वाले भारतीय समुदाय के लोगों से भी मुलाकात करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी रोशकेमन में आयोजित राष्ट्रीय दिवस समारोह में हिस्सा लेंगे। विदेश मंत्रालय के अनुसार समारोह में भारतीय रक्षा बलों का एक दल और भारतीय नौसेना के 2 युद्धपोत भी भाग लेंगे। प्रधानमंत्री मोदी सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस और स्वतंत्रता के स्वर्ण जयंती समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हो रहे हैं। यह यात्रा भारत और सेशल्स के बीच मजबूत और लंबे समय से चले आ रहे मित्रतापूर्ण संबंधों को और मजबूत करने का प्रतीक है। साथ ही यह दोनों देशों की हर क्षेत्र में द्विपक्षीय सहयोग और संबंधों को आगे बढ़ाने की साझा प्रतिबद्धता को दर्शाती है। अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने भारतीय कंपनियों से कहा है कि वे यूनाइटेड किंगडम की कंपनियों के साथ अपने संबंध मजबूत करें ताकि भारत यूके कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक एंड ट्रेड एग्रीमेंट के अंतर्गत मिल रहे नए मौकों को लगातार बिजनेस ग्रोथ में बदला जा सके। उन्होंने लंदन में भारत यूके

0: पार्टनर्स इन प्रोग्रेस बिजनेस प्लेनरी की अध्यक्षता करते हुए ये बात कही। वाणिज्य उद्योग मंत्रालय ने बताया कि इस प्लेनरी ने दोनों देशों के प्रमुख उद्योग प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया और द्विपक्षीय व्यापार और निवेश को मजबूत करने के लिए CETA का क्रांतिकारी फ्रेमवर्क के तौर पर स्वागत किया। विदेश मंत्रालय ने भारतीय नागरिकों को सलाह दी है कि वे सभी आवश्यक दस्तावेज होने पर ही कैलाश मानसरोवर की यात्रा करें। हमारे संवाददाता ने बताया है कि मंत्रालय ने यह परामर्श उन भारतीय नागरिकों के सहायता अनुरोध पर जारी किया है जो निजी टूर ऑपरेटरों के माध्यम से चीन के लिए आवश्यक प्रवेश परमिट और बिना वीजा के नेपाल में फंस गए हैं।
1: विदेश मंत्रालय ने कहा है कि कुछ भारतीय श्रद्धालु निजी टूर ऑपरेटरों के जरिए कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए नेपाल तो पहुंच गए लेकिन उनके पास चीन में प्रवेश के लिए जरूरी वीजा और परमिट नहीं थे। इस कारण कई श्रद्धालुओं को यात्रा के समय समस्याएं पेश आई हैं और उन्होंने मंत्रालय से मदद मांगी है। मंत्रालय ने कहा है कि श्रद्धालु सभी जरूरी यात्रा दस्तावेज मिलने के बाद ही यात्रा शुरू करें। उसने कहा है कि केवल इस उम्मीद में यात्रा शुरू न करें कि आगे चलकर परमिट या वीजा मिल जाएगा क्योंकि इससे यात्रा के दौरान परेशानी हो सकती है। मंत्रालय ने श्रद्धालुओं कहा है कि यात्रा पर जाने से पहले यह सुनिश्चित कर ले कि उनका टूर ऑपरेटर पंजीकृत और अधिकृत है। मंत्रालय का कहना है कि इस सलाह का उद्देश्य श्रद्धालुओं की यात्रा को सुरक्षित, सुगम और परेशानी से मुक्त बनाना है। रोहन के साथ अंकित कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: रक्षा मंत्रालय ने मीडिया सोशल मीडिया पर प्रसारित हो रही उन खबरों का खंडन किया है जिनमें ऑपरेशन सिंदूर के दौरान 6 सैनिकों की शहादत को हाल ही में सार्वजनिक रूप से स्वीकार किए जाने को तथ्यात्मक रूप से गलत बताया गया है। मंत्रालय ने कहा है कि जल्द से जल्द शहीद सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इन सैनिकों को वीरता पुरस्कार भी प्रदान किए गए थे जिनकी घोषणा पिछले वर्ष 14 अगस्त को जारी एक प्रेस विज्ञप्ति में की गई थी। विश्व दर्पण समाचार आप आकाशवाणी से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। अमरीकी सेना ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के निर्देश पर लगातार दूसरे दिन ईरान में कई ठिकानों पर हमले किए हैं। सेना ने कहा कि उसने लगातार दूसरे दिन ईरान के कई ठिकानों पर हमले किए हैं। एक रिपोर्ट।
2: इस हमले से दोनों पक्षों के बीच हुए संघर्ष विराम समझौते को लेकर अनिश्चितता की स्थिति उत्पन्न हो गई है। सोशल मीडिया पोस्ट में अमेरिका की सेंट्रल कमांड ने कहा है कि शुक्रवार को तेल से लदे एक व्यापारिक पोत कीकू पर हुए हमले के जवाब में अमेरिका ने ईरान के सैन्य ढांचों, संचार प्रणालियों, वायुसेना के अड्डों, ड्रोन और बारूदी सुरंग बिछाने की क्षमताओं को निशाना बनाया। सेंट्रल कमांड ने कहा कि ईरान ने ड्रोन से तेल टैंकर कीकू पर हमला किया। ये टैंकर होर्मुज जल डमरू मध्य से गुजर रहा था और इसमें 20 लाख बैरल से अधिक कच्चा तेल था। अमेरिका ने कहा है कि ईरान ने तेल पोत पर हमला करके संघर्ष विराम का उल्लंघन किया है। उधर ईरान के सरकारी मीडिया ने होर्मुज के ठीक उत्तर में विस्फोटों की सूचना दी है। विश्व दर्पण के लिए समाचार कक्ष से मैं फरहत नाज।
0: वेनेजुएला में भूकंप से मरने वालों की संख्या 1,430 हो गई है। वेनेजुएला में बुधवार को 7.2 और 7.5 तीव्रता के दो शक्तिशाली भूकंप आए थे जिसमें काफी नुकसान हुआ था। देश में करीब 68,900 से अधिक लोगों के लापता होने की खबर है। लागवेरा क्षेत्र में सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। जापान में आज सुबह 6.1 की तीव्रता का भूकंप आया। भूकंप का केंद्र इवाते प्रांत के तट से दूर लगभग 40 किलोमीटर की गहराई पर था। सुनामी की कोई चेतावनी जारी नहीं की गई है। तत्काल कोई नुकसान या किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। हालांकि तूफान के दौरान आए भूकंपों की श्रृंखला से भूस्खलन की आशंका बढ़ गई है। राजस्व खुफिया निदेशालय DRI ने चेन्नई बंदरगाह से भारत आ रहे अवैध पटाखों की तस्करी के दो प्रयासों को नाकाम किया है। ये पटाखे चीन में बनाए गए थे। वित्त मंत्रालय ने बताया कि अधिकारियों ने चीन से आ रहे दो कंटेनरों को जब्त किया जिनमें ट्रॉली बैग और स्प्रेयर लदे होने की सूचना दी गई थी लेकिन जाँच में पाया गया कि कंटेनरों में लगभग 46,000 पटाखे छिपाए गए थे। एक अन्य मामले में चेन्नई सीमा शुल्क विभाग ने चीन के पटाखों की तस्करी करने वाले एक गिरोह का भी पर्दाफाश किया है। अमेरिका के वाशिंगटन में भारतीय दूतावास ने कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण एपेडार, वाणिज्य विभाग तथा डूपोंट सर्कल बिजनेस इंप्रूवमेंट डिस्ट्रिक्ट के सहयोग से वार्षिक आम महोत्सव का आयोजन किया। इसमें अल्फांसो, केसर, दशहरी, लंगड़ा और बैंगनपली जैसी लोकप्रिय भारतीय आम की किस्मों का प्रदर्शन किया गया है। एक रिपोर्ट।
3: महोत्सव में भारतीय आमों का स्वाद चखने के लिए बड़ी संख्या में लोग कतारों में खड़े नजर आए। इनमें से कई ने अमेरिका में प्रीमियम भारतीय किस्मों की व्यापक उपलब्धता की मांग की। भारतीय राजदूत विनय मोहन पात्रा ने कहा कि इस वार्षिक महोत्सव का पिछले कुछ वर्षों में तेजी से आकर्षण बढ़ा है। भारत विश्व में आमों का सबसे बड़ा उत्पादक है और इसका अमेरिका को होने वाला निर्यात तेजी से बढ़ रहा है। विश्व दर्पण के लिए समाचार कक्ष से कृष्णकांत।

0: किदांबी श्रीकांत अमरीकी ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप के पुरुष सिंगल्स के फाइनल में पहुंच गए हैं। अमरीका में कैलिफोर्निया के टाइटन जिम में श्रीकांत ने सेमीफाइनल में जापान के युदाई ओकुमोतो को 22-20 15 21 21 19 से हराया। वहीं पुरुष सिंगल्स के अन्य सेमीफाइनल मुकाबले में भारत के रौनक चौहान और महिला सिंगल सेमीफाइनल में देविका सिहाग हारकर टूर्नामेंट से बाहर हो गई हैं। आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप में आज लंदन के लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड पर ग्रुप ए के अंतिम मैच में भारत का मुकाबला ऑस्ट्रेलिया से होगा। मैच भारतीय समयानुसार शाम 7 बजे से शुरू होगा। पुरुष टी20 क्रिकेट में आज बेलफास्ट में भारत का सामना मेजबान आयरलैंड से होना है। ये मैच भारतीय समयानुसार शाम 6 बजे से खेला जाएगा। गोवा के 14 वर्षीय एथनवाज ने बोस्निया और हर्जेगोविना में आयोजित साराजेवो जीएम मिक्स शतरंज टूर्नामेंट में तीसरा अंतिम ग्रैंड मास्टर नॉम हासिल कर लिया है और भारत के 96वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। इस उपलब्धि के साथ एथेन अनुराग महामल और लियोन मेंडोका के बाद गोवा से तीसरे ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। फीफा फुटबॉल विश्व कप में आज सुबह कांगो ने उज्बेकिस्तान को 3-1 से हरा दिया। इसके साथ ही कांगो की टीम इतिहास रचते हुए पहली बार प्रतियोगिता के नॉकआउट चरण में पहुंच गई है। एक अन्य मुकाबले में आज पुर्तगाल और कोलंबिया के बीच मैच बिना कोई गोल के ड्रॉ पर समाप्त हुआ। अब राउंड ऑफ 32 में शुक्रवार को पुर्तगाल का सामना क्रोएशिया से होगा जबकि शनिवार को कोलंबिया और घाना आमने सामने होंगे। इससे पहले अमरीका के न्यूजर्सी में खेले गए ग्रुप एल के मैच में इंग्लैंड के जूड बेलिंगहैम और हैरी केन के एक एक गोल की बदौलत आज इंग्लैंड ने भी पनामा को 2-0 से हराया। इसके साथ ही इंग्लैंड ग्रुप एल में शीर्ष पर पहुंच गया है। इसी ग्रुप के अन्य मैच में क्रोएशिया ने घाना को 2-1 से हराया। क्रोएशिया ग्रुप में दूसरे जबकि घाना तीसरे नंबर पर रहा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हरमाइनी के साथ वार्ता करेंगे। वे सेशल्स की नेशनल असेंबली को संबोधित करेंगे और भारतीय समुदाय के लोगों से भी बातचीत करेंगे। विदेश मंत्रालय ने भारतीय नागरिकों से सभी आवश्यक दस्तावेजों के साथ ही कैलाश मानसरोवर की यात्रा करने की सलाह दी है। अमरीकी सेना ने लगातार दूसरे दिन ईरान के कई ठिकानों पर हमले किए। वेनेजुएला में भूकंप से मरने वालों की संख्या 1,430 हुई और फीफा फुटबॉल विश्व कप में कांगो ने उज्बेकिस्तान को 3-1 से हराकर इतिहास रचते हुए पहली बार प्रतियोगिता के नॉकआउट चरण में प्रवेश किया। इसके साथ ही विश्व दर्पण का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: मीडियम वेव 401.61 मीटर अर्थात 747 किलो हर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है।
2: मैं डॉक्टर राजेश हर्षवर्धन, चिकित्सा अधीक्षक SJPGIMS और संयुक्त निदेशक राज्य अंग एवं उत्तरपत्रोपण संगठन उत्तर प्रदेश, आज आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमारे देश में अंग जैसे किडनी, लीवर, हार्ट, कॉर्निया, इनकी वैसे रोगियों की संख्या काफी ज्यादा हो रही है, बढ़ रही है, जिनके केस में ये अंग काम नहीं कर रहे हैं और उन्हें अंग प्रत्यारोपण की आवश्यकता है। आप एक मुहिम के रूप में आगे आकर SOTOUP के वेबसाइट पे होम पेज पे प्लीज नाउ बटन क्लिक करें और QR कोड स्कैन करके अंग दान करने का शपथ लें, क्योंकि अंग दान महादान है। आपके इस निर्णय से किसी की जिंदगी बच सकती है। दान जगत का नियत धर्म है, व्यर्थ मनुष्य डरता है, एक दिवस तो स्वयं उसे सब कुछ देना पड़ता है। बचते वही समय पर जो सर्वस्व दान करते हैं, इतु का ज्ञान रहा न जिन्हें वो देकर भी मरते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप यही मैसेज अपने सभी संपर्क में फैलाएंगे। धन्यवाद।
1: स्वागत है आप सभी श्रोताओं का एक बार पुनः आपकी पसंद के लोकगीत कार्यक्रम में। श्रोताओं, अब हम आपको सुनवाएंगे पूजा तोमर के स्वर में खेमटा और इसे सुनने के लिए हमें पत्र लिख भेजा है प्रमोद कुमार श्रीवास्तव, शीतल तरंग, शिवबख्श सिंह, गोविंद सिंह, ग्राम कैतनपुरवा, पोस्ट सातनपुरवा, जिला अमेठी, उत्तर प्रदेश से।

बनियापारा धमतरी छत्तीसगढ़ प्रदेश से हमें पत्र लिखा है शंकरलाल मखीजा, राहुल कुमार, सविता, बेबी स्वाति और पूरा मखीजा परिवार ने, और आप सभी सुनना चाहते हैं दिग्विजय नाथ सिंह के स्वर में लोक भजन।

अभी आपने दिग्विजय नाथ सिंह के स्वर में लोक भजन सुना और अब प्रस्तुत है रंजना अग्रहरि के स्वर में कहरवा। सुनने के लिए हमें पत्र लिख भेजा है ग्राम अमलेश्वर से डोमन ठाकुर, सुमन, मिथिलेश, तारिणी, सूरज, ज्योति, रियांश और गुड़िया ठाकुर ने।

भदभदा रोड भोपाल मध्य प्रदेश से हमें पत्र भेजा है योगेश्वर सिंह, शेखावत, भैरव प्रताप, लोकेंद्र, प्रेमाबाई, दुर्गा, अमिता और इनके परिवार के बहुत सारे सदस्यों ने ग्राम व पोस्ट बाया तहसील रहटी सीहोर मध्य प्रदेश से पत्र है। लक्ष्मी, महेंद्र, तरु और उनके परिवार के बहुत सारे सदस्यों का, और आप सभी सुनना चाहते हैं संजोली पांडे के स्वर में विवाह गीत।

करुआडी ही प्रतापपुर प्रयागराज से पत्र भेजा है रामप्रकाश गौतम, मंजू, डीपी यादव, संतोष पटेल, राजेंद्र और रामचंद्र गौतम ने। और आपने फरमाइश की है वंदना शुक्ला के स्वर में द्वार चार सुनने की।

सखी द्वारे पे आई बारात द्वारचार कर लो जी। अभी आपने वंदना शुक्ला के स्वर में द्वारचार सुना। आपकी पसंद के लोकगीत आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से 747 किलो हर्ट्स पर। आकाशवाणी लखनऊ के कार्यक्रमों का प्रसारण आप सुन सकते हैं न्यूज ऑन AIR ऐप और DTH के माध्यम से भी। और आपकी पसंद के लोकगीत कार्यक्रम में अब हम आपको सुनवाएंगे सतीश चंद श्रीवास्तव के स्वर में किसानी गीत, और इसे सुनना चाहा है आदर्श नगर मलोट से राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश मैंडी, सौरव, शाइना शर्मा और इनके बहुत सारे साथियों ने।

खेती में मनवा लगावा, बलम हीरा मोती उगावा। अभी आपने सतीश चंद श्रीवास्तव के स्वर में ये किसानी गीत सुना, और अब आइए सुनते हैं स्नेहिल श्रीवास्तव के स्वर में नकटा। सुनने के लिए पत्र भेजा है बीड शहर महाराष्ट्र से प्रकाश पगारिया, पराग पगारिया, प्रदीप, केशव पटेल और सरला प्रकाश ने।

स्नेहिल श्रीवास्तव के गाए इस नक्टा के साथ ही आपकी पसंद के लोकगीत कार्यक्रम अब संपन्न होता है। ये आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है। हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। कृपया हमारे अगले प्रसारण की प्रतीक्षा करें।

0: ये आकाशवाणी दिल्ली है, कृपया हमारे विशेष कार्यक्रम की प्रतीक्षा कीजिए। ये आकाशवाणी है।
1: श्रीमद् भगवत गीता में कहा गया है, यदि व्यक्ति की बुद्धि शुद्ध हो तो अक्सर छोटे छोटे कर्मों की नैतिक योग्यता भी बड़े बड़े कर्म कर डालने में समर्थ होती है। बुद्धि तो एक तलवार के समान है। जीवन में जो कुछ भी इंसान के सामने आता है उसकी काट छांट करना ही बुद्धि का काम है। इसके विपरीत जब बुद्धि शुद्ध ना हो तब किसी कर्म की नैतिक योग्यता का ज्ञान मनुष्य को नहीं हो सकता। इस तरह बुद्धि के अभाव में अच्छा कार्य भी बुरा बन सकता है।
2: महात्मा गांधी का कहना है,
3: मैं भगवान को मानवता की सेवा द्वारा देखने का प्रयत्न करता हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ भगवान न ऊपर आकाश में है और न नीचे पाताल में, वो तो सब में है।
4: मन की शांति और शक्ति के लिए जुड़िए भक्ति से। आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मनपसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, महाकुंभ मेला हो या जगन्नाथ रथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए सूफी संगीत और शबद कीर्तन,
5: कोई बोले राम राम।
4: आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल, न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और YouTube पर भी उपलब्ध आराधना।

0: घर घर तक पहुंचाएं आपका विज्ञापन, आकाशवाणी और दूरदर्शन के विभिन्न चैनल, देश के किसी भी कोने में विज्ञापन देने के लिए प्रसार भारती के मार्केटिंग प्रभाग से संपर्क कीजिए।
1: ये आकाशवाणी का न्यूज ऑन एयर ऐप है। लाइव रेडियो, लेटेस्ट न्यूज हेडलाइंस, न्यूज पॉडकास्ट, साथ में दूरदर्शन के लाइव चैनल्स भी। द बेस्ट ऑफ एंटरटेनमेंट, इन्फॉर्मेशन, एजुकेशन अब आपके एक उंगली के इशारे पर। कहीं भी, कभी भी, रहे हरदम अपडेट। आज ही डाउनलोड करें आकाशवाणी का न्यूज ऑन एयर ऐप।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: बोल बोल के थक गया।
4: क्या हुआ?
3: नया किड बैग चाहिए।
4: तो पहले कैप्टन से बोलो, नहीं सुना तो मैनेजर से।
3: करेक्ट।
5: तो ऐसे ही पहले शिकायत बैंक से करें, 30 दिनों में जवाब या समाधान ना मिलने पर CMS पोर्टल पे शिकायत करें। तो पहले बैंक, फिर CMS पोर्टल, नहीं तो शिकायत होगी नामंजूर।
3: चले
4: ले, आ गया नया किड बैग।
6: RBI कहता है,
1: पहले अपना बैंक, फिर RBI ओम्बुड्समैन।
7: मन की बात आकाशवाणी के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी अपने मन की बात साझा करेंगे, तो आइए सुनते हैं प्रधानमंत्री जी से मन की बात।
2: मेरे प्यारे देशवासियों, नमस्कार। मन की बात में एक बार फिर आप सब से जुड़कर मुझे अत्यंत आनंद हो रहा है। 2026 का आधा साल बीतने को है। इन 6 महीनों में हमने मन की बात में देशवासियों की अनेक उपलब्धियों पर चर्चा की है। जून में भी देश ने कुछ ऐसी उपलब्धियां हासिल की हैं जो हर देशवासी को गर्व से भर देती हैं। ये सफलताएं देश की सुरक्षा और आत्मनिर्भरता से जुड़ी हैं। हाल ही में मुझे कोलकाता में नौसेना से जुड़े एक कार्यक्रम में शामिल होने का अवसर मिला। वहां INS दुनागिरी, INS संशोधक और INS अग्रय को भारतीय नौसेना के बेड़े में शामिल किया गया। इन शिप्स की डिजाइन और मैन्युफैक्चरिंग तक सब कुछ स्वदेशी है। साथियों, जून के महीने में ही एविएशन सेक्टर में भी देश ने एक बड़ी सफलता पाई। C-295 यह विमान मेड इन इंडिया है और C-295 विमान ने अपनी पहली उड़ान पूरी की है। और ऐसे 40 विमान भारत में ही बनाए जा रहे हैं। इससे MSME और एरोस्पेस सेक्टर को नई शक्ति मिल रही है, रोजगार के अवसर बढ़ रहे हैं और आत्मनिर्भर भारत का संकल्प भी मजबूत हो रहा है। इसी महीने DRDO ने स्वदेशी लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल का भी सफल परीक्षण किया है। इसको DRDO की लेबोरेटरी और इंडियन इंडस्ट्री पार्टनर्स ने मिलकर बनाया है। यानी आज समुद्र से लेकर आकाश तक हमारा भारत अधिक सुरक्षित और आत्मनिर्भर बन रहा है। साथियों, जून में एक और आयोजन हुआ जिसमें पूरी दुनिया भारत के प्रयासों से जुड़ी।

और ये कार्यक्रम था अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। इस बार दुनिया के 2500 से अधिक स्थानों पर योग के अनेक विविध कार्यक्रम हुए। हमारे देश में करोड़ों लोगों ने स्थान स्थान पर योग कार्यक्रमों में हिस्सा लिया। इस महीने अहमदाबाद में आयोजित विश्व योगासन चैंपियनशिप की भी बड़ी चर्चा हुई। इसमें भारत ने कुल 114 पदक जीते, इनमें 102 गोल्ड मेडल भी शामिल है। भारत इस चैंपियनशिप की पदक तालिका में पहले स्थान पर रहा। मैं सभी विजेता खिलाड़ियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, किसी भी राष्ट्र की आत्मा उसके लोग होते हैं, और जब उस देश के लोग कोई संकल्प लेते हैं तो कोई भी शक्ति उन्हें अपने लक्ष्य से डिगा नहीं पाती। राष्ट्र निर्माण में जन भागीदारी की यह ताकत भारत की बहुत बड़ी पूंजी है, और इस जन भागीदारी का हम बार बार अनुभव कर रहे हैं। साथियों, पश्चिम एशिया में बनी युद्ध की स्थितियों को देखते हुए मैंने देशवासियों से कुछ आग्रह किए थे। मैंने कहा था कि जहां तक संभव हो कुछ समय के लिए गोल्ड सोना खरीदने से बचें। लोगों से कहा था कि विदेश में छुट्टियां मनाने से बचें। मैंने लोगों से कार पुलिंग को भी बढ़ावा देने की अपील की थी। मैंने किसानों से केमिकल मुक्त खेती के लिए, खेत बचाने के लिए और प्राकृतिक खाद का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल का आग्रह किया था। साथियों, मैं देश के हर नागरिक का आभारी हूं कि मेरी अपील का उन्होंने न सिर्फ समर्थन किया बल्कि हर तरफ से उसमें अपना सहयोग कर रहे हैं। मुझे कई परिवारों ने संदेश भेजकर अपने अनुभव साझा किए हैं। कितने ही परिवारों ने तय किया है कि घर के विवाह में इस बार सोना नहीं खरीदेंगे, जरूरत पड़ी तो पुराने सोने को रिसाइकल करके नए गहने बना लेंगे। कितने ही लोगों ने सोशल मीडिया पर यह भी लिखा है कि कैसे उन्होंने इस बार विदेश यात्रा को टाल दिया है। साथियों, कार पुलिंग को लेकर भी लोगों ने अनेक अनुभव साझा किए हैं। जो लोग हर दिन एक ही दिशा में अपने अपने वाहनों से जाते थे, वे अब साथ जाने लगे हैं। लोग हर संभव बस और मेट्रो का उपयोग कर रहे हैं, इससे पेट्रोल और डीजल की बचत हो रही है। इसी तरह देश के अलग अलग हिस्सों में प्राकृतिक खाद की खपत बढ़ने की भी खबरें आ रही हैं। साथियों, मुझे इस बात की खुशी है कि इस ग्लोबल क्राइसिस का हम भारतीय मिलकर मुकाबला कर रहे हैं। मुझे विश्वास है जन भागीदारी की यही शक्ति हमें मजबूती देगी, हमें सफल बनाएगी। मेरे प्यारे देशवासियों, हमारे देश में जन्मदिन, शादी ब्याह, पारिवारिक कार्यक्रम होने के साथ ही पूरे समाज का भी उत्सव होता है। हर परिवार चाहता है कि उसकी खुशियां दूसरे के साथ भी साझा हो। लोग मेहमानों को उपहार भी देते हैं। साथियों, महाराष्ट्र के नांदेड़ में एक परिवार ने अपनी खुशियां बांटने के लिए ऐसा काम किया है जो चर्चा का विषय बन गया है। यहां नांदेड़ के बहादुरपुरा गांव में पेटकर परिवार रहता है। इस परिवार ने सोचा कि अगर खुशी बांटनी ही है तो ऐसी चीज दी जाए जो मुश्किल समय में किसी परिवार का सहारा बने। अपने घर में विवाह के अवसर पर इस परिवार ने गांव के लगभग 3,500 लोगों के लिए दुर्घटना बीमा की व्यवस्था की। हर व्यक्ति को 1,00,000 रुपये का बीमा कवर दिया गया। इस पहल के पीछे की भावना बहुत स्पर्श करने वाली है। परिवार ने देखा था कि दुर्घटना के बाद परिवारों को आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। ऐसे समय में एक छोटी सी सहायता

भी बहुत बड़ा संबल बन जाती हैं। साथियों, सरकार देश के करोड़ों परिवारों तक सुरक्षा का कवच पहुंचा रही है। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत केवल 20 रुपये के सालाना प्रीमियम यानी केवल एक साल के 20 रुपये का प्रीमियम, उस पर 2 लाख रुपये तक का दुर्घटना बीमा मिलता है। अब तक इस योजना से 58 करोड़ से अधिक लोग जुड़ चुके हैं। इनमें करीब 28 करोड़ हमारी माताएं, बहनें, बेटियां हैं, महिलाएं हैं। इस योजना से पीड़ित परिवारों को अब तक जो हिसाब मिला है, 3,700 करोड़ रुपए से अधिक की सहायता मिल चुकी है। साथियों, उसी प्रकार से प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना भी उतनी ही अहम है। ये योजना व्यक्ति की दुखद मृत्यु होने पर उसके परिवार को 2 लाख रुपए का बीमा कवर देती है। इसका वार्षिक प्रीमियम सिर्फ 436 रुपये है, मतलब एक दिन का मुश्किल से 1.5 रुपया। इस योजना से अब तक 27 करोड़ से अधिक लोग जुड़े हैं। इसके तहत देश के करीब 11 लाख परिवारों को करीब 22,000 करोड़ रुपए की सहायता मिल चुकी है। ये आंकड़े बहुत बड़े हैं। इन आंकड़ों के पीछे लाखों परिवारों की अपनी अपनी कहानी है। कहीं किसी माँ को बच्चों की पढ़ाई जारी रखने में सहायता मिल गई, कहीं किसी पत्नी को घर की जिम्मेदारियां संभालने का सहारा मिल गया। साथियों, कई बार बहुत बड़ी सुरक्षा की शुरुआत बहुत छोटी राशि और एक छोटे से कदम से हो सकती है। छोटा सा भी निर्णय बहुत बड़ा बदलाव करता है। मेरा आप सभी से आग्रह है कि अपने परिवार में इन योजनाओं की जानकारी जरूर साझा करें। मेरे प्यारे देशवासियों, मन की बात में अब बात एक ऐसे विषय की जो हजारों साल पुराना है, हजारों साल से मानव समाज में घर कर करके बैठ गया है। ये विषय है अंधविश्वास का। अंधविश्वास कई बार केवल एक गलत धारणा नहीं होता, वो डर पैदा करता है। और जब डर मन पर हावी हो जाता है तो इंसान सच को देखना ही बंद कर देता है। अंधविश्वास में डूबे लोग फिर बिना तर्क के, बिना सत्य जाने ऐसे फैसले लेने लगते हैं जिनका बड़ा नुकसान होता है। वहीं समाज में ऐसे लोग भी होते हैं जो विज्ञान, अनुभव और तर्क के आधार पर उन धारणाओं को चुनौती देते हैं। अंधविश्वास से विश्वास तक की ये यात्रा आसान नहीं होती। और आज मैं ऐसी ही एक सफल यात्रा के बारे में आपको जरूर बताना चाहता हूं। साथियों, असम में एक पक्षी पाया जाता है। उस पक्षी का नाम है हरगीला। हरगीला एक दुर्लभ पक्षी है। ये प्रकृति को स्वच्छ रखने में अहम भूमिका निभाता है। लेकिन असम के कुछ इलाकों में लंबे समय तक इसे अशुभ माना जाता था। लोग इसे अपने आसपास देखना पसंद नहीं करते थे। कई बार उन पेड़ों को भी काट दिया जाता था जिन पर हरगीला के घोंसले बने होते थे। सोचिए, एक ऐसा पक्षी जो पर्यावरण की सफाई में मदद करता है, वही हरगीला लोगों के डर का शिकार बन गया था। इसी दौरान जीव वैज्ञानिक पूर्णिमा देवी बर्मन ने ये सब देखा। उन्होंने लोगों के मन में बैठी गलत धारणा को बदलने का संकल्प लिया। उन्होंने महिलाओं से बात की, उन्होंने लोगों को विज्ञान के आधार पर समझाया। धीरे धीरे महिलाएं इस अभियान से जुड़ने लगी। फिर एक बड़ा बदलाव

शुरू हुआ। जिस पक्षी को कभी अशुभ मानकर भगाया जाता था, वही गांवों की पहचान बनने लगा। हजारों ग्रामीण महिलाएं हरगिला को बचाने के लिए आगे आई। आज उन्हें हरगिला आर्मी के नाम से जाना जाता है। इन महिलाओं ने समाज के साथ संघर्ष भी किया, समाज को समझाने के लिए दिन रात काम किया और अंधविश्वास को पीछे छोड़ करके रहे। उन्होंने दिखाया है जब सही जानकारी पहुंचाई जाती है तो वर्षों पुरानी सोच भी बदल सकती है। साथियों, मैं अक्सर कहता हूं, जो खेलता है वो खिलता है। आज देश में ऐसे युवाओं की संख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है, जो खेल भी रहे हैं और खिल भी रहे हैं। पहले की तुलना में अब कहीं अधिक युवा खेलों को कैरियर के रूप में अपना रहे हैं। मुझे नागालैंड के दो ऐसे प्रयासों के बारे में जानकारी मिली है जो बहुत दिलचस्प है। पहला प्रयास है नागालैंड बेबी लीग। नाम सुनकर आपको जरूर लगता होगा कि ये बहुत छोटे बच्चों की कोई साधारण लीग होगी, लेकिन ऐसा नहीं है। ये 5 से 10-12 साल की आयु के छोटे छोटे बच्चे, फूल जैसे बच्चों की एक असाधारण लीग है। और इन बच्चों के फुटबॉल खिलाड़ियों की एक ऐसी लीग है जो उनके रफ्तार को और प्रतिभा के लिए उनको प्रेरित भी करती है और उनकी पहचान भी बनाती है। इसकी शुरुआत नागालैंड के अधिक बच्चों को फुटबॉल से जोड़ने के लिए हुई थी। 5 से 12 वर्ष तक के लड़के और लड़कियां इसमें हिस्सा ले सकते हैं। ये लीग अब अपने 3 वर्ष पूरे कर चुकी है। इस लीग का बच्चों के मन पर बहुत अच्छा प्रभाव पड़ा है। साथियों, नागालैंड में एक और अच्छा प्रयास हो रहा है। इसका नाम है नागालैंड विमेन फुटसल लीग। हो सकता है आपके लिए ये फुटसल एक नया नाम होगा। मैं आपको बताता हूं, फुटसल को इंडोर फुटबॉल भी कहा जाता है। इसमें एक टीम में केवल 5 खिलाड़ी होते हैं। खेल का मैदान भी फुटबॉल के मैदान से बहुत छोटा होता है। इस कारण खिलाड़ियों को तेज फैसले लेने होते हैं। उन्हें अपनी टेक्निक और स्किल का बेहतर इस्तेमाल करना पड़ता है। नागालैंड की विमेन फुटसल लीग हमारी बेटियों को अपनी प्रतिभा दिखाने का अच्छा अवसर दे रही है। मैं ऐसी पहलों के लिए नागालैंड के लोगों की सराहना करता हूं। ऐसे प्रयास देश के दूसरे हिस्सों को भी प्रेरणा देते हैं। साथियों, ये टेक्नोलॉजी का युग है। हर दिन नई रिसर्च हो रही है, नए नए AI इनोवेशन सामने आ रहे हैं। इस दौर में एक सवाल बहुत महत्वपूर्ण है, लोगों की क्रिएटिविटी को कैसे बचाए रखा जाए। नई टेक्नोलॉजी के साथ आगे बढ़ते हुए हम अपनी जड़ों से कैसे जुड़े रहें, इन सवालों का समाधान खोजा है नालंदा विश्वविद्यालय ने। हजारों साल पुरानी हमारी नालंदा विश्वविद्यालय अब नए अवतार के रूप में भारत का भाग्य घड़ रही है। 2 साल पहले मुझे नालंदा विश्वविद्यालय के नए परिसर के लोकार्पण का अवसर मिला था। नालंदा विश्वविद्यालय ने शास्त्रार्थ की हमारी प्राचीन परंपरा को फिर से जीवन किया है। शास्त्रार्थ केवल अपनी बात रखने का माध्यम नहीं है, ये वाद, संवाद और मंथन की एक अनुशासित प्रक्रिया है। इसमें तर्क के साथ, तथ्य के साथ अपनी बात कहना बहुत जरूरी होता है।

और उसमें आपकी महारत होनी चाहिए। दूसरों के विचारों को धैर्य से सुनने और समझने की सीख भी इस शास्त्रार्थ की प्रक्रिया से मिलती है। मुझे खुशी है कि नालंदा विश्वविद्यालय ने इसे अपने दीक्षांत समारोह का हिस्सा बनाया। इसमें भाग लेने वाले करीब आधे स्टूडेंट्स अन्य देशों से आए थे। एक प्राचीन परंपरा को आज के समय से जोड़ने का ये प्रयास बहुत सराहनीय है। मैं इसके लिए नालंदा विश्वविद्यालय को बहुत बहुत बधाई देता हूं। मैं देश के दूसरे विश्वविद्यालयों से भी आग्रह करूंगा कि वे ऐसी पहल पर विचार करें। साथियों, जड़ों से जुड़े रहकर युवाओं को नई टेक्नोलॉजी के लिए तैयार करने का एक और अच्छा प्रयास हो रहा है। दिल्ली में स्थित सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डेटा साइंस में बीटेक प्रोग्राम शुरू करने जा रही है। ये आधुनिक टेक्नोलॉजी को भारत के पारंपरिक ज्ञान से जोड़ने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इससे भारतीय भाषाओं के लिए नए AI टूल्स तैयार करने में मदद मिलेगी। हमारे प्राचीन ग्रंथों और पांडुलिपियों को डिजिटल रूप में संरक्षित करने के काम को भी नई गति मिलेगी। मैं सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी को इस प्रयास के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, आज भारतीय संस्कृति दुनिया के अलग अलग हिस्सों तक पहुंच रही है। हमारे गीत, संगीत और आध्यात्म को दुनिया भर के लोग जान रहे हैं और अपना रहे हैं। भारत से हजारों किलोमीटर दूर कैरिबियन सागर में डोमिनिकन रिपब्लिक नाम का एक देश है। वहां भारतीयों की संख्या करीब 100 है, शायद उससे भी कम होगी। इसके बावजूद भारतीय संस्कृति और आध्यात्म से जुड़ा एक बहुत अच्छा प्रयास वहां हो रहा है। वहां स्पेनिश बोलने वाले कुछ लोगों ने एक टीम बनाई है। इस टीम का नाम है ब्रह्म कमल डोमिनिकाना। टीम के सदस्य मिलकर वैदिक साहित्य का अध्ययन करते हैं। वे वैदिक मंत्रों का उच्चारण भी सीख रहे हैं। उन्हें इसकी कोई फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं मिली है, लेकिन उन्होंने ऑडियो रिकॉर्डिंग सुनकर वैदिक मंत्रों का सही उच्चारण सीखा है। आज वे कई मंत्रों का बहुत अच्छे से जाप कर लेते हैं। इनमें पुरुष सूक्तम, श्री सूक्तम, श्री रुद्रम, दुर्गा सूक्तम और देवी महात्मा शामिल है। भारत से इतनी दूर रहकर हमारी परंपराओं को सीखने का उनका यह प्रयास बहुत प्रेरक है। मैं ब्रह्म कमल डोमिनिकाना वहां के सभी सदस्यों को उनके प्रयासों के लिए शुभकामनाएं देता हूं। मैं ऐसे सभी लोगों की हृदय से सराहना करता हूं जो भारतीय संस्कृति को दुनिया भर में लोकप्रिय बनाने के लिए निरंतर प्रयास कर रहे हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, मेघालय की पहचान बादलों से है, खूबसूरत नजारों से है। जो मेघालय जाता है उसे वहां के लोगों का अपनापन भी लंबे समय तक याद रहता है। लेकिन मेघालय की एक और विशेषता है जिसकी मैं आज मन की बात में आपसे चर्चा करना चाहता हूं। ये है मेघालय के रूट ब्रिज। रास्ता वाला रूट नहीं, जड़ों वाला रूट। इन रूट ब्रिजों की कहानी बहुत रोचक है। ये ब्रिज कुछ दिनों या कुछ वर्षों में नहीं बनते, इन्हें तैयार होने में कई दशक लगते हैं। रबर के पेड़ों की जड़ों को धीरे धीरे दिशा दी जाती है। इन जड़ों को जल धाराओं के पार ले जाया जाता है। समय के साथ वही जड़ें एक मजबूत ब्रिज का रूप ले लेती हैं। इन ब्रिजों की एक और विशेषता है, ये जीवित ब्रिज है।

समय बीतने के साथ ये और मजबूत हो जाते हैं। इनमें मेघालय के लोगों की सृजनशीलता दिखाई देती है। इनके पीछे वर्षों का धैर्य और प्रकृति के प्रति गहरा सम्मान है। ये ब्रिज बताते हैं कि मनुष्य प्रकृति के साथ मिलकर कितनी अद्भुत चीजें बना सकता है। ये हमारे देश की इस धरती की धरोहर है। अब भारत ने मेघालय के रूट ब्रिजों को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट नेटवर्क में शामिल कराने के लिए आवेदन किया है। साथियों, क्लाइमेट चेंज के कारण इन रूट ब्रिजों के सामने कई चुनौतियां भी आती हैं। ऐसे समय में मेघालय के लोगों ने इस प्राकृतिक धरोहर के संरक्षण की जिम्मेदारी भी बखूबी निभाई है। पहले ये पता लगाना भी आसान नहीं था कि ऐसे ब्रिजों की संख्या कितनी है। स्थानीय लोगों ने खुद इनकी गिनती शुरू की। इसके बाद समुदायों ने इन ब्रिजों की देखभाल की जिम्मेदारी भी संभाली। आज स्थानीय लोग 120 से अधिक रूट ब्रिजों की देखरेख कर रहे हैं। कुछ टीमें हर साल इन पुलों की स्थिति की जांच करती हैं। कुछ लोगों ने आसपास के क्षेत्र को मजबूत बनाने के लिए नर्सरी भी तैयार की है। इस तरह के इनके संरक्षण के लिए एक पूरा इकोसिस्टम तैयार हो गया है। आपने देखा होगा, इस वर्ष हैली वारजी को पद्म अवार्ड से सम्मानित किया गया है। उन्होंने अपने जीवन के 50 से अधिक वर्ष इन रूट ब्रिजों की देखभाल में लगाए हैं। उनका समर्पण हम सभी के लिए प्रेरणादायक है। साथियों, आपने कभी इन रूट ब्रिजों की यात्रा की हो तो उनकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर जरूर साझा कीजिए। आपकी तस्वीरें दूसरे लोगों को भी मेघालय की इस अनोखी धरोहर के बारे में जानने के लिए प्रेरित करेगी। मेरे प्यारे देशवासियों, हम सभी चाहते हैं कि हमारा गांव साफ सुथरा हो, हमारा शहर सुंदर दिखे, लेकिन शायद ही कभी रुककर ये सोचा जाता है कि हमारे आसपास जो कचरा जमा होता है कौन उसे साफ करता है। ज्यादातर लोग तो यही मानकर चलते हैं कि किसी और की जिम्मेदारी है और वो ही सफाई करेगा। लेकिन हमारे बीच कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो अपनी सोच से हमें बहुत प्रेरित करते हैं। मुझे मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले के ब्यावरा की कुछ बहनों के बारे में जानने का अवसर मिला। उन्होंने अपने आसपास फैले प्लास्टिक कचरे को हटाने का संकल्प लिया। ये नहीं सोचा कि कोई आकर बदलाव लाएगा। उन्होंने खुद शहर भर से प्लास्टिक कचरा और खाली बोतलें इकट्ठा करना शुरू किया। धीरे धीरे ये प्रयास आगे बढ़ता गया और फिर उस प्लास्टिक को इको ब्रिक्स में बदला जाने लगा। आज इन्हीं इको ब्रिक्स का उपयोग सार्वजनिक स्थानों को सुंदर बनाने में किया जा रहा है। राजगढ़ में पिछले कुछ महीनों में सैकड़ों किलो प्लास्टिक को रिसाइकल करके उनका बेहतर उपयोग किया गया है। यानी जो प्लास्टिक पहले शहर में प्रदूषण फैलाता था, आज वही इन बहनों के प्रयास से शहर की सुंदरता बढ़ाने में योगदान दे रहा है। मैं ब्यावरा की सभी बहनों और इस अभियान से जुड़े साथियों को बधाई देता हूं। मेरे प्यारे देशवासियों, मुझे कई लोगों ने पत्र लिखकर एक खास विषय पर बात करने का सुझाव भेजा है। ये विषय गणेश उत्सव से जुड़ा है। वैसे तो गणेश उत्सव में अभी काफी समय बाकी है, लेकिन लोगों ने ये आग्रह किया है कि इस विषय पर अभी ही बात होनी चाहिए। दरअसल गणेश जी की मूर्तियां बनाने का काम बहुत पहले शुरू हो जाता है। मूर्ति बनाने वाले

मूर्तियों के व्यापार से जुड़े लोग अभी से सक्रिय हो जाते हैं। इसलिए मेरा आप सभी से एक आग्रह है, आप प्रयास करें कि आपके घर, सोसाइटी या आसपास की जगहों पर गणपति बप्पा की जो मूर्ति स्थापित हो वो हमारे देश की मिट्टी से बनी हो, वो हमारे अपने कुम्हारों और स्थानीय कलाकारों के हाथों तैयार हुई हो। जो लोग गणेश जी की मूर्तियां बनाते हैं उनसे भी मेरा आग्रह है कि वे मिट्टी की मूर्तियों को प्राथमिकता दें, और जो लोग मूर्तियां खरीदते हैं वे भी यह जरूर देखें कि गणपति बप्पा की मूर्ति किससे बनी है और किस देश में तैयार हुई है। प्लास्टर ऑफ पेरिस से बनी मूर्तियां बिल्कुल न खरीदें। साथियों, मिट्टी की मूर्तियां पूजा के बाद सहज रूप से पानी में विलीन हो जाती हैं। इससे हमारी नदियां, तालाबों और पर्यावरण की रक्षा होती है।

0: मूर्तियां पूजा के बाद सहज रूप से पानी में विलीन हो जाती हैं। इससे हमारी नदियां, तालाबों और पर्यावरण की रक्षा होती है, हमारी आस्था भी बनी रहती है और प्रकृति के प्रति हमारा दायित्व भी पूरा होता है। जब हम स्थानीय कारीगरों से मूर्ति खरीदते हैं, हम वोकल फॉर लोकल के संकल्प को मजबूत करते हैं। मुझे विश्वास है इस बार गणेश उत्सव में और ऐसे हर उत्सव में हम ऐसी सारी बातों पर जरूर गंभीरता से सोचेंगे और देश हित में कदम भी उठाएंगे। साथियों, हमारे देश की सबसे बड़ी शक्ति हमारे देश के लोग हैं। देश के अलग अलग हिस्सों में हो रहे छोटे बड़े प्रयास हमें बहुत कुछ सिखाते हैं। ये प्रयास बताते हैं कि जब मन में संकल्प हो और समाज का साथ मिले तो कोई भी बड़ा बदलाव लाया जा सकता है। आप अपने आसपास हो रहे ऐसे प्रयासों के बारे में मुझे जरूर लिखते रहिए, अपने विचार और अपने सुझाव भेजते रहिए। हो सकता है आपके आसपास की कोई छोटी सी पहल पूरे देश के लिए प्रेरणा बन जाए। अगले महीने हम फिर मिलेंगे, देशवासियों के कुछ नए प्रयासों की चर्चा करेंगे। तब तक आप अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए और हाँ, जल संचय तो करना ही करना है। बारिश के पानी की एक एक बूंद को हमें बचाना है। कैच द रेन, ये अभियान जरा भी ढीला नहीं होने देना है। तो मेरा खास आग्रह है, वर्षा का बूंद बूंद पानी हम मिलकर के बचाएं। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।
1: मन की बात आकाशवाणी के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी अपने मन की बातें साझा कर रहे थे। हम आपको बता दें कि माननीय प्रधानमंत्री के इस प्रसारण के बाद मन की बात के क्षेत्रीय भाषा में अनुवाद का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबद्ध प्रादेशिक केंद्रों से तथा संस्कृत भाषा में अनुवाद का प्रसारण आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज और FM गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज पर अभी किया जाएगा। मन की बात के क्षेत्रीय भाषाओं का पुनः प्रसारण आज रात 8 बजे आकाशवाणी के संबद्ध प्रादेशिक केंद्रों से और अंग्रेजी अनुवाद का प्रसारण FM रेनबो 102.6 मेगाहर्ट्ज पर किया जाएगा। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया।
2: सामिन, अभी मन की बात में वज़ीर आज़म हिंद जनाब नरेंद्र मोदी अपने ख्यालात का इजहार कर रहे थे। ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। मीडियम वेव 1071 किलो हर्ट्ज़, मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन AIR और DD फेडिश पर हमारी नशियात जारी हैं। और अब मन की बात का उर्दू तर्जुमा समाप्त कीजिए।
3: मेरे प्यारे हमवतनों, नमस्कार। मन की बात में एक बार फिर आप सबसे जुड़कर मुझे बेहद खुशी हो रही है। 2026 का निसफ साल गुजरने को है। इन 6 माह के दौरान हमने मन की बात में अहले वतन की बेशुमार कामयाबियों और हुसूल याबियों पर गुफ्तगू की है। जून के महीने में भी मुल्क ने ऐसी कई कामयाबियां हासिल की हैं जिन पर हर हिंदुस्तानी को फख्र महसूस होता है। ये कामयाबियां मुल्क की सलामती और खुद इन्हसारी से वाबस्ता हैं। हाल ही में मुझे कोलकाता में बहरिया से मुतालिक एक प्रोग्राम में शिरकत करने का मौका मिला। वहाँ INS दूनागिरी, INS संशोधक और INS आगरे को भारतीय बहरिया के बेड़े में शामिल किया गया। इन शिप्स की डिज़ाइन से लेकर मैन्युफैक्चरिंग तक सब कुछ मुकम्मल तौर पर स्वदेशी है। साथियों, जून ही के महीने में एविएशन सेक्टर में भी मुल्क ने एक बड़ी कामयाबी हासिल की। C-295 ये तैयारा मेड इन इंडिया है और C-295 तैयारी ने अपनी पहली परवाज कामयाबी से मुकम्मल कर ली है। ऐसे 40 तैयारे भारत ही में तैयार किए जा रहे हैं। इसमें MSME और एरोस्पेस सेक्टर को नई ताकत मिल रही है। रोजगार के मौके बढ़ रहे हैं

और आत्मनिर्भर भारत का आज़म मजीद मजबूत हो रहा है। इसी महीने डीआरडीओ ने मकामी तौर पर तैयार करदा लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल का भी कामयाब तजर्बा किया है। इसे डीआरडीओ की लेबोरेटरीज और इंडियन इंडस्ट्रीज पार्टनर्स ने मिलकर तैयार किया है। यानी आज समंदर से लेकर आसमान तक हमारा भारत पहले से ज़्यादा महफूज और खुदकफील बनता जा रहा है। साथियों, जून में एक और ऐसा प्रोग्राम मुनक्किद हुआ जिसमें पूरी दुनिया भारत की कोशिशों से जुड़ी और वो था बैनुल अक्वामी योम योग। इस बार दुनिया के 2500 से ज़्यादा मकामात पर योग के मुख्तलिफ प्रोग्राम मुनक्किद हुए। हमारे मुल्क में भी करोड़ लोगों ने जगह जगह योग प्रोग्रामों में हिस्सा लिया। इसी महीने अहमदाबाद में मुनक्किद होने वाले विश्व योगासन चैंपियनशिप की भी खूब चर्चा रही। इसमें भारत ने मजमूई तौर पर 114 तमगे हासिल किए, जिनमें 102 गोल्ड मेडल भी शामिल हैं। इस चैंपियनशिप की तमगों की फहरिस्त में भारत पहले मुकाम पर रहा। मैं तमाम फाते खिलाड़ियों को दिल की गहराइयों से बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। साथियों, किसी भी मुल्क की असल रूह उसके लोग होते हैं, और जब किसी मुल्क के लोग कोई अज़्म कर लेते हैं तो दुनिया की कोई ताकत उन्हें अपने मकसद से हटा नहीं सकती। मुल्क की तामीर में अवामी शिरकत की यही ताकत भारत का सबसे बड़ा सरमाया है, और इस अवामी ताकत का हम बार बार तजर्बा कर रहे हैं। साथियों, मगरबी एशिया में पैदा होने वाली जंगी सूरत हाल को देखते हुए मैंने अहल वतन से चंद गुजारिशात की थी। मैंने कहा था कि जहाँ तक मुमकिन हो कुछ अरसे के लिए गोल्ड यानी सोना खरीदने से गुरेज करें। मैंने लोगों से कहा था कि बैरून मुल्क छुट्टियाँ गुजारने से भी परहेज करें। मैंने कार पूलिंग को फ़रोग देने की अपील की थी और किसानों से दरख्वास्त की थी कि केमिकल से पाक खेती अपनाएं, अपनी ज़मीन को महफूज रखें और कुदरती खाद का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें। साथियों, मैं मुल्क के हर शहरी का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मेरी अपील को न सिर्फ कबूल किया बल्कि हर मुमकिन तआवुन भी किया। कई ख़ानदानों ने मुझे पैगाम भेजकर अपने तजर्बात भी शेयर किए हैं। बहुत से ख़ानदानों ने तय किया है कि इस बार घर की शादी में नया सोना नहीं खरीदेंगे, ज़रूरत पड़ी तो पुराने सोने को रिसाइकिल करके नए जेवरात बनवा लेंगे। बहुत से लोगों ने सोशल मीडिया पर यह भी लिखा है कि उन्होंने इस बार अपनी बैरून मुल्क सियाहत मुलतवी कर दी है। साथियों, कार पूलिंग के बारे में भी लोगों ने अपने दिलचस्प तजर्बात बयान किए हैं। जो लोग रोज़ाना एक ही समत में अपनी अपनी गाड़ियों से जाते थे, अब वह एक साथ सफ़र करने लगे हैं। लोग हत्तुल्मकान बस और मेट्रो का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिससे पेट्रोल और डीजल की बचत हो रही है। इसी तरह मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से कुदरती खाद के इस्तेमाल में इजाफे की खबरें भी आ रही हैं। साथियों, मुझे खुशी है कि इस ग्लोबल क्राइसिस का हम हिंदुस्तानी मिलकर मुकाबला कर रहे हैं। मुझे यकीन है कि अवामी शिरकत की यही ताकत हमें मजीद मजबूत बनाएगी और कामयाबी से हमकिनार करेगी। मेरे प्यारे हमवतनों, हमारे मुल्क में सालगिरह, शादी ब्याह और ख़ानदानी तकरीबात सिर्फ ख़ानदान का जश्न नहीं होती बल्कि पूरे समाज की खुशी बन जाती हैं। हर ख़ानदान चाहता है कि उसकी खुशियां दूसरों के साथ भी बांटी जाएं। इसलिए मेहमानों को तोहफे भी दिए जाते हैं। साथियों, महाराष्ट्र के नांदेड़ में एक ख़ानदान ने खुशियाँ बाँटने का ऐसा अनोखा तरीका अपनाया जो आज मौजूदा गुफ्तगु बन गया है। नांदेड़ के बहादुरपुरा गांव में पेठकर ख़ानदान रहता है। इस ख़ानदान ने सोचा कि अगर खुशियां बांटनी ही हैं तो ऐसी चीज़ दी जाए जो मुश्किल वक्त में किसी ख़ानदान का सहारा बन सके। अपने घर में शादी के मौके पर उस ख़ानदान ने गांव के तकरीबन 3500 अफराद के लिए हादसाती बीमा यानी एक्सीडेंट इंश्योरेंस का इंतज़ाम किया। हर फर्द को 1,00,000 रुपए का बीमा तहफ़ फराहम किया गया। इस इकदाम के पीछे जो जज्बा था वो इंतहाई मुतासर कुन है। ख़ानदान ने देखा था कि हादसात के बाद कई ख़ानदान शदीद माली मुश्किलात का शिकार हो जाते हैं, और ऐसे वक्त में मामूली सी मदद भी उनके लिए बहुत बड़ा सहारा बन जाती है। साथियों, हुकूमत भी मुल्क के करोड़ों ख़ानदानों तक तहफ़ की ढाल पहुँचा रही है। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत सिर्फ 20 रुपये सालाना प्रीमियम यानी सिर्फ एक साल के 20 रुपये का प्रीमियम, उस पर 2,00,000 रुपये तक का हादसाती बीमा फराहम किया जाता है। अब तक इस मंसूबे से 58 करोड़ से ज़्यादा लोग जुड़ चुके हैं, जिनमें तकरीबन 28 करोड़ हमारी माएँ, बहनें और बेटियां शामिल हैं।

हो सकता है फुटसाल का नाम आपके लिए नया हो। मैं आपको बताता हूं कि फुटसाल को इंडोर फुटबॉल भी कहा जाता है। इसमें हर टीम के सिर्फ 5 खिलाड़ी होते हैं और इसका मैदान आम फुटबॉल के मैदान से काफ़ी छोटा होता है। इसी वजह से खिलाड़ियों को बहुत तेज़ी से फैसले लेने पड़ते हैं और अपनी टेक्निक और स्किल का बेहतरीन इस्तेमाल करना पड़ता है। नागालैंड की वुमेन फुटसाल लीग हमारी बेटियों को अपनी सलाहियतें दिखाने का बेहतरीन मौके फराहम कर रही है। मैं शानदार इकदाम के लिए नागालैंड के अवाम की दिल से तारीफ करता हूं। ऐसे इकदाम मुल्क के दूसरे हिस्सों के लिए भी तहरीक और मिसाल बनते हैं। साथियों, ये टेक्नोलॉजी का दौर है। हर रोज़ नई रिसर्च हो रही है, नए नए AI इनोवेशन सामने आ रहे हैं। ऐसे वक्त में एक अहम सवाल ये है कि लोगों की क्रिएटिविटी को कैसे महफूज रखा जाए, नई टेक्नोलॉजी के साथ आगे बढ़ते हुए हम अपनी जड़ों से कैसे जुड़े रहें। इन सवालात का एक खूबसूरत जवाब नालंदा यूनिवर्सिटी ने तलाश किया है। हज़ारों साल कदीम हमारी नालंदा यूनिवर्सिटी आज एक नए रूप में भारत के मुस्तकबिल की तामीर कर रही है। 2 साल पहले मुझे नालंदा यूनिवर्सिटी के नए कैंपस का इफ्तिताह का मौका मिला था। इस यूनिवर्सिटी ने हमारे कदीम शास्त्रार्थ यानी इल्मी मनाजरे की रिवायत को दोबारा ज़िंदा किया है। शास्त्रार्थ सिर्फ अपनी बात कहने का ज़रिया नहीं है, बल्कि ये बहस मुबाहसे और गौर फिक्र का एक मुनज़्ज़म अमल है। इसमें दलील, हकायक और मजबूत इस्तेदलाल के साथ अपनी बात पेश करना ज़रूरी होता है और दूसरों के ख्यालात को तहम्मुल और एहतराम के साथ सुनना और समझना भी इसी अमल का हिस्सा है। मुझे खुशी है कि नालंदा यूनिवर्सिटी ने इस रिवायत को अपनी तकसीम असनाद तकरीब का हिस्सा बनाया है। इसमें शरीक होने वाले तकरीबन निसफ स्टूडेंट्स दूसरे ममालिक से आए थे। एक कदीम रिवायत को आज के दौर से जोड़ने की कोशिश नहायत काबिल तारीफ है। मैं इसके लिए नालंदा यूनिवर्सिटी को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ और मुल्क की दीगर यूनिवर्सिटियों से भी दरख्वास्त करता हूँ कि वो भी ऐसी पहल पर ज़रूर गौर करें। साथियों, अपनी जड़ों से जुड़े रहते हुए नौजवानों को नई टेक्नोलॉजी के लिए तैयार करने की एक और बेहतरीन कोशिश भी हो रही है। दिल्ली में वाक़ सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डाटा साइंस में BTech प्रोग्राम शुरू करने जा रही है। ये जदीद टेक्नोलॉजी को भारत की रवायती इल्म के साथ जोड़ने की सिमत में एक नहायत अहम कदम है। इससे भारतीय जबानों के लिए नए AI टूल्स तैयार करने में मदद मिलेगी और हमारे कदीम ग्रंथों और मखतूतात को डिजिटल शक्ल में महफूज करने के काम को भी नई रफ्तार हासिल होगी। मैं सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी के इस अहम इकदाम के लिए बहुत बहुत मुबारकबाद और नेक ख्वाहिशात पेश करता हूँ। साथियों, आज भारतीय सकाफत दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों तक पहुँच रही है। हमारे गीत, मौसीकी और रूहानियत को दुनिया भर के लोग जान रहे हैं और अपना रहे हैं। भारत से हजारों किलोमीटर दूर कैरेबियन समंदर में डोमिनिकन रिपब्लिक नाम का एक मुल्क है। वहाँ भारतीयों की तादाद तकरीबन 100 है, बल्कि शायद इससे भी कम हो। इसके बावजूद वहाँ भारतीय सकाफत और रूहानियत से मुतालिक एक नहायत खूबसूरत कोशिश जारी है। वहाँ स्पेनिश बोलने वाले चंद लोगों ने एक टीम बनाई है जिसका नाम ब्रह्म कमल डोमिनिकाना है। इस टीम के अराकीन मिलकर वैदिक अदब का मुताला करते हैं और वैदिक मंत्रों का सही तलफ्फुज़ भी सीख रहे हैं। उन्हें इसकी कोई फॉर्मल ट्रेनिंग हासिल नहीं हुई, लेकिन उन्होंने सिर्फ ऑडियो रिकॉर्डिंग्स सुनकर वैदिक मंत्रों का दुरुस्त तलफ्फुज़ सीख लिया है। आज वो पुरुषोक्तम, श्री सुक्तम, श्री रुद्रम, दुर्गा सुक्तम और देवी महात्म्यम समेत कई वैदिक मंत्रों का नहायत अच्छे अंदाज में जाप कर रहे हैं। भारत से इतनी दूर रहकर हमारी रिवायत को सीखने की उनकी कोशिश बहुत बाइज़ तरगीब है। मैं ब्रह्म कमल डोमिनिकाना के तमाम अराकीन को इनकी इस काविश पर दिल से मुबारकबाद देता हूँ और दुनिया भर में भारतीय सकाफत को मकबूल आम बनाने के लिए सरगर्म अमल तमाम अफराद की भी दिल की गहराइयों से तारीफ करता हूँ। मेरे प्यारे हमवतनों, मेघालय अपनी खूबसूरत वादियों, बादलों और कुदरती मनाजिर के लिए मशहूर है। जो भी मेघालय जाता है उसे वहाँ के लोगों की मोहब्बत और अपनाइत लंबे अरसे तक याद रहती है। लेकिन मेघालय की एक और ऐसी खासियत है जिसका जिक्र मैं आज मन की बात में ज़रूर करना चाहता हूँ। यह है मेघालय की रूट ब्रिज, रास्ते वाला रूट नहीं, जड़ों वाला रूट। इन रूट पर ब्रिजों की कहानी इंतहाई दिलचस्प है। ये ब्रिज चंद दिनों या चंद वर्षों में नहीं बनते, बल्कि इन्हें तैयार होने में कई कई दहाइयाँ लग जाती हैं।

रबर के दरख्तों की जड़ों को आहिस्ता आहिस्ता एक मखसूस सम्त दी जाती है और उन्हें पानी की धार के एक किनारे से दूसरे किनारे तक ले जाया जाता है। वक्त गुजरने के साथ यही जड़ें एक मजबूत ब्रिज की शक्ल इख्तियार कर लेती हैं। इन ब्रिजों की एक और हैरत अंगेज खसूसियत यह है कि जिंदा ब्रिज हैं। जूं जूं वक्त गुजरता है ये मजीद मजबूत होते जाते हैं। इन ब्रिजों में मेघालय के लोगों की तख्लीकी सलाहियत, सब्र, मेहनत और फितरत के लिए गहरा एहतराम साफ झलकता है। यह हमें सिखाते हैं कि इंसान अगर कुदरत के साथ हम आहंग होकर काम करे तो कितनी हैरत अंगेज शाहकार तख्लीक कर सकता है। यह हमारी सरजमीन और हमारे मुल्क का एक कीमती वर्षा है। अब भारत ने मेघालय के रूट ब्रिज को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट नेटवर्क में शामिल कराने के लिए दरख्वास्त भी पेश कर दी है। साथियों, क्लाइमेट चेंज की वजह से मेघालय के इन रूट ब्रिज को भी कई तरह के चैलेंजेस का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे वक्त में मेघालय के लोगों ने इस कुदरती विरासत के तहफ्फुज की जिम्मेदारी नहायत अहसन अंदाज में निभाई है। एक वक्त ऐसा था जब ये मालूम करना भी आसान नहीं था कि ऐसे ब्रिजों की तादाद आखिर कितनी है। चुनांचे मकामी लोगों ने खुद उनकी गिनती शुरू की। इसके बाद मुख्तलिफ बिरादरियों ने इन ब्रिजों की देखभाल की जिम्मेदारी भी अपने हाथ में ले ली। आज मकामी लोग 120 से ज़्यादा रूट ब्रिजेस की हिफाजत और निगहदाश्त कर रहे हैं। कुछ टीमें हर साल इन ब्रिजों की हालत का जायज़ा लेती हैं, जबकि बाद लोगों ने इनके आसपास के इलाकों को महफूज और मजबूत बनाने के लिए नर्सरी भी तैयार की है। इस तरह इन ब्रिजों के तहफ्फुज़ के लिए एक मुकम्मल इकोसिस्टम वजूद में आ चुका है। आपने देखा होगा कि साल हेलीवारजी को पद्म अवार्ड से भी सरफराज किया गया है। उन्होंने अपनी ज़िंदगी के 50 से ज़्यादा बरस इन रूट ब्रिजेस की हिफाजत और देखभाल के लिए वक्फ कर दिए। उनकी खिदमत और लगन हम सब के लिए बायस तरगीब है। साथियों, अगर आपने कभी इन रूट ब्रिजेस की सैर की हो तो उनकी तस्वीर ज़रूर सोशल मीडिया पर शेयर कीजिए। आपकी तस्वीर दूसरे लोगों को भी मेघालय के इस मुनफरिद व कुदरती विरासत को जानने और देखने की तरगीब देंगी। मेरे प्यारे हिम्मतों, हम सब चाहते हैं कि हमारा गांव साफ सुथरा हो, हमारा शहर खूबसूरत नजर आए। लेकिन शायद ही कभी हम रुककर ये सोचते हों कि हमारे आसपास जमा होने वाले कचरे को आखिर साफ कौन करता है। ज़्यादातर लोग यही समझते हैं कि ये किसी और की जिम्मेदारी है, वही आकर सफाई करेगा। लेकिन हमारे दरमियान कुछ ऐसे लोग भी हैं जो अपनी सोच और अमल से हम सबको नई राह दिखाते हैं। मुझे मध्य प्रदेश के ज़िला राजगढ़ के ब्यावरा शहर की चंद बहनों के बारे में जानने का मौका मिला। उन्होंने अपने इर्द गिर्द फैले हुए प्लास्टिक के कचरे को ख़त्म करने का आज़म किया। उन्होंने ये इंतज़ाम नहीं किया कि कोई और आकर तब्दीली लाए, बल्कि खुद ही पूरे शहर से प्लास्टिक का कचरा और खाली बोतल जमा करना शुरू कर दी। आहिस्ता आहिस्ता ये मुहिम वसी होती गई और फिर इस प्लास्टिक को ईको ब्रिक्स में तब्दील किया जाने लगा। आज इन्हीं ईको ब्रिक्स का इस्तेमाल अवामी मकामात को खूबसूरत बनाने में किया जा रहा है। राजगढ़ में गुज़श्ता चंद महीनों के दौरान सैकड़ों किलो प्लास्टिक को रिसाइकिल करके मुफीद इस्तेमाल में लाया गया है। यानी जो प्लास्टिक पहले आलूदगी फैलाता था, आज इन्हीं बहनों की मेहनत से शहर की खूबसूरती में इजाफा कर रहा है। मैं ब्यावरा की तमाम बहनों और इस मुहिम से वाबस्ता तमाम साथियों को दिल से मुबारकबाद पेश करता हूँ। मेरे प्यारे हमवतनों, मुझे बहुत से लोगों ने खतूत लिखकर एक ख़ास मौजू पर बात करने की दरख्वास्त की है और वो मौजू गणेश उत्सव से मुतालिक है। अगरचे गणेश उत्सव में अभी काफ़ी वक्त बाकी है, लेकिन लोगों ने कहा कि इस पर अभी से गुफ्तगू होनी चाहिए, क्योंकि गणेश जी की मूर्तियाँ बनाने का काम बहुत पहले शुरू हो जाता है और इनके बनाने वाले फनकार और उनसे वाबस्ता कारोबारी लोग अभी से सरगर्म हो जाते हैं। इसलिए मेरी आप सबसे एक दरख्वास्त है, आप कोशिश करें कि आपके घर, सोसाइटी या आसपास जहां भी गणपति बप्पा की मूर्ति नस्ब की जाए, वो हमारे अपने मुल्क की मिट्टी से बनी हो और इसे हमारी मकामी कुम्हारों और फनकारों ने अपने हाथों से तैयार किया हो। जो लोग गणेश जी की मूर्तियां बनाते हैं, उनसे भी मेरी अपील है कि वो मिट्टी की मूर्तियों को तरजीह दें, और जो लोग मूर्ति खरीदते हैं वो भी ज़रूर देखें कि गणपति बप्पा की मूर्ति किस चीज़ से बनी है और किस मुल्क में तैयार की गई है। बराह करम प्लास्टर ऑफ पेरिस से बनी हुई मूर्तियाँ हरगिज़ ना खरीदें। साथियों, मिट्टी की मूर्ति इबादत के बाद आसानी से पानी में तहलील हो जाती है, जिससे हमारी नदियाँ, तालाब और माहौल महफूज रहते हैं। इस तरह हमारी आस्था भी बरकरार रहती है और फितरत के प्रति हमारी जिम्मेदारी भी पूरी होती है। जब हम मकामी फनकारों से मूर्ति

अभी आप सुन रहे थे समवेत स्वरों में देशगान। ये आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है। प्रस्तुत है बच्चों के लिए उनका साप्ताहिक कार्यक्रम बाल गोपाल।

0: फिर आवा रविवार, हम हैं लइके तैयार, आपन पंजन का मन पसंद कार्यक्रम बाल गोपाल।
1: आज आपके साथे हैं
0: हम श्रेया त्रिवेदी
1: और हम राजलक्ष्मी दीदिया। सब बाल गोपालन का हमार
2: जय हिंद।
1: कार्यक्रम में सब बाल गोपालन के स्वागत है। बिटिया आप तो स्कूल खुले वाले होंगे।
0: जी दीदिया, 2 दिन बचे हैं। छुट्टी के दिन तो ऐसे फुर हो गए जैसे चिड़ई। दीदिया कितना नीक होत अगर ई दिन हमते पूछती, बिटिया हम जाई की रही।
1: तब तो कोनो बाल गोपाल इनका जावे ना देत। यही ते समय का बलवान कहा गया है। ई को के रोके ना रुकत है, ना आवत है, ना जावत है। ई अपन गति से चलत रहत है। तो जौन समय जैस है वही का वैसे जियो और बढ़िया ते नीके ते गाय बजाय के खुशी से बितावे चाहे।
0: जी दीदिया, मुला कितना नीक रहे अगर हमहू चिड़ई बन के समय की नाई उड़ी जाए। और तब तो हमका ना स्कूले जाए का परत, ना और कौनो कारज करे का परत।
1: तो चलो बिटिया, दुई दुई पंख लगाए के उड़ चली।

0: वाह दीदिया, का नीक गव नहीं सुनवायो। सच्ची अगर ऐसन हुई जात तो कितना नीक रहे। हमार जौन मन हुई उ करे का मिले, तब तो आनंद आए जाए।
1: बात तो तुम्हारे ठीक है बिटिया, मुला ई जौन नियम कानून बनाए जात है वो हमारी भलाई के बनाए जात है। सोचो अगर अम्मा कहे आज हमार मन खाना ना बनावे के, हम तो परिके सोइबे, तो का हुई।
0: ई तो है दीदिया, फिर तो हम पंचे सगरे दिन भूखे रह जाइबे।
1: हाँ वह तो सौ के सीधी एक बात, जहिका जौन काम करे का है वो आपन कारज नीके ते करे, मन लगाए के करे, तो सगरे जन हंसी खुशी रही है, कौनो मन मुटाव ना रही।
0: जी दीदिया, मतलब मन उकेरना जरूरत के तई काम करे का है। तो अब हमहू पंचे आपन बस्ता ड्रेस सब तैयार करी के नीके ते रख ले, काहे ते अब हमार तो काम तो पढ़े लिखे का है।
1: बिल्कुल बिटिया, जब हम आपन पढ़ाई लिखाई शुरू करी थे तो सबसे पहले विद्या की देवी सरस्वती मैया का सुमिरन करी थे, तो यही का ध्यान में धरी के आज हम आपन बाल गोपालन का सुनवावे जाए रहे हैं ई सरस्वती वंदना। तो सब बाल गोपाल सुनो यही का।
2: मेरा नाम उर्जिता शुक्ला है, मेरे पिता का नाम डॉक्टर सूर्य प्रकाश शुक्ल है, मैं बिस्मा सीतापुर में कक्षा 4 में पढ़ती हूँ। मैं आप लोगों के समक्ष पंडित सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा रचित सरस्वती वंदना प्रस्तुत कर रही हूँ।

0: दे।
1: का बात है दीदिया, ओजिता शुक्ला तो बहुते नीक सरस्वती वंदना सुनाई।
2: तो बिटिया पढ़ो लिखो और ध्यान लगाए के सगरे काम करो और मुला साथे माँ खेलो कूदो भी। काहे ते खेले कूदे ते तन मन दोनों सुस्त रहती है।
1: जी दीदिया, सच्ची कहे हो। दीदिया हम तो आपका याक बात बताओ भूल गए।
2: कौन बात बिटिया?
1: दीदिया अब की छुट्टिन माँ हमरी अजिया कपड़न केर बहुते सुंदर गुड्डा गुड़िया बनाइन रही। हम पंचे उनकेर बारात भी करिन रही।
2: अरे वाह, हमरी वजिया हम पंचन की तई धोतीन केर गुड़िया बनौती रही, उनकी तई कपड़ा गहना सब बनौती रही। बिटिया हम पंचे तो यह सगरे खेल खेलित रही, गुड़िया गुड्डा गोट्टा सकरी सही तल्ला घोड़ी चुम और चुक चुक चलनी जैसन खेल खेलत रही। तब मोबाइल केर तो खेल रहा है ना, और ना इतने मेल के खिलौना रहा है।
1: आज काल तो तमाम मेल के खिलौना है, रिमोट ते चले वाले, चाबी ते चले वाले।
2: वाह बात बिटिया, अब तो बहुत तई के खिलौना है। जैसे हम अपन गाँव जवारी माँ खेले जाए वाले खिलौनन के बारे में बताएं, वैसे हमारे देश में अलग अलग जगहन में मेल मेल के खिलौना बनत हैं और खेले जाते हैं।
1: अच्छा दीदिया,
2: हाँ बिटिया, और यही विचारन पर आधारित याक कहानी लिखी है गौरी शंकर वैश्य दादा, जो भारत के पारंपरिक खिलौनन के महत्व पर केंद्रित है। तो सगरे बाल गोपाल सुने ये कहानी खिलौनन की दुनिया।
3: शहर का संकरी गलियन और ऊंच ऊंच इमारतन माँ एक मकान माँ दो भाई बहन रहत रहे, राघव और माया। राघव 8 वर्ष के और माया 6 वर्ष के। राघव खुश होकर कहे लगा, ए आज तो स्कूल बंद, छुट्टियां शुरू, अब गेम क्यार मजा ले। पूरा दिन सुपर रेसिंग और ड्रैगन बार खेली, वो मोबाइल उठाए लीस और धम ते सोफा पर बैठ गया। मायो टीवी क्या रिमोट उठाए लीस और चैनल बदलते भाई कहे लग, भैया आज जंगल के दोस्त का नवा एपिसोड आई और वही के बाद परी की दुनिया। हम तो आज पूरा दिन ही बैठी, तब है अम्मा आवाज लगाईं, राघो माया। हाँ अम्मा, दोनों बोल पड़े। अम्मा बोली, तुम्हारी नानी के यार फोन आवा रहा है, यह बेर के छुट्टी माल तुम लोगन का। नाना नानी कह रहे यहाँ शिवपुर गांव चले खाए, परसों बिहान के बस्ते चला जाई। राघो मुंह बिचकावत भाया कहिस, अरे अम्मा गाँव में न तो मोबाइल का नेट ठीक तक चलत है और न टीवी पर अच्छे चैनल आवत है। माया बोली, हाँ अम्मा हुआ गर्मी बहुत लागत हुई। अम्मा प्यार से समझाए कहें, अरे बच्चा नाना नानी कब तक तुम लोगन का राह देख रहे हैं, वे चाहत हैं कि तुम लोग छुट्टी में हुआ आवो, चलो अब तैयारी करो। 2 दिन बाद धूल धक्कर वाली सड़क पर बस आए के रुकी। राघव और माया उतरे तो सामने हरियर खेत और आम का बगिया देख पड़ी। आगे थोड़ी दूर एक बड़का आधा कच्चा और आधा पक्का घर दिखा, वही के द्वारे पर नानी खड़ी रहे। देखते नानी कहीं, आए गयो मोर लल्ला और मोर प्यारी गुड़िया, कितने दिन बाद आए हो तुम लोग। इतना नाना भी बाहर आए गए, सफेद दाढ़ी मूछ कांधे पे गमछा, बिल्कुल वैसन जैसे राघव और माया परी कथन किताबन माँ दादा नाना देखिन रहे। वही दोनों बच्चन का गले लगावत भाई कहीं, तुम दोनों तो अब बहुत बड़े हो गए हो। तब ही घर के भीतर थे मामी के 2 बच्चा दौड़त आए, पुनीत 5 वर्ष का और रेखा 7 वर्ष की है। रेखा बड़े उत्साह से बोली, अरे वाह राघव भैया और माया दीदी आए गए। मामी प्यार से पूछिन, बच्चा का प्या हो? गन्ने का रस छाछ की लस्सी। माया और राघव एक संग बोल पड़े, गन्ने का रस। मामी देखिन कि दोनों बच्चा उदास हैं, वे पूछिन, का बात है बच्चा, बोर हो रहे हो? माया कहिस, हाँ मामी यहाँ फोन में नेटवर्क नहीं आवत है और बिजली नहीं है, तब हम खेलिब कैसे? रेखा कहिस, तो का भवा दीदी खिलौना तो है? माया चौंकत भे पूछिस, खिलौना कौन खिलौना? रेखा बोली, अब हैं दिखाई थे और अपन खिलौनन के टोकरी उठाए लाई। ई देखो मोर रंग बिरंगी गुड़िया सलोनी। वह गुड़िया के प्यार ते गले लगाए लिहिस। माया कुतूहल से भर गए, अरे वाह यह की ओढ़नी कितनी लाल और चमचमात है और ये गुड्डा तो बहुत ही सुंदर है, सिर पर पगड़ी बांधे है। रेखा खुश हुई के और खिलौना दिखावे लाग, ये रसोई के सामान है, चूल्हा भगौना कड़ाही करछुल बेलन चिमटा लोटा और थारी। और ये का है? माया पूछिस, दीदी ये गाय बछड़ा चिड़ैया भोपा गाड़ी बंदर सिकठानी मोर शेर और कबूतर है। माया खिलखिलात भय कहिस, ई सेठ सेठानी तो कितने बढ़िया ढंग से अपन सिर हिलावत हैं, बहुत ही नई खिलौना है। तब तक पुनीतो अपन खिलौना ला चुका रहा है, वह एक एक कह के दिखावे लाग, ई बैलगाड़ी ई पिपहरी ई घड़घड़ा ई कुर्सी मेज ई फिरकी ई रेहड़ू और ई लट्टू। राघव पूछस, ई सब खिलौना बहुत रंग बिरंगे और सुंदर है, कौन चीज ते बने हैं? पुनीत बताए।

इस भैया इस सब लकड़ी के बने हैं। ये देखो रिक्शा साइकिल कार तोता ट्रक सीटी तितली गेंद बल्ला गदा और झुंझुना। राघव पूछे पुनीत भैया का कागजों क्या कोई खिलौना ख्याल रखे हो? हाँ ये देखो फिरकी कागज के नाव टोपी हवाई जहाज चिड़ैया सिपाही दरोगा कनकैया कागज की नाव पानी में तैराए के टोपी पहन के और हवाई जहाज का हवा में उड़ाए के बड़ा मजा आवत है। इतने में नानी भी आ गई बच्चन का एक संग बैठ देख कहिन ई का गुपचुप खिचड़ी पक रही है। रेखा कहिस अरे दादी राघव भैया और माया दीदी का अपन खिलौना दिखाए रहे हन। नानी मुस्कुराई अच्छा माया दौड़ के नानी लगे आई और गले लग के पूछिस ई गुड़िया गुड्डा का आप ही बनाए रहो? रेखा दीदी कह रही रह नानी कहिन हाँ बिटिया नानी का अपने बचपन में आपो खिलौना ते खेलती रहो? माया पूछिस हाँ बिटिया हम तो बचपन में अपने हाथे ई सब बनाए लेते रहे रहमान काका कपड़ा सिलत रहे उनके लगे रंग बिरंगा कपड़ा के कतरन मिल जाते रहे कपड़ा में ऊन रुई फोम और मकई के छिलका भर के सिल देते रहे और रंग बिरंगा गुड्डा गुड़िया बनाए लेते रहे मुर्गी हाथी और घोड़ा रंगीन झिल्ली में भूसा और पत्ती भर के बनाते रहे। नानी बड़े प्यार से समझाइन तब है नाना जी आए गए वही ढेर सारी लीची जामुन आम और तरबूज लाए रहे खिलौना देखे कहिन अरे इतने सारे खिलौने? तब राघो बैलगाड़ी हाथ में लेके नाना लगे पहुंचा और बोला नाना जी इस सुंदर लकड़ी खिलौना कहाँ मिली है? नाना मुस्कुराइन ये मनोहर काका बनावत हैं लकड़ी खिलौना वो बहुत बढ़िया बनावत हैं उनका घर गाँव में यहाँ है। माया पूछिस नाना और कौन कौन खिलौना थे यहाँ क्यार बच्चा खेलत हैं? नाना बताइन यहाँ बच्चा घर का सामान तेने तरह तरह के आर खिलौना बनाए लेते हैं जैसे खाली डिब्बा टूटा रिमोट और साइकिल के पुराना रिम या टायर और लकड़ी का पहिया। राघव उत्सुक क्या पूछिस इनते खेलत कैसे हैं? नाना कहिन बच्चे टायर रिम का लकड़ी ते ठेल ठेल आगे बढ़ावत जात हैं और वही के पीछे दौड़त रहते हैं। ई सुनते राघव कहिस तब तो हमहू बाहर खेले। नाना हंस के बोले अच्छा हम तुम्हारे बद पुरान टायर खोज देब। माया कहिस नाना तब तो और मजा आई यहाँ कितने बढ़िया और सस्ते खिलौना है बाहर भी खेले के बहुत जगह है। नाना कहिन हाँ बिहान सांझ बच्चा खूब धमा चौकड़ी बचावत हैं छुट्टी में तो घर में टिकते नहीं तुम लोग शहर में बस मोबाइल और टीवी में लगे रहते हो यही से न दौड़ भाग हो पावत है और न दूसरन के बात कह पावत हो मोबाइल का नीरी रोशनी आँखिन के यहाँ नुकसान भी बहुत पहुँचावत है। राघव पूछिस तो ई खिलौना ते का फायदा होते है? नाना बड़े प्रेम से समझाइन ई खिलौना शरीर का कसरत करावत है बच्चन के यहाँ जीवन के अनुभव मिलत है यही ते शरीर और मन दोनों के यार विकास होते है। माया कहिस नाना जी हमका इतने सारे खिलौना कहाँ मिले हैं? नाना बोले अरे बिटिया बहुत ही नीक बात याद दिलायो आज अपने गांव के बाजार लाग है हुआ खिलौनन के बहुत ही दुकान लगती हैं चलो हुआ ते आपन मन पसंद के यार खिलौना खरीद लियो। ई सुनते खन दोनों बच्चा खुशी ते उछल पड़े और बाजार खातिर तैयार हो गए। बाजार में खूब सजी धजी दुकानें लगी रहें जिनमें खिलौने के अलग ही कतार रहे उनका देख बच्चा बहुत ही खुश भय। नाना जी दुकान दिखावत भय कहिन ये मनोहर के दुकान है यहाँ सब लकड़ी के खिलौना मिलत हैं। राघव कहिस अरे वाह छोटे बड़े कितने खिलौने मन करा थे कि सब खरीद लेगी। नाना कहिन अभय देख लो जो उन बताओ तो उन ले लियो। आगे बढ़े तो मिट्टी क्यार रंग बिरंगे खिलौना सजे रहे हैं ऊका देखते माया खुशी से उछल पड़ी नाना ये रामदीन की दुकान है वही मिट्टी की बहुत बढ़िया बढ़िया खिलौना रंग बिरंगे बनावत हैं जौन खिलौना पसंद हो ले लियो। माया और राघव दोनों लकड़ी और मिट्टी के बहुत सारे खिलौना खरीदिन। थोड़ा आगे एक दुकान पर बच्चन के भीड़ लगी रहा है राघव पूछिस नाना हिया का है? नाना बताइन ई चंपा ताई की दुकान है ई कठपुतली नचाए रही हैं और गाय गाय के बेचती भी हैं। चंपा ताई गाय रही रहे गुलाबो खूब लड़ी सिताबो खूब लड़ी गुलाबो खूब लड़ी सिताबो खूब लड़ी ई दोनों की लड़ाई है बड़ी निराली एक है गोरी एक है काली गुलाबो खाए पिज्जा बर्गर सिताबो खाए चावल कढ़ी कहे गुलाबो करूँ मैं खर्चा और तू है कंजूस बड़ी गुलाबो खूब लड़ी सिताबो खूब लड़ी गुलाबो खूब लड़ी सिताबो खूब लड़ी। राघव बोला वाह बड़ा मजेदार खिलौना है रंग बिरंगी कठपुतली उठाए पूछिस ये कैसन खिलौना है ये ते खेला कैसे जाते है? नाना कहिन आओ चंपा ताई ते पूछ लीन जाए। चंपा ताई कहिन कठपुतली अंगुरंत खेले वाला खिलौना है यही का धागा

0: अंगुरी में बांध कर ऊपर नीचे करा जाते है, तो ये कठपुतली नाचत जैसन लगती है। राघव कहिस, ये तो बहुत मजेदार खिलौना है, हम हो दूध दे दो। फिर नाना जी सबका गरम गरम जलेबी, मटर के चाट और बर्फ का गोला खाइन। घर लौट के दोनों बच्चे बड़े उत्साह थे, नानी और मामी का आपन सब खिलौना दिखाइन। मामी मुस्कुराई, सचमुच बड़े सलौने खिलौने हैं, हमारो ख्याल है क्यार बड़ा मन करे लाग। नानी मुस्कान भे, पूछिन बच्चा अब मोबाइल और टीवी याद आवत है कि नहीं? दोनों एक साथ बोल भरे, नहीं नानी एको बार याद नहीं आवा। नानी बोली, तब ठीक है, ये झोला भर खिलौना अपने संगे ले जाओ और दोनों जने खेलो, मोबाइल के लतो छूट जाई और पढ़े में खूब मन लागी। देखत देखत 5 दिन बीत गए, उतने में अम्मा कहिन, अब काल हमका वापस शहर चलाक है। ये सुनते दोनों बच्चन क्यार मन झूर हुई गवा। माया बोली, अगली छुट्टी में फिर नाना नानी घर जरूर आई। नानी दोनों का गले लगाओ भय कहिन, हाँ बच्चा जब लंबी छुट्टी पर है तो जरूर आयो, हमारो तुम लोगों ने देखे क्यार बड़ा मन करत रहा थे।
1: वाह दादा वाह, बहुत नीक कहानी सुनायो, यही कहते ही आपके बहुत बहुत धन्यवाद।
2: अबे बाल गोपाल सुनी कहानी खिलौनन की दुनिया गौरी शंकर वैश्य दादा थे। श्रेया बिटिया सुनो, आपन गौवा देश में कितने मेल के खेल रहे हैं। जी धीरे धीरे लड़का भूलत जा रहे हैं, तो ये कहानी थे हमका यह सीखे का मिला कि हम पंचे आपन जड़न ते जुड़े रही।
1: जी दीदिया, जब हम आपन जड़न ते जुड़ीबे तबे तो हम मजबूत बनीबे।
2: तो हम पंचन का मजबूत बने का है, मुश्किलन ते घबराए का ना है।
3: आओ आओ हो नहारो प्यारे बच्चे, उम्र के कच्चे बात के सच्चे, जीवन की एक बात बताऊं, जीवन की एक बात बताऊं, मुसीबतों से डरो नहीं, बुजदिल बन के मरो नहीं, रोते रोते क्या है जीना, नाचो दुख में तान के सीना, नाचो दुख में तान।

0: दीदिया बहुते नीक गवनई रही, बहुते आनंद आवा और बहुत कुछ सीखे का भी मिला।
1: बिटिया आशा करित है हमार बाल गोपालन का भी ई नीक लाग हुई है और अब मिल ली।

0: जाए अपने एक नन्हे साथी थे।
1: जी दीदिया।
0: बाल साथियों, आज हमारे साथ हमारे एक नन्हे दोस्त आए हुए हैं, तो इन्हीं से जानते हैं इनका नाम क्या है और ये आज हमें क्या सुनाएंगे। आपका नाम क्या है?
2: मेरा नाम व्योम है।
0: आप किस कक्षा में पढ़ते हो?
2: मैं कक्षा 7 में पढ़ता हूँ।
0: व्योम, आपको पढ़ने के अलावा और क्या करना अच्छा लगता
2: है? मुझे पढ़ने के अलावा कभी कभी खुद से लिखना अच्छा लगता है, किताबें पढ़ना अच्छा लगता है, घूमने जाना अच्छा लगता है।
0: अरे वाह, क्योंकि आजकल ज्यादातर बच्चे मोबाइल में लगे रहते हैं। आपको पढ़ना लिखना अच्छा लगता है, ये जानकर बहुत अच्छा लगा। तो आपने कुछ लिखा है क्या हमें सुनाने के लिए?
2: जी, मैंने कविता लिखी है।
0: सुनाइए।
2: सुनाता हूँ आपको नानी की कहानी। बात तब की है जब छोटी थी मेरी नानी। एक था तोता, एक मैना थी, एक था बाज और एक कोयल थी, एक गरुड़ था, एक गुलाबी बतख थी। जंगल घना था, जानवरों से भरा था, नदियाँ साफ पानी से लबालब थी, तालाबों में मछलियाँ गोते लगाती, पेड़ों से हरियाली थी, खेतों में फसलें थी, खुशबू से भरी हवा थी, जुगनुओं से भरी रातें थी, महुए के सौंधी खुशबू वाला हलवा था, बेरी का चूरन और बोड़िया के बाल थे। और मेरी कहानी मैं क्या बताऊं? एक कमरा है, एक टीवी है, एक बुक है, एक मोबाइल है, एसी की हवा है और फ्रिज का पानी है। मुझे तो लगता है कि मुझसे अच्छी तो मेरी नानी है। मेरी बातों से सुंदर मेरी नानी की कहानी है। मेरी बातों से सुंदर तो मेरी नानी की कहानी है।
0: अरे वाह, व्योम ने बहुत अच्छी कविता सुनाई। तो व्योम, आपको नानी के यहाँ जाना अच्छा लगता है?
2: जी।
0: कितना अच्छा लगता है?
2: बहुत अच्छा लगता
0: है। और नानी कहानी सुनाती है कि नहीं?
2: हाँ, बिल्कुल सुनाती हैं।
0: तो भाई, व्योम को नानी के यहाँ जाना अच्छा लगता है, कहानी सुनना अच्छा लगता है। और आपने क्या क्या लिखा है?
2: और मैंने कई सारे मतलब फिक्शनल चीजें लिखी हैं, अपने पसंद की चीजें लिखी हैं, और कभी कभी तो मुझे हिस्ट्री भी पढ़ना अच्छा लगता है, तो
0: उसको भी लिखा है। बहुत अच्छा। तो आप बड़े होकर क्या बनना चाहते हो?
2: मैं बड़े होकर एक जर्नलिस्ट बनना चाहता हूँ।
0: अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। यानी आप खबरें खोज खोज कर लाएंगे और हम तक पहुँचाएंगे, है ना?
2: जी हाँ, बिल्कुल।
0: तो आप जो चाहते हैं वो आप बनिए, ये हमारी शुभकामना है। और आप कार्यक्रम में आए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: दीदिया, व्योम केर कविता तो बहुत ही बढ़िया रही।
0: हाँ बिटिया, हमार बाल गोपाल बहुत ही गुनी है, यही कविता का व्योम खुद ही लिखे रहे।
1: अच्छा दीदिया, ये तो बहुत ही नीक बात है। दीदिया, अब का सुनवाइयो?
0: अब बत कही कर लीन जाए आवे वाले दिनन माँ, परे वाले दिवसन केरी।
1: बिल्कुल दीदिया, तो हम बताई 1 जुलाई का हम पंचे राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस मनाई बे।
3: डॉक्टर डॉक्टर डॉक्टर
0: ये दिन डॉक्टरन केर सेवा त्याग समर्पण की तई उनका धन्यवाद दे की खातिर मनावा जाते है। डॉक्टर धरती पर भगवान के स्वरूप होते है। बिटिया, 1 जुलाई का एक दिवस और मनावा जाये।
1: ऊ कौन सा दिवस है दीदिया?
4: डाकिया डाक लाया, डाकिया डाक लाया।
0: राष्ट्रीय डाक कर्मचारी दिवस।
1: अच्छा, ई दिवस काहे मनावा जात है?
0: बिटिया, पहले के जमाने में जब मोबाइल फोन जैसन उपकरण ना रहे, तब चिट्ठी पाती मनी आर्डर चलत रहे। हमका कौनो संदेशा को का देख होत रहे तो पाती लिखी जात रही, जल्दी है तो तार भेजे जात रहे, अगर को का पैसा भेजक होत रहे तो मनी आर्डर कीन जात रहे। ई सगरे काम डाक विभाग के कर्मचारी करत है। आज काल भी बहुत सारे काम ईजन करत है, तो इनका सम्मान करे की तई, इनका आभार देखते ई दिवस मनावा जात है।
1: दीदिया, अब हमरे पास एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है।
0: का जानकारी है बिटिया?
1: दीदिया, 3 जुलाई का अंतरराष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस मनावा जाये।
0: बिल्कुल सही बताया बिटिया, आज उकाल जहाँ देखो वहाँ प्लास्टिक दिखाई पड़त है। हमका याद है बिटिया, जब हम मंचे छोट रही तो हमारी अजिया घर में जो बचे खुचे कपड़ा रहती रहे और थोड़ा मोट मोट कपड़ा रहती रहे, उनते बहुत ही निक निक झोरा घर में सिलती रही। हम पंचन का कोनो सामान लेके होत रहे तो उठावा झोरा और लयान, बोला आज उकाल सगरा सामान प्लास्टिक का झोरा में आवत है।
1: यही के तई जागरूकता फैलावे के खातिर तो ई दिवस मनावा जात है। दीदिया, हमका एक नारा याद आएगा।
0: अच्छा, कौन नारा बिटिया?
1: प्लास्टिक बैग का ना दादी के झोरा का। हाँ।
0: अरे वाह बिटिया, बहुत अनेक बात कहो। ये बात हमरे सब बाल गोपालन का ध्यान में धरक है, तब ये दिवस मनावे के उद्देश्य पूरा हुई।
5: टिक टिक टिक टिक टिक टिक टिक टिक कसम ये खाए रे, टिक टिक टिक टिक टिक टिक टिक टिक प्लास्टिक टिक ना पाए रे।
0: तो बिटिया, ये तो रही ज्ञान केरी बातें। अब तनी घड़ी देखो, घड़ी केर सुई कहाँ कह रही है, उठा।

0: अपन पिटारी और कार्यक्रम खत्म करो।
1: जी दीदिया, मुला हमरे श्रोता पंचन का आज केर कार्यक्रम कैसन लाग हमका ईमेल ते लिख भेजे। हमार ईमेल का पता है bmbg.airlko@gmail.com।
0: हमरे सगरे बाल गोपाल अपन फरमाए सुझाव ईमेल पर जरूर ते जरूर लिख भेजे। हम पंचे उनकी पाती के राह तक पे। श्रेया बिटिया, अब तो विदा लेके बेरिया आ गए, तो अगले बाल गोपाल कार्यक्रम में अपन बाल गोपालन ते फिर भेंट होई। तब तक की तई देव अनुमति
1: श्रेया त्रिवेदी का
0: और राजलक्ष्मी दीदिया का।

0: अभी बच्चे सुन रहे थे अपना साप्ताहिक कार्यक्रम बाल गोपाल। हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं।
1: फिल्म आकाश के रोशन सितारों की महफिल, आज के मेहमान, विविध भारती पर हर बुधवार शाम 4 बजे पिटारा में सुनिए। रहिए कहीं भी, सुनते रहिए विविध भारती। विविध भारती, आपकी बात पहुंचाए करोड़ों तक।
0: मीडियम वेव 401.61 मीटर यानी 747 किलोहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। दोपहर के 12:30 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम सदाबहार नगमे। कार्यक्रम का आरंभ कर रहे हैं फिल्म राम तेरी गंगा मैली के इस गीत के साथ, जिसे आवाज़ दी है लता मंगेशकर ने। गीत और संगीत रविंद्र जैन का है।

गीत गाता चल, ये नाम है उस फिल्म का जिसका गीत अब हम आपको सुनवा रहे हैं। स्वर जसपाल सिंह के, गीत और संगीत रविंद्र जैन का है।

और अब हम आपको सुनवा रहे हैं यशुदास के स्वर में फिल्म चितचोर का ये गीत, जिसे लिखा है रविंद्र जैन ने, संगीत भी रविंद्र जैन का है।

अभी आपने सुना यशुदास को फिल्म सावन को आने दो में गीत इंदिवर का था और संगीत राजकमल का। अब हम आपको सुनवा रहे हैं यशुदास के स्वर में रविंद्र जैन का लिखा और संगीतबद्ध किया फिल्म चिचोर का ये गीत।

और अब कार्यक्रम के अंत में हम आपको सुनवा रहे हैं हेमलता का गाया फिल्म अखियों के झरोखे से। इस फिल्म का गीत और संगीत रविंद्र जैन का है।

0: इस गीत के साथ ही सदाबहार नगमे कार्यक्रम अब समाप्त हुआ। हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं, मीडियम वेव 401.61 मीटर यानी 747 किलोहर्ट्ज पर। दिन के एक बजने को हैं, थोड़ी देर में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से, जिसे हम रिले कर रहे हैं।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि जून के महीने में स्वदेशी C-295 विमान की पहली उड़ान के साथ ही भारत ने विमानन क्षेत्र में एक बड़ी सफलता हासिल की है। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि इससे रोजगार के नए अवसर सृजित हो रहे हैं।
2: एविएशन सेक्टर में भी देश ने एक बड़ी सफलता पाई। C-295 यह विमान मेड इन इंडिया है और C-295 विमान ने अपनी पहली उड़ान पूरी की है और ऐसे 40 विमान भारत में ही बनाए जा रहे हैं। इससे MSME और एरोस्पेस सेक्टर को नई शक्ति मिल रही है। आज समुद्र से लेकर आकाश तक हमारा भारत अधिक सुरक्षित और आत्मनिर्भर बन रहा है।
1: श्री मोदी ने कहा कि इसी महीने कोलकाता में 3 युद्धपोतों दूनागिरी, संशोधक और अग्रह का जलावतरण किया गया। ये तीनों युद्धपोत डिजाइन से लेकर निर्माण तक पूरी तरह से स्वदेशी हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि जून के महीने में ही रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO ने जमीन से हमले के लिए लंबी दूरी की क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। उन्होंने कहा कि भारत समुद्र से लेकर आकाश तक लगातार अधिक सुरक्षित और आत्मनिर्भर बनता जा रहा है। प्रधानमंत्री ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की चर्चा की, जिसे दुनिया भर में मनाया गया। इस बार यह आयोजन 2,500 से अधिक जगहों पर हुआ। भारत में करोड़ों लोगों ने योग दिवस में भागीदारी की। श्री मोदी ने अहमदाबाद में विश्व योगासन चैंपियनशिप में पदक विजेता एथलीटों को बधाई दी।
2: विश्व योगासन चैंपियनशिप की भी बड़ी चर्चा हुई। इसमें भारत ने कुल 114 पदक जीते, इनमें 102 गोल्ड मेडल भी शामिल है। भारत इस चैंपियनशिप की पदक तालिका में पहले स्थान पर रहा।
1: प्रधानमंत्री ने पश्चिम एशिया में युद्ध के दौरान उनकी अपील पर देशवासियों के समर्थन और सहयोग के लिए आभार व्यक्त किया।
2: पश्चिम एशिया में बनी युद्ध की स्थितियों को देखते हुए मैंने देशवासियों से कहा था, कुछ समय के लिए सोना खरीदने से बचें। लोगों से कहा था कि विदेश में छुट्टियां मनाने से बचें। लोगों से कार पुलिंग को भी बढ़ावा देने की अपील की थी। किसानों से केमिकल मुक्त खेती के लिए, खेत बचाने के लिए और प्राकृतिक खाद का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल का आग्रह किया था। मेरी अपील का उन्होंने न सिर्फ समर्थन किया बल्कि हर तरफ से उसमें अपना सहयोग कर रहे हैं।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हर्मिनी के बीच सेशल्स की राजधानी विक्टोरिया में द्विपक्षीय वार्ता जारी है। दोनों नेता भारत सेशल्स संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा और क्षेत्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर विचार विमर्श कर रहे हैं। इससे पहले स्टेट हाउस में प्रधानमंत्री मोदी को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। प्रधानमंत्री मोदी आज सेशल्स की नेशनल असेंबली को संबोधित करेंगे और भारतीय समुदाय के लोगों से भी मुलाकात करेंगे। इसके बाद वे सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस के स्वर्ण जयंती समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। ऑपरेशन अमिस्ताद के अंतर्गत भेजी गई भारतीय सहायता वेनेजुएला पहुंच चुकी है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने विश्वास व्यक्त किया कि फील्ड अस्पताल इकाई 30 टन राहत आपूर्ति, 6 टन औषधि और चिकित्सा उपकरण वेनेजुएला में भूकंप के बाद जारी राहत प्रयासों को बढ़ावा देंगे। पश्चिम बंगाल में कोलकाता के तारातला भवन हादसे की जांच तेज हो गई है। जादवपुर विश्वविद्यालय और IIT खड़गपुर के विशेषज्ञों की टीमें आज घटनास्थल का निरीक्षण करेंगी। इससे पहले फोरेंसिक विशेषज्ञों की टीम भी मौके से नमूने एकत्र कर चुकी है। निर्माणाधीन गोदाम ढहने से हुए हादसे में अब तक 17 लोगों की मौत हो चुकी है। मौसम विभाग ने असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों और सिक्किम में आज मूसलाधार बारिश की चेतावनी जारी की है। बिहार, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, कोंकण

0: गोवा, ओडिशा, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकाल, तेलंगाना, विदर्भ, लक्षद्वीप और अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह में अगले दो दिन में तेज बारिश का अनुमान है। किदांबी श्रीकांत यूएस ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप के सिंगल्स के फाइनल में पहुंच गए हैं। श्रीकांत ने सेमीफाइनल में जापान के युदाई ओकिमोतो को हराया। लंदन के लॉर्ड्स में महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप में आज शाम 7 बजे भारतीय टीम अंतिम लीग मैच में ऑस्ट्रेलिया से खेलेगी। इधर बेलफास्ट में पुरुष टी20 क्रिकेट मैच में आज शाम 6 बजे भारत का मुकाबला मेजबान आयरलैंड से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं।
2: फिल्म आकाश के रोशन सितारों की महफिल, आज के मेहमान, विविध भारती पर हर बुधवार शाम 4 बजे पिटारा में सुनिए। रहिए कहीं भी, सुनते रहिए विविध भारती। विविध भारती, आपकी बात पहुंचाए करोड़ों तक।
3: सुनो ना।
4: हाँ?
3: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
4: तो रोका किसने है? हाँ?
3: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
4: मुझसे।
3: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
4: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
3: पर उससे मेरा क्या फायदा?
4: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुँच जाओ।
3: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
4: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 8700001424242।
3: ओ 8700001424242। लो अभी फोन लगाता हूँ 8700001424242 पर।
5: आइए जुड़िए विज्ञान जगत के साथ, जहां हर जटिल सवाल का जवाब मिलता है रोचक अंदाज में। क्या है आपके जीवन में विज्ञान की भूमिका? कैसे बदल रही है तकनीक आपकी दुनिया? जानिए विशेषज्ञों से, सुनिए रोचक चर्चाएं और पाइए विज्ञान से जुड़े ताजा अपडेट्स। तो सुनना न भूलें
6: विज्ञान जगत हर शनिवार शाम 7:30 बजे आकाशवाणी लखनऊ पर।
7: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
8: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

0: घर आंगन माहे बहार, कहानी कविता और बतकही के फुहार, आपन बोली बानी संग लोक गीतन के बहे बयार, खान पान संग सेहत के और स्वावलंबन के बहचली है बयार, घर आंगन संग होई के तैयार, चलो विकास के रफ्तार, सोम बृहस्पति और साथे है दिन शनिवार, ईमेल और पाती के होए भरमार।
1: प्रायोजित कार्यक्रम NCERT आप सुनेंगे सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे से। प्रायोजित कार्यक्रम NCERT आप सुनेंगे सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे से। अब अपने सुनने वालों को एक बार पुनः याद दिला दें कि आज शाम 6:30 पर आप सुनेंगे ICC वेमेंस T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2026 के अंतर्गत लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड लंदन में भारत और ऑस्ट्रेलिया के मध्य खेले जाने वाले T20 क्रिकेट मैच का आंखों देखा हाल। इसे हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे और आप इसे मैच के अंत तक सुनेंगे। आज इतवार है, कार्यक्रम में अब से थोड़ी देर बाद यानी कि दिन में 1:15 पर आप सुनेंगे इरफान ह्यूमन की लिखी झलकी यादों की सवारी। इसके निर्देशक होंगे अतिश कुमार श्रीवास्तव। वरिष्ठ नागरिकों के लिए कार्यक्रम

होगा अक्षवट दिन में 1:30 पर। इसमें आप सुनेंगे डॉक्टर दिविता श्रीवास्तव होम्योपैथ से भेंटवार्ता। विषय रहेगा बढ़ती उम्र और होम्योपैथी, सुरक्षित और सहज उपाय। आपसे भेंट करेंगे डॉक्टर अलका चौधरी।

0: ये आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है। दिन के 1:10 होने को हैं। थोड़ी देर में आप सुनेंगे इलाकाई खबरें।
1: ये आकाशवाणी लखनऊ है, इलाकाई खबरें दीबा हाशमी से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि हिंदुस्तान ने जून में देसी साख्ता C-295 तैयारे की पहली परवाज के साथ हवाबाजी के शोबे में एक अहम पेश रफ्त हासिल की है। आज आकाशवाणी पर अपने मन की बात प्रोग्राम में उन्होंने कहा कि इस वक्त मुल्क में इस तरह के मजीद 40 तैयारे बनाए जा रहे हैं। जनाब मोदी ने कहा कि इससे बहुत छोटे छोटे और दरमियाने दर्जे के कारोबारी इदारों, MSME और एरो स्पेस सेक्टर को फरोग मिल रहा है, रोजगार के नए मौके पैदा हो रहे हैं और खुद इन्हिसार हिंदुस्तान के अज़्म को तकवीयत मिल रही है।
2: इसी महीने DRDO ने स्वदेशी लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल का भी सफल परीक्षण किया है। इसको DRDO की लेबोरेटरी और इंडियन इंडस्ट्री पार्टनर्स ने मिलकर बनाया है। यानी आज समुद्र से लेकर आकाश तक हमारा भारत अधिक सुरक्षित और आत्मनिर्भर बन रहा है।
1: वज़ीर आज़म ने बैनुल अक्वामी योगा डे पर तबादले ख्याल किया, जिसे दुनिया भर में मनाया जा रहा था। इस साल ये तकरीब 2500 से ज्याद मकामात पर हुई। हिंदुस्तान में योगा डे में लाखों लोगों ने शिरकत की। वज़ीर आज़म ने कहा कि कौमी तामीर में आवाम की शिरकत हिंदुस्तान के लिए बड़ी खुशी की बात है। उन्होंने मजीद कहा कि उनकी अपील के जवाब में मग़रिबी एशिया में जंग जैसी सूरत हाल के पेश नज़र बाज़ मकामात पर शहरियों ने यकजहती का मुज़ाहरा किया और सोने की खरीदारी और गैर मुल्की सफ़र को आर्जी तौर पर मुलतवी कर दिया। जनाब योगी ने शहरियों पर जोर दिया कि वो ज़रई ज़मीन को केमिकल्स से दूर रखें और कुदरती खादों का इस्तेमाल करते हुए अपनी ज़्यादा से ज़्यादा ज़मीन पर काश्त करें। वज़ीर आज़म ने कहा कि हुकूमत मुल्क भर में लाखों खानदानों को हादसाती बीमा फराहम कर रही है।
2: प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत केवल 20 रुपये के सालाना प्रीमियम, उस पर 2,00,000 रुपये तक का दुर्घटना बीमा मिलता है। अब तक इस योजना से 58 करोड़ से अधिक लोग जुड़ चुके हैं। इस योजना से पीड़ित परिवारों को 3,700 रुपये से अधिक की सहायता मिल चुकी है। उसी प्रकार से प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना व्यक्ति की दुखद मृत्यु होने पर उसके परिवार को 2,00,000 रुपये का बीमा कवर देती है। इसका वार्षिक प्रीमियम सिर्फ 436 रुपये है। इस योजना से अब तक 27 करोड़ से अधिक लोग जुड़े हैं। इसके तहत देश के करीब 11,00,000 परिवारों को सहायता मिल चुकी है।
1: वज़ीर आज़म ने कहा कि हमारे मुल्क की सबसे बड़ी ताकत इसके लोग हैं और मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में की जाने वाली छोटी छोटी कोशिशें हमें बहुत कुछ सिखाती हैं। बराह करम मुझे अपने इर्द गिर्द होने वाली कोशिशों के बारे में लिखते रहें। वज़ीर आज़म ने लोगों से बारिश के पानी की हर बूंद को बचाने और कैच द रेन मुहिम को फ़रोग देने की अपील भी की। वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ आज हाथरस और आगरा के दौरे पर हैं। वज़ीर आला सबसे पहले हाथरस पहुंचे हैं, जहां उन्होंने सलेमपुर इंडस्ट्रियल एरिया में मुख्तलिफ तरक्याती प्रोजेक्टों का इफ्तिताह और संगे बुनियाद रखा। जनाब योगी वहां एक जल सयाम से खिताब भी कर रहे हैं। हाथरस का दौरा करने के बाद वज़ीर आला आगरा पहुंचेंगे, जहां वो कमिश्नर ऑडिटोरियम में आगरा डिवीज़न के पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट के कामों से मुतालिक मीटिंग करेंगे। इसके अलावा वज़ीर आला ज़िलई तरक्याती कामों और अमन अमान का भी तफसीली जायजा लेंगे। आगरा से वापसी पर वज़ीर आला शाम को लखनऊ में स्टेट ट्रांसफॉर्मेशन कमीशन की जायजा मीटिंग करेंगे। वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने कल 2,478 करोड़ रुपए के मुख्तलिफ तरक्याती प्रोजेक्टों का इफ्तिताह और संगे बुनियाद रखा, जिसमें गौतम बुद्ध नगर में नोएडा अथॉरिटी की नई तामीरशुदा मरकजी इंतजामी इमारत भी शामिल है। उन्होंने यमुना एक्सप्रेस वे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी के इलाके में 2 बड़े इलेक्ट्रॉनिक्स और सोलर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स का भी संगे बुनियाद रखा। मरकजी वजीर बराए रेलवे इलेक्ट्रॉनिक्स और इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अश्विनी वैष्णव और मरकजी वजीर बराए माहौलियात जंगलात और मौसमियाती तब्दीली भूपेंद्र यादव भी वज़ीर आला के साथ इस तकरीब में मौजूद थे।

0: उत्तर प्रदेश के नए वज़ीर आला ब्रजेश पाठक ने आज लखनऊ में श्री सत साई सेवा ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से मुनक़िद रन फॉर यूनिटी को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। तकरीब में लोगों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। ब्रजेश पाठक ने मशाल रोशन करके और कौमी इत्तेहाद का पैगाम देते हुए तकरीब का आगाज किया। उन्होंने इज्तिमा से खिताब करते हुए कहा कि सत्य साई बाबा की तालीमात इंसानी खिदमत, इत्तेहाद और मोहब्बत पर मबनी है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने जनरल सेक्रेटरी चंपत राय और ट्रस्टी अनिल मिश्रा के इस्तीफों की तस्दीक कर दी है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के खजांची स्वामी गोविंद देवगिरी महाराज ने कल इस मामले पर एक बयान जारी किया। बयान में कहा गया कि इस्तीफों पर आइंदा इजलास में गौर किया जाएगा। उन्होंने यह भी यकीन दिलाया कि अतिया की गई चांदी की ईंटों और जेवरात के मुकम्मल अकाउंट्स दस्तयाब हैं। कौमी पल्स पोलियो मुहिम आज से शुरू हो गई। रियासत के तमाम अजला के बूथों पर 0 से 5 साल की उम्र के बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाए जा रहे हैं। इसके बाद 29 जून से 3 जुलाई तक डोर टू डोर मुहिम चलाई जाएगी। और आज सुबह तेज हवाओं के साथ बारिश ने गोरखपुर समेत पूर्वांचल के कई इलाकों में मौसम खुशगवार बना दिया। संभल में भी आज सुबह तेज बारिश हुई। महकमा मौसमियात ने अगले चंद घंटों के दौरान रियासत के कई इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश का अलर्ट जारी किया है। इसी के साथ आकाशवाणी लखनऊ से इलाकाई खबरों का यह बुलेटिन खत्म हुआ। अगला बुलेटिन दोपहर 2 बजे FM पर नश्र किया जाएगा।
1: ये आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है। थोड़ी देर में हमारा अगला कार्यक्रम होगा। हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। दिन के 1:15 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम, आज इतवार है। आज इस कार्यक्रम में आप सुनेंगे इरफान ह्यूमन की लिखी झलकी, यादों की सवारी। निर्देशक हैं अतिश कुमार श्रीवास्तव।
2: अजी उठो, चाय ठंडी हो रही है, अब उठ भी जाओ।
3: भाई उठता हूँ। अरे अब तो हफ्ते में 2 दिन की छुट्टी हो गई है। सोचा थोड़ा और आराम कर लूँ।
2: कितना आराम करोगे, घर में सिलेंडर खाली है। चाय मिल गई, लेकिन खाना नहीं मिलेगा, समझे?
3: अरे भाई घर में सिलेंडर खाली है और बाइक में पेट्रोल की टंकी, क्या यार सुबह सुबह अच्छा खासा मूड खराब कर। कितनी अच्छी यादों में डूबा हुआ था।
2: यादें?
3: हाँ भाई, आज किसी की बहुत याद आ रही है। बस दिल कर रहा है कि काश वो मेरे पास होती।
2: किसकी यादें? वो ऑफिस वाली नई क्लर्क जो रोज सर सर आपके साथ काम करने में मजा आता है कहती है?
3: अरे नहीं भाई।
2: फिर कॉलेज वाली रीना या वो पड़ोस वाली मीना जो सुबह शाम साड़ी बदलती रहती है?
3: अरे बाबा, ना रीना ना मीना ना टीना, कभी कभी पुरानी बातें याद आ जाती हैं बस।
2: अच्छा, कौन सी वाली पुरानी?
3: अरे भाई, अरे वो साइकिल जो मैंने बाइक खरीदते ही कबाड़ वाले को बेच दी थी।
2: साइकिल?
3: हाँ, और आज पेट्रोल का रेट आसमान छू रहा है। घोषणा भी हो चुकी है कि गाड़ी का ईंधन हो या खाने का तेल, कम से कम इस्तेमाल करो।
2: हाँ, पड़ोसन कह रही थी कि देश हित में 1 साल तक सोना भी मत खरीदो।
3: ओहो, तुमको तो सोने की पड़ी है और यहाँ बाइक गैरेज में खड़ी है। अगर साइकिल होती तो बाइक का मुँह ना देखना पड़ता।
2: तो अब क्या करोगे?
3: अब क्या करूँगा, कबाड़ वाले के पास जाऊँगा, शायद साइकिल मिल ही जाए। वैसे दोपहर के खाने का क्या प्लान है?
2: गैस खत्म हो गई, खाना कैसे बनाऊं?
3: अरे भाई पाषाण युग वाला कुछ बना लो।
2: ठीक है, तुम जंगल से लकड़ी ले आओ, मैं कुछ इंतजाम करती हूँ।
3: अच्छा मैं कबाड़ी के पास जा रहा हूँ, लौटते समय मार्केट से ही कुछ खाने को ले आऊंगा। ओके
2: ठीक है।
3: राम राम दीनू काका।
4: अरे राम राम रामू, आज सुबह सुबह पैदल हाँपते हुए किधर निकल पड़े?
3: अरे काका, पेट्रोल ने तो मेरी आत्मा चूस ली है।
4: अरे बेटा, इतनी तेज भाग के आया है, लगता है बाइक का टैंक खाली है, इसलिए पैदल ही उड़ के आ गया।
3: अरे काका, मेरी पुरानी साइकिल लौटा दो प्लीज, वो मेरी पहली प्रेमिका थी, अब फिर से उसी के साथ संसार घूमने का मन कर रहा है। पेट्रोल की मार से मैं तंग आ गया हूँ काका।
4: प्रेमिका? अरे जब बेचा था तब बोला था, काका ये साइकिल अब कबाड़ है, इसे ले लो, आज प्रेम का याद आ गई। एक बात समझ लो, भावना बाजार में नहीं चलती बेटा।
3: अरे काका मजबूरी है, बच्चे स्कूल से आकर पूछते हैं, पापा आजकल आप उड़ के क्यों आते हो? मैं कहता हूँ बेटा

0: पैदल चलना ही फर्स्ट क्लास एयरलाइन है। प्लीज काका मेरी साइकिल वापस दे दो ना।
1: वापस? अरे रामू, उस साइकिल को अब हमने अपना लिया है, उसकी फुल मरम्मत करवाई, नया पेंट, नई सीट, चेन, तेल, ब्रेक नए, यहाँ तक कि घंटी भी चमाचम। अब वो बिल्कुल नई नवेली दुल्हन हो गई है।
0: अरे वाह, फिर तो और बढ़िया। मैं 1500 रुपए देता हूँ।
1: अरे 1500? बेटा वो तो मैंने कल ही बेच दी एक जवान लड़के को 2800 रुपए में।
0: क्या, बेच दी मेरी साइकिल? बेच दी?
1: हाँ बेटा बेच दी, अब वो किसी और की प्रेमिका है। तू तो लेट हो गया बेटा।
0: काका आपने मेरा दिल तोड़ दिया। मैं सोच कर आया था कि आज से मैं फिर उसी साइकिल वाला रामू बन जाऊंगा। पड़ोस वाले भी ताली बजाएंगे, मेरी बीवी कहेगी वाह मेरे रामू तू तो पर्यावरण प्रेमी हो गया, आपने उसकी दूसरी शादी करा दी।
1: अरे शादी नहीं, बिजनेस। मैंने उसे मरम्मत करके दुल्हन बना दिया। तू आया तो देर से आया, अब वो किसी और के घर में घूम रही है। शायद अभी किसी और का बच्चा उस पर बैठकर स्कूल जा रहा होगा।
0: अरे काका कम से कम ये तो बताओ कि उसे किसे बेचा है, मैं जाकर उसे खरीद लूंगा।
1: अब तू क्या करेगा, उस लड़के के घर जाकर रोएगा?
0: मैं क्या करूं? घर जाकर बीवी को क्या मुंह दिखाऊंगा।
1: अच्छा अच्छा चल रो मत, मैं तेरे लिए एक और पुरानी साइकिल निकालता हूँ। थोड़ी खटारा है लेकिन भाव 900 है, उसमें पैडल मारते ही आवाज आएगी, महंगाई महंगाई महंगाई।
0: कोई बात नहीं काका आप छोड़ो, लगता है मेरी किस्मत ही कबाड़ हो गई है।
1: अरे सुन तो, कहाँ चला?
0: अरे नहीं काका अब कुछ नहीं सुनना मुझे। अरे वाह भाई वाह, ताश खेले जा रहे हैं भाई लोगों।
2: नहीं वर्क फ्रॉम होम चल रहा है रामू भाई, लेकिन तू होम से बाहर क्या कर रहा है, अंदर आना।
0: अरे आता हूँ भाई आता हूँ। अरे यार आज सुबह से पुरानी साइकिल ढूंढ रहा हूँ। गोपी तेरी वो पुरानी वाली साइकिल कहाँ है?
3: अरे मैकेनिक को दे दी है, अब बुरे वक्त में वही काम आएगी।
0: हाँ यार मैं भी एक साइकिल की जुगाड़ में हूँ।
4: मतलब अब तू भी साइकिल से ऑफिस जाएगा, साइकिल फ्रॉम होम।
2: रामू तू साइकिल पर जाएगा तो बॉस को क्या बहाना मारेगा, सर आज साइकिल पंचर हो गई इसलिए 15 मिनट लेट हो गया।
4: भाई वर्क फ्रॉम होम का सबसे बड़ा फायदा यही है, पेट्रोल बस ऑटो सबका झंझट खत्म। लेकिन मजा देखो, छुट्टी के दिन भी दिमाग में वही जूम घूम रहा होता है।
2: वर्क फ्रॉम होम ने तो हमारी जिंदगी बदल दी यार। पहले ऑफिस जाते थे तो थक कर घर आते थे, आराम करते थे, अब घर पर ही थकने की कोशिश करते हैं। सुबह से शाम तक यस सर नोटेड सर करते करते जबान थक जाती है।
0: सच बताऊं वर्क फ्रॉम होम से पहले हम 8 घंटे काम करते थे, अब 12 घंटे अवेलेबल रहते हैं लेकिन असली काम 2 घंटे भी नहीं होता।
2: हाँ सबसे बड़ी बॉस अब घर वाली है, बीबी बोले काम कर रहे हो तो तुरंत हाई प्रायोरिटी मीटिंग है बोलकर लैपटॉप खोल लेते हैं लेकिन असल में अपनी मनपसंद वेब सीरीज देख रहे होते हैं।
3: रामू साइकिल मिल जाए तो तू ऑफिस साइकिल से जाना, जूम मीटिंग में बोलना सर मैं इको फ्रेंडली हो गया हूँ, कार्बन एमिशन 0 सिर्फ पसीना एमिशन हाई।
4: वैसे वर्क फ्रॉम होम का मजा ही कुछ और है।
3: लेकिन सोचो यार जिन लोगों के पास न वर्क है न होम है वो क्या करते होंगे?
0: मेरे पास तो होम पहले से ही नहीं, और रही बात वर्क की तो अगर साइकिल नहीं मिली तो वर्क भी चला जाएगा। यार गोपी कुछ दिन के लिए अपनी साइकिल उधार दे देना।
2: साइकिल की बात में सोचना, पहले चाय की चुस्की लेते हैं। देखो भाभी चाय लेकर आ गई हैं।
5: लो भाई लोग गर्मा गर्म चाय पी लो, ये चाय भी अब सोने के भाव समझो क्योंकि गैस सिलेंडर अपनी आखिरी सांसें ले रहा है।
2: पुराने जमाने की याद आ रही है, कंडों की धीमी आंच में बनी सौंधी सौंधी गुड़ की चाय, आहा आजकल की इस गैस में वो मजा कहाँ।
0: और बचपन में कैची कट साइकिल का भी क्या जलवा था।
3: हाँ हमने भी साइकिल बहुत चलाई है, गांव की कच्ची सड़कों से लेकर नहर तक सफर कितना सुहाना होता था, न पेट्रोल का झंझट और न प्रदूषण की टेंशन।
4: और अब तो बाइक स्टार्ट करते ही धुआं और गुस्सा दोनों निकलता है।
5: आप लोगों को तो मजे सूझ रहे हैं, सारी आफत तो हम औरतों की है। अरे मेरी तो ये सोच सोच कर जान आधी हुई जा रही है कि अगर ऐसे ही हालात रहे, गैस ना मिले तो 3 टाइम चूल्हे पर खाना कैसे पकाऊंगी। गैस बुक कराए इतने दिन हो गए अभी तक नहीं आई।
0: सही कहा भाभी आपने, शीला ने भी मुझसे

0: ने कहा था सिलेंडर खाली हो गया है, चाय नहीं बनेगी। मैंने कहा चलो बाहर से चाय पी लेंगे। उसने कहा बाहर चाय क्या खाक मिलेगी, गैस सिलेंडर की किल्लत के चलते बाहर चाय पकौड़ी के होटल भी बंद हो चुके हैं।
1: हाँ ठीक ही तो कह रही थी, सब होटल बंद हुए हैं, अब समझ में आएगा आप लोगों को।
2: कोई बात नहीं रामू, तू आज चाय का आनंद ले, कल की कल देखी जाएगी।
3: यार पाषाण युग के लोग कितने लकी थे, ना गैस सिलेंडर, ना बुकिंग, ना डिलीवरी एजेंट की छुट्टी। बस जंगल से लकड़ी उठाओ, पत्थर से आग जलाओ और नॉनवेज भून कर खाओ। कोई कस्टमर केयर नहीं, कोई आउट ऑफ स्टॉक नहीं।
4: हाँ आज तो दहेज में लोग मोटरसाइकिल और कार मांगते हैं। पाषाण काल में शादी में दहेज में एक अच्छा पत्थर मांगते होंगे, कहते होंगे ये वाला तेज चलेगा शिकार में और घर में आग भी जला देगा।
2: और एक बात, पाषाण युग का सबसे बड़ा फायदा ये था कि ना गैस लीक होती थी, आग जलती रहती थी, अगर बुझ जाए तो फिर से पत्थर से ठोंक दो।
4: देखते जाओ, सिलेंडर नहीं आएगा तो एक दिन पत्थर पर रोटी सेकेंगे, फिर जल्दी पत्थर सब्सिडी योजना भी आ जाएगी।
0: लेकिन पाषाण काल के लोगों की सवारी कैसी होती रही होगी?
3: वो पैदल चल कर के ही जंगल से अपनी सारी जरूरतें पूरी कर लेते होंगे।
2: हाँ भाई, बचपन में मैंने भी पढ़ा था आदिमानव भारी सामान ढोने के लिए स्लेज या सरल घसीटने वाले ढांचे का इस्तेमाल करते थे, और पानी के लिए बेड़े या सरल नावें जैसी खोखली लकड़ी की डुगआउट बनाकर नदियां पार करते थे।
0: यार सोचो, पाषाण युग में न स्कूटी का तेल, न खाने का तेल, बस पैदल और शिकार के लिए कुत्ते, वो भी फ्री जंगल में पकड़ लो। और अब 500 रुपए का तेल डलवाया, फिर भी गाड़ी 50 किलोमीटर ही चली है।
3: और खाना, पाषाण युग में नॉनवेज भूनो और खा लो, कोई गैस का बिल नहीं। आजकल एक चपाती बनाने में कितनी गैस चली जाती है यार। मैं तो सोच रहा हूँ अब कच्चा ही खाना शुरू कर दूँ, सलाद से शुरुआत करता हूँ।
2: हाँ भाई, कल रात मैंने एक सपना देखा, हम चारों गुफा में बैठे हैं। मैंने कहा भाई आज जूम मीटिंग है। रामू ने पत्थर उठाया और बोला ये रहा मेरा लैपटॉप।
4: पाषाण युग का सबसे बड़ा फायदा, कोई EMI नहीं, न घर का लोन, न बाइक का लोन, न गैस का कनेक्शन, बस एक गुफा और पत्थर के औजार। रामू तू तो साइकिल ढूंढ रहा था, पाषाण युग में साइकिल का भी झंझट नहीं था, बस दो पैर काफी थे।
3: पर एक समस्या थी यार।
4: क्या?
3: डायनासोर, वो आ जाते होंगे तो पूरा वर्क फ्रॉम होम गुफा से बाहर।
2: अरे भाई आज का डायनासोर महंगाई है, रोज नया रूप लेकर आती है, कल गैस आज पेट्रोल परसों बिजली।
4: सच कहूँ तो भाई हम पाषाण युग में ही खुश रहते होंगे, बस जंगल घूमो, फल खाओ, पानी पियो और मस्त रहो।
0: चलो भाई फैसला कर लिया, अगली छुट्टी में हम सब जंगल में कैंपिंग करेंगे।
4: मतलब पाषाण युग की प्रैक्टिकल करेंगे?
0: हाँ हाँ, और वहाँ लकड़ी जला के रोटी सेकेंगे।
3: और अगर बॉस का फोन आ गया तो?
2: बोल देंगे सर अभी गुफा में हूँ, सिग्नल नहीं आ रहा।
3: ये तो मजाक था यारों, सीरियसली बताऊं तो आज जो ईंधन और पर्यावरण संकट चल रहा है उसके लिए हम खुद जिम्मेदार हैं। हमें अंदाजा नहीं कि हम आज किस तरह का पर्यावरणीय संकट झेल रहे हैं।
2: हाँ भाई, दिन रात का तापमान बढ़ता जा रहा है, खासकर रात में भी कोई राहत नहीं मिल रही,
3: क्योंकि हम एक हीट सिंक में जी रहे हैं, जहाँ शहर दिन में गर्मी को सोख लेते हैं और रात में धीरे धीरे छोड़ते हैं। गर्मियों से बाहर वायुमंडलीय तापमान को आधुनिक निर्माण सामग्री जैसे कंक्रीट, ग्लास और धातु की वजह से बहुत बढ़ा देते हैं। नतीजा हमारे सामने है, भयंकर गर्मी।
0: हाँ भाई, मैं रेडियो पर वैज्ञानिकों की चेतावनी सुन रहा था कि शहरी गर्मी और जलवायु परिवर्तन मिलकर शहरों में कंक्रीट की अधिकता और पेड़ों की कमी से तापमान 2 से 6 डिग्री सेल्सियस तक ज्यादा हो सकता है, और इससे हीट वेव और भी ज्यादा खतरनाक हो सकती है।
2: हाँ भाई, हमने भी सुना है कि इस बार सुपर एल नीनो आने की आशंका है, इसके चलते रिकॉर्ड गर्मी, हीट वेव, कम बारिश और सूखा पड़ सकता है।
4: और देखो ना, इस बार शुरुआती गर्मी में कई शहरों का तापमान 40 पार पहुंच चुका है, और दुनिया के सबसे गर्म शहरों में ज्यादातर भारत की ही गिनती हो रही है। हाल की रिपोर्ट्स बताती हैं कि दुनिया के 100 सबसे गर्म शहरों में 90 से अधिक भारत में दर्ज किए गए हैं।
3: सिर्फ तापमान नहीं, नमी के साथ वेट बल्ब टेम्परेचर बढ़ रहा है, जो इंसान के शरीर को ठंडा होने से रोकता है। यह भारत के लिए नया बड़ा खतरा है।
4: जरा देखो आज के अखबार में क्या लिखा है, भारत में इस समय पड़ रही भीषण गर्मी को लेकर वैज्ञानिकों ने गंभीर चेतावनी दी है कि आने वाले वर्षों में हीट वेव

0: अनिलू पहले से अधिक लंबी, तीव्र और जानलेवा हो सकती है। विशेषज्ञों के अनुसार उत्तर पश्चिम और मध्य भारत के कई हिस्सों में तापमान 48 डिग्री सेल्सियस से ऊपर जा सकता है। राजस्थान, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, बिहार और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में हीट डोम जैसी स्थिति बन रही है, मतलब वहाँ गर्म हवा फंस रही है।
1: अच्छा।
0: हाँ, विशेषज्ञों का कहना है यदि तापमान वृद्धि इसी तरह जारी रही तो आने वाले दशकों में भारत के कुछ हिस्सों में गर्मी मानव सहनशीलता की सीमा के पार पहुंच सकती है। इसका असर

0: है यदि तापमान वृद्धि इसी तरह जारी रही तो आने वाले दशकों में भारत के कुछ हिस्सों में गर्मी मानव सहनशीलता की सीमा के पार पहुंच सकती है। इसका असर खेती, पानी, बिजली और यहाँ तक अर्थव्यवस्था पर भी पड़ेगा।
1: सब प्रलय के लक्षण हैं भाई।
2: हाँ, आदमी की तो मरण है, पता नहीं इस गर्मी में कितने लोग बीमार होंगे।
0: और सुनो, डॉक्टरों के अनुसार लगातार गर्मी से हीट स्ट्रोक, डिहाइड्रेशन, हार्ट अटैक, सांस की समस्या, बुजुर्गों और बच्चों में मृत्यु जोखिम तेजी से बढ़ सकता है। विशेष रूप से मजदूर, किसान, डिलीवरी वर्कर और बाहर काम करने वाले लोग सबसे ज्यादा खतरे में हैं।
1: और हाँ, अब नमी वाली गर्मी भी दिन में तारे दिखाने के लिए तैयार है।
0: लो, रही सही, बिजली भी चली गई।
2: हाँ भाई, अब तो मैं चलता हूँ, साइकिल की तलाश जो करनी है।
3: चलो यारों, हम लोग भी किसी पार्क में पेड़ की छाव का सहारा तलाश करते हैं।
1: रामू, अगर साइकिल मिल जाए तो पार्क में ले आना, हम सब लोग मिलकर प्रैक्टिस करेंगे।

0: यादों की सवारी। अभी आपने सुनी इरफान हुमन की लिखी ये झलकी। कलाकार थे राघवेंद्र प्रताप सिंह, विनय शुक्ला, सना शेख, ओम प्रकाश उजाला, शोभित शर्मा, अरविंद मिश्रा, स्मृति शुक्ला सरकार। संपादन और प्रस्तुति सहयोग कीर्ति श्रीवास्तव और इस झलकी के निर्देशक थे अतिश कुमार श्रीवास्तव। इसके साथ ही आज इतवार है, कार्यक्रम अब समाप्त हुआ। हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं, मीडियम वेव 401.61 मीटर यानी 747 किलोहर्ट्ज़ पर। लीजिए प्रस्तुत है वरिष्ठ नागरिकों के लिए उनका साप्ताहिक कार्यक्रम अक्षय वट।
1: अक्षय वट परंपराओं, संस्कृति, यादों, अनुभवों और संवेदनाओं का संगम। अक्षय वट।
2: नमस्कार श्रोताओं, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी लखनऊ। अपनी संस्कृति के रंगों को समेटे, अनुभवों के मोतियों को पिरोए, आपके जीवन के आंगन को महकाने हाजिर है आपका अपना कार्यक्रम अक्षयवट। मैं हूं आपकी दोस्त डॉक्टर अलका चौधरी। श्रोताओं, बुजुर्गों के साये के बारे में किसी ने क्या खूब कहा है, धूप तेज है मगर शिकवा न कर ए मुसाफिर, तेरे घर में बुजुर्गों का घना अक्षयवट तो है। जैसे अक्षयवट की छांव कभी कम नहीं होती, वैसे ही हमारे बुजुर्गों का आशीष हमेशा हम पर बना रहता है। लेकिन इस छांव को बनाए रखने के लिए हमारे बुजुर्गों की सेहत का दुरुस्त रहना भी बहुत जरूरी है। उम्र के इस पड़ाव पर अक्सर बीमारियों की दस्तक बढ़ जाती है और साथ में शुरू हो जाता है मुट्ठी भर कड़वी दवाओं का दौर। ऐसे में मन एक ऐसा सुरक्षित और सहज रास्ता खोजना चाहता है जो शरीर को बिना कष्ट दिए भीतर से मजबूत बनाए। और जब सहज उपचार की बात आती है तो होम्योपैथी का नाम सबसे पहले आता है। इसी विषय पर विस्तार से चर्चा करने के लिए हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर दिविता श्रीवास्तव, जो एक जानी मानी होम्योपैथिक विशेषज्ञ हैं। डॉक्टर साहब, सबसे पहला और बुनियादी सवाल ये है हमारा कि उम्र बढ़ने के साथ शरीर के आंतरिक अंग जैसे कि लिवर, किडनी, हार्ट थोड़े संवेदनशील हो जाते हैं, ऐसे में होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति बुजुर्गों के शरीर पर किस तरह काम करती है और क्या इस पद्धति को सहज कहा जा सकता है?
3: जी नमस्कार। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, हमारा लिवर, किडनी, हार्ट, डाइजेस्टिव सिस्टम यानी पाचन तंत्र सब थोड़े स्लो और सेंसिटिव होने लगते हैं। ऐसे में भारी दवाइयों का पाचन शरीर के लिए मुश्किल हो जाता है। यही हम होम्योपैथिक की दवाओं के बारे में बात करें तो ये बहुत ही सूक्ष्म मात्रा यानी माइक्रो डोजेस में दी जाती हैं, क्योंकि होम्योपैथिक का जो सिद्धांत है वह है सिमिलिया सिमिब्लिस क्यूरेंटर। आसान भाषा में हम इसे लाइक क्योर लाइक कहते हैं, यानी जिस चीज से इंसान के शरीर में बीमारी के लक्षण होते हैं वही चीज बीमारी को ठीक करने की भी क्षमता रखती है। बस फर्क ये है कि होम्योपैथिक में हम उसे डायरेक्ट नहीं देते हैं,

0: बल्कि उसकी बहुत ही सूक्ष्म मात्रा और सुरक्षित मात्रा दी जाती है ताकि शरीर खुद से ही हील कर सके। यह होम्योपैथिक का तरीका होता है कि शरीर को अपनी खुद की ताकत को जगाना, इसीलिए होम्योपैथिक को सहज यानी जेंटल कहा जाता है। यह शरीर के साथ मिलकर काम करती है, ना कि उसके खिलाफ, और इसीलिए यह शरीर की इम्यून सिस्टम को भी मजबूत करती है। यह बुजुर्गों के लिए एक बहुत ही सेफ तरीका है अपनी सेहत को बनाए रखने का।
1: बहुत बढ़िया डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, एक बहुत व्यावहारिक समस्या है। हमारे जितने भी बुजुर्ग श्रोता इस वक्त रेडियो सुन रहे हैं, उनमें से अधिकांश बीपी, शुगर, थायराइड या दिल की बीमारियों के लिए सालों से एलोपैथी दवा ले रहे हैं। क्या वे उनके साथ होम्योपैथी दवाइयाँ ले सकते हैं? और क्या दोनों पैथी की दवाइयों में कोई टकराव होने का खतरा रहता है?
0: जी, ये सवाल मुझसे सबसे ज्यादा पूछा जाता है और मैं इंश्योर करना चाहूंगी कि आप बीपी, शुगर, थायराइड या दिल की कोई भी एलोपैथिक दवा होम्योपैथिक की दवा के साथ बिल्कुल ले सकते हैं। इन दोनों पैथी की दवाओं का शरीर में काम करने का तरीका बिल्कुल अलग है। इनमें आपस में कोई भी केमिकल रिएक्शन नहीं होता है। बस आपको दो बातों का ध्यान रखना जरूरी है। पहला, दोनों पैथी की दवाएं खाने के बीच में कम से कम 15 से 20 मिनट का अंतर जरूर रखें। और दूसरा, कभी भी अपनी एलोपैथी की दवाएं खुद से बंद ना करें, चाहे आपने होम्योपैथी की दवा लेना शुरू क्यों ना कर दिया हो। आपकी शुगर की हो, बीपी, थायराइड या हार्ट की कोई भी दवा हो, उसको कंटिन्यू रखें। अपने डॉक्टर से पूछे बिना उसमें कोई भी बदलाव ना करें।
1: डॉक्टर साहब, वृद्धावस्था में अक्सर जोड़ों में दर्द, कमर दर्द, पैरों में दर्द तो कभी कंधों में दर्द, ये समस्याएं बनी ही रहती हैं। क्या इस दर्द को मिटाने के लिए होम्योपैथी में कुछ अच्छी मेडिसिन्स हैं?
0: जी बिल्कुल। होम्योपैथिक में जो फोकस होता है वो होता है जॉइंट की इन्फ्लेमेशन को नेचुरली वापस लाना,
1: जी
0: उसमें उनकी मोबिलिटी को वापस लाना। तो होम्योपैथिक जिस पे फोकस करता है वो होता है होलिस्टिक हीलिंग के ऊपर। और हमारे बुजुर्गों के लिए, जैसे मैंने बताया कि होम्योपैथिक बहुत ही सेफ और सहज है, तो ऐसे में अगर किसी को सुबह उठने में बॉडी में स्टिफनेस देखने को मिल रही है, चलने फिरने में उनको आराम लग रहा है लेकिन सुबह उठने में स्टिफनेस है,
1: जी
0: तो उसमें रस्टॉक्स दी जा सकती है।
1: जी
0: अगर थोड़े ही मूवमेंट करने से उनको बहुत तेज दर्द उठ रहा है तो उसमें हम ब्राइनिया होम्योपैथिक दवा दे सकते हैं। यदि कमर में दर्द है, उनके लिगामेंट्स वीक हो रहे हैं, तो उस समय में हम उनको रूटा या फिर कैल्केरिया फॉस जैसी मेडिसिन्स दी जा सकती हैं।
1: अच्छा डॉक्टर साहब, इससे ध्यान आया कि जो बुजुर्गों को कहा जाता है कि भाई कैल्शियम लीजिए या मल्टी विटामिन्स, मल्टी मिनरल्स
0: जी
1: लीजिए, तो होम्योपैथी में क्या इनका भी विकल्प है?
0: जी बिल्कुल है। होम्योपैथिक में मल्टी विटामिन की हम अगर सब्स्टिट्यूट देखें तो वो फाइफोस के नाम से आती है,
1: जी
0: जिसको दिया जा सकता है, बुजुर्गों को भी दिया जा सकता है। बहुत सेफ मेडिसिन है और साथ में ही वो हमारी बोन्स, लिगामेंट्स और मसल्स के ऊपर भी बहुत अच्छा काम करती है।
1: अच्छा, क्या ये फाइफोस कोई भी ले सकता है डॉक्टर साहब?
0: जी कोई भी ले सकता है। ये जनरल मल्टीविटामिन का काम करती है। ये चाहे बच्चा हो या बुजुर्ग हो, ये हर कोई इंसान ले सकता है।
1: और ये हर किसी को फायदा करती
0: जी
1: है?
0: हर किसी को फायदा करती है।
1: बहुत बढ़िया बात है। तो फाइव फॉस तो आप लोग ऐसे ही ले सकते हैं, इसके लिए कोई प्रिस्क्रिप्शन भी नीडेड नहीं
0: नहीं
1: है।
0: नहीं बिल्कुल
1: कहा जाता है प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, तो एक बात बताइए हमें डॉक्टर साहब, क्या होम्योपैथी रोगों से बचाव के लिए भी सहायक है?
0: जी बिल्कुल। ये जो लाइन है, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, ये होम्योपैथिक का एक कोर प्रिंसिपल माना जाता है।
1: जी
0: इसमें हमारी बॉडी की वाइटल फोर्स पे फोकस करते हैं, यानी बॉडी की जो इम्यूनिटी है उसको, सेल्फ हीलिंग को और ज्यादा स्ट्रांग करते हैं। जैसे हम देखें, अगर किसी व्यक्ति को मौसम बदलने पे बीमार पड़ने की टेंडेंसी ही बनी हुई है,
1: जी
0: जैसे जैसे मौसम बदल रहा है उसको सर्दी जुकाम की दिक्कत हो रही है या बुखार आ जा रहा है, तो उस समय पे हम उनको पहले से ही प्रिवेंटिव मेडिसिन दे दें ताकि वो उनकी कंडीशन सीवियरिटी पे ना जाए।
1: जी
0: तो खासकर हम अगर सीनियर सिटीजन को देखें तो उनकी इम्यूनिटी नेचुरली वीक होने लगती है, तो उस समय पे उनको प्रिवेंटिव मेडिसिन अगर दी जाए, पहले से उनकी शुरू कर दी जाए, तो वो बीमार उतना नहीं पड़ेंगे। यही मैं कुछ प्रिवेंटिव मेडिसिन के बारे में भी बात करना चाहूंगी।
1: जी
0: जैसे अगर हम फ्लू देखें, फीवर देखें, रिकरेंट किसी को बार बार सर्दी जुकाम हो जा रहा है,
1: जी जी
0: तो उस समय पे हम उनको इन्फ्लुएंजा दे सकते हैं। बहुत कॉमनली हम देखते हैं मीजल्स हो जाते हैं,

0: तो उसकी प्रिवेंटिव बाकी परिवार को दे सकते हैं हम वेरियोलेनम।
1: जी
0: तीसरी हम मेडिसिन, गर्मी बहुत पड़ रही है, लू लग जाती है, लू लगने से लूज मोशन होते हैं, सर दर्द पकड़ लेता है, हीट स्ट्रोक की कंडीशन आती है,
1: जी
0: तो उस समय हम ग्लोनाइन दे सकते हैं। तीसरा, अगर जैसे हमें गर्मी से कोई भी दिक्कत हो,
1: जी
0: चाहे वो पेट की हो, सर की हो, हाथ पैर में दर्द हो, बुखार हो, कोई भी सिम्टम्स आ रहे हैं, उस समय हम एकोनाइट दे सकते हैं।
1: बहुत बढ़िया जानकारी दी आपने डॉक्टर साहब इन दवाओं के बारे में। अच्छा डॉक्टर साहब, क्या इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए भी कोई जनरल टॉनिक है होम्योपैथी में?
0: जैसे मैंने फाइफॉस के बारे में बताया,
1: जी
0: वो जनरल टॉनिक है, उसके साथ ही बहुत सारी ऐसी मेडिसिन आती हैं जो हमारी इम्यूनिटी को स्ट्रांग करती हैं, जैसे
1: जी
0: तुलसी से बनती है ऑसिमम सैंटम,
1: जी
0: अश्वगंधा के नाम से दवा आती है, वो हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करती है, बट ये दवा हम ऐसे ही नहीं दे सकते हैं।
1: मतलब हमें किसी होम्योपैथी
0: जी
1: फिजिशियन
0: जी
1: से राय लेने की
0: राय लेनी
1: जरूरत है।
0: पड़ेगी कि किस पेशेंट को कौन सी दवा ज्यादा अच्छी जाएगी और उनकी इम्यूनिटी किस तरह से हम और ज्यादा अच्छी कर सकते हैं।
1: डॉक्टर साहब, अक्सर लोग कहते हैं कि होम्योपैथी का असर बहुत धीरे धीरे होता है, लेकिन उम्र के इस पड़ाव पर जब किसी को जोड़ों का तीव्र दर्द हो या सांस फूल रही हो तो उन्हें तुरंत आराम चाहिए होता है, इस धारणा में कितनी सच्चाई है?
0: जी, ये समाज में बना हुआ एक बहुत बड़ा भ्रम है कि होम्योपैथिक हमेशा धीरे काम करती है। दरअसल बात ये है कि लोग होम्योपैथिक फिजिशियन के पास तब आते हैं जब उनकी बीमारी 10-15 साल पुरानी हो जाती है और ज्यादा गंभीर हो जाती है, क्रॉनिक हो चुकी होती है, तो उसको जड़ से ठीक करने में स्वाभाविक रूप से समय तो लगेगा ही।
1: जी
0: लेकिन जहाँ तक उम्र के इस पड़ाव पर अचानक से होने वाली तकलीफों को हम देखें, जैसे अचानक से सांस फूलना, जोड़ों में तेज दर्द उठना या बुखार आना, ऐसे में सही लक्षण के आधार पर दी गई होम्योपैथिक दवा तुरंत असर करती है और मरीज को बहुत ही जल्दी आराम दिखाई देने लगता है।
1: कबीर दास जी का एक बड़ा सुंदर दोहा है, चिंता ऐसी डाकिनी काटी करे जा खाए, वैद्य बेचारा क्या करे कहाँ तक दवा लगाए। बढ़ती उम्र में अकेलापन, अपनों को खोने का दुख, अनिद्रा और स्वभाव में चिड़चिड़ापन आना बहुत आम है। साथ ही साथ अक्सर बुजुर्गों में भूलने की बीमारी भी देखी जाती है, क्या होम्योपैथी में मन के इन रोगों का भी कोई इलाज है?
0: जी, कबीर दास जी ने सदियों पहले वही बात कह दी जो आज की मेडिकल साइंस भी मानती है कि चिंता, गम और तन्हापन शरीर को अंदर से खा जाता है और इसका असर हम अपनी नींद, दिल और पूरे शरीर पर भी देखने को मिलता है। खास बात यह है कि होम्योपैथी इसी सोच के साथ काम करती है, यहाँ सिर्फ बीमारी ही नहीं बल्कि व्यक्ति का पूरा स्वभाव, उसके इमोशन, उसकी जीवन स्थिति को भी देखा जाता है और इसमें अनिद्रा यानी इनसोम्निया, अकेलेपन का दुख, चिड़चिड़ापन के लिए अलग अलग संवैधानिक दवाएं होती हैं जो हर व्यक्ति की परिस्थिति के हिसाब से चुनी जाती हैं और उनको दी जाती हैं। और सबसे अच्छी बात ये है कि इन दवाइयों से दिन भर में सुस्ती नहीं लगती है, ना ही इन दवाइयों की कोई लत लगती है। इसी के साथ मैं एक और बात कहना चाहूंगी कि दवाइयों के साथ साथ आप अपनों से बात जरूर करें, परिवार और दोस्तों के साथ रहें, क्योंकि जो दवाइयां हैं वो मन को सहारा दे सकती हैं, लेकिन अपनों का प्यार और उनका साथ का कोई भी विकल्प नहीं होता।
1: बहुत बढ़िया बात करी आपने डॉक्टर साहब। होम्योपैथी दवाओं के बारे में कुछ नियम बड़े कड़े होते हैं, जैसे कि गोलियों को हाथ नहीं लगाना चाहिए, खुशबू वाली चीजों से दूर रखना चाहिए। हमारे बुजुर्ग श्रोताओं के लिए आप क्या सरल नियम बताएंगी ताकि उनको दवा का असर पूरी तरह से हो सके?
0: जी बिल्कुल, कुछ छोटे छोटे नियम ही हैं जिनको फॉलो करना बहुत आसान है, बस आपको याद रखना पड़ेगा। पहला है, मुंह अपना साफ रखें। दवा खाने से 10-15 मिनट पहले और 10-15 मिनट बाद तक कुछ ना खाएं। दूसरा, दवा को सीधे हाथ से ना छुएं। दवा की जो गोलियां हैं वो शीशे के ढक्कन में निकालकर अपनी जीभ पर डालें, इससे दवा की शुद्धता बनी रहती है। और तीसरा, जैसे आपने बोला, तेज महक से दूर रखें, जैसे कि प्याज, लहसुन, कॉफी, इन सबको दवा लेने के तुरंत बाद ना खाएं। चौथा है, हमें अपनी दवा को ऐसी जगह पे रखना है जो सूखी हो, ठंडी हो और जहाँ पर सूरज की किरणें डायरेक्ट ना पड़ती हों। पांचवी और सबसे जरूरी बात ये है कि हम अपनी दवा रोज लें

0: समय से लें, जैसे कि वो कोई एक रूटीन हो, ताकि दवा का असर अच्छे से हो और हम जल्दी ही स्वस्थ हो सकें।
1: डॉक्टर साहब, चलते चलते हमारे बुजुर्ग श्रोताओं को क्या संदेश देना चाहेंगी?
0: बस इतना कहना चाहूंगी, उम्र बढ़ना किसी बीमारी का नाम नहीं है, यह एक जीवन का नया पड़ाव है और इस पड़ाव को भी उतना ही प्यार और ध्यान से जीना चाहिए जितना आप पहले जीते आए हैं। अपनी दवाइयाँ टाइम पर लें, अपने डॉक्टर से खुलकर बात करें, चाहे वो होम्योपैथिक के हों या किसी भी और पैथी के। आप अपने माइंड और बॉडी दोनों को एक्टिव रखें, अपने पसंद का काम करें, हल्का व्यायाम करें और खुश रहें। और याद रखें कि होम्योपैथिक एक सच्चे और सुरक्षित साथी की तरह हमेशा आपके साथ है। स्वस्थ रहें और मुस्कुराते रहें।
1: चलते चलते बस यही कहूंगी कि सेहत एक नियामत है और इसे सहेज कर रखना हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। डॉक्टर साहब, आज आपने इतनी आत्मीयता से इतनी सरल भाषा में हमारे बुजुर्गों की शंकाओं का समाधान दिया, इसके लिए पूरा आकाशवाणी परिवार और अक्षयवट के श्रोता आपके आभारी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद।
1: श्रोताओं, अक्षयवट सिर्फ हमारा कार्यक्रम नहीं है, यह आपका अपना कार्यक्रम है। आपकी सेहत की क्या समस्याएं हैं, आप किस विषय पर अक्षयवट कार्यक्रम सुनना चाहते हैं और आपको आज का अक्षयवट कार्यक्रम कैसा लगा, हमें पत्र या ईमेल द्वारा जरूर बताएं। पता नोट कर लें, हमारा पता है कार्यक्रम अक्षयवट, द्वारा केंद्र निदेशक, आकाशवाणी, 18 विधानसभा मार्ग, लखनऊ, 226001। हमारा ईमेल आईडी है pkldlko@gmail.com। श्रोताओं, अब आज के अंक को यहीं थामने का वक्त हो चला है। उम्मीद है आज की ये बातें आपके जीवन में और मिठास घोलेंगी। अगले हफ्ते इसी वक्त इसी फ्रीक्वेंसी पर एक नए विषय और ढेर सारे अनुभवों के साथ आपकी ये दोस्त फिर हाजिर होगी। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी लखनऊ। नमस्कार।
2: अक्षयवट परंपराओं, संस्कृति, यादों, अनुभवों और संवेदनाओं का संगम। अक्षयवट।
3: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम अक्षयवट। आज आपने सुना बढ़ती उम्र और होम्योपैथी, सुरक्षित और सहज उपाय, इस विषय पर डॉक्टर दिव्यता श्रीवास्तव से भेंटवार्ता। आपसे भेंट की डॉक्टर अलका चौधरी ने। ये आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है।

हम अपने सुनने वालों को एक बार पुनः याद दिला दें कि आज शाम 6:30 पर ICC वुमेन्स T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2026 के अंतर्गत लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड लंदन में भारत और ऑस्ट्रेलिया के मध्य खेले जाने वाले T20 क्रिकेट मैच के आंखों देखा हाल खेल की समाप्ति तक हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे।

श्रोता याद करें कि आज अपराह्न 3:30 पर रिकॉर्डेड फोन इन कार्यक्रम हेलो डॉक्टर का विषय रहेगा श्वसन संबंधी विभिन्न विकार, कारण, लक्षण और बचाव। विशेषज्ञ होंगे प्रोफेसर डॉक्टर अजय कुमार वर्मा, विभागाध्यक्ष श्वसन रोग विभाग RML लखनऊ। कार्यक्रम का संचालन करेंगे सुभाष खन्ना। समय याद रखिएगा आज अपराह्न 3:30 पर। संस्कृत कार्यक्रम में अपराह्न 3:15 पर डॉक्टर अनुज चौबे की संस्कृत वार्ता सुनी जा सकेगी। विषय रहेगा वाल्मीकि रामायणे ज्योतिष तत्वम।

मीडियम वेव 401.6 मीटर यानी 747 किलोहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। दिन के 1:50 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम जवानों के लिए।

कार्यक्रम सुनने वाले सभी फौजी भाइयों को डॉक्टर विकास चंद्र शर्मा का नमस्कार। कार्यक्रम का आरंभ कर रहे हैं फिल्म हीर रांझा के इस गीत के साथ। इसे सुनना चाहा है हेड कांस्टेबल सीआरपीएफ जम्मू कश्मीर से धर्मेंद्र यादव, देवेंद्र सिंह यादव, दंगल यादव, अभिनव यादव, दीपेश, अनामिका, अनुराग, सुनीता यादव, हेड कांस्टेबल संजय सिंह, आशाराम सिंह, कशिश देवी, आयुष कुमार, विश्वास कुमार, जिला शाहजहांपुर से। तो लीजिए सुनिए आप सबके अनुरोध पर फिल्म हीर रांझा का ये गीत।

कार्यक्रम का अगला गीत फिल्म शहीद से, जिसे स्वर दिया है उदित नारायण ने, मूल शब्द रचना राम प्रसाद बिस्मिल की, जिसे लिखा है प्रेम धवन ने और संगीत आनंद राज का, सुनने का अनुरोध करते हैं आप सब। जीआरपी थाना प्रभारी बाराबंकी से चंद्रमणि पांडे, एसआई वीरेंद्र कुमार, एसआई पवन कुमार गुप्ता, हेड मुहर्रिर अरुण कुमार यादव, महिला हेड आरक्षी ममता यादव, पूनम सिंह और समस्त राजकीय रेलवे पुलिस अधिकारी और उनके सभी कर्मचारी, यातायात प्रभारी राम यतन यादव, आशीष सिंह, महिला एवं बाल सुरक्षा संगठन प्रभारी मुन्नी सिंह, साइबर थाना बाराबंकी से राजन यादव, थाना जहांगीराबाद प्रभारी राम प्रकाश मिश्रा, एसआई अमरेश सिंह, पुलिस लाइन बाराबंकी से विमलेश शर्मा। तो लीजिए सुनिए आप सबके अनुरोध पर फिल्म शहीद का ये गीत। मेरा रंग दे बस।

और अब लीजिए सुनिए लता मंगेशकर का गाया फिल्म दुश्मन का ये गीत, शब्द रचना आनंद बख्शी की और संगीत लक्ष्मीकांत प्यारीलाल का है। सुनना चाहते हैं आप सब। सुरक्षा जवान आवास विकास लखनऊ से सब इंस्पेक्टर जेपी यादव, सब इंस्पेक्टर डीके तिवारी, सब इंस्पेक्टर डीएस यादव, एके यादव, डीएन यादव, प्रमोद मिश्रा, दरोगा सिंह, एके सिंह, एसपी सिंह, रितेश मिश्रा, वीरेंद्र यादव, राजेंद्र सोनी और भूतपूर्व सैनिक कल्याण निगम लखनऊ से सभी साथी, सीतापुर पैतेपुर से बसंत कुमार।

सुनना चाहते हैं आप सब। पलिया मसूदपुर बाराबंकी से अंजनी कुमार, बाराबंकी से नवीन जायसवाल, ग्राम सदरपुर भानमऊ बाराबंकी से अखिलेश, उजरवारा पुरवार फतेहपुर बाराबंकी से आदर्श वर्मा, चांदपुर सिधौली सीतापुर से शिवानी कश्यप, लखनऊ से राजकुमार शर्मा, सागर साहब, मुकेश मौर्य, सब इंस्पेक्टर शुभम चौधरी, मोहित सिद्धू हाईकोर्ट लखनऊ से, साइबर सेल लखनऊ से अनु सिद्धू माइक्रोसॉफ्ट सीनियर इंजीनियर। तो डीजे सुनिए, आप सबके अनुरोध पर फिल्म अपना देश का ये गीत।

आप सुन रहे हैं कार्यक्रम जवानों के लिए आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से। आइए अब हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म अपना देश का ये गीत, स्वर किशोर कुमार और लता मंगेशकर के

और अब कार्यक्रम के अंत में हम आपको सुनवा रहे हैं मोहम्मद रफ़ी, मन्नाडे, आशा भोसले और मीनू पुरुषोत्तम की आवाज़ में फिल्म फौजी का ये गीत, जिसे सुनने का अनुरोध किया है मुरादाबाद से आबकारी निरीक्षक अक्षय चौधरी, अलीगढ़ से डॉक्टर सुरेंद्र मोहन सिंह, अभिषेक, योगिता, कन्हैया लाल, प्रिया, वीर सिंह, बबलू, प्रमोद, राज, योगेश और मोनू। तो लीजिए सुनिए आप सबके अनुरोध पर फिल्म फौजी का ये गीत।

इस गीत के साथ ही आज का जवानों के लिए कार्यक्रम अब समाप्त करने की दीजिए अनुमति अपने दोस्त डॉक्टर विकास चंद्र शर्मा को। फौजी भाइयों, जय हिंद।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम जवानों के लिए। ये आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है। दिन के 2:15 होने को हैं। थोड़ी देर में आप सुनेंगे दोपहर समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि स्वदेशी रक्षा उत्पादन पर ध्यान केंद्रित करते हुए भारत समुद्र से लेकर आकाश तक अधिक सुरक्षित और आत्मनिर्भर बन रहा है। उन्होंने देश में निर्मित C-295 विमान की पहली उड़ान को बड़ी उपलब्धि बताया। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में श्री मोदी ने सोने की खरीदारी से बचने, विदेश यात्रा न करने और कार पूलिंग को बढ़ावा देने की उनकी अपील का समर्थन करने के लिए देशवासियों का आभार व्यक्त किया। भारत और सेशल्स ने विक्टोरिया में प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता के बाद स्वास्थ्य, कृषि, वित्त और अंतरिक्ष सहित कई क्षेत्रों में समझौतों पर हस्ताक्षर किए। सरकार ने लोगों से सभी आवश्यक यात्रा दस्तावेजों के बिना कैलाश मानसरोवर यात्रा नहीं करने को कहा। अमेरिका और ईरान के बीच नए सैन्य हमलों से पश्चिम एशिया में सुरक्षा स्थिति बिगड़ी और लंदन में महिला T20 विश्व कप में भारत अंतिम ग्रुप मैच में ऑस्ट्रेलिया से खेलेगा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि स्वदेशी रक्षा उत्पादन पर ध्यान केंद्रित करते हुए भारत समुद्र से लेकर आकाश तक अधिक सुरक्षित और आत्मनिर्भर बन रहा है। आकाशवाणी से आज मन की बात कार्यक्रम में श्री मोदी ने कहा कि जून महीने में स्वदेशी C-295 विमान की पहली उड़ान के साथ ही भारत ने विमानन क्षेत्र में एक बड़ी सफलता हासिल की है।
2: C-295 ये विमान मेड इन इंडिया है और C-295 विमान ने अपनी पहली उड़ान पूरी की है और ऐसे 40 विमान भारत में ही बनाए जा रहे हैं। इससे MSME और एरोस्पेस सेक्टर को नई शक्ति मिल रही है। आज समुद्र से लेकर आकाश तक हमारा भारत अधिक सुरक्षित और आत्मनिर्भर बन रहा है।
1: श्री मोदी ने कहा कि इसी महीने कोलकाता में 3 युद्धपोतों का जलावतरण किया गया और DRDO ने लंबी दूरी की क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया है।
2: कोलकाता में INS दुनागिरी, INS संशोधक और INS अग्रय को भारतीय नौसेना के बेड़े में शामिल किया गया। इन शिप्स की डिजाइन और मैन्युफैक्चरिंग तक सब कुछ स्वदेशी है। इसी महीने DRDO ने स्वदेशी लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल का भी सफल परीक्षण किया है। इसको DRDO की लेबोरेटरी और इंडियन इंडस्ट्री पार्टनर्स ने मिलकर बनाया है।
1: प्रधानमंत्री ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की चर्चा की जिसे दुनिया भर में मनाया गया। इस बार यह आयोजन 2,500 से अधिक जगहों पर हुआ। भारत में करोड़ों लोगों ने योग दिवस में भागीदारी की। श्री मोदी ने अहमदाबाद में विश्व योगासन चैंपियनशिप में पदक विजेता एथलीटों को बधाई दी।
2: विश्व योगासन चैंपियनशिप की भी बड़ी चर्चा हुई। इसमें भारत ने कुल 114 पदक जीते, इनमें 102 गोल्ड मेडल भी शामिल है। भारत इस चैंपियनशिप की पदक तालिका में पहले स्थान पर रहा।
1: प्रधानमंत्री ने पश्चिम एशिया में युद्ध के दौरान उनकी अपील पर देशवासियों के समर्थन और सहयोग के लिए आभार व्यक्त किया।
2: पश्चिम एशिया में बनी युद्ध की स्थितियों को देखते हुए मैंने देशवासियों से कहा था कुछ समय के लिए सोना खरीदने से बचें, लोगों से कहा था कि विदेश में छुट्टियां मनाने से बचें, लोगों से कार पूलिंग को भी बढ़ावा देने की अपील की थी, किसानों से केमिकल मुक्त खेती के लिए, खेत बचाने के लिए और प्राकृतिक खाद का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल का आग्रह किया था। मेरी अपील का उन्होंने न सिर्फ समर्थन किया बल्कि हर तरफ से उसमें अपना सहयोग कर रहे हैं।
1: प्रधानमंत्री ने महाराष्ट्र के नांदेड़ में पेठकर परिवार की चर्चा की जिसने लगभग 3,500 ग्रामीणों का दुर्घटना बीमा कराया है। इनमें से प्रत्येक व्यक्ति को 1,00,000 रुपए का बीमा मिला है। श्री मोदी ने कहा कि ये भावना हृदय को छूने वाली है। श्री मोदी ने कहा कि सरकार ने पीड़ित परिवारों को प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में अब तक 3,700 करोड़ रुपए से अधिक और प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना में लगभग 22,000

0: करोड़ रुपए की सहायता दी है।
1: सरकार देश के करोड़ों परिवारों तक सुरक्षा का कवच पहुंचा रही है। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत केवल एक साल के 20 रुपये का प्रीमियम, उस पर 2 लाख रुपये तक का दुर्घटना बीमा मिलता है। उसी प्रकार से प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना भी उतनी ही अहम है। ये योजना व्यक्ति की दुखद मृत्यु होने पर उसके परिवार को 2 लाख रुपये का बीमा कवर देती है। इसका वार्षिक प्रीमियम सिर्फ 436 रुपये है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि समाज में अंधविश्वास सदियों से गहरे बैठा हुआ है। श्री मोदी ने बताया कि असम में अशुभ माने जाने वाले हरगिला पक्षी को बचाने के लिए हजारों महिलाएं सामने आई हैं।
1: हरगिला एक दुर्लभ पक्षी है। ये प्रकृति को स्वच्छ रखने में अहम भूमिका निभाता है, लेकिन असम के कुछ इलाकों में लंबे समय तक इसे अशुभ माना जाता था। फिर एक बड़ा बदलाव शुरू हुआ। हजारों ग्रामीण महिलाएं हरगिला को बचाने के लिए आगे आई। आज उन्हें हरगिला आर्मी के नाम से जाना जाता है। इन महिलाओं ने समाज के साथ संघर्ष भी किया, समाज को समझाने के लिए दिन रात काम किया और अंधविश्वास को पीछे छोड़ करके रहे।
0: प्रधानमंत्री ने नागालैंड बेबी लीग और नागालैंड महिला फुटसल लीग की चर्चा की।
1: देश में ऐसे युवाओं की संख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है जो खेल भी रहे हैं और खिल भी रहे हैं। अब कहीं अधिक युवा खेलों को कैरियर के रूप में अपना रहे। नागालैंड के 2 ऐसे प्रयासों के बारे में जानकारी मिली है। पहला प्रयास है नागालैंड बेबी लीग, जो उनके रफ्तार को और प्रतिभा के लिए उनको प्रेरित करती है। नागालैंड की विमेन फुटसल लीग हमारी बेटियों को अपनी प्रतिभा दिखाने का अच्छा अवसर दे रही है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि नालंदा विश्वविद्यालय में शास्त्रार्थ की प्राचीन परंपरा को फिर से जीवित किया गया है।
1: नालंदा विश्वविद्यालय ने शास्त्रार्थ की हमारी प्राचीन परंपरा को फिर से जीवन किया है। दूसरों के विचारों को धैर्य से सुनने और समझने की सीख भी इस शास्त्रार्थ की प्रक्रिया से मिलती है। मुझे खुशी है कि नालंदा विश्वविद्यालय ने इसे अपने दीक्षांत समारोह का हिस्सा बनाया।
0: प्रधानमंत्री ने दिल्ली के केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय के आधुनिक प्रयास की चर्चा की।
1: जड़ों से जुड़े रहकर युवाओं को नई टेक्नोलॉजी के लिए तैयार करने का एक और अच्छा प्रयास हो रहा है। दिल्ली में स्थित सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डेटा साइंस में बीटेक प्रोग्राम शुरू करने जा रही है। ये आधुनिक टेक्नोलॉजी को भारत के पारंपरिक ज्ञान से जोड़ने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इससे भारतीय भाषाओं के लिए नए AI टूल्स तैयार करने में मदद मिलेगी।
0: श्री मोदी ने प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि भारतीय संस्कृति दुनिया भर में पहुंच रही है।
1: कैरिबियन सागर में डोमिनिकन रिपब्लिक नाम का एक देश है। वहाँ भारतीयों की संख्या करीब 100 है। भारतीय संस्कृति और अध्यात्म से जुड़ा एक बहुत अच्छा प्रयास वहाँ हो रहा है। वहाँ स्पेनिश बोलने वाले कुछ लोगों ने एक टीम बनाई है। इस टीम का नाम है ब्रह्म कमल डोमिनिकाना। टीम के सदस्य मिलकर वैदिक साहित्य का अध्ययन करते हैं। भारत से इतनी दूर रहकर हमारी परंपराओं को सीखने का उनका यह प्रयास बहुत प्रेरक है।
0: प्रधानमंत्री ने देशवासियों से गणेश उत्सव पर गणपति बप्पा की मिट्टी की मूर्ति को प्राथमिकता देने की अपील की। अंत में प्रधानमंत्री ने जल संरक्षण के संबंध में कहा कि वर्षा जल की एक एक बूंद को बचाया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि कैच द रेन अभियान में ढिलाई नहीं होने देनी चाहिए। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि हिंद महासागर की सुरक्षा और समृद्धि भारत और सेशल्स की साझा जिम्मेदारी है। सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हरमाइनी के साथ विक्टोरिया में द्विपक्षीय वार्ता के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में श्री मोदी ने कहा कि भारत ऐसे हिंद महासागर की कल्पना करता है जहां समुद्री सुरक्षा के साथ आर्थिक समृद्धि भी बढ़े।
1: मेरी यात्रा ऐसे ऐतिहासिक अवसर पर हो रही है जब सेशल अपनी स्वतंत्रता के 50 वर्ष पूरे कर रहा है।

0: और हम भारत सेशेल राजनयिक संबंधों की भी 50वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। इन 50 वर्षों की यात्रा में हमने मित्रता को विश्वास में, विश्वास को सहयोग में और सहयोग को जन कल्याण में बदला है। हिंद महासागर ने भारत और सेशेल के संबंधों को सींचा है।
1: दोनों देशों के बीच कृषि, वित्त, अंतरिक्ष और स्वास्थ्य सहित कई क्षेत्रों में समझौतों का आदान प्रदान भी हुआ। सेशेल्स के राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री मोदी को उनके दूरदर्शी नेतृत्व तथा सतत विकास और जलवायु लचीलेपन के प्रति प्रतिबद्धता के लिए देश के सर्वोच्च सम्मान गार्जियन ऑफ द ब्लू होराइजन से सम्मानित किया। प्रधानमंत्री मोदी आज सेशेल्स की नेशनल असेंबली को संबोधित करेंगे, भारतीय समुदाय के लोगों से मुलाकात करेंगे और राष्ट्रीय दिवस के स्वर्ण जयंती समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। विदेश मंत्रालय ने भारतीय नागरिकों को सलाह दी है कि वे सभी आवश्यक दस्तावेज होने पर ही कैलाश मानसरोवर यात्रा करें। मंत्रालय ने यह परामर्श उन भारतीय नागरिकों के सहायता अनुरोध के बाद जारी किया है जो निजी टूर ऑपरेटरों के माध्यम से चीन के लिए आवश्यक प्रवेश परमिट और बिना वीजा के नेपाल में फंस गए हैं। ऑपरेशन अमिस्तात के अंतर्गत भेजी गई भारतीय सहायता वेनेजुएला पहुंच चुकी है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने विश्वास व्यक्त किया कि फील्ड अस्पताल इकाई 30 टन राहत आपूर्ति, 6 टन औषधि और चिकित्सा उपकरण वेनेजुएला में भूकंप के बाद जारी राहत प्रयासों को बढ़ावा देंगे। अमरीकी सेना ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के निर्देश पर लगातार दूसरे दिन ईरान में कई ठिकानों पर हमले किए हैं। इससे दोनों पक्षों के बीच हुए संघर्ष विराम समझौते को लेकर अनिश्चितता की स्थिति उत्पन्न हो गई है। सोशल मीडिया पोस्ट में अमेरिका की सेंट्रल कमान ने कहा कि शुक्रवार को तेल से लदे एक व्यापारिक पोत किकू पर हुए हमले के जवाब में अमेरिका ने ईरान के सैन्य ढांचों, संचार प्रणालियों, वायुसेना के अड्डों, ड्रोन और बारूदी सुरंग बिछाने की क्षमताओं को निशाना बनाया। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विकसित भारत 2047 के दृष्टिकोण को साकार करने में गांवों की मुख्य भूमिका का उल्लेख किया है। नई दिल्ली में राष्ट्रीय ग्रामीण विकास सम्मेलन में श्री चौहान ने कहा कि ग्रामीण विकास में तेजी लाने के लिए विकसित भारत ग्रामीण योजना के अंतर्गत राज्यों के योगदान सहित 1,51,000 करोड़ रुपए से अधिक का प्रावधान किया गया है।
2: गांव केवल भारत का भूगोल नहीं है, भारत की आत्मा है, भारत की अर्थव्यवस्था है, भारत की अस्मिता है। गांव केवल बसाहट नहीं है, वे भारत की सभ्यता है, संस्कृति है, जीवन मूल्य है, परंपराएं हैं और समृद्धि के केंद्र रहे हैं। हमारी ताकत भी गांव है और हमारी संभावना भी गांव में। गांव हमारे लोकतंत्र की सबसे मजबूत इकाई भी है और ये आज का सम्मेलन ग्रामीण समृद्धि का मंथन है।
1: पश्चिम बंगाल में कोलकाता के तारातला भवन हादसे की जांच तेज हो गई है। जादवपुर विश्वविद्यालय और आईआईटी खड़गपुर के विशेषज्ञों की टीमें आज घटनास्थल का निरीक्षण करेंगी। इससे पहले फोरेंसिक विशेषज्ञों की टीम भी मौके से नमूने एकत्र कर चुकी है। निर्माणाधीन गोदाम ढहने से हुए हादसे में अब तक 17 लोगों की मौत हो चुकी है। लंदन के लॉर्ड्स में महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप में आज शाम 7 बजे भारतीय टीम अंतिम लीग मैच में ऑस्ट्रेलिया से खेलेगी। भारत ग्रुप में दूसरे और ऑस्ट्रेलिया पहले स्थान पर है। भारतीय टीम को सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए ये मैच जीतना होगा। उधर बेलफास्ट में दूसरे टी20 पुरुष क्रिकेट मैच में आज शाम 6 बजे भारत का मुकाबला मेजबान आयरलैंड से होगा। दो मैचों की श्रृंखला में आयरलैंड ने पहले मैच में भारत को 34 रन से हराया था। किदांबी श्रीकांत यूएस ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप के सिंगल्स के फाइनल में पहुंच गए हैं। श्रीकांत ने सेमीफाइनल में जापान के युदाई ओकिमोतो को हराया। अर्जेंटीना के फुटबॉलर लियोनेल मेसी लगातार 7 विश्व कप मैचों में गोल करने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी बन गए हैं। आज अंतिम मुकाबले में अर्जेंटीना ने जॉर्डन को 3-1 से हराया। इसके साथ ही विश्व कप में उनके गोलों की संख्या 19 हो गई है। और अब बात मौसम की। मौसम विभाग ने आज असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों और सिक्किम में तेज वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। अगले 2 दिनों के दौरान बिहार, छत्तीसगढ़, ओडिशा, कर्नाटक, कोंकण, गोवा, तमिलनाडु, तेलंगाना, विदर्भ, लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भी तेज वर्षा की संभावना है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि स्वदेशी रक्षा उत्पादन पर ध्यान केंद्रित करते हुए भारत समुद्र से लेकर आकाश तक अधिक सुरक्षित और आत्मनिर्भर बन रहा है। उन्होंने देश में निर्मित C-295 विमान की पहली उड़ान को बड़ी उपलब्धि बताया। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में श्री मोदी ने सोने की खरीदारी से बचने, विदेश यात्रा न करने और कार पूलिंग को बढ़ावा देने की उनकी अपील का समर्थन करने के लिए देशवासियों का आभार व्यक्त किया। भारत और सेशेल्स ने विक्टोरिया में प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता के बाद स्वास्थ्य, कृषि, वित्त और

0: अंतरिक्ष सहित कई क्षेत्रों में समझौतों पर हस्ताक्षर किए। सरकार ने लोगों से सभी आवश्यक यात्रा दस्तावेजों के बिना कैलाश मानसरोवर यात्रा नहीं करने को कहा और लंदन में महिला T20 विश्व कप में भारत अंतिम ग्रुप मैच में ऑस्ट्रेलिया से खेलेगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: मीडियम वेव 401.6 मीटर यानी 747 किलोहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। दिन के 2:30 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम विज्ञान और किसान। आज के इस कार्यक्रम में सुनिए डॉक्टर आनंद कुमार श्रीवास्तव से भेंट वार्ता। विषय है खरीफ में तिलहन उत्पादन। आपसे भेंट कर रहे हैं डॉक्टर सुशील कुमार राय।
2: किसान भाइयों बहनों, इस समय आप खरीफ अभियान में लगे हैं, जहां खरीफ में तिलहनी फसलों की खेती की योजना बनाए हैं, तो इसकी उन्नत कृषि तकनीक क्या है, इसी विषय पर जानकारी के लिए आज हमारे साथ हैं डॉक्टर आनंद कुमार।

0: विषय है खरीफ में तिलहन उत्पादन। आपसे भेंट कर रहे हैं डॉक्टर सुशील कुमार राय।
1: कर किसान भाइयों बहनों, इस समय आप खरीफ अभियान में लगे हैं, जहां खरीफ में तिलहनी फसलों की खेती की योजना बनाए हैं, तो इसकी उन्नत कृषि तकनीक क्या है, इसी विषय पर जानकारी के लिए आज हमारे साथ हैं डॉक्टर आनंद कुमार श्रीवास्तव साहब। स्वागत है कार्यक्रम में। डॉक्टर साहब, ये बताएं कि जहां खरीफ में तिलहनी फसलों की खेती करना चाहते हैं किसान भाई बहन, तो क्या सलाह है आपकी?
2: धन्यवाद डॉक्टर साहब। सबसे पहले किसान भाइयों यो बहनों को मेरा नमस्कार। जैसा जी खरीफ में तिलहनी फसलों के उत्पादन के लिए मुख्य फसलें हैं हमारी मूंगफली, सोयाबीन और तिल। ये उत्तर प्रदेश में इनकी खेती होती है।
1: और रकबा की बात करें तो तिल और मूंगफली का ज्यादा है और सोयाबीन का बुंदेलखंड में।
2: जी सर साहब।
1: तो खेत का चुनाव कैसे करें डॉक्टर साहब?
2: तिलहनी फसल उत्पादन के लिए खेत का चुनाव जो है बहुत ही आवश्यक है, जिसके लिए जो खेत होता है वो समतल होना चाहिए, खरपतवार रहित हो, जल निकास की समुचित व्यवस्था हो तथा बलुई दोमट से दोमट मृदा हो, जिसका पीएच 6.5 से 7.5 हो, ये सर्व उपयुक्त है तिलहनी फसल उत्पादन के लिए।
1: यानी सामान्य पीएच मान हो तो अच्छा रहेगा।
2: जी डॉक्टर साहब।
1: डॉक्टर साहब, प्रजातियों का चुनाव भी महत्वपूर्ण है, तो कौन कौन सी प्रजातियां हैं और उनका उन्नत बीज किसान भाई बहन चुनाव करें, अगर तिल से शुरुआत करें या मूंगफली से शुरुआत करें?
2: सबसे पहले हम मूंगफली की बात करते हैं, तो मूंगफली में जो है दो तरीके की प्रजातियां होती हैं। एक तो होती है फैलने वाली प्रजातियां और दूसरी होती है गुच्छेदार प्रजातियां। तो जो फैलने वाली प्रजातियां हैं उसमें चित्रा है, जो 125 से 130 दिन में पककर तैयार होती है और लगभग एक एकड़ में 10 से 12 क्विंटल उपज प्राप्त होता है। ऐसे ही प्रकाश है, अंबर है, उत्कर्ष है और GJG31 है, जो ये बहुत अच्छी प्रजाति है, जो उत्पादन में 12 से 14 क्विंटल प्रति एकड़ प्राप्त होती है और ये बहुत ही अच्छा इसकी जो है उपज प्राप्त होती है।
1: यानी सर्वाधिक उत्पादन देने वाली प्रजाति है GJG31
2: और एक दिव्या है, वो भी दो प्रजातियां बहुत उपयुक्त हैं मूंगफली के खरीफ मौसम में बुआई के लिए। ये तो हमने फैलने वाली प्रजातियों की बात की। अब गुच्छेदार जो प्रजातियां हैं उसमें कौशल है, G201 है, TG37A है, GJG9, GJG32 और सबसे अभी जो लेटेस्ट प्रजातियां हैं RG638, BG19535। इसकी जो उत्पादन क्षमता है ये 15 से 16 क्विंटल प्रति एकड़ की दर से जो है उत्पादन प्राप्त होता है।
1: यानी सर्वाधिक उत्पादन वाली गुच्छेदार प्रजातियां।
2: जी डॉक्टर साहब।
1: तो इनकी कुछ खासियत भी होगी, जैसे कुछ रोग प्रतिरोधी प्रजातियां होंगे?
2: बिल्कुल डॉक्टर साहब, आपने बहुत सही कहा है। हमने बात की कौशल की, इसमें जो है जो एलो मोजेक होता है ये रेजिस्टेंस है, साथ में जो लीप स्पॉट या रस्ट होता है इससे जो है ये बीमारियों में कम लगता है इन बीमारियों पे।
1: डॉक्टर साहब, तिल की उन्नत प्रजातियों की बात करें तो?
2: जी, तिल की उन्नत प्रजातियों में अभी जो है Type 4 है, शेखर है, प्रगति है, तरुण है और जो अभी लेटेस्ट जो वैरायटी है वो है RT351, RT346। इसकी जो है ये 80 से 90 दिन में पककर तैयार होती है और इसमें तेल की मात्रा 52% तक प्राप्त होता है। तो सबसे अच्छी प्रजाति है RT346 और RT351।
1: ये नई प्रजातियां हैं।
2: जी डॉक्टर।
1: और पूरे उत्तर प्रदेश के लिए हैं?
2: पूरे उत्तर प्रदेश के लिए, संपूर्ण उत्तर प्रदेश में जो है इनको सफलतापूर्वक उगाया जा सकता है।
1: डॉक्टर साहब, सोयाबीन भी एक तिलहनी फसल है जो बुंदेलखंड में काफी लोकप्रिय है।
2: जी,
1: तो इसकी कौन कौन सी उन्नत प्रजातियां चुने किसान भाई बहन?
2: सोयाबीन की उन्नत प्रजातियां हैं PK 472, जिसका दाना पीला होता है और गोल होता है, बड़ा होता है इसका दाना। दूसरा है PK 262, जो 120 दिन से 125 दिन में तैयार होती है, 10 से 12 क्विंटल प्रति एकड़ की दर से उत्पादन प्राप्त होता है। और JS 335 और पंत सोयाबीन 20, पंत सोयाबीन 26, पंत सोयाबीन 27, ये अभी लेटेस्ट वैरायटियां हैं जिनका हम जो है खरीफ मौसम में सफलतापूर्वक पूरे उत्तर प्रदेश में इसकी बुआई कर सकते हैं।
1: डॉक्टर साहब, जहां बुआई करनी है तो बीज दर प्रति एकड़ कितना लगेगी जो भी मूंगफली, तिल और सोयाबीन की प्रजातियां हैं?
2: जी डॉक्टर साहब, पहले जैसे हम मूंगफली की बात करते हैं तो मूंगफली में दो प्रकार की होती है, एक तो फैलने वाली प्रजाति होती है और दूसरी गुच्छेदार प्रजाति होती है। तो जो फैलने वाली प्रजाति होती है तो 28 से 30 किलोग्राम प्रति एकड़ की दर से फैलने वाली प्रजातियों के लिए और गुच्छेदार प्रजातियों के लिए 36 से 40 किलोग्राम प्रति एकड़ की दर से प्रयोग करते हैं। जहाँ पे तिल की बात है तो तिल में प्रति एकड़ 1.5 से 2 किलोग्राम

0: प्रति एकड़ करते हैं। और तिल के दाने बहुत छोटे होते हैं, तो ध्यान रखिए कि स्वस्थ और प्रमाणित बीज का प्रयोग करें, और उसमें जो है जब मात्रा कम होती है तो आप उसकी बुआई के लिए आप उसमें कुछ रेत मिला लीजिए, जिससे उसकी मात्रा बढ़ जाए और आसानी से हम उसकी बुआई कर सकें। और जहाँ पर रही सोयाबीन की बात, सोयाबीन में आप प्रति एकड़ 30 से 32 किलोग्राम प्रति एकड़ की दर से आप सोयाबीन का प्रयोग बुआई के लिए कर सकते हैं।
1: डॉक्टर साहब, बुआई के पहले बीज शोधन और भूमि शोधन भी आवश्यक है?
0: बिल्कुल, बीज शोधन बहुत ही आवश्यक है, जिसके लिए प्रति किलोग्राम बीज के लिए 2 ग्राम थीरम 1 ग्राम कार्बनडाजिन को प्रति किलोग्राम बीज से शोधित करके और 2 से 3 घंटे सुखाने के लिए छोड़ देना चाहिए। उसके उपरांत अगर आप नैनो डीएपी और प्लस नैनो डीएपी 5 ml और 10 ml जैव उर्वरक दोनों को मिला के और फिर 1 घंटे तक सुखाने के बाद तुरंत उसकी बुआई करें, तो इससे बहुत फ़ायदा होगा। जहाँ पे आप जो नैनो डीएपी होता है तो उसका ये फ़ायदा होता है कि जो नैनो पार्टिकल होते हैं वो बीज में चिपक जाते हैं, और जैसे ही बीज का अंकुरण होता है तुरंत जो है फास्फोरस की आवश्यकता को पूर्ति करता है, जिससे पौधों की जड़ों का विकास और अंकुरण बहुत अच्छा होता है। और ये देखा गया है कि खाली आप अगर नैनो डीएपी का प्रयोग करते हैं तो 8 से 10% जो है आपकी उत्पादकता बढ़ती है, साथ में जो उत्पाद है उसकी गुणवत्ता भी बढ़ती है।
1: यानी जो भी तिलहनी फसलें हैं, चाहे मूंगफली है, तिल है, सोयाबीन है, बुआई के पहले नैनो डीएपी से बीज शोधन जरूर करें किसान भाई।
0: बिल्कुल,
1: आपने कहा कि जीवाणु खाद से यानी जैव उर्वरक से बीज शोधन, तो इसका कोई कंसोर्टिया आ रहा है क्या?
0: जी, इसको जो है एनपीके कंसोर्टिया जैव उर्वरक बोलते हैं, जिसमें जो है नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास तीनों प्रकार के जो है हमारे बैक्टीरिया मिले होते हैं, एक साथ में मिले होते हैं। इसमें आपको अलग अलग जो है नहीं प्रयोग करना है। 10 ml प्रति किलोग्राम बीज की दर से आप इसको उपचारित करके 1.5 से 1 घंटे को सुखाने के बाद छाए में सुखा लें और उसके तुरंत उसकी बुआई करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लाभ आपको मिल सकेगा।
1: डॉक्टर साहब, बुआई का उपयुक्त समय क्या है मूंगफली का, तिल का और सोयाबीन का?
0: बुआई का सबसे उपयुक्त समय है कि हम 15 जुलाई तक जो है इसकी बुआई कर लें। अगर हम लोग पहले करते हैं तो मूंगफली के केस में जो है बड निक्रोसिस बीमारी आने की संभावना रहती है, और अगर हम तिल की बात करें तो फाइलोडी बीमारी, अगर हम पहले बुआई करते हैं तो फाइलोडी बीमारी आने का भय रहता है किसान भाइयों। इसलिए उपयुक्त है कि आप 15 जुलाई तक इसकी जो है बुआई अवश्य कर लें।
1: यानी सबसे उपयुक्त समय जुलाई का पहला पखवाड़ा।
0: जी डॉक्टर साहब, मुझे
1: तो बुआई का तरीका कौन कौन सा अपनाएं किसान भाई ताकि फसल अच्छी चले?
0: जी, बुआई के तरीके के लिए है कि बुआई जो है हमेशा जो है आप लाइन से करें। जैसे मूंगफली मैंने पहले बताया था कि हम 2 तरीके की प्रजाति होती हैं, एक फैलने वाली होती है और एक गुच्छेदार होती है। तो जो फैलने वाली प्रजाति होती हैं उसमें 45 से 50 सेंटीमीटर पौध से पौध की दूरी और 15 से 20 सेंटीमीटर पौधे से पौधे की दूरी रखते हैं, और गुच्छेदार प्रजाति में है 30 सेंटीमीटर पंक्ति से पंक्ति की दूरी और 10 से 15 सेंटीमीटर पौधे से पौधे की दूरी रखें, जिससे जो पर्याप्त अगर स्पेस मिलेगा तो उनको प्रकाश, जल और उनको पर्याप्त मात्रा में पोषक तत्व की उपलब्धता होगी, जिससे पौधों की बढ़वार अच्छी होगी और हम कहीं ना कहीं उत्पादन अच्छा प्राप्त होगा। अब तिल की बात है तो तिल में लाइन से लाइन की दूरी 30 से 45 सेंटीमीटर तथा पौधों से पौधों की दूरी 10 से 15 सेंटीमीटर रखते हैं।
1: डॉक्टर साहब, किसान भाइयों बहनों के मन में अभी भी ढेर सारे सवाल होंगे खरीफ में तिलहन उत्पादन के बारे में। अगर इसके लिए आपसे सीधे संपर्क करना चाहें तो अपना मोबाइल नंबर बताते।
0: मेरा मोबाइल नंबर है 99 56 39 12 68, 9956391268, 99 56 39 12 68। डॉक्टर साहब, खरीफ में अच्छी तिलहन उत्पादन करने के लिए ध्यान रखें, पहले तो खेत समतल खरपतवार रहित होना चाहिए, जल निकासी की समुचित व्यवस्था होनी चाहिए, और बलुई दोमट से दोमट मृदा का चयन करें जिसका पीएस 6.5 से 7.5 हो। दूसरा है क्षेत्र विशेष के लिए संस्तुति प्रजातियों के प्रमाणित बीजों का प्रयोग करें, विभिन्न प्रजातियों के लिए निर्धारित बीज दर का ही प्रयोग करें, बीजों को कृषि रसायन एवं जैव उर्वरक से उपचारित करके ही बुआई करें, समय से एवं लाइनों में बुआई करें, मृदा परीक्षण के आधार पर उर्वरकों का प्रयोग करें, तिलहनी फसलों के लिए 10 किलोग्राम सल्फर अवश्य प्रयोग करें।
1: डॉक्टर आनंद कुमार श्रीवास्तव साहब, आज आप कार्यक्रम में आए और खरीफ में तिलहन उत्पादन की उन्नत कृषि तकनीक क्या है इसके बारे में आपने ढेर सारी जानकारी दी। आपके बहुमूल्य सुझाव पर किसान भाई बहन अवश्य ध्यान देंगे। डॉक्टर साहब, आज कार्यक्रम में आने के लिए और

0: महत्वपूर्ण जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
1: खरीफ में तिलहन उत्पादन, अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर आनंद कुमार श्रीवास्तव से ये भेंट वार्ता। आपसे भेंट की डॉक्टर सुशील कुमार राय ने। इसके साथ ही आज का विज्ञान और किसान कार्यक्रम अब संपन्न हुआ। हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं।
2: कर्मचारी भविष्य निधि संगठन क्षेत्रीय कार्यालय गोरखपुर द्वारा अपने सभी हितधारकों यथा भविष्य निधि सदस्यों, नियोक्ताओं, पेंशनरों की समस्याओं एवं शिकायतों के निदान हेतु क्षेत्रीय कार्यालय गोरखपुर के परिक्षेत्र में आने वाले समस्त 12 जिलों में दिनांक 29 जून 2026 को प्रातः 9 बजे से निधि आपके निकट कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है।
3: लीजर रिजॉर्ट बहराइच,
2: डिस्ट्रिक्ट हेल्थ सोसाइटी, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन बलिया,
3: तुलसीपुर शुगर कंपनी लिमिटेड बलरामपुर,
2: सुयश पेपर मिल्स बस्ती,
3: UPSRTC देवरिया,
2: चिन्मय ग्रामोदय शिशु विद्या मंदिर इंटर कॉलेज गोंडा।
3: कर्मचारी भविष्य निधि संगठन क्षेत्रीय कार्यालय गोरखपुर,
2: त्रिवेणी इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीज लिमिटेड कुशीनगर,
3: डिस्ट्रिक्ट हेल्थ सोसाइटी, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन महाराजगंज,
2: डिस्ट्रिक्ट हेल्थ सोसाइटी, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन संत कबीर नगर,
3: बेसिक शिक्षा विभाग श्रावस्ती,
2: नगर पालिका परिषद सिद्धार्थ नगर।
4: प्लेटफॉर्म नंबर 2 से चलने वाली सुपर फास्ट एक्सप्रेस के यात्रियों को
5: बीप, तुमने इसे मोबाइल चार्ज करना,
6: दिमाग चार्ज कर अपना।
7: ऐसे पब्लिक पोर्ट से फोन चार्ज किया तो पर्सनल डेटा होगा पब्लिक।
6: देखा
5: पापा, रुको मैं पे करता हूँ, नो सिग्नल।
7: अब क्या करोगे?
5: फ्री वाईफाई है ना?
6: बुद्धू सुधर जा।
7: पेमेंट्स के लिए नो ओपन वाईफाई,
5: यानी फ्रॉड को करो बाय बाय।
7: RBI कहता है
8: करो सही शुरुआत, बनो फाइनेंशियली स्मार्ट।
2: कर्मचारी भविष्य निधि संगठन क्षेत्रीय कार्यालय गोरखपुर द्वारा अपने सभी हितधारकों यथा भविष्य निधि सदस्यों, नियोक्ताओं, पेंशनरों की समस्याओं एवं शिकायतों के निदान हेतु क्षेत्रीय कार्यालय गोरखपुर के परिक्षेत्र में आने वाले समस्त 12 जिलों में दिनांक 29 जून 2026 को प्रातः 9 बजे से निधि आपके निकट कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है।
3: लीजर रिजॉर्ट बहराइच,
2: डिस्ट्रिक्ट हेल्थ सोसाइटी, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन बलिया,
3: तुलसीपुर शुगर कंपनी लिमिटेड बलरामपुर,
2: सुयश पेपर मिल्स बस्ती,
3: UPSRTC देवरिया,
2: चिन्मय ग्रामोदय शिशु विद्या मंदिर इंटर कॉलेज गोंडा।
3: कर्मचारी भविष्य निधि संगठन क्षेत्रीय कार्यालय गोरखपुर,
2: त्रिवेणी इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीज लिमिटेड कुशीनगर,
3: डिस्ट्रिक्ट हेल्थ सोसाइटी, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन महाराजगंज,
2: डिस्ट्रिक्ट हेल्थ सोसाइटी, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन संत कबीर नगर,
3: बेसिक शिक्षा विभाग श्रावस्ती,
2: नगर पालिका परिषद सिद्धार्थ नगर।
9: हेलो
10: राजेश जी, मैं पुलिस थाने से बोल रहा हूँ। दूसरे कमरे में जाइए, अकेले। आपके पार्सल में ड्रग्स मिले हैं, लंबे जाएंगे।
9: 10 लाख दीजिए, बच जाएंगे।
11: सर इतने कहाँ से?
9: एक लिंक भेजा है, अभी प्रोसेसिंग के लिए 2 लाख भेजिए, बाकी बाद में।
11: 2 लाख
12: क्या हुआ पापा?
11: बेटा ये कह रहे हैं कि मेरे पार्सल में से ड्रग्स मिले हैं।
10: अरे
11: काट दिया।
12: पैनिक मत कीजिए पापा, डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता है, ये सब फ्रॉड है।
11: फ्रॉड?
12: पुलिस, बैंक, RBI इत्यादि के नाम से आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें, उन्हें कोई पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें। अगर समझदारी नहीं दिखाओगे
11: तो पैसे गवाओगे।
13: RBI कहता है
14: जानकार बनिए सतर्क।

हम अपने सुनने वालों को एक बार पुनः याद दिला दें कि आज शाम 6:30 से आप सुनेंगे आईसीसी वुमेन्स T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2026 के अंतर्गत लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड लंदन में भारत और ऑस्ट्रेलिया के मध्य खेले जाने वाले T20 क्रिकेट मैच का आंखों देखा हाल, जिसे हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे।

संस्कृत कार्यक्रम में आज अपराह्न 3:15 पर आप सुनेंगे डॉक्टर अनुज चौबे से वार्ता, जिसका विषय रहेगा वाल्मीकि रामायणे ज्योतिष तत्वम। हेलो डॉक्टर, रिकॉर्डेड फोन इन कार्यक्रम होगा अपराह्न 3:30 पर। आज का विषय रहेगा श्वसन संबंधी विभिन्न विकार, कारण, लक्षण और बचाव। विशेषज्ञ होंगे प्रोफेसर डॉक्टर अजय कुमार वर्मा, विभागाध्यक्ष श्वसन रोग विभाग RML लखनऊ। इस कार्यक्रम का संचालन करेंगे सुभाष खन्ना। संकल्प कार्यक्रम होगा शाम 4:00। इसमें आप सुनेंगे श्रीमती संतोष कुमारी गुप्ता, प्राचार्या

स्पर्श बालिका विद्यालय से भेंट वार्ता, जिसका विषय रहेगा दृष्टिबाधित दिव्यांग बालिकाओं के लिए सामाजिक सुरक्षा और जागरूकता। भेंट करेंगे देवाशीष। हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम लोक माधुरी। आज के इस कार्यक्रम में कलाकार हैं डॉक्टर प्रतिभा मिश्रा। आज हम आपको सुनवाएंगे आपके गाए कुछ अवधी लोकगीत। कार्यक्रम का आरंभ कर रहे हैं आपके गाए इस नकटा के साथ।

लोक संगीत का कार्यक्रम लोक माधुरी आप इस समय सुन रहे हैं आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से। आज कलाकार हैं डॉक्टर प्रतिभा मिश्रा। अब लीजिए सुनिए आपके स्वर में ये दादरा।

अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर प्रतिभा मिश्रा से दादरा। इसके साथ ही लोक संगीत का कार्यक्रम लोक माधुरी अब संपन्न हुआ। हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं मीडियम वेव 401.61 मीटर यानी 747 किलोहर्ट्ज़ पर। हम अपने सुनने वालों को एक बार पुनः याद दिला दें कि आज अपराह्न 3:30 पर आप सुनेंगे रिकॉर्डेड फोन इन कार्यक्रम हेलो डॉक्टर। आज का विषय है श्वसन संबंधी विभिन्न विकार, कारण, लक्षण और बचाव। विशेषज्ञ होंगे प्रोफेसर डॉक्टर अजय कुमार वर्मा, विभागाध्यक्ष श्वसन रोग विभाग RML लखनऊ। कार्यक्रम का संचालन करेंगे सुभाष खन्ना। मीडियम वेव 401.61 मीटर यानी 747 किलोहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। अपराह्न के 3 बजे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम चित्रपट से।

कार्यक्रम के आरंभ में सुनिए लता मंगेशकर का गाया फिल्म मेरा गांव मेरा देश का ये गीत, शब्द रचना आनंद बख्शी की, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का है।

दो रास्ते, ये नाम है उस फिल्म का जिसका गीत अब आप सुनेंगे, स्वर लता मंगेशकर के, शब्द रचना आनंद बख्शी की और संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का है।

और अब कार्यक्रम के अंत में हम आपको सुनवा रहे हैं आशा भोसले का गाया फिल्म तीसरी कसम का ये गीत, जिसे लिखा है शैलेंद्र ने, संगीत शंकर जयकिशन का है।

आशा भोसले के गाए फिल्म तीसरी कसम के इस गीत के साथ ही चित्रपट से कार्यक्रम अब समाप्त हुआ। मीडियम वेव 401.61 मीटर यानी 747 किलोहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। अपराह्न के 3:15 हुए हैं। प्रस्तुत है संस्कृत कार्यक्रम। आज के इस कार्यक्रम में सुनिए डॉक्टर अनुज चौबे से संस्कृत वार्ता। विषय है

हम अपने सुनने वालों को एक बार पुनः याद दिला दें कि आज शाम 4 बजे आप सुनेंगे दिव्यांगों हेतु संकल्प कार्यक्रम। आज इसमें आप सुनेंगे श्रीमती संतोष कुमारी गुप्ता, प्राचार्य स्पर्श बालिका विद्यालय से भेंट वार्ता। विषय रहेगा दृष्टिबाधित दिव्यांग बालिकाओं के लिए सामाजिक सुरक्षा और जागरूकता। आपसे भेंट करेंगे देवाशीष। समय याद रखिएगा आज शाम 4 बजे। हम अपने क्रिकेट प्रेमी श्रोताओं को एक बार पुनः याद दिला दें कि आज शाम 6:30 पर आप सुनेंगे ICC वुमेन्स T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2026 के अंतर्गत लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड लंदन में भारत और ऑस्ट्रेलिया के मध्य खेले जाने वाले T20 क्रिकेट मैच का आंखों देखा हाल, जिसे हम खेल की समाप्ति तक आपको सुनवाएंगे। इसे हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे। समय याद रखिएगा आज शाम 6:30।

401 दशमलव 6 मीटर यानी 747 किलोहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। अपराह्न के 3:30 हुए हैं। प्रस्तुत है रिकॉर्डेड फोन इन कार्यक्रम हेलो डॉक्टर।

0: अब सुनिए हमारा आज का ये कार्यक्रम। हेलो डॉक्टर।
1: दोस्तों नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका आपके इस विशेष कार्यक्रम में। दोस्तों स्वस्थ रहना हर किसी व्यक्ति के लिए सबसे जरूरी है, क्योंकि यदि हम स्वस्थ रहते हैं तभी हम अपने जीवन के वो हर काम कर पाते हैं, अपने हर वो क्रियाकलाप कर पाते हैं। तो जरूरी है कि स्वस्थ रहने के जो मंत्र हैं, जो मूल मंत्र हैं, वो जाने जाएं और जो स्वस्थ रहने की जो सबसे मूलभूत आवश्यकताएं हैं उन्हें समझा जाए। दोस्तों जैसा आपको पता ही है कि सांस लेना जीवन की एक बहुत महत्वपूर्ण क्रिया है। सांस लेने में शरीर के कई ऐसे अंग लगातार काम करते हैं, लगातार वो इस प्रक्रिया को पूरा करते हैं। अब यदि इनमें कोई दिक्कत हो, इनमें कोई विकार हो, तो शायद ये एक बड़ी बीमारी के रूप में आ जाएगी। और कौन कौन सी बीमारियां हमें हो जाएंगी इन श्वसन तंत्र में सहयोग देने वाले अंगों में, अब जरूरी है इसके लिए कि हम किसी विशेषज्ञ से बात करें। और दोस्तों जो आज

0: प्रक्रिया है। सांस लेने में शरीर के कई ऐसे अंग लगातार काम करते हैं, लगातार वो इस प्रक्रिया को पूरा करते हैं। अब यदि इनमें कोई दिक्कत हो, इनमें कोई विकार हो, तो शायद ये एक बड़ी बीमारी के रूप में आ जाएगी। और कौन कौन सी बीमारियां हमें हो जाएंगी इन श्वसन तंत्र में सहयोग देने वाले अंगों में, अब ज़रूरी है इसके लिए कि हम किसी विशेषज्ञ से बात करें। और दोस्तों, जो आज का जो विषय है वो भी इसी से जुड़ा हुआ है। हमारा विषय है श्वसन संबंधी विभिन्न विकार, कारण, लक्षण और उपचार। अब दोस्तों, इसके लिए ज़रूरी है कि किसी विशेषज्ञ से बात की जाए। और दोस्तों, जैसा आपको पता ही है कि हम इस कार्यक्रम में ऐसे विशेषज्ञ को लाते हैं जो इस विधा के विशेषज्ञ होते हैं, जिन्होंने कई दशकों तक इस विधा में कार्य किया हो। और दोस्तों, ऐसे ही विशेषज्ञ के रूप में आज हमारे साथ उपस्थित हैं प्रोफेसर डॉक्टर अजय कुमार वर्मा। आप विभागाध्यक्ष हैं रेस्पिरेटरी विभाग डॉक्टर राम मनोहर लोहिया चिकित्सा संस्थान में। डॉक्टर साहब, बहुत स्वागत आपका कार्यक्रम में।
1: नमस्कार, धन्यवाद।
0: सर, प्रायः हम श्वसन को समझते हैं कि जीवन का ये सबसे अभिन्न अंग है या बहुत महत्वपूर्ण क्रिया है। क्या बीमारियां श्वसन संबंधी व्यक्ति को होती हैं, या प्रायः वो कौन कौन सी बीमारियां किसी व्यक्ति में हो सकती हैं?
1: हमारा श्वसन तंत्र हमारे शरीर को ऑक्सीजन प्रदान करता है और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालता है। और स्वस्थ जीवन के लिए हमारे फेफड़ों का स्वस्थ रहना अत्यंत आवश्यक है। और आज के समय में वायु प्रदूषण, धूम्रपान, संक्रमण और जो बदलती हुई जीवन शैली है, इसकी वजह से श्वसन संबंधी रोग बढ़ रहे हैं, जिनमें कि मुख्यतः अस्थमा हो सकता है, COPD एक बीमारी होती है
0: जी।
1: इसके अलावा ट्यूबरकुलोसिस या क्षय रोग हो गया
0: जी,
1: न्यूमोनिया हो सकती है, लंग कैंसर और एक इंटरस्टिशियल लंग डिजीज। ये 4-5 कॉमन बीमारियां हैं जो श्वसन तंत्र से संबंधित है।
0: क्या कोई ऐसे मुख्य कारण हैं कि इन वजहों से ये बीमारी बढ़ती है या शुरू होती है या इसका प्रभाव ज्यादा होता है?
1: जैसा कि हमने बताया कि बढ़ता हुआ वायु प्रदूषण
0: जी,
1: धूम्रपान, इसके अलावा संक्रमण जो कि इम्यूनिटी कम होने की वजह से हो सकता है, जैसे कि निमोनिया का संक्रमण या फिर TB का संक्रमण, और बदलती लाइफ स्टाइल की वजह से अगर किसी को मधुमेह या जो और जीवन शैली से संबंधित मोटापे की बीमारियां हैं, उनकी वजह से फिर हमारा श्वसन तंत्र प्रभावित होता है और ये प्रीडिस्पोज यानी कि हमको रिस्क पे डालता है कि ये बीमारियां हो जाती हैं।
0: आपने ट्यूबरक्लोसिस का जिक्र किया है कि क्षय रोग हो जाता है, क्या कोई कारण प्रकट करता है कि जिसके आधार पर हम समझ लें कि हाँ, हमको टीबी हो रहा है या अमुक व्यक्ति को टीबी हो रहा है?
1: देखिए, अगर किसी को 2 हफ्ते से ज्यादा की खांसी है, खांसी में खून आना
0: जी,
1: बुखार आना शाम के समय स्पेशली, वजन में कमी और भूख में कमी, ये अगर लक्षण हैं तो हमको टीबी के बारे में सोचना चाहिए।
0: अस्थमा का भी आपने जिक्र किया, क्या वो भी कोई ऐसे बेसिक रीजन प्रकट करता है, कोई ऐसे लक्षण प्रकट करता है?
1: अस्थमा में जैसे कि सांस फूलना
0: जी,
1: सीटी जैसी आवाज आना गले से सांस लेते समय, खांसी विशेषकर रात में या सुबह के समय, और छाती में जकड़न होना, ये मुख्य लक्षण है अस्थमा।
0: क्या उम्र विशेष में, कि जैसे कोई बच्चा है या कोई युवा है, वृद्ध है, क्या उम्र विशेष पर ये ज्यादा प्रभाव डालती हैं?
1: बच्चों में अस्थमा ज्यादा कॉमन है
0: जी।
1: अस्थमा से मिलती जुलती एक बीमारी COPD है, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज, जिसको आमतौर पर लोग ब्रोंकाइटिस कहते हैं। ये वृद्धावस्था में या जो स्मोकर्स होते हैं उनमें कॉमन होता है।
0: तो क्या जैसे अब मान लीजिए ये बीमारियां किसी व्यक्ति को हो जाती हैं, इनकी ये कारण भी हैं, कोई ऐसा टेस्ट है जिसको करवा के हम जान ले या हम सजग हो जाएं कि शायद हमको ये हो सकता है या हो रहा है?
1: अपने नजदीकी चिकित्सक के पास जाना चाहिए
0: जी।
1: और चेस्ट एक्सरे के अलावा एक पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट या स्पायरोमेट्री जो टेस्ट है, ये कन्फर्म कर सकता है कि व्यक्ति को अस्थमा है या COPD है।
0: अजय जी से हमारे ये ढेरों सवाल, ये ढेरों विमर्श जारी रहेंगे, पर आइए आपको सुनवाते हैं एक प्यारा सा ट्रैक।

0: दोस्तों एक बार पुनः आपका कार्यक्रम में स्वागत है।
1: डॉक्टर साहब, बहुत बार जैसे आपने कहा कि अस्थमा है, एसओपीडी है, किसी के गले में खराश रही है, इस तरह की कोई दिक्कत शुरू भी हो रही हो या हो रही हो, क्षय रोग का भी आपने जिक्र किया कि क्षय रोग हो सकता है, खांसी आ रही हो, कई बार लोग दिखाने नहीं जाते, लोग इग्नोर करते रहते हैं, घर में ही कोई काढ़ा बना लिया, कुछ और ऐसे क्रियाकलाप कर लिया और इस बीमारी को बढ़ाते रहते हैं। हमारे श्रोताओं को इसके संदर्भ में क्या बताना चाहेंगे?
2: देखिए, श्वसन तंत्र के रोग बढ़ रहे हैं, अगर आपको कुछ सिम्टम्स या लक्षण आ रहे हैं तो उनको नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए और अपने चिकित्सक से संपर्क करके और सही जांच कराकर इलाज कराना चाहिए।
1: आपने प्री डिजीज का भी जिक्र किया था कि भाई डायबिटीज है या कोई ऐसी और क्रॉनिक डिजीज है जो लगातार बहुत दिनों से है, तो जो हमारे श्रोता हैं इस तरह की जो आपने बीमारियां बताई, सामान्य तौर पर कि भाई किसी व्यक्ति को मौसम बदलने पर अस्थमा की दिक्कत हो रही है, एलर्जी हो रही है, क्या वो सुरक्षा के उपाय अपना लें, क्या ऐसे प्री ऐसे प्रिकॉशंस ले लें कि उनका बीमारियों का प्रभाव ज्यादा ना हो या और कोई बीमारी ना होने पाए?
2: देखिए, धूम्रपान और तंबाकू का सेवन ना करें
1: जी,
2: और घर पे और कार्य जहाँ पे वर्किंग प्लेस है वहाँ पे स्वच्छ वायु होनी चाहिए, नियमित व्यायाम, योगा और प्राणायाम करना चाहिए
1: जी,
2: और संतुलित भोजन, पौष्टिक आहार लेना चाहिए। जरूरत पड़ने पर टीकाकरण भी होता है, एडल्ट वैक्सीनेशन, जैसे फ्लू का टीका है और निमोनिया का टीका है, ये लगवाना चाहिए। और अगर वायु प्रदूषण ज्यादा है तो मास्क का उपयोग करें या उस जगह को अवॉइड करें। इसके अलावा लगातार खांसी या सांस की तकलीफ होने पर अपने चिकित्सक से संपर्क लें। मधुमेह अगर है, उच्च रक्तचाप है या मोटापा है तो इसको इन बीमारियों को नज़रअंदाज ना करें और उनको नियंत्रित करने के लिए अपने डॉक्टर से संपर्क करें।
1: आपने कहा कि वे टीके लगते हैं, जैसे कोई बच्चा है या उसके अभिभावक हैं, उस बच्चे को, शिशु को वो टीके लगवाना चाहते हैं, कहाँ जाकर लगवाएं, कहाँ ये उपलब्ध हैं?
2: बच्चों के टीके तो सभी सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों में नेशनल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम के तहत आते हैं
1: जी।
2: बड़ों के टीके वो डॉक्टर की सलाह पे लगवा सकते हैं और अपने स्वास्थ्य केंद्र पे आ सकते हैं या हमारे डॉक्टर राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान में आ सकते हैं
1: जी। जी, हमारे कुछ श्रोता हैं जिनके कुछ सवाल भी हैं, जिन्होंने हमें मैसेज किए हैं, हमें अपने कॉल रिकॉर्ड कराए हैं। एक श्रोता है, उन्होंने पूछा कि सर, अगर मैं टीवी का कोर्स कर रहा था और अधूरा छूट गया है तो क्या उसे फिर से नए सिरे से शुरू करना होगा?
2: देखिए, अगर अधूरा छोड़ दिया है तो फिर से डॉक्टर के पास जाना चाहिए
1: जी,
2: और फिर से जांच होती है, बलगम की जांच होती है, मॉलिक्यूलर टेस्ट होते हैं जो कि नेशनल टीबी एलिमिनेशन प्रोग्राम के तहत फ्री ऑफ कॉस्ट यानी कि मुफ्त होते हैं
1: जी,
2: और उससे फिर पुष्टि होती है कि ये बिगड़ी हुई टीबी, ड्रग रेजिस्टेंट टीबी तो नहीं है। अगर सेंसिटिव है तो उसका इलाज चलेगा और ठीक हो जाएगा। अगर ड्रग रेजिस्टेंट टीबी है तो ऐसे सेंटर पर इलाज कराना होगा जहाँ पे प्रॉपर इलाज होता है।
1: एक श्रोता है सर, उन्होंने कहा कि ये जैसे ही मौसम बदलता है बार बार मुझे छींके आती हैं, कहा जाता है कि भाई एलर्जी हो गई, कैसे जाने कि किससे एलर्जी है, क्या कोई टेस्ट भी है या कैसे ये जान पाएंगे?
2: देखिए, एक तो हिस्ट्री बहुत इम्पोर्टेंट है, मरीज खुद ही बताता है कि इस चीज से हमें दिक्कत हो गई, जैसे घर में चौंका लग रहा है, झाड़ू लग रहा है, उससे अगर दिक्कत है तो उसको अवॉइड कर सकते हैं। इसके अलावा अगर बहुत सारे एलर्जन हैं उसके लिए फिर अलग से टेस्ट होते हैं
1: जी,
2: जो कि हमारे संस्थान में उपलब्ध है, वहाँ कराया जा सकता है।
1: एक श्रोता है, उन्होंने कहा कि चूंकि मैं नौकरी पेशा व्यक्ति हूँ, मैं बार बार ऑफिस और इधर उधर जाता रहता हूँ, फील्ड वर्क में भी रहता हूँ, अस्थमा है, बचाव कैसे करूँ, कैसे सुरक्षित रहूँ कि दिक्कत कम हो?
2: देखिए, जो चीज़ें एलर्जी उत्पन्न करते हैं उन कारकों से, फैक्टर से बचें
1: जी,
2: अपने मतलब ट्रिगर्स को पहचानें किस वजह से अस्थमा का अटैक होता है
1: जी, जी।

0: चिकित्सक द्वारा अगर इन्हेलर बताए गए हैं तो वो सबसे सुरक्षित दवाएं हैं, उनका नियमित उपयोग करें और धूम्रपान ना करें और वायु प्रदूषण से बचें।
1: एक श्रोता है सर, और कमोवेश हम सबका भी ये सवाल है कि क्या खान पान से भी श्वसन संबंधी रोग होते हैं या उस पर प्रभाव पड़ता है?
0: देखिए, संतुलित एवं पौष्टिक आहार लेना चाहिए और जो कि नींव है अच्छी इम्यूनिटी के लिए। तो अगर इम्यूनिटी कमजोर होगी, वीक होगी, तो इन्फेक्शन का खतरा ज्यादा होता है, जैसे कि ट्यूबरकुलोसिस का और न्यूमोनिया का। इसलिए अपनी खान पान पे विशेष ध्यान रखें और मोटापा ना हो। मोटापे से एक चीज और है, स्लीप एपनिया की बीमारी जो कि आजकल बहुत बढ़ रही है, बहुत मोटे लोग जो होते हैं, तो ये भी एक लाइफस्टाइल से रिलेटेड डिजीज है।
1: क्या लक्षण प्रकट होते हैं इन बीमारियों में?
0: स्लीप एपनिया एक ऐसी बीमारी है जिसमें जो बहुत मोटे लोग हैं, जिनकी गर्दन का साइज, कॉलर साइज बहुत ज्यादा होता है, वो रात में खर्राटे आते हैं। आसपास के लोग बताएंगे कि खर्राटे आ रहे हैं और सोते सोते एकदम से उनकी सांस रुक जाती है और उठ के उनको सांस लेना पड़ता है। इसके अलावा रात में बार बार ऐसा होता है, ऐसे घटनाएं होती हैं, तो दिन में फिर उनको नींद आती है, बैठे बैठे वो सो जाते हैं, और अगर कोई वाहन चला रहे हैं तो उनको एक्सीडेंट का भी खतरा है। इसके अलावा इससे फिर और बीमारियां जैसे कि मधुमेह और उच्च रक्तचाप, ये सब उससे एसोसिएटेड हैं।
1: एक श्रोता है सर, उन्होंने हमसे पूछा कि जो आजकल का जो पर्यावरण है, क्या ये भी हमारे श्वसन तंत्र को प्रभावित कर रहा है?
0: बिल्कुल प्रभावित कर रहा है। हमारा श्वसन तंत्र सीधे वातावरण से कनेक्टेड है और जो भी चेंजेस होते हैं वो सीधा प्रभाव डालते हैं।
1: मतलब आपको सुरक्षित रहना है इस पर्यावरण में भी, अपने आप प्रिकॉशन ले लेने हैं और जैसा आपने उपाय बताए हैं उनका पालन करते रहना है। जी, एक श्रोता है सर, उन्होंने कहा कि मुझे जैसे ही मौसम बदलता है बार बार खांसी जुकाम हो जाता है और खांसी बहुत दिनों तक बनी रहती है, क्या करूं?
0: अपने चिकित्सक को दिखाएं और उचित जांच कराएं। हो सकता है कि ये एलर्जिक राइनाइटिस और उससे रिलेटेड अस्थमा, ये दोनों आपस में इंटर रिलेटेड हैं, तो उचित उपचार जरूरी है डायग्नोसिस के बाद।
1: दोस्तों, डॉक्टर अजय जी से हम आपके ये संदेश, आपके ये फोन कॉल साझा करते रहेंगे, पर आइए आपको सुनवाते हैं एक और प्यारा सा ट्रैक।

0: दोस्तों, एक बार पुनः आपका कार्यक्रम में स्वागत है। और
1: एक हमारे श्रोता हैं और कमोवेश अभी हम जिक्र भी कर रहे थे, उनका कि बार बार मुझे घर वाले बताते हैं कि खर्राटे बहुत ज्यादा आते हैं, कैसे बचूं मैं इससे, क्या उपाय करूं?
2: आप अपना वजन चेक कराएं, थायराइड फंक्शन टेस्ट डॉक्टर बताते हैं वो कराएं, कहीं की हाइपोथायराइडिज्म तो नहीं है। और मोटापा एक बहुत बड़ा फैक्टर है इस बीमारी के लिए, तो मोटापे का नियंत्रण करें।
1: सर, अगर सारांश के तौर पर ये समझा जाए या हम ये जानने का प्रयास करें कि अपनी दैनिक दिनचर्या या अपने खान पान का समावेश करके हम क्या इस बीमारी से बच सकते हैं या इसके प्रभाव को कम कर सकते हैं?
2: बिल्कुल, जागरूकता, समय पर डायग्नोसिस होना, उचित उपचार होने से हम अधिकांश रोगों को नियंत्रित कर सकते हैं। और स्वस्थ फेफड़े स्वस्थ जीवन की आधारशिला है
1: जी।
2: और हम सबको स्वच्छ वातावरण, धूम्रपान मुक्त जीवन और अच्छी हैबिट्स यानी लाइफ स्टाइल को अपना कर हम अपने श्वसन तंत्र और फेफड़ों की रक्षा कर सकते हैं।
1: सर, आजकल जैसे व्यायाम की भी बात की जाती है, लोग योगा कर रहे हैं, क्या इससे भी हमारे फेफड़ों पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है?
2: बिल्कुल पड़ता है। और योगा खाली श्वसन तंत्र नहीं, पूरे शरीर के सभी अंगों के लिए उपयोगी है।
1: जी जी जी जी। तो श्रोताओं, डॉक्टर साहब ने आपको बताया है कि आप लगातार सचेत रहें, डॉक्टर साहब ने जो बातें बताई हैं उसे अपनाते रहें, अपनी दिनचर्या में बदलाव करें, वजन कम करें, व्यायाम करें, योगा करें। और जो डॉक्टर साहब ने बताया कि बीमारियों के यदि ये लक्षण दिख रहे हों तो आप अपने निकट चिकित्सक को दिखाएं, कुशल चिकित्सक को दिखाएं। डॉक्टर साहब, चलते चलते हमारे श्रोताओं को श्वसन संबंधी विकारों से बचने के या इसके लक्षणों को पहचानने के क्या संदेश देना चाहेंगे?
2: देखिए, कोई भी लक्षण श्वसन तंत्र से संबंधित अगर होता है, लंबे समय तक खांसी आ रही है, शाम के समय बुखार आ रहा है, इसके अलावा सीने में जकड़न है, जुखाम बार बार हो रहा है, इन सबको पहचाने, खर्राटे आ रहे हैं, इन सबको पहचाने और अपने चिकित्सक के पास जाएं और प्रॉपर डायग्नोसिस के बाद ट्रीटमेंट शुरू करें।
1: मतलब आपको कोई भी दिक्कत दिख रही हो तो आप चिकित्सक के पास अवश्य जाएं, जिससे आपकी बीमारी का निराकरण होगा, उसकी पहचान होगी और उसके अनुरूप डॉक्टर साहब जो दवाएं बता रहे हैं आप उनका सेवन करते रहें। डॉक्टर अजय, आपने हमें श्वसन संबंधी विकारों के बारे में इतनी अच्छी जानकारी दी, उनके बचाव के संदर्भ में इतनी अच्छी बातें बताई और हमारे श्रोताओं के जो कई सवाल रहे, कई भ्रम रहे, आपने उनका भी निराकरण किया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
2: धन्यवाद।

0: ये था हमारा आज का कार्यक्रम हेलो डॉक्टर।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम हेलो डॉक्टर, इसे आपकी सेवा में प्रस्तुत किया सुभाष खन्ना ने। ये आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है।

0: हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 4 बजे हैं। प्रस्तुत है दिव्यांगजनों हेतु कार्यक्रम संकल्प। आज के इस कार्यक्रम में आप सुनेंगे श्रीमती संतोष कुमारी गुप्ता, प्राचार्य स्पर्श बालिका विद्यालय से भेंटवार्ता। विषय है दृष्टिबाधित दिव्यांग बालिकाओं के लिए सामाजिक सुरक्षा और जागरूकता। आपसे भेंट कर रहे हैं देवाशीष।
1: संकल्प कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को देवाशीष का नमस्कार। श्रोताओं, आज हम चर्चा करेंगे कि जो दृष्टिबाधित दिव्यांग महिलाएं होती हैं, उनको हम कैसे जागरूक कर सकते हैं, कैसे वो सामाजिक सुरक्षा पा सकती हैं और कैसे वो समाज की मुख्य धारा में शामिल हो सकती हैं। क्योंकि जब भी हमारे परिवार में, समाज में किसी बालिका का जन्म होता है तो माता पिता कहीं ना कहीं ये चीज जरूर सोचते हैं कि कैसे जो बालिका है वो शिक्षित हो, कैसे वो आत्मरक्षा कर सके स्वयं की, और कैसे अगर कोई विपदा आ जाए तो वो आगे बढ़ सके। पर अगर आपकी जो बालिका है वो दृष्टिबाधित हो या किसी भी प्रकार की दिव्यांगता से ग्रसित हो तो समाज में वो कैसे अपने स्वयं की आत्मरक्षा कर सकती है, कैसे वो आगे बढ़ सकती है, इसी विषय पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में है

0: श्रीमती संतोष कुमारी गुप्ता जी जो कि प्रधानाचार्य हैं स्पर्श राजकीय दृष्टिबाधित बालिका इंटर कॉलेज लखनऊ से। मैम कार्यक्रम में आपका स्वागत है।
1: नमस्कार सर।
0: सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे मैम कि जो आपका ये स्पर्श राजकीय दृष्टिबाधित विद्यालय है ये क्या है, थोड़ा सा इसके बारे में बताइए।
1: सर मेरा जो विद्यालय है ये लखनऊ में मोहान रोड पर स्थित है और कक्षा 1 से 12 तक हम लोग लड़कियों को यहाँ पे शिक्षा देते हैं। यूपी बोर्ड से संचालित है और ब्रेल लिपि के माध्यम से देते हैं क्योंकि बच्चा देख नहीं पा रहा है तो उसके लिए एक टच की भाषा है जो 6 बिंदुओं पे आधारित होती है। उससे हम लोग 1 से 12 तक की सारी शिक्षा देते हैं, उनकी टचिंग पावर बढ़ाते हैं, उनको समाज में रहने के तौर तरीके ये सारी चीजें हम लोग सिखाते हैं।
0: तो अभी आपने कहा कि ब्रेल लिपि के माध्यम से आप सबको सिखाती हैं, तो ये कितनी आयु उम्र के बच्चे आपके विद्यालय में प्रवेश पा सकते हैं?
1: सर हमारे यहाँ कक्षा 1 में 6 साल का बच्चा एडमिशन लेता है, उनके रहने के लिए हॉस्टल भी है, यदि लोकल लखनऊ का है तो डे स्कॉलर यानी कि अनावासी सुविधा भी है और 6 साल से 18 साल तक के बच्चे हमारे एडमिशन पा सकते हैं किसी भी कक्षा में।
0: कह सकते हैं कि बच्चा जब बहुत ही छोटा होता है, क्योंकि 6 साल का बच्चा सामान्यतः बहुत बड़ा नहीं होता है, तो वो आपके विद्यालय में आता है और क्लास 12 तक लगभग 18 साल तक की जो बालिकाएं हैं वो आपके विद्यालय में पढ़ती हैं, तो कहीं ना कहीं आप पूरा उनका बहुत लंबा समय है आपके विद्यालय में उनका व्यतीत होता है, क्योंकि कक्षा 1 से लेकर कक्षा 12 तक किसी भी एक विद्यालय में रहना मतलब आपने अपनी उम्र का बहुत कुछ सीखा वहां पर, बहुत कुछ जानकारी आपको वहां से प्राप्त हुई। तो कैसे बच्चे आपके विद्यालय में संपर्क कर सकते हैं, क्योंकि आपका विद्यालय जहां तक हमें पूरी उम्मीद है कि इसमें शिक्षा फ्री होती होगी, आवासीय जो भी कुछ फैसिलिटीज है सब कुछ फ्री होता होगा?
1: हमारे विद्यालय फ्री है, आवासीय है, निःशुल्क शिक्षा भी है, किताबें भी हमारे निःशुल्क हैं और कभी भी आप मोहान रोड पे स्थित है शकुंतला मिश्रा यूनिवर्सिटी के पास है वहाँ पे आप आइए और आप वहाँ पे फॉर्म ले लीजिए, बच्चे को ले आइए, इंटरव्यू करवाइए और एडमिशन करा लीजिए। सबसे बड़ी चीज ये है कि उसके लिए आपको दिव्यांगता प्रमाण पत्र होना अति आवश्यक है, अगर आपके पास UDID या दिव्यांगता प्रमाण पत्र नहीं होगा तो विद्यालय में प्रवेश आपका नहीं हो पाएगा।
0: अच्छा अभी आपने कहा कि दिव्यांगता प्रमाण पत्र होना आवश्यक है जो कि स्वाभाविक सी बात है, पर कभी कभार ऐसा भी होता है कि दूर दराज ग्रामीण क्षेत्रों के माता पिता आते हैं किसी प्रकार पूछते हुए कि ये विद्यालय कहाँ पर है, और अपनी बिटिया को लेकर जब आपके विद्यालय में पहुंचते हैं उनके पास अगर प्रमाण पत्र ना हो तो किस प्रकार से आप लोग उनकी सहायता कर सकते हैं कि वो माता पिता अपनी बिटिया का जो प्रवेश है वो आपके विद्यालय में करवा सके?
1: सर हम लोग उनको गाइडेंस करते हैं कि आप अपने यहाँ जाइए जिला अस्पताल से, जो भी दिन निश्चित है जैसे लखनऊ में बुधवार निश्चित है तो उस दिन जाके दिव्यांगता प्रमाण पत्र बनवा लीजिए तभी एडमिशन, क्योंकि हमें भी आधार होना चाहिए कि इसके पास दिव्यांगता प्रमाण पत्र है तभी एडमिशन हो पाएगा। तो हम लोग काउंसलिंग करते हैं, UDID कार्ड भी हम लोग अगल बगल जो संस्थाएं हैं वहां से भी बनवाने की कोशिश पूरी करते हैं कि बन जाए जिससे बच्चों का भविष्य संवर जाए।
0: तो आज का हमारा जो विषय है वो है कि जो दृष्टिबाधित दिव्यांग बालिकाएं हैं, चूंकि बालिका हमेशा कोमल होती है तो किस प्रकार से वो आधुनिक युग में अपने आप को सुरक्षित कर सकती है, अपनी आत्मरक्षा कर सकती है, अगर बात की जाए कि दृष्टिबाधित तो किस प्रकार से हमारी जो दृष्टिबाधित बालिकाएं हैं वो अपनी आत्मरक्षा कर सकती हैं, क्योंकि जब भी आपके विद्यालय में कोई भी माता पिता आते होंगे अपनी नन्ही बिटिया को लेकर के या वयस्क बिटिया को लेकर के कि वो पढ़ाई कर सके, तो कहीं ना कहीं उनके ये मस्तिष्क में एक रहता होगा कि हमारी बिटिया कैसे सुरक्षित रहेगी, कैसे उसको अगर कोई आवश्यकता पड़ेगी किसी चीज की तो किस प्रकार से प्राप्त करेगी, तो कैसे आप बालिकाओं को शिक्षित करती हैं ये बताइए।
1: देखिए पहले तो हम लोग जो पेरेंट्स आते हैं उनको भरोसा दिलाते हैं कि आपका बच्चा यहाँ पे सुरक्षित रहेगा, क्योंकि हॉस्टल है, बाहर भी सुरक्षा के इंतजाम रहते हैं। उसके बाद जब बच्चे हमारे पास आते हैं तो उनको हम लोग सिखाते हैं कि आप अपने लिए कैसे जागरूक होंगे, क्योंकि आप रोड पे चल रहे हैं तो आप अपने अगल बगल की चीजों को महसूस करिए, यानी कि आपका जो हेयरिंग है यानी कि सुनने की क्षमता आप उसको बढ़ाइए, आप अगल बगल की चीजों को महसूस कीजिए कि हम अगल बगल चल रहे हैं तो क्या है। जैसे मान लीजिए आप चल रहे हैं तो आपको कोई आवाज नहीं आ रही तो इसका मतलब आप कहीं सुनसान एरिया में आ गए हैं, अगर आप रोड पे चल रहे हैं तो जाहिर सी बात है आपको गाड़ी मोटर सभी चीज की आवाजें सुनाई पड़ेंगी। और दूसरी चीज ये है कि आप किसी पे बहुत जल्दी भरोसा ना करिए, अगर आपको कोई कह रहा कि हम आपको ले चलते तो आप उससे उसके बारे में पहले पूरी जानकारी ले लीजिए या जो है उससे अच्छे से बातचीत कर लीजिए तब उसके साथ चलिए, नहीं तो आप अपने सेंसर पे ही खुद चलिए और खुद पे भरोसा करके ही आगे बढ़िए, क्योंकि आज का समाज है तो समाज बहुत अच्छे नहीं है, क्योंकि अच्छे लोगों के साथ घटनाएं घट जाती है, दृष्टिबाधित तो भाई आप समझ रहे हैं कि उसको पहचान भी नहीं सकता है, तो इसके लिए हम लोग कहते हैं कि आप उसको देखिए और समझिए तब आप आगे बढ़िए, विश्वास बहुत जल्दी किसी पे ना करे कोई भी, क्योंकि विश्वास करने पे कभी कभी धोखा हो जाता है और आदमी फिर उस चीज को समझ भी नहीं पाता है। और दूसरी चीज ये भी रहता है कि आप

0: बगल की चीजों को देख रहे हैं, समझ रहे हैं, तो उससे भी आप अपनी सुरक्षा कर सकते हैं। आज के दौर में तो मोबाइल है, कई टेक्निक आ गई हैं, जैसे एक आजकल चश्मा आ गया, उसको लगा के भी अगल बगल की चीजें हम लोग महसूस कर सकते हैं कि कहाँ क्या है। या मोबाइल से आप चल रहे हैं तो आप अपने जो भी आपका गार्जियन है उस पे, मोबाइल पे आप अपना लोकेशन ट्रैकर ऑन रखें, जिससे जो है वो आपकी लोकेशन को ट्रैक करता रहे। यही मेन हम लोग बच्चों को सिखाते हैं।
1: तो जैसे कुछ बेसिक नियम भी हैं, कोई बच्चा अगर आपके यहाँ आता है तो कुछ प्रारंभिक रूप से इसको आप सिखाते हैं कि आप इसको समझिएगा कि जैसे कभी आप अनजान जगह पर हो, किसी खतरे में हो, तो कैसे अपनी सुरक्षा कर सकती हैं। क्योंकि कुछ तो बेसिक चीज़ें होती होंगी कि अगर आप अनजान जगह पर हैं आप, तो आप ये काम करिएगा या इस काम को नहीं करिएगा, तो कैसे आप एक दृष्टिबाधित बालिका को समझाती हैं।
0: सर, हम लोग ऐसे समझाते हैं, भी हमने आपको पहले ही बताया कि वही कि किसी अनजान जगह पे हैं तो आप अपने आत्मविश्वास को कम ना होने दें, ना आप डरें कि कोई आया तो आप एकदम से डरने लगे कि हम अनजान जगह आ गए, हमें यहाँ कोई जान नहीं रहा है। तो अगर आप डर गए तो आप फिर नहीं चल पाएंगे। आप अपना जो भी काम है या जो भी चीज है, आप उसको मुस्तैदी से अलर्ट रहिए, और वहां पे आप घबराने की कोई जरूरत नहीं है। आप आसपास के एक आदमी, दो आदमी जो भी मिलते हैं, आप उनसे मदद मांगिए और अपने मंजिल की ओर बढ़ते रहिए।
1: तो जैसे कि अगर किसी दिव्यांग बालिका को कोई आवश्यकता पड़ती है कभी कभार, तो कैसे आप लोग उसको मैनेज करती हैं, क्योंकि घर से दूर होती है वो कभी कभार, क्योंकि आपका आवासीय विद्यालय है 100 बालिकाओं के लिए, तो फिर कैसे आप क्या कराती हैं। मतलब बच्चों को समझा पाना भी आसान काम नहीं होता है, क्योंकि छोटे बच्चे भी आप क्या रहते हैं, जिद तो कभी कभार करते ही होंगे माता पिता से मिलने की या बाहर जाने की, घूमने की, तो कैसे उसको समझाते हैं
0: देखिए
1: आप।
0: सर, घूमने की जहां तक बात है, हम लोग खुद ही उन्हें टाइम टू टाइम घुमाने ले जाते हैं। और ऐसा कोई जिद, बच्चे जब जिद करते हैं तो बच्चों की जिद का समझाने का भी तरीका होता है, थोड़ा उनको समझाते हैं, बहलाते हैं, उन्हें फोन से बात करा दी जाती है, या कभी कभी पेरेंट्स को बोल दिया जाता है कि आप आके बच्चे को ले जाइए, थोड़ा आउटिंग हो जाएगी बच्चे को। घुमा, छोटे बच्चों में थोड़ी सी दिक्कत होती है कि वो जब मम्मी पापा को याद करने लगते हैं वो चुप नहीं होते हैं, तो उन्हें बहुत चीजें दे के बहलाना भी पड़ता है और उनको बताना पड़ता है कि बेटा अब आप स्कूल में आए हो, पढ़ लोगे, कुछ बन जाओगे तो आपके माँ बाप का नाम रोशन होगा। तो काफी मशक्कत के बाद उनको हम लोग समझा भी लेते हैं।
1: अच्छा, किस प्रकार से आप कोर्सेज चलते हैं, कौन कौन से ऐसे कोर्स हैं जो आपके यहाँ चलते हैं जो बच्चे सीख सकते हैं।
0: सर, हमारे वैसे तो पढ़ाई है, लेकिन पढ़ाई में हम लोग म्यूजिक का कोर्स हमारे पास है जो 1 से 12 तक है, उसमें बच्चे सिंगिंग सीखते हैं। अब 6 to 12 कंप्यूटर है, कंप्यूटर सीखते हैं, बाकी हम लोग सिखाते रहते हैं, जैसे बेस मटेरियल से कुछ बनाना सिखा दिया, या हम लोग क्रिकेट उनको खिलाते हैं, कैरम खिलाते हैं, चेस खिला लेते हैं, योगा वगैरह ये सब हम लोग कराते रहते हैं।
1: तो आपने कहा कि जैसे वो कैरम खेलते हैं, चेस खेलते हैं, तो क्या वो स्पर्श के माध्यम से मतलब सीखते हैं कि कोई स्ट्राइकर या कोई
0: सर
1: भी क्या है।
0: सर कैरम बोर्ड तो लो विजन बच्चा ही खेल पाता है, टोटली
1: अच्छा,
0: ब्लाइंड नहीं खेल पाता है, क्योंकि उसमें कोई ऐसा मॉडिफाई हम लोग हुआ नहीं है। चेस तो लो विजन भी खेलता है, और चूंकि मॉडिफाई गिट्टी और मॉडिफाई बोर्ड होता है, तो चेस तो पूर्णतया दृष्टिबाधित और लो विजन दोनों खेल लेते हैं।
1: तो सिंगिंग में मतलब आपके यहाँ काफी ज्यादा बच्चों की रुचि रहती होगी।
0: हाँ, क्योंकि फर्स्ट से रहता है सब्जेक्ट, एज ए सब्जेक्ट तो बच्चों की रुचि रहती है सिंगिंग में भी, और इंस्ट्रूमेंट बजाने में भी बच्चे अच्छे मेरे काफी निकलते हैं।
1: तो आपके यहाँ अक्सर मतलब संभ्रांत परिवार के बच्चे भी आते होंगे, जिनके बच्चे पूरी तरीके से ब्लाइंड होते होंगे, तो वो भी अपने बच्चों को लेकर के आपके यहाँ आते होंगे, रखते होंगे, तो कौन सी सुविधाएं हैं जो आपके यहाँ प्रदान की जाती हैं आवासीय होते हुए, ऐसी कौन कौन सी सुविधाएं
0: सर,
1: हैं।
0: हमारे आवासीय विद्यालय है तो बच्चों को रहने की और खाने की सुविधा, निःशुल्क सुविधा रहती है, जिसमें खाना और इनको डेली लिविंग स्किल का सामान भी दिया जाता है।
1: तो जो आपके यहाँ दूर दराज से दृष्टिबाधित बालिकाएं आती हैं, तो किस प्रकार से आपके यहाँ आती हैं।
0: सर, वो पेरेंट्स के साथ आती हैं, उनका एक कार्ड भी बना रहता है, जो हॉस्टल में छोड़ने से पहले उनको कार्ड दिखाना होता है कि ये पेरेंट्स हैं और छोड़ने आए हुए हैं, और एडमिशन के बाद ही वो कार्ड बनता है, तो बिना उस कार्ड के किसी को भी अंदर एंट्री हम लोग नहीं देते हैं।
1: तो कुछ बस की सुविधा भी रहती है आपके यहाँ। अच्छा
0: नहीं सर, बस की सुविधा नहीं है, बस की सुविधा मतलब जो अनावासी बच्चे हैं उनके
1: जी,
0: लिए रहती है, लेकिन इस समय उपलब्ध नहीं है।
1: तो अगर बात की जाए कि 12th पास करने के बाद बच्चे किस स्ट्रीम में जा सकते हैं, तो क्या आप उस विषय में भी मार्गदर्शन करते हैं कि
0: हाँ
1: जो बच्चा कक्षा 12 पास कर लिया हो
0: हाँ
1: तो वो किस क्षेत्र में आगे बढ़ सकता है।
0: कक्षा 12 के बाद भी हम लोग बच्चों को गाइडेंस करते रहते हैं कि आप कोई कोर्स कर लीजिए, जैसे कंप्यूटर कोर्स है या लाइट इंजीनियरिंग कोर्स है, तो ये सब कोर्स होते हैं, या फिर बच्चे अपना आगे करियर के लिए बीए करते हैं या डीएड स्पेशल कोर्स कर लेते हैं, और उसके लिए किसी भी यूनिवर्सिटी में जा सकते हैं, चाहे दिल्ली यूनिवर्सिटी हो, या बगल में अब तो शकुंतला मिश्रा खुल गया है, उसमें है, बीएचयू में है, सब जगह एडमिशन बच्चे हमारे ले लेते हैं।

0: ज़्यादातर मोस्टली बच्चे कंप्यूटर कोर्स आजकल करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए दिल्ली और देहरादून बच्चे जाते हैं।
1: तो कुछ ऐसा भी आपको कोई पल याद रहा, चूंकि आपका बहुत लंबा समय व्यतीत किया है आपने इस विद्यालय में, तो किसी बच्चे को लेकर आप कुछ ऐसा पल याद रहा हो कि वो कितनी मुश्किलों से आपके यहाँ आया था, फिर उसने पढ़ाई लिखाई की और आज एक प्रतिष्ठित पद पर या किसी एक क्षेत्र में कार्यरत है।
0: सर, इससे पहले मैं बालक विद्यालय में भी काम कर चुकी हूँ, तो बहुत गरीब माता पिता बच्चों को लेके आते हैं। ऐसे बहुत से हम लोगों के यादगार पल हैं कि बच्चे आए, बहुत गरीबी से आए, कई बार उनके पास किराए भी नहीं होते तो हम लोग देते हैं, आने जाने का दोनों तरफ का दे देते हैं। और उसके बाद आज वो बच्चे पढ़ लिख के कोई प्रोफेसर हो गया है, कोई बैंक में है, कोई DSB दिल्ली में है, तो बड़ा अच्छा लगता है कि बच्चे आज हमारे कामयाब हैं और दूसरों की मदद करने के लिए वो लोग भी अब तैयार हो गए हैं।
1: तो इसके अलावा और क्या कहना चाहेंगी माता पिता से
0: बस
1: जिनके बच्चे इस प्रकार से ग्रसित हैं, दृष्टि दिव्यांग हैं?
0: देखिए, जो भी गार्जियन है, माता पिता हैं, अगर बच्चे दृष्टि दिव्यांग है तो कभी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। अब तो बहुत फैसिलिटीज हो गई हैं, बहुत सुविधाएं हो गई हैं। आप थोड़ी सी हिम्मत करिए और किसी न किसी विद्यालय में बच्चों को एडमिशन करा दिए। ऐसा नहीं कि आप स्पेशल स्कूल में ही लेके आए, कोई बात नहीं, नॉर्मल स्कूल में भी बच्चों का एडमिशन होता है, वहां भी एडमिशन करा सकते हैं। बच्चों को उपेक्षा ना दीजिए, आप बच्चों को प्यार दीजिए, सहानुभूति मत करिए, उनके साथ सहयोग करिए। वो भी बच्चे बहुत कुछ करेंगे और बहुत अच्छा बनेंगे, और आपकी सेवा भी वही बच्चे करेंगे।
1: तो फिर अंत में आप हमारे श्रोताओं से, माता पिता से या उन अध्यापकों से क्या कहना चाहेंगी कि जो आपका कार्यक्रम सुन रहे हैं, हमारा कार्यक्रम, कि वो उनके अगर कोई बच्चा है दृष्टिबाधित दिव्यांग है तो वो कैसे अपने आप को आत्मरक्षा कर सकता है और कैसे वो जीवन में आगे बढ़ सकता है?
0: देखिए, सबसे मैं यही कहना चाहूंगी कि बच्चों को आजकल आत्मरक्षा सिखाना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम नॉर्मल बच्चों को भी गुड टच, बैड टच सभी सिखाते हैं, तो दृष्टिबाधित बच्चों को भी सिखाना जरूरी है। चाहे वो गार्जियन हो, चाहे वो अध्यापक हो, चाहे मैं खुद ने, उनको सिखाना जरूरी है और उनमें कॉन्फिडेंस लाना बहुत जरूरी है। तो आप उनमें कॉन्फिडेंस पैदा करिए, बच्चे अपने आप ही अपनी सुरक्षा करना सीख लेंगे।
1: तो संतोष कुमारी जी, आज आप हमारे कार्यक्रम में आई और कार्यक्रम के माध्यम से आपने जो भी हमारे माता पिता हैं उनको आपने जागृत किया कि कैसे वो अपने परिवार में अगर बालक हो चाहे बालिका हो दृष्टिबाधित हैं तो उन्हें हताश होने की आवश्यकता नहीं है। आपने एकदम सही कहा कि हमें उनकी सहायता करनी है, हमें उन पे कोई दया दृष्टि नहीं दिखानी है, हमें उनको समाज की मुख्य धारा में अगर शामिल करना है तो उनको आत्मनिर्भर होना सिखाना पड़ेगा कि आप कैसे स्वयं खड़े हो सकते हैं, कैसे खुद की रक्षा कर सकते हैं। क्योंकि अगर आपने पढ़ाई लिखाई बहुत कर ली परंतु अगर आप स्वयं की रक्षा नहीं कर सकते हैं तो कहीं ना कहीं हमारी जो शिक्षा है वो अधूरी रह जाती है। तो आज के आधुनिक युग में हमें स्वयं की भी रक्षा करनी चाहिए। और आज आपने इतनी बेहद ही महत्वपूर्ण जानकारी दी कार्यक्रम में आने के लिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद सर।
2: दृष्टिबाधित दिव्यांग बालिकाओं के लिए सामाजिक सुरक्षा और जागरूकता, इस विषय पर अभी आप सुन रहे थे श्रीमती संतोष कुमारी गुप्ता, प्राचार्या स्पर्श बालिका विद्यालय से भेंट वार्ता। आपसे भेंट की देवाशीष ने। इसके साथ ही आज का संकल्प कार्यक्रम अब संपन्न हुआ। हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम चित्रपट से। कार्यक्रम के आरंभ में सुनिए मोहम्मद रफी और आशा भोसले का गाया फिल्म कश्मीर के कली का ये गीत, जिसे लिखा है SH बिहारी ने, संगीत OP नैयर का है।

और अब लीजिए सुनिए मोहम्मद रफ़ी का गाया फिल्म प्रोफेसर का ये गीत, जिसे लिखा है हसरत जयपुरी ने, संगीत शंकर जयकिशन का है।

और अब लीजिए सुनिए मोहम्मद रफ़ी का गाया फिल्म राजकुमार का ये गीत, शब्द रचना हसरत जयपुरी की और संगीत शंकर जयकिशन का है।

अभी आप सुन रहे थे मोहम्मद रफ़ी के स्वर में फिल्म राजकुमार का ये गीत। इसके साथ ही चित्रपट से कार्यक्रम अब समाप्त हुआ। हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं, मीडियम वेव 401.61 मीटर यानी 747 kHz पर। हम अपने क्रिकेट खेल प्रेमियों को एक बार पुनः याद दिला दें कि आज शाम 6:30 पर आप सुनेंगे ICC वेमेंस T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2026 के अंतर्गत लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड लंदन में भारत और ऑस्ट्रेलिया के मध्य खेले जाने वाले T20 क्रिकेट मैच का आंखों देखा हाल खेल की समाप्ति तक। इसे हम आपको सुनवाएंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।

मीडियम वेव 401.6 मीटर यानी 747 किलोहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 4:30 हुए हैं। प्रस्तुत है लोक संगीत का कार्यक्रम लोक झंकार। आज के इस कार्यक्रम में कलाकार हैं सुरेश प्रसाद कुशवाहा और साथी। आज हम आपको सुनवाएंगे आपके गाए कुछ भोजपुरी लोकगीत। कार्यक्रम का आरंभ कर रहे हैं आप सबके गाए इस खेमटा के साथ।

लोक झंकार कार्यक्रम में इस समय आप सुन रहे हैं सुरेश प्रसाद कुशवाहा और साथियों के गाए कुछ भोजपुरी लोकगीत। इस खेमटा के बाद हम आपको सुनवा रहे हैं ये लाचारी।

लोक संगीत के कार्यक्रम लोक झनकार में श्रोता आनंद ले रहे हैं सुरेश प्रसाद कुशवाहा व साथी के गाए भोजपुरी लोक गीतों का। और कार्यक्रम में अब लीजिए सुनिए ये पचरा।

लोक संगीत के कार्यक्रम लोक झनकार में आप सुन रहे हैं सुरेश प्रसाद कुशवाहा साथी के गाए भोजपुरी लोकगीत। और कार्यक्रम में अब बारी है एक लोक भजन की।

0: लोक संगीत के कार्यक्रम लोक झनकार में आज आपने आनंद लिया सुरेश प्रसाद कुशवाहा व साथी के गाय भोजपुरी लोक गीतों का। इसी के साथ ही आज का ये कार्यक्रम अब यहीं समाप्त हुआ।
1: फिल्म आकाश के रोशन सितारों की महफिल आज के मेहमान विविध भारती पर हर बुधवार शाम 4 बजे पिटारा में सुनिए। रहिए कहीं भी, सुनते रहिए विविध भारती। विविध भारती आपकी बात पहुंचाए करोड़ों तक।

मीडियम वेव 4.61 मीटर यानी 747 किलोहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र का प्रसारण। शाम के 5 बजने को है, थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे समाचार हमारी दिल्ली केंद्र से।

0: होनी चाहिए। सेशल्स की राष्ट्रीय असेंबली को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि यह जलवायु न्याय का मूल तत्व है। उन्होंने कहा कि सेशल्स और भारत दोनों एक ऐसी दुनिया चाहते हैं जहां विकास समग्रता में हो और जहां अंतरराष्ट्रीय संस्थान समसामयिक वास्तविकताओं को परिलक्षित करे। श्री मोदी ने कहा कि भारत के दृष्टिकोण में सेशल्स का एक विशेष स्थान और ये प्रतिबद्धता पहले से कहीं अधिक ज्यादा मजबूत हुई है।
1: आई केम हियर बिकॉज आई बिलीव दैट सेशल ऑक्यूपाइड अ स्पेशल प्लेस इन इंडियाज विजन फॉर द इंडियन ओशन। टुडे एज आई रिटर्न हियर आफ्टर अ डेकेड दैट कन्विक्शन इज स्ट्रॉन्गर देन एवर एंड आई एम डिलाइटेड टू ज्वाइन यू एज यू सेलिब्रेट 50 years of your independence. Congratulations to you and the people of Seychelles on this special occasion.
0: श्री मोदी ने कहा कि मानचित्र में सेशल्स हिंद महासागर में द्वीपों के एक समूह के रूप में दिखाई देता है। उन्होंने जोर देकर कहा कि भारत इसे एक ऐसे राष्ट्र के रूप में देखता है जो अपनी सीमाओं से परे है। प्रधानमंत्री ने कहा कि यह विशेष सम्मान है कि भारत

0: भारत का कोई प्रधानमंत्री पहली बार सेशल्स की राष्ट्रीय असेंबली को संबोधित कर रहा है।
1: President Armani and the people of Seychelles for honoring me with the guardian of the Blue Horizon earlier today. It will encourage all those who are making sustained efforts for environment conservation. I bring with me the warm greetings and best wishes of 1.4 billion people of India.
0: इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आज सेशल्स की राजकीय यात्रा के दौरान पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास के नेतृत्व के लिए वहां के सर्वोच्च नागरिक सम्मान गार्जियन ऑफ द ब्लू होराइजन से सम्मानित किया गया। सेशल्स के राष्ट्रपति डॉ. पैट्रिक हर्माइनी ने प्रधानमंत्री मोदी को यह सम्मान प्रदान किया। प्रधानमंत्री ने यह सम्मान पर्यावरण संरक्षण और जलवायु परिवर्तन का मुकाबला करने के लिए प्रतिबद्ध सभी देशों को समर्पित किया। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने प्रधानमंत्री को सेशल्स के सर्वोच्च सम्मान गार्जियन ऑफ ब्लू होराइजन से सम्मानित किए जाने पर बधाई दी। श्री जयशंकर ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि यह सम्मान जलवायु परिवर्तन और सतत विकास को बढ़ाने में श्री मोदी की नेतृत्वकारी भूमिका को दर्शाता है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि यह सम्मान श्री मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व और वैश्विक जलवायु परिवर्तन के प्रति अटूट प्रतिबद्धता का प्रमाण है। इसके अलावा केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल, भूपेंद्र यादव, मनोहर लाल, जितेंद्र सिंह और अन्य मंत्रियों ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई दी है। प्रधानमंत्री ने कहा है कि स्वदेशी रक्षा उत्पादन पर ध्यान केंद्रित करते हुए भारत समुद्र से लेकर आकाश तक अधिक सुरक्षित और आत्मनिर्भर बन रहा है। आज आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में श्री मोदी ने कहा कि जून महीने में स्वदेशी C-295 विमान की पहली उड़ान के साथ ही भारत ने विमानन क्षेत्र में एक बड़ी सफलता हासिल की है। विदेश मंत्रालय ने भारतीय नागरिकों को सलाह दी है कि वो आवश्यक दस्तावेज होने पर ही कैलाश मानसरोवर की यात्रा करें। यह परामर्श उन भारतीय नागरिकों के अनुरोध के बाद जारी किया गया है जो निजी टूर ऑपरेटरों के माध्यम से चीन के लिए आवश्यक प्रवेश परमिट और बिना वीजा के नेपाल में फंस गए हैं। अमरीका ने लगातार दूसरे दिन ईरान के कई सैन्य ठिकानों पर हवाई हमले किए हैं। ये कार्रवाई शुक्रवार को होर्मुज जलडब्रू मध्य में एक तेल टैंकर पर हुए ड्रोन हमले के जवाब में की गई। महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में लंदन के लॉर्ड्स में भारत आज अपने ग्रुप के मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया के साथ खेलेगा। मैच भारतीय समय के अनुसार शाम 7 बजे से खेला जाएगा। उधर भारत और इंग्लैंड के बीच दो T20 क्रिकेट मैचों की श्रृंखला का दूसरा और अंतिम मैच आज बेलफास्ट में खेला जाएगा। मैच भारतीय समय के अनुसार शाम 6 बजे से शुरू होगा। शुक्रवार को पहले मैच में भारत को आयरलैंड से 34 रन से हार का सामना करना पड़ा था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: मीडियम वेव 41.6 मीटर यानी 747 किलोहर्ट्ज पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र। आप सुनिए आज के शेष व कल के विशेष कार्यक्रमों की रूपरेखा। पहले एक नजर आज के शेष कार्यक्रमों पर। आज शाम 6:30 से आप सुनेंगे विमेंस T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2026 के अंतर्गत लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड लंदन में भारत और ऑस्ट्रेलिया के मध्य खेले जा रहे T20 क्रिकेट मैच का आंखों देखा हाल आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। युवा तरंग कार्यक्रम होगा आपसे थोड़ी ही देर में शाम 5:10 पर। कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवाएंगे युवा और नशे का दलदल। इस विषय पर डॉक्टर अनूप कुमार भारती से डॉक्टर नगिन सिंह रघुवंशी की भेंटवार्ता। शाम 5:45 पर हम लेकर हाजिर होंगे कार्यक्रम नई उड़ान। कार्यक्रम में आज अर्बन चौपाल के अंतर्गत आप सुनेंगे महानगरों में मानसिक तनाव और मन की तलाश इस विषय पर ओबी आधारित बातचीत। ये थी जानकारी आज के शेष कार्यक्रमों की। अब सुनिए कल के कुछ मुख्य कार्यक्रमों के बारे में। कृषि चर्चा कार्यक्रम में कल सवेरे 6:05 पर सुनिएगा डॉ

रुद्र प्रताप नारायण सिंह से डॉक्टर सुशील कुमार राय की भेंटवार्ता, जिसका विषय है मूंगफली की उन्नत कृषि तकनीक। सवेरे 7 बजे स्वास्थ्य चर्चा में नीना सोनकर चर्चा करेंगी सेहत के लिए प्रोटीन युक्त चना इस विषय के बारे में। कल सवेरे 7:10 पर विविधा कार्यक्रम का विषय होगा यथा दृष्टि तथा सृष्टि। कल सवेरे 7:31 पर शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में सुनेगा पंडित भीमसेन जोशी का गायन। रात 10:30 पर हम आपको सुनवाएंगे ऋषिकेश गांगुडे का गायन। जिले की हलचल का प्रसारण समय होगा प्रातः 9:15। उर्दू प्रोग्राम के तहत कल सवेरे 9:30 पर समाप्त फरमाइएगा दूसरे दरफेश की कहानी के अंतर्गत किस्सा 4 दरफेश। कल दिन में 1:15 पर बहनें सुनेंगी अपना कार्यक्रम घर आंगन। विज्ञान और किसान कार्यक्रम में कल दिन में 2:30 पर आप सुनेंगे अंगनू दास से सफलता की कहानी के अंतर्गत खरीफ उत्पादन और इनसे भेंट करेंगे ओम प्रकाश शर्मा। युवा तरंग कार्यक्रम लेकर हम हाजिर होते हैं 5:10 पर। वहीं कार्यक्रम नई उड़ान होगा 5:45 पर। लोकायतन कार्यक्रम में 6:30 पर हम आपको सुनवाएंगे डॉक्टर ब्रजेंद्र कुमार श्रीवास्तव से भेंटवार्ता। मौसमी बुखार कारण और निवारण से भेंट करेंगी नीना सोनकर। 6:50 पर खेती किसानी कार्यक्रम में आप सुनेंगे प्रकाश चंद्र सिंह से डॉक्टर सुशील कुमार राय की बातचीत। विषय होगा खरीफ में हरा चारा उत्पादन। स्वास्थ्य वार्ता कार्यक्रम आप सुनेंगे कल 7:31 पर। कार्यक्रम में कल हम आपको सुनवाएंगे गुर्दे के ट्यूमर, इस विषय पर प्रोफेसर डॉक्टर मनोज यादव से आशीष चतुर्वेदी की भेंटवार्ता। साथ ही आप सुनेंगे वार्ता फिजियोथेरेपी से होता सहज जीवन, इसके वार्ताकार होंगे डॉक्टर विकास कुशवाहा। प्रदक्षिणा मिश्रा का काव्य पाठ हम आप सुनवाएंगे कल रात 8:00 हिंदी कार्यक्रम में। हरिहरन की गाय गजलों का आनंद श्रोता ले सकेंगे कल के सुगम संगीत के कार्यक्रम में। और कार्यक्रम का प्रसारण समय होगा कल रात 8:10 पर। इसके अलावा समय समय पर फिल्म संगीत का आनंद भी आप ले सकेंगे। श्रोताओं, आपको एक बार फिर बता दें आज 6:30 से आप सुनेंगे आईसीसी वुमेन्स T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2026 के अंतर्गत लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड लंदन में भारत और ऑस्ट्रेलिया के मध्य खेले जा रहे T20 क्रिकेट मैच का आंखों देखा हाल आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। कार्यक्रम विवरण अब समाप्त हुआ। मीडियम वेव के मीटर पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र का प्रसारण। 5:10 हुए हैं। अब सुनिए नई सोच और नई उमंग के साथ कार्यक्रम युवा तरंग।

जहां प्रेम हो वहां भेद नहीं होता, जहां सम्मान हो वहां ऊंच नीच नहीं होती, और जहां समरसता हो वहां समाज ही नहीं पूरा राष्ट्र आगे बढ़ता है। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबका आपके अपने फेवरेट प्रोग्राम युवा तरंग में, मेरे यानी आपके अपने रेडियो दोस्त अभिषेक के साथ। और साथियों, आज हम चर्चा करेंगे ऐसे विषय पर जो केवल एक दिवस तक सीमित नहीं बल्कि हमारे जीवन का आधार है, सामाजिक समरसता दिवस। सामाजिक समरसता का अर्थ है ऐसा समाज जहां शांति, जाति, धर्म, भाषा, क्षेत्र, लिंग या आर्थिक स्थिति के आधार पर किसी प्रकार का भेद न हो, जहां हर व्यक्ति को सम्मान, समान समान अवसर और अपनापन मिले। यही भावना भारत की संस्कृति की पहचान रही है।

0: yes, yes. Say it again.
1: कर्मचारी भविष्य निधि संगठन क्षेत्रीय कार्यालय गोरखपुर द्वारा अपने सभी हितधारकों यथा भविष्य निधि सदस्यों, नियोक्ताओं, पेंशनरों की समस्याओं एवं शिकायतों के निदान हेतु क्षेत्रीय कार्यालय गोरखपुर के परिक्षेत्र में आने वाले समस्त 12 जिलों में दिनांक 29 जून 2026 को प्रातः 9 बजे से निधि आपके निकट कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है।
2: लीजर रिजॉर्ट बहराइच,
1: डिस्ट्रिक्ट हेल्थ सोसाइटी, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन बलिया,
2: तुलसीपुर शुगर कंपनी लिमिटेड बलरामपुर,
1: सुयश पेपर मिल्स बस्ती,
2: UPSRTC देवरिया,
1: चिन्मय ग्रामोदय शिशु विद्या मंदिर इंटर कॉलेज गोंडा।
2: कर्मचारी भविष्य निधि संगठन क्षेत्रीय कार्यालय गोरखपुर,
1: त्रिवेणी इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीज लिमिटेड कुशीनगर,
2: डिस्ट्रिक्ट हेल्थ सोसाइटी, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन महाराजगंज,
1: डिस्ट्रिक्ट हेल्थ सोसाइटी, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन संत कबीर नगर,
2: बेसिक शिक्षा विभाग श्रावस्ती,
1: नगर पालिका परिषद सिद्धार्थ नगर।
3: तो साथियों, आप सभी बेस्ट हैं, पर कुछ लोग हैं जो

0: कुछ यूथ ऐसा है जो बेस्ट होने के चक्कर में कुछ अलग रास्ते पे निकल जाता है, और उस रास्ते का नाम है नशे का दलदल। तो साथियों, इस नशे के दलदल से निकलने के लिए और कैसा होता है, किस तरीके से इसे बचना चाहिए, इस पर वार्ता की हमारे स्टूडियो में आकर डॉक्टर अनूप कुमार भारती ने, जिनसे वार्ता की है डॉक्टर नगेंद्र सिंह रघुवंशी ने। तो आइए सुनते हैं ये भेंट वार्ता।
1: नशा एक ऐसा शब्द जिसके बारे में हम लोग बहुत पहले से समझते बूझते रहे हैं, या कहें कि जब से जानने लायक हुए हैं तब से यह शब्द हमारे लिए आता है, वह चाहे हमारे पढ़ाई के लिए नशा हो पॉजिटिव वे में, या फिर कहें कि उसके जो शारीरिक दुरुपयोग करने के तरीके होते हैं, जो साधन होते हैं उनका उपयोग किया, दोनों को नशा ही कहते हैं। आप कौन वाला चुनाव करना है अपने जीवन में, आपको यह निर्धारित करता है कि आपके समाज परिवेश या फिर किस परिवार से संबंधित हैं, और साथ ही साथ आपका अपना जो क्षेत्र है, अपनी जो इच्छा शक्ति है उसके आधार पर। लेकिन दूसरे वाले की बात जो है नशा की, मादक पदार्थों की बात होनी चाहिए, जैसा कि आपने सुना ही, युवा और नशे का दलदल, मादक पदार्थों का दुरुपयोग और पुनर्वास के प्रभावी तरीकों पर बात करने के लिए हमारे स्टूडियो में आज डॉक्टर अनूप कुमार भारती जी हैं, जो कि यहाँ लखनऊ विश्वविद्यालय के समाजशास्त्र विभाग में आप कार्यरत हैं, बच्चों को शिक्षा देते हैं, तो इनकी शिक्षा आज हमें भी मिलेगी, यानी हम युवाओं के लिए क्या कुछ सावधानी हो सकती है, क्या बातें हो सकती हैं जिसको हम दृष्टिगत कर सकते हैं। तो डॉक्टर साहब, स्वागत करते हुए आपसे
0: धन्यवाद।
1: समझना चाहेंगे कि भारत में जो युवाओं की बात करें या बुजुर्गों की बात करें, पूरे समाज की बात कर लें, तो नशा जो देखने में आता था पहले कि तंबाकू के रूप में हुआ करता था या फिर गांजा के रूप में, ऐसे ऐसे तमाम हुआ करते थे, लेकिन अब उनका स्वरूप बदल गया है। युवा जो आज के हैं वह कुछ आधुनिकता वाले नशा या मादक पदार्थों का प्रयोग कर रहे हैं, तो ये बदलाव कैसे आया, क्यों आया, एक समाजशास्त्री के या फिर कहें कि सामाजिक क्षेत्र में कार्य करते हुए आपको देखने को मिला हो?
2: नहीं, बहुत ही अच्छा प्रश्न किया है आपने। खास बात यह है कि आप जानते हैं अच्छी तरीके से समय परिवर्तनशील होता है, और जब भी परिवर्तनशीलता की बात आएगी कुछ नए नए आयाम जुड़ते चले जाते हैं, वो चाहे किसी दुरुपयोग के पर्सपेक्टिव में देखा जाए या किसी इसके सापेक्ष पर्सपेक्टिव में हम देखने की कोशिश करें। आपने जो बात कही है कि पहले तंबाकू का सेवन है या कह सकते हुक्का पीने का सेवन किया जाता था या खैनी खाने का बात की जाती, आज भी अगर समाज में हम देखेंगे तो कहीं ना कहीं ग्रामीण परिक्षेत्र में या शहरी परिक्षेत्र में सब चीज़ें देखने को मिलती हैं, मगर इसके साथ साथ नई चीज़ें भी सामने लेकर के आई हैं। सामनों में अगर हम बात करें तो मादक पदार्थों के सेवन के अंतर्गत जैसे भांग का सेवन जो है वो नए रूप में सामने आ रहा है, क्योंकि दवाइयों के रूप में उपयोग किया जाता है, या अगर हम अफीम की से संबंधित आधारित दवाओं की बात करें तो उसका उपयोग करने की बात की जाती है, क्योंकि कहीं ना कहीं डॉक्टर की सलाह पे इन सभी मादक पदार्थों का उपयोग करने के लिए सर दर्द या बदन दर्द के रूप में इनको कहा जाता है कि उपयोगी सार्थक सिद्ध होते हैं। तो उसकी ज़्यादा से ज़्यादा जो लत होती है वो शारीरिक हनन का काम करती है, जिससे मानसिक विकार या शारीरिक विकार होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। और एक नया रूप आपके समय पे ई सिगरेट के रूप में आ गया है, एक ये भी नई चीज़ है, नई विधा है,
1: बिल्कुल,
2: जहाँ पे स्मोक नहीं निकलता है।
1: विस्तार से जानेंगे, उससे पहले समझना चाहेंगे आपसे कि युवाओं में इस समस्या को किस हद तक आप देख पा रहे हैं।
2: देखिए, समस्या तो ये शुरुआत से ही चलती चली आ रही है, मगर आज के परिप्रेक्ष्य में अगर देखें और विशेष रूप से अगर हम भारतीय परिप्रेक्ष्य की बात करें तो हमारा सबसे ज़्यादा युवा वर्ग इस समय भारत का है, और जो एक युवा शक्ति के रूप में देखा जा रहा है, तो अगर भारत के 2047 के लक्ष्य की अगर विकसित राष्ट्र की हमको प्राप्ति करनी है तो हमको युवाओं को कहीं ना कहीं संभालने की या उनको जागरूक करने की और इस नशे की जो लत है उससे हमको छुड़ाने की कोशिश करनी पड़ेगी। इसको दो आधार पर या दो आंकड़ों के आधार पर हम समझ सकते हैं। एक एम्स की एक 2019 की एक रिपोर्ट रही है, उसमें ये इस बात का उल्लेख किया गया है कि शहरी और ग्रामीण क्षेत्र में इसका दुरुपयोग लगातार ज़्यादातर बढ़ गया है, या के लिए नशे की लत युवाओं में ज़्यादातर बढ़ी है। और एक रिपोर्ट अगर हम बात करें यूनाइटेड नेशन की, अगर रिपोर्ट की हम बात करें तो उसमें कहा गया है कम से कम 6% जो आबादी है पूरे विश्व की कहीं ना कहीं किसी प्रकार के मादक पदार्थों का सेवन करती है। तो एक बहुत बड़ा जो युवा वर्ग है इससे प्रभावित रहता है, और ये आयु वर्ग की अगर हम बात करें तो युवाओं को शामिल करने के साथ साथ हम 10 से 75 साल तक के वर्ग के लोगों को भी इसमें शामिल कर सकते हैं। तो बुजुर्गों भी जो है कहीं ना कहीं नशे की लत पे रहते हैं, मगर 18 से 35 साल का जो हमारा युवा वर्ग है ये बहुत ही ज़्यादा प्रभावित है।
1: 2047 की बात आपने किया डॉक्टर साहब, तो उस समय देखने में यह आएगा कि जो आज के युवा हैं वह बुजुर्गों की श्रेणी में रहेंगे, मतलब बुजुर्गों की संख्या उस समय ज़्यादा हो जाएगी हमारे देश में युवाओं की अपेक्षा। ऐसी स्थिति में जब नशे के सेवन की बात की जाती है तो पहले एक

0: अच्छी बात लगती थी कि जो बुज़ुर्ग हुआ करते थे या ज़्यादा उम्र के थे वही उसका सेवन करते थे, हुक्का हो, चिलम हो, ये सब चीज़ों का, लेकिन युवाओं में बहुत कम था। तो आज की तारीख में जब आप आगे देखना चाहते हैं तो इस दलदल में फंसते हुए युवाओं को, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों की जो बात है उसमें देखने को ज़्यादा मिल रहा है। तो क्या कुछ नशे का जो पैटर्न है वह हमें रोकने के लिए दिशा में आगे बढ़ रहा है या फिर इसके विस्तार को और गति दे रहा है?
1: देखिए, रोकने की अगर हम बात करेंगे तो दोनों पक्षों की बात की जा सकती है, क्योंकि रोकना कहीं ना कहीं हमको लगता है कि लत को छुड़ाने की बात है और बेहतर करने की बात है। मगर कोई भी चीज़ समाज में अगर विद्यमान अगर है तो उसके सकारात्मक और नकारात्मक दोनों पहलुओं की बात की जानी चाहिए। जहाँ तक आपने पैटर्न की बात कही है तो पैटर्न पर अगर आप देखेंगे तो सबसे पहले युवाओं में एक जो बड़ी चीज़ आती है, जो खास बात है कि युवाओं में 10 वर्ष से लेकर के अगर हम 25 से 35 साल की अगर हम बात करें तो उसमें एक पीयर प्रेशर जो होता है वो बहुत ज़्यादा भूमिका निभाता है। कहीं ना कहीं एक अपने दोस्तों के साथ में, मित्रों के साथ में अगर वो इस चीज़ का सेवन कर रहे हैं तो लगता है कि हमको भी इस बात का सेवन करना चाहिए। तो एक तो एक ये बड़ी चीज़ हो गई। दूसरी, अगर हम पैटर्न में हम बात करें तो कहीं ना कहीं मेंटल स्ट्रेस को या मानसिक तनाव को कम करने के लोग इसका सेवन करते हैं ताकि हमको कुछ पल के लिए राहत मिल जाए, बाद में वो जो है आदत के रूप में शुमार हो जाती है। तीसरा, एक जो पैटर्न देखने को मिलता है तो जो हमारे जो सेलिब्रिटीज़ हैं, बहुत सारे जो जिनको हम लोग नामचीन व्यक्ति होते हैं, आइकॉन मानते हैं, तो वो उनको देख करके लोग भी इसका सेवन करने की कोशिश करते हैं और अपने को वहाँ पे स्थापित करने की कोशिश करते हैं कि हम भी उनके बराबर की हम बात कर रहे हैं। और इसके साथ साथ अगर हम बात करें तो एक चौथी चीज़ अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं इस मादक पदार्थ की जो आसान उपलब्धता है कि हम कहीं पर जा करके किसी भी तरीके से कोई भी व्यक्ति इसकी खरीदारी कर सकता है। तो ये चार मुख्य रूप से ऐसे जो कारण हैं जिसकी वजह से जो कह सकते हैं कि इस पैटर्न को अगर आप देखेंगे तो युवाओं को नशे की लत की तरफ जो है आगे की ओर ले जाता है।
0: जी, तो इसका तो विभिन्न क्षेत्रों में, जैसे आपने शुरू में कहा कि मस्तिष्क पर असर पड़ता है, शरीर कमज़ोर होता है या व्याधियाँ घेरती होंगी, इन सब तथ्यों को लेकर अगर देखा जाए तो क्या वास्तव में यह इतनी स्तर तक का हानि पहुँचाने में सक्षम है?
1: हाँ, ज़रूर। देखिए, मेरा तो अपना मानना है, मैं तीन आयाम की बात करता हूँ। एक तो हो गया शारीरिक की बात कर सकते हैं जो फिजिकल है, दूसरा मेंटल है, तीसरा जो बहुत लोग कम इस पर नज़रअंदाज करते हैं वो होता है सोशल हेल्थ। आज के समय में सोशल हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट हो गई है, क्योंकि हम समाज के हम एक अभिन्न अंग हैं और हमसे हर व्यक्ति या समाज का कोई भी व्यक्ति, परिवार का सदस्य हमसे कुछ ना कुछ सीखने की कोशिश करता है। तो अगर हम नशे की लत में अगर हैं तो इसका निश्चित रूप से इसका प्रभाव हमारे शारीरिक विकास पे पड़ता है, हमारे शारीरिक कह सकते हैं कि दुर्गुणों को प्रभावित कर को आगे बढ़ाने की कोशिश करता है, या हमारे कह सकते हैं कि सारे के सारे शारीरिक दुष्प्रभाव सामने आने लगते हैं। और मानसिक की अगर हम बात करें तो हमारी जो मानसिक क्षमता है या मानसिक तनाव को कम करने के लिए मानसिक क्षमता जो होती है वो कहीं ना कहीं प्रदूषित हो जाती है, या कह सकते हैं कहीं ना कहीं से वो प्रभावित हो जाती है, जिसकी वजह से हम अपने सोचने समझने की क्षमता को हम खो देते हैं, ये हम अपने आप में नहीं रहते, ये हम कह सकते हैं। दूसरा, जो सामाजिक स्वास्थ्य की बात हम कर रहे हैं, क्योंकि हमने जैसा कहा कि अब समाज के विभिन्न अंग हैं, तो कहीं ना कहीं हमसे लोग अभिप्रेरित होकर के वो देखते हैं कि समाज का एक ऐसा व्यक्ति जो लगातार इस बात का सेवन कर रहा है, और वो उसकी एक लोगों में मन भ्रांति भी है कि शराब का सेवन करने वाला, कुछ सेवन करने वाला व्यक्ति लंबा जीवन जी रहा है तो हम भी जीवन करेंगे। या कभी भी आप देखेंगे बहुत से कभी ऐसी किंवदंतियां सामने आती है कि बहुत लोग सोचते हैं कि किसी व्यक्ति की अचानक डेथ हो गई, मगर बाद में आता है उस व्यक्ति ने कभी ना शराब का सेवन किया था, ना किसी अल्कोहल को लिया था, ना किसी मादक पदार्थ का दिया था। लोग कहते हैं कि बेकार है कि हाँ कि क्या करेंगे कि उसने कुछ किया ही नहीं फिर भी उसे चला गया, तो इससे अच्छा हम कुछ कर लें। तो जो कुछ कर लें ये एक सामाजिक स्वास्थ्य को सीधे सीधे प्रभावित करता है।
0: समाज तो बिल्कुल स्वच्छंद होता है और वो परंपरागत जो रूढ़िवादियां हैं या फिर आधुनिकता है उसके सम्मेलन से ही चलता है, आगे बढ़ता है, लेकिन शिक्षण संस्थान ऐसे होते हैं जहां पर बिल्कुल स्ट्रिक्ट या ये कहें कि एक सीधा सा लक्ष्य होता है आगे बढ़ाना बच्चों को। लेकिन अब देखने में आता है कि जो शिक्षण संस्थान है उसी कैंपस में या कैंपस के इर्द गिर्द ही इसका सेवन सबसे ज़्यादा होता है।
1: हाँ, सही बात कह रहे हैं, बिल्कुल है, क्योंकि इतिफाक से ये समाज का हमारा जो है विरोधाभास है कि जिसको हमको रोकना चाह रहे उसी चीज़ को हम जो है उसका विक्रय भी कर रहे हैं, क्योंकि अल्टीमेटली जो है हमारे पास जो कंपनीज वगैरह हैं उनको अपना बिजनेस करना है, और युवा सबसे ज़्यादा टारगेट में होता है, वो भ्रमित रहता है कि उसको पता नहीं होता है कि हमको क्या करना है। मगर सरकार के द्वारा बहुत सारे ऐसी स्कीमें चलाई जा रही हैं, प्रतिबंधित भी किया गया है कि हाँ कि हम जो स्कूल या कह सकते हैं जो शैक्षणिक संस्थान है उसके 100 मीटर के आसपास की दूरी, यहाँ तक बढ़ा करके 500 मीटर की दूरी की बात कही जा रही है कि वहाँ पर इन सारी चीज़ों को प्रतिबंधित कर दिया जाए। रही बात दूसरे प्रश्न की कि जो शैक्षणिक संस्थान कहाँ तक अपनी भूमिका का निर्वहन कर सकते हैं, तो देखिए शैक्षणिक संस्थान का पहले जो स्वरूप हुआ करता था वो केवल शिक्षा देना हुआ करता था, मगर आज के परिप्रेक्ष्य में अगर देखा जाए

0: तो शैक्षिक संस्थान का उत्तरदायित्व ये भी हो गया है कि वो अपनी सामूहिक उत्तरदायित्व का निर्वहन करते हुए सामुदायिक सहभागिता को प्रोत्साहित करे। इसका मतलब है कैंपस टू कम्युनिटी अप्रोच के लिए
1: जी,
0: कि हम जाकर के समुदाय में लोगों को जाकर के समाज से संबंधित समस्याओं का, विशेष रूप से अगर नशे की लत को छुड़ाने की बात करें तो हम जाकर के वहाँ पर जागरूकता अभियान या कोई एक्शन प्रोग्राम या स्ट्रीट प्ले, इस प्रकार के कार्यक्रम का आयोजन कर सकते हैं और कम्युनिटी टू कैंपस वापस भी लाया जा सकता है। ये एक नया अप्रोच है। कम्युनिटी टू कैंपस लाने का तात्पर्य यहाँ पर यह है कि अगर हमने जाकर के किसी गांव वगैरह या किसी व्यक्ति विशेष को अगर हमने उसकी नशे की लत को छुड़वाया है तो वो हमारे लिए एक आइकॉन बन जाता है। तो एक बेस्ट प्रैक्टिसेस के रूप में हम ला करके शिक्षा संस्थानों में हम बता सकते हैं कि देखिए हमने ये प्रयोग किया है, ये सफल रहा है, ऐसे प्रयोग आप भी करने की कोशिश करें। तो इस प्रकार से जो है शैक्षिक संस्थान अपनी भूमिका का अधिक से अधिक निर्वहन करते हुए बेहतर तरीके से इस मादक पदार्थों के सेवन को कम करने के लिए, उनकी रोकथाम करने के लिए और कह सकते हैं कि जीवन को बेहतर करने के लिए कार्य कर सकते हैं।
1: जी बिल्कुल, ये प्रयास ही किया जा सकता है, अन्यथा बीमार होने पर तो डॉक्टर की ही सलाह ली जाती है। शिक्षण संस्थानों की बात आप कर रहे थे, बहुत लंबा समय आपको भी हो गया है शिक्षण संस्थान में कार्य करते हुए। आपने देखा होगा कभी कभी ऐसा भी सामने आता है तथ्य कि जो व्यावसायिक या तकनीकी प्रशिक्षण संस्थान या फिर उस तरीके के थे तकनीकी शिक्षा देने वाले संस्थान, उनमें ये सब चीज़ें ज़्यादा देखी जाती थी। वनस्पति की इतिहास, भूगोल या फिर समाजशास्त्र या बायोलॉजी पढ़ने वाले बच्चे हैं उसमें कम देखा जाता था और इसके संस्थान भी अलग अलग हुआ करते थे। अब एक ही में सब हो गए हैं तो सब उसमें घालमेल हो गया, सब बढ़ता चला जा रहा है। क्या कहीं किसी अध्ययन में यह भी पाया गया जो पढ़ने को हमको मिला?
0: नहीं, आपका अवलोकन अच्छा है और मैं आपको बताना भी चाहूँगा कि हाँ, जो तकनीकी संस्थान है या जो प्रोफेशनल कथित रूप से हम लोग को कहते हैं, सबसे खास बात है कि मैंने अपने पहले भी उसमें उद्बोधन में बात कही कि जो मानसिक तनाव है जहाँ पे तकनीकी संस्थान होते हैं, मान के चलिए कि अगर इंजीनियरिंग को ले लीजिए या डॉक्टर के पेशों को ले लीजिए, यहाँ पे तनाव बहुत ज़्यादा रहता है क्योंकि 24/7 एक तरीके से व्यक्ति काम करता है। तो अपने तनाव को रिलीज करने के लिए या उसको सप्रेस करने के लिए वो व्यक्ति क्या काम करता है कि थोड़े समय के लिए जो है उसको ले लेता है ताकि हमको शारीरिक आराम मिल जाए। दूसरा एक ये भी होता है कि हम अगर हम ले लेंगे तो हमारी कार्य करने की क्षमता हमारी बढ़ जाएगी या सोचने समझने की क्षमता हमारी बढ़ जाएगी, कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा। तो एक ये भी एक जो भ्रम लोगों के बीच में है, तो ये एक अगर देखा जाएगा तो ये चीज़ें रही हैं, मगर अब चीज़ों को लोग समझ रहे हैं, बेहतर कर पा रहे हैं और चीज़ें बेहतर हो रही हैं।
1: चलिए, बेहतर होती रहें यही अपेक्षा भी है। और अन्यथा प्रश्न तो जितने भी करते जाएंगे आप जवाब देते ही चले जाएंगे, हमारा समय बिल्कुल सीमित होता है डॉक्टर साहब, आप पहले से जानते ही हैं। लेकिन जो भी तथ्य आज आपने रखे हैं एक सामान्य तौर पर लोगों को जागरूक करने के लिए, विशेष रूप से युवाओं के लिए, कि कैसे वो नशे से दूर रहें या मादक पदार्थों के सेवन से दूर रहें, बहुत अच्छा लगा, बहुत ही उपयोगी बातचीत ये रही है। मुझे लगता है कि सभी युवा इसका अनुपालन करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद स्टूडियो आने के लिए।
0: बहुत बहुत धन्यवाद।
2: तो साथियों, अभी आपने वार्ता सुनी और इस वार्ता को सिर्फ एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल मत दीजिएगा, इसको सुनिएगा, इसको समझिएगा और इसकी बारीकियां समझिएगा। क्योंकि नशा हम लोग शुरू शुरू में कूल दिखने के लिए, सोसाइटी में मॉडर्न दिखने के लिए शुरू कर देते हैं, पर धीरे धीरे इसकी आदत लग जाती है और ये हमारे शरीर को धीरे धीरे ख़त्म करता चला जाता है। और साथियों, चलते अपने विषय की ओर और आपको बताते हैं कि विषय में हमारे आज क्या खास बात है। साथियों, भारत विविधताओं का देश है, यहाँ अनेक भाषाएँ हैं, अनेक परंपराएँ हैं, अनेक आस्थाएँ हैं, फिर भी हमारी पहचान है एकता में अनेकता। लेकिन समय समय पर समाज में भेदभाव, असमानता और कटुता जैसी चुनौतियां हमारे सामने आती रही हैं। ऐसे समय में सामाजिक समरसता हमें याद दिलाती है कि हम सबसे पहले इंसान हैं और उसके बाद हमारी अन्य पहचानें आती हैं। साथियों, संत कबीरदास जी ने कहा था, जाति ना पूछो साधु की, पूछ लीजियो ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ा रहने दो म्यान। यह दुआ हमें सिखाता है कि किसी व्यक्ति का मूल्य उसकी जाति या पहचान नहीं होती, बल्कि उसके ज्ञान, कर्म और चरित्र से होता है। इसी प्रकार गुरु नानक देव जी ने मानवता और समानता का संदेश दिया। उन्होंने कहा कि ईश्वर की दृष्टि में सभी मनुष्य समान हैं। क्योंकि साथियों, हम किसी को अलग तरीके से देखते हैं, जज करते हैं उसके लुक से, उसके तरीके से, पहनावे से, पर ये सारी बातें एक तरफ हैं। आप उसके कैरेक्टर को देखिए, उसकी बातों को समझिए, उसके ज्ञान को समझिए, तब आप देखिए कि वो इंसान कितना बेहतर इंसान है, कितना अच्छा इंसान है। और साथियों, चलते हैं अपने अगले गीत की ओर और आपको सुनवाते हैं ये अच्छा सा गीत।

0: कर्मचारी भविष्य निधि संगठन क्षेत्रीय कार्यालय गोरखपुर द्वारा अपने सभी हितधारकों यथा भविष्य निधि सदस्यों, नियोक्ताओं, पेंशनरों की समस्याओं एवं शिकायतों के निदान हेतु क्षेत्रीय कार्यालय गोरखपुर के परिक्षेत्र में आने वाले समस्त 12 जिलों में दिनांक 29 जून 2026 को प्रातः 9 बजे से निधि आपके निकट कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है।
1: लीजर रिजॉर्ट बहराइच,
0: डिस्ट्रिक्ट हेल्थ सोसाइटी, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन बलिया,
1: तुलसीपुर शुगर कंपनी लिमिटेड बलरामपुर,
0: सुयश पेपर मिल्स बस्ती,
1: UPSRTC देवरिया,
0: चिन्मय ग्रामोदय शिशु विद्या मंदिर इंटर कॉलेज गोंडा,
1: कर्मचारी भविष्य निधि संगठन क्षेत्रीय कार्यालय गोरखपुर,
0: त्रिवेणी इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीज लिमिटेड कुशीनगर,
1: डिस्ट्रिक्ट हेल्थ सोसाइटी, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन महाराजगंज,
0: डिस्ट्रिक्ट हेल्थ सोसाइटी, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन संत कबीर नगर,
1: बेसिक शिक्षा विभाग श्रावस्ती,
0: नगर पालिका परिषद सिद्धार्थ नगर।

समाज में दूरी भी पैदा कर देते हैं। ऐसे में हमारी जिम्मेदारी है कि हम केवल सत्य और सकारात्मक संदेश की आगे बढ़ाएं। सामाजिक समरसता की शुरुआत हमारे घर से ही होती है। बच्चों को बचपन से ही समानता, सहयोग और संवेदनशीलता के संस्कार दिए जाएं। विद्यालयों में सभी बच्चों का साथ सम्मान व्यवहार हो, कार्यस्थलों पर सभी को सम्मान मिले और समाज का प्रत्येक व्यक्ति अपने कर्तव्यों की ईमानदारी से पालन करे। और साथियों, महात्मा गांधी जी ने भी यही बात कही थी कि समाज की महानता इस बात से आंकी जाती है कि वो अपने सबसे कमजोर व्यक्ति के साथ कैसा व्यवहार करता है। ये विचार आज भी उतना ही प्रासंगिक है। यदि समाज का अंतिम व्यक्ति भी सम्मान और अवसर प्राप्त कर रहा है, तभी वास्तविक समरसता संभव है। साथियों, इसीलिए सबके साथ अच्छे से बात करिए, सबसे मिलजुल कर रहिए, सबके साथ मुस्कुराइए, सबको प्यार दीजिए, सबसे प्यार लीजिए, और यही हमारी आप सबसे आशा है। और चलते हैं साथियों अगले गीत की ओर। आइए सुनते हैं अगला गीत।

साथियों, हमारे संविधान ने भी प्रत्येक नागरिक को समान अधिकार दिए हैं। किसी भी प्रकार के भेदभाव को स्वीकार नहीं किया गया है। यही संविधान हमें भाईचारे, समानता और न्याय के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है। सामाजिक समरसता केवल कानून से नहीं आती, बल्कि हमारे व्यवहार से आती है। जब हम किसी के साथ सम्मान से बात करते हैं, उसकी मदद करते हैं, उसके विचारों का सम्मान करते हैं, तभी समरस समाज का निर्माण होता है। आज के समय में सोशल मीडिया और डिजिटल माध्यमों ने लोगों को जोड़ने का काम किया है, लेकिन कई बार गलत सूचनाएं और नफरत फैलाने वाली बातों से

साथियों, आज का समय डिजिटल युग का समय है। मोबाइल फोन, इंटरनेट, सोशल मीडिया, ऑनलाइन बैंकिंग, डिजिटल शिक्षा और AI जैसी सुविधाएं आ चुकी हैं। ये सब हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन चुके हैं। एक समय था जब किसी से बात करने के लिए दिनों, महीनों, सालों लेटर का इंतजार करना पड़ता था, लेकिन आज दुनिया के किसी भी कोने में बैठे व्यक्ति से कुछ ही सेकंड में वीडियो कॉल के माध्यम से हम जुड़ जाते हैं। डिजिटल तकनीक ने शिक्षा के क्षेत्र में नई क्रांति ला दी है। अब छात्र घर बैठे ऑनलाइन कक्षाओं के माध्यम से देश विदेश के श्रेष्ठ शिक्षकों से सीख ले सकते हैं। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी हो या कोई न्याय कौशल सीखना, इंटरनेट ने ज्ञान के अनगिनत द्वार खोल दिए हैं। स्वास्थ्य सेवाओं में भी डिजिटल तकनीक वरदान साबित हुई है। ऑनलाइन डॉक्टर से परामर्श, डिजिटल रिपोर्ट और टेलीमेडिसिन जैसी सुविधाओं ने लोगों तक स्वास्थ्य सेवाएं की पहुंच आसान बना दी है। वहीं डिजिटल भुगतान ने नकदी पर निर्भरता कम की है। अब कुछ ही क्लिक में बिजली का बिल भरना हो, टिकट बुक करना हो या खरीदारी करना बेहद सरल हो गया है। लेकिन हर रंग की तरह डिजिटल दुनिया का एक दूसरा पहलू है। जहां सुविधाएं हैं वहां चुनौतियां भी हैं। फर्जी कॉल, साइबर ठगी, डेटा चोरी और सोशल मीडिया पर फैलती अफवाहें हमें सावधान रहने की सीख देती हैं। इसीलिए किसी भी अनजान लिंक पर क्लिक करने से पहले सोचें, अपनी व्यक्तिगत जानकारी साझा करने से बचें और मजबूत पासवर्ड का उपयोग करें। एक और महत्वपूर्ण बात है कि डिजिटल संतुलन, तकनीक हमारे जीवन को आसान बनाए लेकिन हमारा जीवन तकनीक पर पूरी तरह निर्भर ना हो। परिवार के साथ समय बिताएं, किताबें पढ़ना सीखें, खेलना मैदानों में जाएं, मैदानों में खेलने के लिए जाएं, प्रकृति के बीच कुछ पल गुजारें। डिजिटल दुनिया तभी सुंदर बनेगी जब हम उसका जिम्मेदारी से उसका उपयोग करें। याद रखिए, तकनीक स्वयं अच्छी है या बुरी नहीं होती, उसका उपयोग उसे सकारात्मक या नकारात्मक बनाता है। तो आइए संकल्प लें कि डिजिटल तकनीक का उपयोग ज्ञान और विकास के और समाज की भलाई के लिए करेंगे। और साथियों, इन सभी बातों के साथ आप सबसे मैं अभिषेक विदा लेना चाहूँगा और खूब सारी बातें अगले प्रोग्राम में होंगी। तब तक के लिए अनुमति, नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम युवा तरंग। मीडियम वेव 4.6 मीटर यानी 747 किलोहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है। आप सुनिए कार्यक्रम नई उड़ान।

नई उड़ान कार्यक्रम के श्रोताओं, आज की शाम आप सभी को शोभित का नमस्कार। आज के कार्यक्रम की शुरुआत आपसे एक सवाल पूछकर करूंगा। जरा एक बात बताइए कि क्या आप सभी ने आज अपने मोबाइल का इस्तेमाल किया है? जी बिल्कुल किया होगा। किसी ने व्हाट्सएप खोला होगा, किसी ने ऑनलाइन पेमेंट की होगी, तो किसी ने कोई जानकारी इंटरनेट पर ज़रूर खोजी होगी। लेकिन ये बताइए कि क्या सिर्फ मोबाइल चलाना ही डिजिटल साक्षर होना है? इसका जवाब है शायद नहीं। डिजिटल साक्षरता, इसका मतलब है तकनीक का सही, सुरक्षित और समझदारी से इस्तेमाल करना। मान लीजिए आपके मोबाइल पर एक मैसेज आता है कि आपने 25 लाख रुपए जीत लिए हैं, बस इस लिंक पर क्लिक कीजिए और ये लॉटरी आपकी। अब आप क्या करेंगे? क्या इस लिंक पर तुरंत क्लिक करेंगे या पहले ये सोचेंगे कि कहीं ये धोखाधड़ी तो नहीं है? बस यही समझ डिजिटल साक्षरता कहलाती है। एक सवाल और, क्या आप मजबूत पासवर्ड रखते हैं? क्या OTP किसी के साथ साझा नहीं करते? क्या किसी भी खबर को बिना जांचे आगे नहीं भेजते?

अगर इन सभी सवालों के जवाब हाँ हैं तो समझिए आप डिजिटल दुनिया के जिम्मेदार नागरिक बन रहे हैं। आज सरकार की कई सेवाएं ऑनलाइन हैं, बैंकिंग हो, पढ़ाई हो, इलाज की जानकारी हो या फिर किसानों के लिए सरकारी योजनाएं, सब कुछ अब डिजिटल माध्यम से आसानी से उपलब्ध है। लेकिन इन सुविधाओं का पूरा लाभ तभी मिलेगा जब हम डिजिटल रूप से जागरूक होंगे। अब जरा अपने घर के बारे में सोचिए, क्या आपके परिवार के बुजुर्गों को ऑनलाइन भुगतान करना आता है? क्या आपके बच्चों को इंटरनेट का सुरक्षित इस्तेमाल सिखाया गया है? अगर नहीं तो इसकी शुरुआत आज से ही कीजिए, क्योंकि डिजिटल साक्षरता सिर्फ खुद सीखने का नाम नहीं बल्कि दूसरों को भी सिखाने का नाम है। एक बात याद रखिए कि डिजिटल दुनिया अवसरों से भरी हुई है, लेकिन सावधानी भी यहां पर उतनी ही जरूरी हो जाती है। सही जानकारी, सही सोच और थोड़ी सी सतर्कता हमें साइबर ठगी से बचा सकती है और तकनीक का पूरा लाभ दिला सकती है। तो आज एक संकल्प हमें खुद से करना है कि खुद को डिजिटल रूप में जागरूक तो हम करेंगे ही करेंगे, और अपने परिवार, दोस्तों और अपने आसपास के लोगों को भी डिजिटल साक्षर बनने के लिए प्रेरित करेंगे। तो चलिए कार्यक्रम में अब सुन लेते हैं एक बहुत ही प्यारा सा गीत, और गीत के उस पार आपसे चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे।

दोस्तों, कार्यक्रम में अब समय है हमारे आज के खास सेगमेंट अर्बन चौपाल के अंतर्गत ओबी रिकॉर्डिंग आधारित कार्यक्रम सुनने का, जिसमें आज का हमारा विषय है महानगरों में मानसिक तनाव और मन की तलाश। इसे रिकॉर्ड किया है हमारी साथी कंपेयर अर्पित राय सिन्हा जी ने, तो आइए सुनते हैं।

0: दोस्तों भीड़ तो हर सड़क पर है, मगर सुकून की राह कहीं खो गई है। चेहरे मुस्कुरा रहे हैं, लेकिन मन की खामोशी बहुत कुछ कह रही है। बिल्कुल तेज रफ्तार जिंदगी, ऊंची इमारतें, बड़ी बड़ी उपलब्धियां, लेकिन इन्हीं के बीच कहीं मन की शांति, अपनापन और आत्मिक सुकून पीछे छूटता जा रहा है। आज हम समझेंगे कि आखिर क्यों महानगरों की चमक के पीछे मानसिक तनाव पड़ रहा है और कैसे हम अपने मन को फिर से सुकून की राह पर ले जा सकें। तो दोस्तों अर्बन चौपाल के अंतर्गत आज हम जानेंगे महानगरों में मानसिक तनाव और मन की तलाश। इस पर कई लोगों से बात करेंगे और उनकी राय जानेंगे इस विषय पर। दोस्तों महानगरों की तेज रफ्तार जिंदगी में मन को शांत रखना आज सबसे बड़ी चुनौती बन गई है। आइए जानते हैं कि योग और ध्यान किस तरह तनाव को कम करके जीवन में संतुलन ला सकता है। तो आइए इस विषय पर योग ट्रेनर डॉक्टर अंजलि शर्मा जी से बात करते हैं। अंजलि जी, आपसे जानना चाहूंगी कि योग क्या वास्तव में मानसिक तनाव को कम करने में मदद करता है, और अगर करता है तो किस तरीके से करता है?
1: जी बिल्कुल, योग शरीर और मन दोनों में सकारात्मक पॉजिटिव प्रभाव डालता है। नियमित योग करने से मन शांत होता है, एकाग्र होता है, चिंताएं कम होती हैं और तनाव भी धीरे धीरे खत्म होता है। सांसों पे ध्यान करने से मानसिक संतुलन अच्छा होता है। इसके लिए हम बेसिकली कह सकते हैं अनुलोम विलोम का अभ्यास करें, ध्यान करें कुछ देर किसी भी चीज पे ध्यान, चाहे आप वो स्पिरिचुअल अगर जुड़ रहे हैं तो आप अपने ईश्वर का ध्यान करके कुछ देर शांत बैठें, अपने सांसों को आते जाते देखें, मन शांत रखें और भ्रामरी का अभ्यास करें।
2: मैम बहुत अच्छी बात आपने बताई कि अनुलोम विलोम हो गया है, भ्रामरी जो है उसका अभ्यास करने से कहीं ना कहीं हम मेंटल स्ट्रेस से दूर हो सकते हैं।
0: अच्छा, महानगर में रहने वाले लोगों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे?
1: मैं यही कहना चाहूंगी कि आजकल हम लोग भाग दौड़ बड़े जीवन जी रहे हैं, कुछ समय अपने लिए निकालें, क्योंकि हम अपनी सेहत को अगर फिट रखेंगे तो हम हर चीज अचीव कर सकते हैं। अगर हमारा मन शांत है, हमारे अंदर धैर्य है, तो हमारा तनाव का लेवल भी कम होगा। इसलिए अपने लिए कुछ टाइम जरूर निकालिए योग के माध्यम से।
0: बिल्कुल दोस्तों, योग केवल शरीर को लचीला नहीं बनाता बल्कि मन को भी स्थिर और शांत बनाता है। रोज कुछ मिनट का अभ्यास जीवन भर को सुकून दे सकता है। जहाँ योग है वाकई वहाँ संतुलन है, और जहाँ संतुलन है वही सच्चा सुकून है। और आइए इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। युवा पीढ़ी सपनों के साथ साथ पढ़ाई के दबाव का भी सामना करती है, ऐसे में मानसिक संतुलन बनाए रखना कितना जरूरी है

0: आज हमारे साथ हैं KGNU मेडिकल कॉलेज लखनऊ की छात्रा अनन्या बाल्की। आइए उनसे बात करते हैं। अच्छा अनन्या जी, ये बताइए आजकल बच्चों में मानसिक तनाव बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, इसकी क्या वजह है?
1: आजकल स्ट्रेस तो है ही बच्चों में, क्योंकि स्टडीज का भी प्रेशर बहुत ज्यादा है, ऊपर से कंपटीशन भी बहुत बढ़ रहा है हर फील्ड में। तो मेरा तो यही मानना है कि आप अपना टाइम ऐसे डिवाइड करें कि आप अपने हॉबीज और को करिकुलर एक्टिविटीज को भी टाइम दें, एंड एज वेल एज अपनी स्टडीज पे भी पूरा फोकस करें। सिर्फ स्टडीज पे फोकस करेंगे तो प्रेशर तो देखो बढ़ेगा ही, तो कुछ अपने स्ट्रेस रिलीव करने के लिए आपको कुछ ना कुछ तो अपनी हॉबीज परस्यू करनी ही पड़ेगी।
0: माता पिता बच्चों के तनाव को कम करने के लिए क्या कर सकते हैं?
1: मैं पेरेंट्स को तो यही बोलना चाहूँगी कि अपने बच्चों से बात करें खुलकर, उनको ज़्यादा प्रेशराइज ना करें कि देखो उसका बच्चा ये इतने मार्क्स लेकर आया है, उसका इतने उसमें आगे बढ़ गया है। हर बच्चे का अपना एक पेस होता है आगे बढ़ने का, हर बच्चे का माइंड शार्पनेस अलग होती है, माइंड सेट अलग होता है किसी चीज़ को देखने का, तो हर बच्चा अलग अलग होता है। और किसी के बच्चे को अपने बच्चे से कंपेयर ना करें, बस ये कि थोड़ा सा प्यार और सपोर्ट दें उसको। अगर वो नहीं भी कुछ कर पा रहा है तो कोई बोले कि कोई बात नहीं बेटा, होगा, नेक्स्ट टाइम होगा, अभी नहीं होगा तो नेक्स्ट टाइम होगा, उसको ज़्यादा प्रेशराइज ना करें।
0: उम्मीद है कि अनन्या के अनुभव हर युवा को ये प्रेरणा देंगे कि सफलता की दौड़ में अपने मन की सेहत का ख्याल रखना बेहद ही जरूरी है। आपने इतनी अच्छी जानकारी दी अनन्या जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।

0: जब महानगरों का शोर मन को थका देता है तब पहाड़ों की खामोशी सुकून का एहसास कराती है। कहते हैं प्रकृति के सबसे करीब पहुंचकर इंसान खुद के भी सबसे करीब आ जाता है। इसी अनुभव को करीब से देखने वाले उत्तराखंड के एक कुटुंब मालिक हमारे साथ हैं, मनोज तिवारी, जिनका की भीम काल में हुजर है। आइए जानते हैं कि प्रकृति की गोद में आने वाले सैलानियों के व्यवहार और मन में क्या बदलाव देखने को मिलते हैं। मनोज जी ये बताइए कि इस खूबसूरत वादियों में भीमताल में यहाँ पे बहुत से सैलानी घूमने आते हैं, आप उनको देखते होंगे, उनसे बात करते होंगे। आपसे जरूर जानना चाहूंगी कि क्या महानगरों में लोगों का तनाव पहले से बढ़ा है?
1: महानगर में जो लोग आज की डेट में थोड़ा सा तनाव बढ़ रहा है, डिप्रेशन वगैरह जो चीज़ें आप कह सकती हैं, तो उसका रीज़न ये है कि एक तो लाइफ बहुत हैवीली ऑक्यूपाइड है। आई मीन उनके पास अपने लिए समय नहीं होता कि वो अपने लिए कुछ वक्त निकाल पाए। जैसे फॉर एग्जांपल उन्होंने अपने आप को इतना बिजी कर लिया है काम के ऊपर कह लीजिए या फिर बच्चों के ऊपर किसी भी तरीके से, तो वो चीज़ उनका एक तरीके से जो तनाव है ना वो बढ़ाती है।
0: जो लोग आपके होटल में आते हैं वो लोग किस तरह का माहौल पसंद करते हैं?
1: देखिए माहौल तो अब कोई अगर इस जगह पे आएगा महानगर से वो चाहेगा कि उसे एक तो नेचर मिले, स्पेशली अगर आप बात करेंगे भीमताल जैसी जगह की, तो यहाँ पे जो एनवायरनमेंट है वो ठंडा बड़ा अच्छा सा सुकून देता है, फिर यहाँ की हरियाली नेचर वो एक अलग है।
0: मनोज जी आप क्या सोचते हैं मानसिक तनाव कम करने का सबसे आसान तरीका क्या हो सकता है?
1: देखिए लाइफ में प्रायोरिटीज जो लोगों ने आज की डेट में बना दी है उन्होंने उसको एक्चुअल में ज्यादा तनाव देना शुरू कर दिया, क्योंकि प्रायोरिटीज़ की कोई लिमिटेशंस नहीं है, वो हमें तय करनी है। अब अगर आपकी प्रायोरिटीज़ में आपकी लाइफ में रिलैक्स इम्पॉर्टेंट है, आपके लिए अपना एक सुकून इम्पॉर्टेंट है, तो आप उसी हिसाब से अपने आप को आई मीन स्टेप बाय स्टेप तैयार करते हैं।
0: बहुत बहुत धन्यवाद, आज आपने बताया कि पहाड़ केवल घूमने की जगह नहीं है बल्कि मन को ठहरने और खुद से मिलने का अवसर भी देते हैं। मेरे ख्याल से शायद सुकून किसी मंजिल का नाम नहीं बल्कि प्रकृति के बीच बिताए उन पलों का नाम है जहां मन फिर से मुस्कुराना सीख जाता है। बिल्कुल काम की भागदौड़ के बीच भी जो मुस्कुराना जानते हैं वही हमें सिखाते हैं कि मन को सुकून देना भी जीवन की एक जरूरी जिम्मेदारी है। शायद तनाव से बचने का सबसे आसान रास्ता यही है, काम पूरी लगन के साथ करें लेकिन अपने मन को भी उतना ही समय और

0: मान दे। आइए गणेश चंद्र जोशी जो कि होटल में काम करते हैं उनसे बात करते हैं। गणेश जी आप होटल में काम कर रहे हैं तो ये बताइए कि काम करते समय सबसे ज्यादा मानसिक दबाव किस बात का होता है?
1: मैम हमारे यहाँ काम के समय में बहुत अहमियत होती है, हर ग्राहक को संतुष्ट करना पड़ता है, अच्छे से उनकी सेवा देनी पड़ती है, सर्विस देनी पड़ती है, कभी कभी बहुत ज़्यादा कस्टमर रहते हैं, काम बढ़ जाता है तो समय का अभाव रहता है, लेकिन हम लोग फिर भी अपनी जिम्मेदारी निभाते हैं और कस्टमर को प्राथमिकता देते हैं।
0: अच्छा ये बताइए कि क्या महानगर की तेज रफ्तार जिंदगी आपके काम को और चुनौतीपूर्ण बनाती है?
1: यस मैम, महानगर में हर चीज़ बहुत तेज़ी से चलती है, लोगों की अपेक्षाएं भी बहुत ज़्यादा होती हैं, हर काम जल्दी और सही तरीके से करना होता है, इस वजह से तनाव बढ़ता है, लेकिन यह हमें बेहतर बनाता है और आगे बढ़ने की सीख देता है।
2: बहुत अच्छी बात है और इतनी पॉजिटिव सोच होनी भी चाहिए।
0: गणेश जी आपसे जरूर जानना चाहूंगी कि आप अपने तनाव को कम करने के लिए क्या करते हैं?
1: तनाव को कम करने के लिए हम घर वालों से बात कर लेते हैं और कभी कभी हाफ डे या फुल डे छुट्टी ले लेते हैं और दोस्तों के साथ एंजॉय करने चले जाते हैं, कहीं घूमने चले जाते हैं पहाड़ों साइड हिल साइड में और गीत संगीत सुन लेते हैं थोड़ी देर के लिए, कभी मोबाइल वोबाइल देख लिया, हंसी मजाक के चुटकुले देख लिए, तो उससे तनाव कम हो जाता है।
0: दोस्तों अगर हम ये सोचें कि जो सुकून है वो हमेशा बड़ी बड़ी चीज़ों से मिलता है तो ऐसा नहीं है, कभी कभी मेहनत के बाद मिली छोटी सी मुस्कान भी मन को शांति दे जाती है। भागती दुनिया में खैर न कीजिए क्योंकि सुकून रफ्तार में नहीं एहसास में मिलता है। कहते हैं भोजन केवल पेट ही नहीं भरता बल्कि मन को भी सुकून देता है, जब खाना बनाना जुनून बन जाए तो वही तनाव से बाहर निकालने का एक खूबसूरत रास्ता भी बन जाता है। और आइए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर सोनू जी से। सोनू जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। सोनू जी सबसे पहले तो आप ये बताइए कि आप किस तरह का काम करती हैं?
3: मुझको खाना बनाने का बहुत शौक है, मैं खाना बनाती हूँ और रील की भी वीडियो डालती हूँ, हम हस्बैंड वाइफ रील बनाते हैं, जो भी हमारे घर में आते हैं उनके साथ भी हम रील बनाने की कोशिश करते हैं और हमारी रील और उसके कमेंट भी बहुत अच्छे अच्छे आते हैं तो हमको बहुत अच्छा लगता है।
0: सोनू जी आप इतना अच्छा खाना बनाती हैं, वीडियोस डालती रहती होंगी, तो एक दिमाग में ये भी रहता होगा कि डेली हम वीडियोस डालेंगे तो उतने ज्यादा हमारे फॉलोअर्स भी बढ़ेंगे, व्यूअर्स भी बढ़ेंगे, तो ऐसे में कहीं ना कहीं प्रेशर भी होता होगा आपके सामने, तो आप ऐसे में अपने आप को कैसे मानसिक तनाव से दूर रखती हैं?
3: वो तो हमारा डेली का काम है, खाली समय में परिवार से बात करती हूँ, थोड़ा आराम करती हूँ या संगीत वगैरह सुनती हूँ और साथियों के साथ हंसी मजाक में भी करती हूँ, मन हल्का रहता है, खाना भी बनाती हूँ, अपने बच्चों के साथ में अच्छे से एंजॉय करती हूँ।
0: बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बताया कि कुकिंग केवल एक कला नहीं बल्कि मन को शांत करने और खुद से जुड़ने का एक बहुत ही अच्छा माध्यम है। दोस्तों अनुभव की छाप में अक्सर जीवन के सबसे सरल और सच्चे समाधान मिलते हैं। आइए बात करते हैं नानी जी की नज़र से मन के सुकून की बात बढ़ते हैं और नानी जी से बात करते हैं तो आज हमारे साथ संध्या भटनागर जी हैं। अच्छा नानी जी आपसे मैं जरूर पूछना चाहूँगी कि आज की पीढ़ी के तनाव को आप कैसे देखती हैं?
4: आजकल प्रतिस्पर्धा बहुत बढ़ गई है, लोगों के पास समय भी नहीं रह गया है, इसकी वजह से लोगों में तनाव बढ़ता जा रहा है और पहले का जीवन बहुत ही सरल था, रिश्तों में अपनापन ज्यादा रहता था, लेकिन अब नहीं, एक दूसरे से दूर होते जा रहे हैं, तकनीकी कम थी, शांति ज्यादा पलक थी, लेकिन अब सुविधाएं ज्यादा हो गई है लेकिन सुकून बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन हम तो ये चाहेंगे कि बच्चे आजकल अपने परिवार पे ज्यादा समय दें।
0: आपके लिए संध्या जी मन की शांति का सबसे बड़ा मंत्र क्या है?
4: काम तो करना ही करना है, लेकिन परिवार के संपर्क में जरूर रहे, लोगों से मिले जुले, जिससे कि उनका तनाव भी दूर रहेगा और रिश्ते भी मजबूत रहेंगे।
0: और आइए अब दूसरी नानी सीमा जी से बात करते हैं। नानी जी राम राम, ये बताइए नानी जी आपके हिसाब से मन की शांति का सबसे बड़ा मंत्र क्या हो सकता है?
5: उनको यही संदेश देना चाहेंगे कि हर व्यक्ति हर आदमी एक दूसरे से मिलजुल के रहे, खुश रहे और खुद भी खुश रहे और दूसरों को भी खुश रखे, तनाव भरी आजकल जो जिंदगी है उससे दूर रहे, बता अगर हम खुद खुश रहेंगे तभी हम दूसरों को खुश रख पाएंगे, मेन अपने स्वास्थ्य पर ध्यान दे तभी वह दूसरों पर ध्यान दे सकता है, उसके लिए हमें व्यायाम करना बहुत जरूरी है, इसलिए मेरे ख्याल से स्वस्थ रहना बहुत जरूरी है, उसके लिए खान पान रहन सहन सबका ध्यान रखना होगा।
0: नानी जी आपने इतनी अच्छी बातें साझा की।

0: उम्मीद करती हूँ कि आज आपसे हम सभी को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
1: शायद मन को सुकून देने का सबसे बड़ा मंत्र वही है जो हमारी नानियाँ बच्चों से कहती आई हैं। रिश्तों को समय दीजिए, मुस्कुराइए और जीवन को थोड़ा सा सरल बनाइए। और आइए अब आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, नई जिम्मेदारियों के साथ नई चुनौतियाँ भी आती हैं। ऐसे में एक नए माता पिता अपने मानसिक संतुलन और परिवार के बीच तालमेल कैसे बनाते हैं, आइए उनसे जानते हैं उन्हीं की जुबानी।
0: नमस्ते हर्षद जी, मैं स्वाति बोल रही हूँ। स्वाति जी, ये बताइए कि आज हम देखते हैं कि माता पिता हैं, वर्किंग हैं, तो ऐसे में कहीं ना कहीं वो स्ट्रेस उनके चेहरे पे भी दिखाई देता है। तो आपसे पूछना चाहूंगी कि मानसिक दबाव जो है वो क्या होता है?
2: आज के समय में ये तो बहुत इम्पोर्टेंट चीज है कि मानसिक दबाव तो है, क्योंकि काम और परिवार दोनों को संभालना एक बहुत बड़ा टास्क है आज के डेट में। घर पे भी ऑफिस की जिम्मेदारियाँ रहती हैं, घर की जिम्मेदारियाँ रहती हैं, बच्चों को संभालना। कभी कभी इसमें क्या होता है कि आपस में बैलेंस बिगड़ने लग जाता है, तो फिर ये एक बहुत बड़ा तनाव का कारण बन जाता है। और फिर एक दूसरे को समय भी नहीं दे पाते, क्योंकि समय का ही अभाव है। और एक महीने में हम ये देखें कि हम अपने जो शौक पूरे करना चाहते हैं ना, वो भी एक टाइम पे ऐसा लगता है कि पीछे छूटने लग जा रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा कारण है मानसिक दबाव का।
0: कैसे आप अपने आप को चाहेंगी कि हमें सुकून मिले, शांति मिले?
2: मन की शांति के लिए तो सबसे पहले तो आपको योगा और प्राणायाम से जोड़ना चाहिए और मेडिटेशन करते रहना चाहिए। अपने ऊपर आपने जब समय दे दिया तो आप परिवार के साथ खुल के आराम से बात करिए, अपने परिवार के साथ समय दीजिए, अपनी छोटी छोटी खुशियों को महसूस करवाइए, एक दूसरे से बातचीत करते रहिए, कभी सबके साथ टहलने जाइए, एक साथ संगीत सुनिए और हमेशा एक पॉजिटिव बातें एक दूसरे से करते रहिए, एक दूसरे को मोटिवेट करते रहिए। हमें मन की शांति ऐसी ही मिलती है जब दूसरों को हम खुशियाँ देते हैं और हम खुद भी खुश रहते हैं।
1: बिल्कुल दोस्तों, जब माता पिता का मन स्वस्थ और संतुलित होगा तभी वो अपने बच्चों के लिए खुशहाल और सुरक्षित भविष्य की मजबूत नींव रख पाएंगे। आप सभी ने इतनी अच्छी जानकारी दी, उसके लिए सबसे पहले तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, चेहरों की रोशनी में अगर मन का उजाला ही हो जाए तो सफर भी अधूरा रह जाता है। इसी सोच के साथ आज के कार्यक्रम में मैं आपसे विदा लेती हूँ। याद रखिए, जीवन की सबसे बड़ी सफलता केवल आगे बढ़ना नहीं बल्कि अपने मन को साथ लेकर आगे बढ़ना है। काम के भागदौड़ में कुछ पल अपने लिए, अपनों के लिए और अपने मन की आवाज सुनने के लिए जरूर निकालना चाहिए। दोस्तों, जाते जाते एक सवाल आपके लिए छोड़ जाती हूँ, क्या हम सचमुच अपने सपनों का शहर बना रहे हैं या फिर ऐसा शहर जहाँ हमारा अपना मन ही बेघर होता जा रहा है? ये सवाल आपके

दोस्तों, कार्यक्रम में अब समय है आपको विकास समाचार और रोजगार अवसर के बारे में बताने का। उत्तर प्रदेश में डिजिटल सेवाओं के विस्तार को गति देते हुए विभिन्न विभागों में ऑनलाइन जनसेवाओं को और सुदृढ़ बनाया जा रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों तक ई गवर्नेंस सेवाओं की पहुंच बढ़ाने तथा नागरिकों को पारदर्शी और त्वरित सेवाएं उपलब्ध कराने पर विशेष बल दिया जा रहा है। प्रदेश में पर्यावरण संरक्षण को जन आंदोलन बनाने के उद्देश्य से व्यापक वृक्षारोपण अभियान की तैयारियां तेज हैं। शासन ने अधिकाधिक जन भागीदारी के साथ हरित आवरण बढ़ाने और जलवायु संरक्षण के प्रयासों को और मजबूत करने पर जोर दिया है। उत्तर प्रदेश सरकार ग्रामीण विकास और आजीविका को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन पर लगातार काम कर रही है। स्वयं सहायता समूहों तथा ग्रामीण स्तर पर रोजगार सृजन से जुड़े कार्यक्रमों को गति देने के प्रयास जारी हैं। बात अब रोजगार अवसर की। उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत ब्लॉक एवं जिला स्तर के विभिन्न पदों पर भर्ती प्रक्रिया जारी है। इच्छुक अभ्यर्थी सेवा योजन पोर्टल के माध्यम से निर्धारित पात्रता के अनुसार आवेदन कर सकते हैं। ये ग्रामीण विकास के क्षेत्र में काम करने के इच्छुक युवाओं के लिए एक अच्छा अवसर है। तो चलिए सुन लेते हैं अब एक और प्यारा सा गीत, और गीत के उस पर आपसे फिर मिलते हैं।

दोस्तों, आज के नए उड़ान कार्यक्रम का सफर हमें यहीं पर समाप्त करना होगा। हम इस आशा में आपसे आज अनुमति लेंगे कि फिर आपसे जल्द मुलाकात होगी। तब तक आप स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और अपना ध्यान रखिए। नमस्कार।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम नई उड़ान, मीडियम वेव के मीटर पर यह आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है।
1: सुनो ना।
2: हाँ?
1: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
2: तो रोका किसने है? हाँ?
1: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगू।
2: मुझसे।
1: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
2: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
1: पर उससे मेरा क्या फायदा?
2: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुंच जाओ।
1: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
2: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 8700001424।
1: ओ 8700001424। लो अभी फोन लगाता हूँ 8700001424 पर।
3: फिल्म आकाश के रोशन सितारों की महफिल आज के मेहमान, विविध भारती पर हर बुधवार शाम 4 बजे पिटारा में सुनिए। रहिए कहीं भी, सुनते रहिए विविध भारती। विविध भारती, आपकी बात पहुंचाए करोड़ों तक।
2: अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख।
1: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प।
2: और अब तो आप घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग।
1: आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और

0: संस्था। बुकिंग हेतु संपर्क करें 8700014242 पर,
1: 8700014242।
2: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
3: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

श्रोताओं, आपको एक बार फिर बता दें, आज शाम 6:30 से आप सुनेंगे आईसीसी विमेंस T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2026 के अंतर्गत लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड लंदन में भारत और ऑस्ट्रेलिया के मध्य खेले जा रहे T20 क्रिकेट मैच का आंखों देखा हाल हमारे दिल्ली केंद्र से।

0: स्वास्थ्य वार्ता कार्यक्रम में श्रोताओं आपको एक बार फिर बता दें, कल शाम 7:31 पर आप सुनेंगे गुर्दे के ट्यूमर, इस विषय पर प्रोफेसर डॉक्टर मनोज यादव से आशीष चतुर्वेदी की भेंट वार्ता। साथ ही आप सुनेंगे वार्ता फिजियोथेरेपी से होता सहज जीवन, वार्ताकार होंगे डॉक्टर विकास कुशवाहा। कार्यक्रम होगा स्वास्थ्य वार्ता शाम 7:31 पर। मीडियम वेव के मीटर पर यह आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है। शाम के 6:20 होने को है। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से।
1: ईएम आकाशवाणी संप्रति वार्ता। संप्रति वार्ता श्रूयंताम प्रवाचिका निधि झा। आदौ मुख्याः वार्ताः। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी प्रत्यपादयत् यत् स्वदेशी प्रतिरक्षोत्पादने सविशेषं बलं विधाय भारतं समुद्रतः आकाशपर्यन्तं उत्तरोत्तरं सुरक्षितं आत्मनिर्भरं च भवति। आकाशवाण्याः मन की बात कार्यक्रमे प्रधानमन्त्रिणा मोदिना देशस्य नागरिकाणां प्रति कार्तज्ञभावं ज्ञापितम्। यतोहि जनैः स्वर्णक्रयणं विदेशयात्रा च किञ्चित् कालं यावत् स्थगिता। सेशेल्स देशस्य विक्टोरिया नगरे आयोजितायाः प्रतिनिधिमण्डल स्तरीय वार्तायाः अनन्तरं भारत सेशेल्स देशयोर्मध्ये स्वास्थ्यं वित्तं समेत्य अंतरिक्षादि विविध विषयेषु महत्वपूर्ण सहमति पत्रेषु हस्ताक्षराणि अभवन्। प्रशासनेन भारतीय नागरिकाः संचेतिताः यत् ते सर्वेषाम् आवश्यकानां यात्रापत्राणां पूर्तिकया विना कैलाश मानसरोवर यात्रां न आरभेरन्। पश्चिमेशिया देशे सुरक्षा स्थितिः तीव्र गत्या अपक्षीयते, यत्र संयुक्त राज्य अमेरिका ईरानः उभावपि परस्परं नूतनानि सैन्य आक्रमणानि अकुरुताम्। अपि च आईसीसी महिला T20 विश्व कप स्पर्धा मालिकायां भारतीय महिला दलम् अद्य लंडन नगरे ऑस्ट्रेलिया दलेन सह स्पर्धिशिष्ट। अथ वार्ताः विस्तरेण। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी अद्य सविशेषं प्रत्यपादयत् यत् भारतेन जून मासे वैमानिकी क्षेत्रे एका महती सफलता अर्जिता, यत्र स्वदेश निर्मितस्य मेक इन इंडिया C-295 सैन्य परिवहन विमानस्य प्रथमं परीक्षण उड्डयनं सफलतापूर्वकं सुसंपन्नम्। आकाशवाण्याः मन की बात कार्यक्रमे जनान् संबोधयन् प्रधानमन्त्रिणा इयं सूचना।

0: अधुना प्रख्यापिता यत् सम्प्रति एतादृशानि 44 विमानानि भारतदेशे एव विनिर्मीयन्ते।
1: जून के महीने में ही एविएशन सेक्टर में भी देश ने एक बड़ी सफलता पाई। C-295 यह विमान मेड इन इंडिया है और C-295 विमान ने अपनी पहली उड़ान पूरी की है और ऐसे 40 विमान भारत में ही बनाए जा रहे हैं। इससे MSME और एरोस्पेस सेक्टर को नई शक्ति मिल रही है। आज समुद्र से लेकर आकाश तक हमारा भारत अधिक सुरक्षित और आत्मनिर्भर बन रहा है।
0: श्री मोदिना गदितं यत् देशे अन्ये केचन महत्वपूर्णाः प्रयासाः विधीयन्ते। अस्मिन्नेव क्रमे देहल्यां स्थितः केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयः आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कृत्रिम बुद्धिमत्ता तथा डेटा साइंस इत्यादिषु आधुनिक विषयेषु बीटेक पाठ्यक्रमस्य शुभारंभं विदधाति।
1: जड़ों से जुड़े रहकर युवाओं को नई टेक्नोलॉजी के लिए तैयार करने का एक और अच्छा प्रयास हो रहा है। दिल्ली में स्थित सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डेटा साइंस में बीटेक प्रोग्राम शुरू करने जा रही है। ये आधुनिक टेक्नोलॉजी को भारत के पारंपरिक ज्ञान से जोड़ने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इससे भारतीय भाषाओं के लिए नए AI टूल्स तैयार करने में मदद मिलेगी।
0: प्रधानमंत्री मोदी सहर्षम न्यगादीत यत् अद्य भारतीय संस्कृति ही विश्वस्मिन् ही विश्वे प्रसरति। श्री मोदी गौरवान्वितः अस्ति यत् भारतेन अस्मिन् मासे देशस्य सुरक्षायाः आत्मनिर्भरतायाः च क्षेत्रे महती सफलता समर्जिता। सः कोलकाता नगरे आयोजितम् एकं नौसेना संबंधी कार्यक्रमं संबोधितवान्, यत्र INS दुनागिरी, INS संशोधक, INS अग्रयश्च भारतीय नौसेनायाः क्षेत्रे समाविष्टाः। प्रधानमन्त्रिणा प्रतिपादितं यत् भारतं समुद्रतः आकाशपर्यन्तं उत्तरोत्तरं सुरक्षितं आत्मनिर्भरं च भवति।
1: कोलकाता में INS दुनागिरी, INS संशोधक और INS अग्रय को भारतीय नौसेना के बेड़े में शामिल किया गया। इन शिप्स की डिजाइन और मैन्युफैक्चरिंग तक सब कुछ स्वदेशी है। इसी महीने DRDO ने स्वदेशी लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल का भी सफल परीक्षण किया है। इसको DRDO की लेबोरेटरी और इंडियन इंडस्ट्री पार्टनर्स ने मिलकर बनाया है।
0: मोदिना अन्ताराष्ट्रिय योग दिवसस्य अपि उल्लेखो विहितः। तेन अहमदाबाद नगरे आयोजितायाः विश्व योगासन प्रतियोगितायाः विषये कथितं यत् अस्यां भारतेन 2,100 स्वर्ण पदकैः सह आहत्य 14,100 पदकानि विजितानि। प्रधानमन्त्रिणा मोदिना प्रतिपादितं यत् राष्ट्रनिर्माणे जनसहभागितायाः शक्तिः भारतस्य कृते एका महती सम्पत्तिः वर्तते।
1: पश्चिम एशिया में बनी युद्ध की स्थितियों को देखते हुए मैंने देशवासियों से कहा था कुछ समय के लिए सोना खरीदने से बचें, लोगों से कहा था कि विदेश में छुट्टियां मनाने से बचें, लोगों से कार पुलिंग को भी बढ़ावा देने की अपील की थी, किसानों से केमिकल मुक्त खेती के लिए, खेत बचाने के लिए और प्राकृतिक खाद का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल का आग्रह किया था। मेरी अपील का उन्होंने न सिर्फ समर्थन किया बल्कि हर तरफ से उसमें अपना सहयोग कर रहे हैं।
0: अनेन सहैव श्रीमोदिना प्रोदीरितं यत् आगामी गणेशोत्सवाय गणपति बप्पा भगवतः प्रतिमा अनिवार्य रूपेण अस्यैव देशस्य मृत्तिकायाः भवेत्। सा च स्थानीय कुम्भकारैः शिल्पीभिः विनिर्मिता स्यात्। तेन मूर्ति निर्मातारः अपि अनुरुद्धाः यत् ते मृण्मय मूर्तीणां निर्माणाय एव प्राथमिकतां दद्युः। स्वीय सम्बोधनस्य चरमे सोपाने प्रधानमन्त्रिणा जलसंरक्षणस्य विषये च बलं प्रदत्तम्। तेन कथितं यत् वर्षाजलस्य एकैकोऽपि बिन्दुः संरक्षणीयः वर्तते। श्रीमोदिना विशेषरूपेण गदितं यत् जलसंरक्षणार्थं कैच द रेन अभियानस्य वेगः मन्दो न भवेत्। संस्कृतवार्तायाः संस्करणमिदम् इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। सममेव अयं कार्यक्रमः आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair.gov.in इत्यत्र अथ न्यूज़ ऑन एआईआर चलदूरभाषीयतन्त्रांशे अपि उपलब्धो भविष्यति।

0: प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी सेशेल्स देशस्य राष्ट्रपतिः पैट्रिक हर्मनी च अद्य अपराह्णे विक्टोरिया नगरे द्विपक्षीय वार्ताम् अकुरुताम् उभौ नेतारौ द्विपक्षीय सहयोगस्य सम्पूर्ण क्षेत्राणां समीक्षां कृतवन्तौ सहैव पारस्परिक हितस्य क्षेत्रीय अन्ताराष्ट्रिय विषयेषु च स्वस्व मनोगतं विनिमयी कृतवन्तौ तस्मात् पूर्वं सेशेल्स देशेन प्रधानमन्त्रिणे नरेन्द्र मोदिने पर्यावरण नेतृत्वस्य सर्वोच्च सम्मानः गार्ड्स ऑफ द ब्लू होरिजन प्रदत्तः संयुक्त वार्ताहर सम्मेलनं संबोधयन् प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी अवोचत् यत् अयं गार्डियन ऑफ द ब्लू होरिजन सम्मानः मम कृते अथ भारतस्य नागरिकाणां कृते परम गौरवस्य विषयो वर्तते प्रधानमन्त्री मोदी अवदत् यत् द्वयोर देशयोर दूरत्वं न्यूनीकर्तुं डिजिटल प्रौद्योगिकी प्रभावपूर्णं माध्यमं वर्तते तेन एतदर्थं प्रसन्नता प्रदर्शिता यत् अद्य सेशेल्स देशे भारतस्य UPI तन्त्रस्य प्रवर्तनाय एकस्मिन् सहमतिपत्रे हस्ताक्षरं क्रियमाणमस्ति विदेश मंत्रालयेन भारतीय नागरिकाः परामृष्टाः यत् संपूर्ण यात्रायाः कृते आवश्यकानि सर्वाणि यात्रापत्राणि विना कैलाश मानसरोवर यात्रा न क्रियन्ताम् केचन भारतीय तीर्थयात्रिणः नेपाले अवरुद्धाः अभवन् सहैव साहाय्यार्थं प्रार्थितवन्तः एतां घटनामुद्दिश्य विदेश मंत्रालयेन एषः परामर्शः प्रख्यापितः पश्चिम एशिया क्षेत्रे सुरक्षा स्थितिः पुनरपि गभीरा जाता अमेरिका ईरान देशयोर्मध्ये विद्यमानः युद्धविरामः खण्डितः गतकतिपय होरासु च उभय पक्षाभ्यां परस्परं नूतनानि सैन्याक्रमणानि कृतानि तेहरानेन वाणिज्यिक तैलवाहकपोतस्य उपरि ड्रोणाक्रमणं विहितमिति आरोपं विधाय अमेरिकया होर्मुज जलसन्धेः समीपे स्थितेषु दशसु ईरानी सैन्यस्थानकेषु वायुप्रहाराः कृताः अद्य महिला 20-20 विश्वकप क्रिकेट स्पर्धायाः समूह ए इत्यस्य चरम स्पर्धायां भारतम् ऑस्ट्रेलिया दलेन सह स्पर्धिशिष्ट एषा स्पर्धा लंडन नगरस्य लॉन्स क्रिकेट क्रीडांगणे भविष्यति स्पर्धा भारतीय समयानुगुणं सायं 7:30 आरभ्यते इति वार्ताः
1: मीडियम वेव 4.6 मीटर यानी 747 किलोहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है शाम के 6:30 हुए हैं आईसीसी विमेंस T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2026 के अंतर्गत लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड लंदन में भारत और ऑस्ट्रेलिया के मध्य खेले जा रहे T20 क्रिकेट मैच का आंखों देखा हाल जानने के लिए आइए आपको लिए चलते हैं आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र

0: मीडियम वेव 401.6 मीटर यानी 747 किलोहर्ट्ज पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र। शाम के 7:20 होने का है, थोड़ी ही देर में प्रादेशिक समाचार प्रसारित किए जाएंगे।
1: पापा, कॉलेज की फीस ज्यादा है।
2: बेटा,
3: याद है बोनस के कुछ पैसे हमने दूसरे खाते में रखे थे?
2: 2 साल से खाते में कोई लेन देन नहीं हुआ है, शायद इनऑपरेटिव हो गया होगा।
4: तो अब बैंक जाके या वीडियो केवाईसी से केवाईसी अपडेट कराओ, खाता होगा एक्टिव एकदम फ्री।
2: चलो,
1: कहाँ
2: एडमिशन कराने?
4: खाता हुआ एक्टिव,
5: आरबीआई कहता है
6: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
7: स्वामी विवेकानंद के अनुसार संसार एक बड़ी व्यायामशाला है जहां हम स्वयं को मजबूत बनाकर निखारते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था, किसी भी समाज की उन्नति का पैमाना मैं इस बात को मानता हूं कि उस समाज में स्त्री ने कितना विकास किया है।
8: आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में पश्चिम एशिया में युद्ध के दौरान उनकी अपील पर देशवासियों के समर्थन और सहयोग के प्रति जताया आभार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हाथरस में 548 करोड़ रुपए लागत की 143 विकास परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। आगरा में समीक्षा बैठक में अधिकारियों को दिए विकास कार्यों में तेजी लाने के निर्देश। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने अयोध्या में मातृ शक्ति कॉन्क्लेव में कहा, 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को पूरा करने में महिलाओं की सक्रिय भागीदारी आवश्यक। और प्रदेश भर में आज से शुरू हुआ राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान, कल से घर घर जाकर बच्चों को पिलाई जाएगी पोलियो ड्रॉप। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं शैलेंद्र, और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि स्वदेशी रक्षा उत्पादन पर ध्यान केंद्रित करते हुए भारत समुद्र से लेकर आकाश तक अधिक सुरक्षित और आत्मनिर्भर बन रहा है। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने कहा कि जून महीने में स्वदेशी C-295 विमान की पहली उड़ान के साथ ही भारत ने विमानन क्षेत्र में एक बड़ी सफलता हासिल की है।
9: C-295 यह विमान मेड इन इंडिया है और C-295 विमान ने अपनी पहली उड़ान पूरी की है और ऐसे 40 विमान भारत में ही बनाए जा रहे हैं। इससे MSME और एरोस्पेस सेक्टर को नई शक्ति मिल रही है। आज समुद्र से लेकर आकाश तक हमारा भारत अधिक सुरक्षित और आत्मनिर्भर बन रहा है।
8: प्रधानमंत्री ने कहा कि इस महीने कोलकाता में 3 युद्धपोतों का जलावतरण किया गया और DRDO ने लंबी दूरी की क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। प्रधानमंत्री ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की भी चर्चा की जिसे 21 जून को दुनिया भर में मनाया गया। इस बार ये आयोजन 2500 से अधिक जगहों पर हुआ। भारत में करोड़ों लोगों ने योग दिवस में भागीदारी की। प्रधानमंत्री ने अहमदाबाद में विश्व योगासन चैंपियनशिप में पदक विजेता एथलीटों को बधाई दी।
9: विश्व योगासन चैंपियनशिप की भी बड़ी चर्चा हुई। इसमें भारत ने कुल 114 पदक जीते, इनमें 102 गोल्ड मेडल।

0: पटेल भी शामिल है। भारत इस चैंपियनशिप की पदक तालिका में पहले स्थान पर रहा।
1: प्रधानमंत्री ने पश्चिम एशिया में युद्ध के दौरान उनकी अपील पर देशवासियों के समर्थन और सहयोग के लिए आभार व्यक्त किया।
0: पश्चिम एशिया में बनी युद्ध की स्थितियों को देखते हुए मैंने देशवासियों से कहा था कुछ समय के लिए सोना खरीदने से बचें, लोगों से कहा था कि विदेश में छुट्टियां मनाने से बचें, लोगों से कार पुलिंग को भी बढ़ावा देने की अपील की थी, किसानों से केमिकल मुक्त खेती के लिए, खेत बचाने के लिए और प्राकृतिक खाद का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल का आग्रह किया था। मेरी अपील का उन्होंने न सिर्फ समर्थन किया बल्कि हर तरफ से उसमें अपना सहयोग कर रहे हैं।
1: प्रधानमंत्री ने देशवासियों से गणेश उत्सव पर गणपति बप्पा की मिट्टी की मूर्ति को प्राथमिकता देने की अपील की। वहीं जल संरक्षण के संबंध में प्रधानमंत्री ने कहा कि वर्षा जल की एक एक बूंद को बचाया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि कैच द रेन अभियान में जरा भी ढिलाई नहीं होने देनी चाहिए। प्रदेश भर में आज प्रधानमंत्री के मन की बात कार्यक्रम को केंद्रीय मंत्रियों, भाजपा पदाधिकारियों और नेताओं के साथ ही आम जनता ने सुना और सराहा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रधानमंत्री ने प्लास्टर ऑफ पेरिस के स्थान पर देश की मिट्टी से निर्मित भगवान श्री गणेश की मूर्तियों को अपनाने तथा स्थानीय कुम्हारों और शिल्पकारों द्वारा निर्मित प्रतिमाओं को प्राथमिकता देने की अपील कर आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को जन जन से जोड़ने का कार्य किया है। कार्यक्रम को उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक और केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने लखनऊ में पार्टी नेताओं के साथ सुना। श्री पाठक ने प्रधानमंत्री द्वारा उल्लेख किए गए सकारात्मक कार्यों से प्रेरणा लेने की बात कही।
2: आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने मन की बात के कार्यक्रम में कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक जो विभिन्न गांवों में, शहरों में नवाचार है, अलग अलग ढंग से लोग काम कर रहे हैं, विशेष रूप से चर्चा जिसमें जो वैश्विक संकट पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का है, हम लोग कार पूल करके चले। इसके अलावा आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने बताया एक वैवाहिक समारोह में किस ढंग से अतिथियों को उपहार के रूप में सामूहिक दुर्घटना बीमा का लाभ हर अतिथि को दिया गया। ये ऐसे आयोजन है, ऐसे कार्यक्रम है जिससे आदमी अपने आप को जुड़ा महसूस करता है।
1: ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज हाथरस जनपद में 548 करोड़ रुपए लागत की 143 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस अवसर पर लाभार्थियों को आवास की चाबी, स्मार्टफोन और चेक वितरित किए गए। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आज अयोध्या त्रेतायुग की स्मृतियों को साकार करती दिखाई दे रही है। राम भक्तों के परिश्रम और पुरुषार्थ से अयोध्या विश्वभर के श्रद्धालुओं के आकर्षण का केंद्र बनी है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार किसानों की खुशहाली के लिए कई प्रभावकारी कदम उठा रही है। उन्होंने कहा कि हाथरस में जल्द ही प्रोसेसिंग सेंटर बन जाएगा जिसका लाभ यहां के आलू उत्पादक किसानों को मिलेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज प्रदेश में नौजवानों के लिए नौकरी की गारंटी और व्यापारियों के लिए सुरक्षित माहौल है।
3: अब हमारा हाथरस भी विकास से वंचित नहीं होगा बल्कि विकास की प्रक्रिया के साथ तेजी के साथ अब उद्यम यहाँ पर आ रहे हैं। यहाँ पे रोजगार के नई संभावनाओं को आगे बढ़ाना, प्रोसेसिंग सेंटर लगेंगे। हमारा अन्नदाता किसान जो आलू उत्पादन करता है उसके कई गुना दाम उन्हें प्राप्त होगा। कोल्ड स्टोरेज की उनकी समस्या का समाधान होगा, किसान को अच्छा दाम मिलेगा।
1: इसके बाद मुख्यमंत्री ने आगरा में जनप्रतिनिधियों और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ विकास कार्यों की प्रगति और कानून व्यवस्था को लेकर समीक्षा बैठक की। मुख्यमंत्री ने सभी लंबित परियोजनाओं को निर्धारित समय सीमा के भीतर पूरा किए जाने के अधिकारियों को निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि विकास कार्यों में किसी भी प्रकार की लापरवाही बरती गई तो इसके लिए जिम्मेदार अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। मुख्यमंत्री ने जनता से जुड़े कार्यों का त्वरित और प्रभावी समाधान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल अयोध्या दौरे के

0: दूसरे दिन आज डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय में आयोजित मातृशक्ति कॉन्क्लेव अयोध्या 2026 में शामिल हुई। कार्यक्रम में माँ बेटी संवाद के माध्यम से शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला सशक्तिकरण और बाल विकास विषयों पर चर्चा की गई। राज्यपाल ने कहा कि राष्ट्र निर्माण में मातृशक्ति की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है। 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को पूरा करने में महिलाओं की सक्रिय भागीदारी आवश्यक है। इस अवसर पर स्वास्थ्य विभाग द्वारा 200 बालिकाओं को SPV वैक्सीन लगाई गई और 10 बच्चों को पल्स पोलियो खुराक भी पिलाई गई। अयोध्या में श्री राम मंदिर दान मामले में आज पुलिस तथा प्रशासन की टीम ने गिरफ्तार सभी 8 आरोपितों के घरों पर छापेमारी कर तलाशी ली और उनके परिजनों से पूछताछ की गई। जांच के दौरान पुलिस ने आरोपियों के ठिकानों से साक्ष्य जुटाने की कार्रवाई की। कल पुलिस सभी आरोपियों को कोर्ट में फिर से पेश करेगी। इससे पहले कल श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय और ट्रस्टी अनिल मिश्रा ने इस्तीफा दे दिया। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के कोषाध्यक्ष स्वामी गोविंददेव गिरी महाराज ने कल ये जानकारी दी। बयान में कहा गया कि इस्तीफों पर अगली बैठक में चर्चा की जाएगी। आज से शुरू हुए राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान के तहत प्रदेश के सभी जनपदों में बूथों पर 0 से 5 वर्ष तक के बच्चों को पोलियो की खुराक दी जा रही है। इसके बाद कल 29 जून से 3 जुलाई तक घर घर जाकर बच्चों को पोलियो की दवा पिलाई जाएगी। इसी क्रम में अमरोहा में पल्स पोलियो अभियान की शुरुआत CMO डॉक्टर रमाकांत सागर ने एक समारोह में बच्चों को पोलियो ड्रॉप पिलाकर की। देवरिया जिले के महर्षि देवरा बाबा मेडिकल कॉलेज में भी बच्चों को पोलियो ड्रॉप पिलाई गई। जिले में स्वास्थ्य विभाग द्वारा 5,68,000 बच्चों को पोलियो ड्रॉप पिलाने का लक्ष्य रखा गया है। वहीं हापुड़, कौशाम्बी और महोबा सहित विभिन्न जिलों में भी अभियान के तहत बच्चों को पोलियो की दवा पिलाई गई। प्रदेश में आगामी 7 दिनों में पश्चिमी और पूर्वी हिस्सों में अनेक स्थानों पर गरज चमक के साथ बारिश होने की संभावना है। इसके साथ ही कई जिलों में बिजली गिरने के साथ तेज हवाएं चलने की आशंका जताई गई है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में पश्चिम एशिया में युद्ध के दौरान उनकी अपील पर देशवासियों के समर्थन और सहयोग के प्रति जताया आभार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हाथरस में 548 करोड़ रुपए लागत की 143 विकास परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। आगरा में समीक्षा बैठक में अधिकारियों को दिए विकास कार्यों में तेजी लाने के निर्देश। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने अयोध्या में मातृशक्ति कॉन्क्लेव में कहा, 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को पूरा करने में महिलाओं की सक्रिय भागीदारी आवश्यक। और प्रदेश भर में आज से शुरू हुआ राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान, कल से घर घर जाकर बच्चों को पिलाई जाएगी पोलियो ड्रॉप। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: हो गया इंतजाम।
2: किसका?
1: गुड्डी की फीस का।
2: दिखा। 20,000 का लोन तुरंत? पता है कौन दे रहा है, ब्याज कितना है? लोन विनियमित संस्थानों से ही ले और कर्ज उतना जितनी जरूरत, वो भी जांच कर। हो गया इंतजाम। पगार एडवांस में भेजिए।
3: RBI कहता है,
4: सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव।
5: मीडियम वेव के मीटर पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र। ICC विमेंस T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2026 के अंतर्गत लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड लंदन में भारत और ऑस्ट्रेलिया के मध्य खेले जा रहे T20 क्रिकेट मैच का आंखों देखा हाल जानने के लिए आइए आपको लिए चलते हैं आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र।

0: मीडियम वेव के मीटर पर यह आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है। रात्रि के 8:45 होने को है। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं सरफिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विक्टोरिया में सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हर्मिनी के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता की। कहा, भारत का लक्ष्य हिंद महासागर को अवसरों का सागर बनाना है। प्रधानमंत्री मोदी को सेशल्स के सर्वोच्च सम्मान गार्जियन ऑफ द ब्लू होराइजन से सम्मानित किया गया। प्रधानमंत्री मोदी ने आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में कहा, राष्ट्र निर्माण में जन भागीदारी भारत की सबसे बड़ी ताकत है। भारत ने कराची में हुई हालिया घटना को लेकर पाकिस्तान के आरोपों को खारिज किया। यूरोप में भीषण गर्मी का कहर जारी, फ्रांस में 1000 से अधिक लोगों की मौत। और महिला T20 विश्व कप में भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 171 रन का लक्ष्य दिया। वहीं पुरुष क्रिकेट में भारत को आयरलैंड से 155 रन का लक्ष्य मिला। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत ऐसे हिंद महासागर की परिकल्पना करता है जहां समुद्री सुरक्षा के साथ साथ आर्थिक समृद्धि भी सुनिश्चित हो और जहां साझेदारी आकार पर नहीं बल्कि परस्पर सम्मान और विश्वास पर आधारित हो। श्री मोदी विक्टोरिया में सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हर्मिनी के साथ प्रतिनिधि मंडल स्तर की वार्ता के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि भारत का दृष्टिकोण हिंद महासागर को संभावनाओं का सागर बनाना है।
2: मेरी सेशल की यात्रा का संदेश स्पष्ट है, भारत ऐसे हिंद महासागर की कल्पना करता है जहां समुद्री सुरक्षा के साथ आर्थिक समृद्धि भी बढ़े, जहां हमारी साझेदारी आकार नहीं आपसी सम्मान और विश्वास पर आधारित हो और जहां हम हर देश के पास पास नहीं साथ साथ चले। आवर विजन इज टू मेक इंडियन ओशन इनटू एन ओशन ऑफ अपॉर्चुनिटी।
1: बैठक के दौरान दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय सहयोग के सभी पहलुओं की समीक्षा की और पारस्परिक हित के क्षेत्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान किया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत और सेशल्स की रक्षा और सुरक्षा एक दूसरे से जुड़ी है। श्री मोदी ने कहा कि भारत डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना में अपने अनुभव को सेशल्स के साथ साझा करेगा। उन्होंने कहा कि दोनों देश अपने उद्योगों के लिए नई संभावनाओं की तलाश जारी रखेंगे। दोनों पक्षों ने कृषि, वित्त, अंतरिक्ष और स्वास्थ्य सहित कई क्षेत्रों में समझौतों का आदान प्रदान किया। प्रधानमंत्री ने सेशल्स में UPI भुगतान प्रणाली लागू करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर होने पर प्रसन्नता व्यक्त की।
2: हम डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में भारत के सफल अनुभवों को सेशल्स के साथ साझा करेंगे और मुझे प्रसन्नता है कि आज UPI को सेशल्स में लागू करने के लिए MOU किया जा रहा है।
1: सेशल्स के राष्ट्रपति हर्मिनी ने कहा कि हिंद महासागर क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा द्विपक्षीय संबंधों में महत्वपूर्ण बनी हुई है। दोनों देशों ने समुद्री डकैती, मादक पदार्थों की तस्करी, अवैध मछली पकड़ने और सीमा पार अपराध का मुकाबला करने की अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी को पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास में नेतृत्व के लिए सेशल्स के सर्वोच्च सम्मान गार्जियन ऑफ द ब्लू होराइजन से सम्मानित किया गया। सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हर्मिनी ने प्रधानमंत्री मोदी को ये प्रतिष्ठित सम्मान प्रदान किया। ये पहली बार है जब किसी

0: भारतीय प्रधानमंत्री को ये सम्मान प्रदान किया गया है। प्रधानमंत्री ने ये सम्मान पर्यावरण संरक्षण और जलवायु परिवर्तन से संघर्षरत देशों को समर्पित किया। बाद में प्रधानमंत्री मोदी ने सेशल्स की नेशनल असेंबली को संबोधित किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि दक्षिण विश्व, विशेष रूप से द्वीपीय राष्ट्र, जलवायु परिवर्तन से सबसे अधिक प्रभावित हैं। उन्होंने निष्पक्षता, उत्तरदायित्व और समानता के साथ जलवायु कार्रवाई का आह्वान किया। श्री मोदी ने कहा कि यही जलवायु न्याय का मूल तत्व है। श्री मोदी ने डिजिटल नवाचार के क्षेत्रों में भारत सेशल्स सहयोग को मजबूत करने पर भी बल दिया। उन्होंने कहा कि भारत छोटे द्वीपीय विकासशील देशों की चिंताओं पर सेशल्स के साथ काम करना जारी रखेगा।
1: सेशल एंड इंडिया बोथ सीक अ वर्ल्ड वेयर डेवलपमेंट इज मोर इंक्लूसिव। वी बोथ सीक अ वर्ल्ड वेयर इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस रिफ्लेक्ट कंटेम्पररी रियलिटीज। वी बिलीव दैट अवर शेयर्ड फ्यूचर मस्ट बी शेप्ड कलेक्टिवली, इंक्लूसिवली एंड फेयरली।
0: प्रधानमंत्री मोदी पूर्वी अफ्रीकी द्वीप राष्ट्र सेशल्स की 3 दिवसीय यात्रा पर कल वहां की राजधानी विक्टोरिया पहुंचे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, गृहमंत्री अमित शाह, विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सेशल्स के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किए जाने पर बधाई दी। श्री बिरला ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ये सम्मान प्रधानमंत्री के जलवायु कार्रवाई, पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास के दृष्टिकोण को परिलक्षित करता है। गृहमंत्री ने कहा कि ये सम्मान दुनिया में भारत के बढ़ते प्रभाव को दिखाता है। श्री जयशंकर ने कहा कि ये सम्मान जलवायु परिवर्तन और सतत विकास को बढ़ाने में श्री मोदी की नेतृत्वकारी भूमिका को दर्शाता है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि ये सम्मान श्री मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व और वैश्विक जलवायु परिवर्तन के प्रति अटूट प्रतिबद्धता का प्रमाण है। विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हर्मिनी के बीच हुई वार्ता में द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं पर चर्चा हुई है। श्री मिश्री ने विक्टोरिया में संवाददाताओं को आज बताया कि दोनों नेताओं ने स्वास्थ्य, शिक्षा, क्षमता निर्माण, डिजिटल परिवर्तन, सतत विकास, सामाजिक अवसंरचना, नवीकरणीय ऊर्जा, समुद्री सुरक्षा और रक्षा क्षेत्रों में सहयोग को और मजबूत करने पर सहमति व्यक्त की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि राष्ट्र निर्माण में जन भागीदारी की शक्ति भारत की सबसे बड़ी ताकत है। श्री मोदी ने आज आकाशवाणी से कार्यक्रम मन की बात में राष्ट्र को संबोधित करते हुए कहा कि ये भावना उस समय एक बार फिर दिखाई दी जब उन्होंने पश्चिम एशिया में युद्ध जैसी स्थिति को देखते हुए नागरिकों से कुछ निश्चित उपाय अपनाने को कहा।
1: पश्चिम एशिया में बनी युद्ध की स्थितियों को देखते हुए मैंने देशवासियों से कहा था कुछ समय के लिए सोना खरीदने से बचें, लोगों से कहा था कि विदेश में छुट्टियां मनाने से बचें, लोगों से कार पुलिंग को भी बढ़ावा देने की अपील की थी, किसानों से केमिकल मुक्त खेती के लिए, खेत बचाने के लिए और प्राकृतिक खाद का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल का आग्रह किया था। मेरी अपील का उन्होंने न सिर्फ समर्थन किया बल्कि हर तरफ से उसमें अपना सहयोग कर रहे हैं।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने प्रौद्योगिकी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के दौर में मानवीय रचनात्मकता का संरक्षण करने के बारे में भी बात की। उन्होंने कहा कि नालंदा विश्वविद्यालय ने इसे हासिल करने का समाधान खोज लिया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। भारत ने कराची में हुई हालिया घटना के संबंध में पाकिस्तान के लगाए आरोपों को स्पष्ट रूप से खारिज करते हुए उन्हें निराधार बताया है। मीडिया के सवालों के जवाब में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने आज कहा कि दूसरों पर उंगली उठाने के बजाय पाकिस्तान को आत्मनिरीक्षण करना चाहिए और अपने क्षेत्र में मौजूद आतंकी ढांचे के खिलाफ ठोस कार्रवाई करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को आतंकवाद को अपनी राज्य नीति के साधन के रूप में इस्तेमाल करने की प्रवृत्ति से छुटकारा पाना चाहिए। गृहमंत्री अमित शाह ने आज गुजरात के गांधीनगर में पीएम फैमिली केयर ट्रैकर की पायलट परियोजना का शुभारंभ किया। ये एकीकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म जन्म पंजीकरण संख्या या आभा आईडी से जुड़ी एक विशिष्ट आईडी का उपयोग करके गर्भावस्था से लेकर 18 वर्ष की आयु

0: तक लाभार्थियों के स्वास्थ्य, पोषण और शिक्षा पर नजर रखेगा। इस अवसर पर श्री शाह ने कहा कि पिछले 12 वर्षों में देश के स्वास्थ्य क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण बदलाव हुए हैं। उन्होंने कहा कि सरकार योजनाएं बनाने के साथ साथ ये सुनिश्चित करने के लिए भी प्रतिबद्ध है कि उनका लाभ प्रत्येक जरूरतमंद व्यक्ति तक पहुंचे। कृषि और किसान कल्याण तथा ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को साकार करने में गांव की केंद्रीय भूमिका का उल्लेख किया है। नई दिल्ली में आज राष्ट्रीय ग्रामीण विकास सम्मेलन को संबोधित करते हुए श्री चौहान ने ये बात कही। उन्होंने कहा कि ग्रामीण श्रमिकों की आजीविका सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए ग्रामीण विकास में तेजी लाने के लिए विकसित भारत ग्रामीण योजना के अंतर्गत राज्यों के हिस्से सहित 1,51,000 करोड़ रुपए से अधिक का प्रावधान किया गया है।
1: इस साल बजट प्रावधान है 1,51,282 करोड़ रुपया केंद्र और राज्य का मिला के, ये 1,50,000 करोड़ से ज्यादा रुपया मजदूरों को मजदूरी देने में तो काम आएगा ही। इससे आप गांव की हालत पूरी तरह से बदल सकते हैं। 5 साल में 7,50,00,000 करोड़ लगभग लगे, 2,86,000 पंचायत है, एक पंचायत किस्से में कितना पैसा आएगा आप कल्पना कीजिए।
0: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने नशा मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत देश को स्वस्थ और नशा मुक्त बनाने का आह्वान किया है। वे आज बेंगलुरु में राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय के स्थापना दिवस समारोह और नशा मुक्त भारत अभियान कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार 3 दिन की जम्मू कश्मीर यात्रा पर आज श्रीनगर पहुंचे। अपनी यात्रा के दौरान वे कश्मीर घाटी में विभिन्न कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। मुख्य निर्वाचन आयुक्त चुनाव प्रक्रिया की जमीनी स्तर पर विभिन्न कार्यक्रमों की समीक्षा भी करेंगे। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। यूरोप में रिकॉर्ड तोड़ गर्मी का कहर जारी है। फ्रांस, जर्मनी और चेक गणराज्य सहित कई देशों ने सप्ताहांत में तापमान के नए रिकॉर्ड दर्ज किए हैं। फ्रांस के स्वास्थ्य अधिकारियों ने बताया कि बुधवार से अब तक भीषण गर्मी के कारण लगभग 1,000 लोगों की मौत हो गई, जिनमें 85% बुजुर्ग थे।
2: फ्रांस के स्वास्थ्य विभाग ने आज एक बयान में कहा कि सबसे अधिक प्रभावित क्षेत्रों में इले डी फ्रांस, नोवेल एक्विटाइन, ब्रिटनी, सेंटर वॉल डे लोइरे, नॉर्मैंडी और पेस डे ला लोइरे शामिल हैं। फ्रांस के कुछ हिस्सों में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर पहुंच गया है। पेरिस में भीषण गर्मी के कारण एफिल टावर और लूव्र संग्रहालय को भी शाम को जल्द ही बंद कर दिया जा रहा है। जर्मनी और चेक गणराज्य में भी तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर पहुंच गया है। भीषण गर्मी के कारण कुछ हिस्सों के जंगल में आग लगने से आपातकालीन सेवाओं पर दबाव बढ़ा है। हंगरी में डेन्यूब नदी में बढ़ते तापमान से एक परमाणु ऊर्जा संयंत्र प्रभावित हुआ है, जिससे कुछ रिएक्टरों के संचालन पर असर पड़ा। समाचार कक्ष से प्रशांत कुमार।
0: फ्रांस के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में आज एक विमान दुर्घटना में 11 लोगों की मौत हो गई। आपात सेवाएं घटनास्थल पर पहुंच गई हैं और दुर्घटना के कारणों की जांच जारी है। सऊदी अरब की तेल कंपनी अरामको से संबंधित एक हेलीकॉप्टर आज हॉर्मुज जल डमरू मध्य के पश्चिम में स्थित रास तनूरा में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इस दुर्घटना में 14 लोगों की मौत हो गई। असम के धेमाजी जिले में लगातार कई दिनों से हो रही तेज बारिश और अरुणाचल प्रदेश में हुई मूसलाधार बारिश के कारण बाढ़ की स्थिति और अधिक गंभीर हो गई है। सिमेन नदी में आए उफान के कारण लगभग 60 परिवार बेघर हो गए हैं। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: असम के धेमाजी जिले में सिमेन नदी की उफनती धारा ने एक महत्वपूर्ण रेलवे पुल के हिस्से को बहा दिया है, जिसे क्षेत्र की रेलवे संपर्क व्यवस्था पूरी तरह बाधित हो गई है और रेल सेवाएं ठप्प हो गई है। राज्य आपदा मोचन बल SDRF की टीमें दिमो पंचायत के अंतर्गत उज्जवलपुर गांव में राहत और बचाव अभियान चला रही है, जहां फंसे 60 परिवारों को सुरक्षित निकाला जा रहा है। अब तक किसी के हताहत होने या जानहानि की सूचना नहीं है। हालांकि बाढ़ से संपत्ति और पशुधन को भारी नुकसान पहुंचा। राकेश दोले, आकाशवाणी समाचार, गुवाहाटी।
0: महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में लंदन के लॉर्ड्स में भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 171 रन का लक्ष्य दिया है। ताजा समाचार मिलने तक ऑस्ट्रेलिया ने एक ओवर पर 9 रन बना लिए हैं। उधर बेलफास्ट में आयरलैंड के साथ दूसरे T20 क्रिकेट मैच में जीत के लिए 155 रन के जवाब में भारत ने बारिश के कारण खेल रोके जाने तक 8

0: Prime Minister Narendra Modi holds delegation-level talks with Seychelles President Patrick Hermini in Victoria, says India's vision is to make Indian Ocean an ocean of opportunity. Prime Minister Modi honored with Seychelles' highest distinction, Guardian of the Blue Horizon. In Mann Ki Baat program on Akashwani, Prime Minister Modi asserts power of public participation in nation building is one of India's greatest strengths. New Delhi rejects Islamabad's allegations over recent incident in Karachi, terming them baseless. Europe continues to experience record-breaking heatwave. France reports over 1,000 deaths. In cricket, India set a target of 171 runs for Australia in their final Group A match of the Women's T20 World Cup in London. And in men's cricket, India gets a target of 155 runs by hosts Ireland in the final T20 International in Belfast. And that's all in the news at 9. Good night.
1: आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं अब्दुल वाहिद। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने विक्टोरिया में सेशेल्स के सदर पैट्रिक हर्मिनी के साथ वफ्द की सतह की बातचीत की। उन्होंने कहा कि भारत का विजन बहिरे हिंद को मवाक़े का समंदर बनाना है। वज़ीर-ए-आज़म मोदी को सेशेल्स के आला तरीन एजाज गार्डियन ऑफ द ब्लू होराइजन से नवाजा गया। आकाशवाणी पर मन की बात प्रोग्राम में वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने जोर देकर कहा कि मुल्क की तामीर में अवामी शिरकत की ताकत भारत की सबसे बड़ी क़ुव्वतों में से एक है। भारत ने कराची में हालिया वाक़यात से मुतालिक पाकिस्तान के इल्ज़ाम को बेबुनियाद करार देते हुए मुस्तरद कर दिया है। लंदन में ख़वातीन के T20 आलमी कप के अपने फाइनल ग्रुप ए मैच में भारत ने ऑस्ट्रेलिया के लिए 171 रन्स का जीत का निशाना रखा है और मर्दों की क्रिकेट में बेलफास्ट में फाइनल T20 बैनुल अख्वामी मैच में मेज़बान आयरलैंड ने भारत को जीतने के लिए 155 रनों का निशाना मुकर्रर किया है। अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज कहा कि भारत बहिरे हिंद को एक ऐसा खित्ता समझता है जहां इक्तिसादी खुशहाली के साथ साथ समंदरी तहफ्फुज को यकीनी बनाया जाता है, नेश जहां शराकत दारी साइज पर मबनी नहीं बल्कि बाहमी इज्जत और एतमाद पर मबनी है। उन्होंने कहा कि भारत का विजन बहिरे हिंद को मवाक़े का एक समंदर बनाता है।
2: मेरी सेशल की यात्रा का संदेश स्पष्ट है, भारत ऐसे हिंद महासागर की कल्पना करता है जहां समुद्री सुरक्षा के साथ आर्थिक समृद्धि भी बढ़े, जहां हमारी साझेदारी आकार नहीं आपसी सम्मान और विश्वास पर आधारित हो और जहां हम हर देश के पास पास नहीं साथ साथ चले। आवर विजन इज टू मेक इंडियन ओशन इंटू एन ओशन ऑफ अपॉर्चुनिटी।
1: जनाब मोदी विक्टोरिया में सेशेल्स के सदर पैट्रिक हर्मिनी के साथ वफ्द की सतह की बातचीत के बाद मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब कर रहे थे। मीटिंग के दौरान दोनों लीडरों ने बाहमी तआवुन के तमाम शोबों का जायजा लिया और बाहमी मफाद के इलाकाई और बैनुल अक्वामी मामलात पर तबादले ख्याल किया। दोनों ममालिक ने ज़रात, मालियात, खला और सेहत समेत मुख्तलिफ शोबों में बहुत से समझौतों का तबादला भी किया। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने इजहार मसर्रत किया कि सेशेल्स में UPI का आगाज करने के लिए एक मुफाहमतनामे पर दस्तखत किए गए हैं।
2: हम डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में भारत के सफल अनुभवों को सेशल के साथ साझा करेंगे और मुझे प्रसन्नता है कि आज UPI को सेशल में लागू करने के लिए MOU किया जा रहा है।
1: उन्होंने कहा कि सेहत के शोबे में भारत सेशेल्स शराकतदारी वक्त की आजमाइश पर पूरी उतरी है। उन्होंने कहा कि आज जन औषधि से मुतालिक जिस मुफाहमतनामे पर दस्तखत हुए हैं वो सेशेल्स के अवाम को मेयारी और किफ़ायती अदविया फराहम करने में मदद करेगा। इस्तेमा से खिताब करते हुए सेशेल्स के सदर हर्मिनी ने कहा कि बाहमी ताल्लुकात में बहिरे हिंद का खित्ता मरकजी हैसियत रखता है। दोनों मुल्कों ने समंदरी कज़ाकी मनशियात की नाजायज तजारत गैर कानूनी माहीगीरी और सरहद पार के जरायम के तई अपने अहद का एदा किया। इस मौके पर वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को माहौलियाती तहफ़ और पायदार तरक्की में क़्यादत के लिए सेशेल्स के आला तरीन एजाज गार्डियन ऑफ

कृपया ध्यान दें, दिल्ली से मुंबई आने वाली गाड़ी प्लेटफॉर्म नंबर 12 के बदले प्लेटफॉर्म नंबर 36 पे आएगी।

मीडियम वेव के मीटर पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र। आइए अब आपको सुनवाते हैं रविवासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।

0: आप रविवार श्री अखिल भारतीय संगीत सभा में श्री एनएस कल्याण रामन द्वारा प्रस्तुत मृदंगम पर लाइव विन्यासम सुना। यह कार्यक्रम आकाशवाणी विजयवाड़ा के स्टूडियो में रिकॉर्ड किया गया था और आकाशवाणी दिल्ली केंद्र से प्रस्तुत किया गया है। अगले कार्यक्रम के लिए प्रतीक्षा कीजिए।
1: You have been listening to Laya Vinyasam on Mridangam by Sri N.S. Kalyanuraman in the Ravivasariya Akhila Bharatiya Sangeeta Sabha. This program was recorded in the studios of Akashvani Vijayawada and this broadcast came to you from the studios of Akashvani Delhi.
2: मीडियम वेव के मीटर पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र।

0: सुनो ना।
1: हाँ?
0: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
1: तो रोका किसने है? हाँ?
0: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
1: मुझसे।
0: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
1: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
0: पर उससे मेरा क्या फायदा?
1: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुँच जाओ।
0: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
1: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 8700014242।
0: ओ 8700014242। लो अभी फोन लगाता हूँ 8700014242 पर।

0: मीडियम वेव 401.6 मीटर यानी 747 किलोहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र का प्रसारण। रात्रि के 11 बजने को है, थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं रत्ना पांडे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत ऐसे हिंद महासागर की परिकल्पना करता है जहां समुद्री सुरक्षा के साथ साथ आर्थिक समृद्धि भी सुनिश्चित हो। श्री मोदी विक्टोरिया में सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हरमीनी के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे।

0: मेरी सेशल की यात्रा का संदेश स्पष्ट है, भारत ऐसे हिंद महासागर की कल्पना करता है जहां समुद्री सुरक्षा के साथ आर्थिक समृद्धि भी बढ़े, जहां हमारी साझेदारी आकार नहीं आपसी सम्मान और विश्वास पर आधारित हो, और जहां हम हर देश के पास पास नहीं साथ साथ चले। आवर विजन इज टू मेक इंडियन ओशन इंटू एन ओशन ऑफ अपॉर्चुनिटी।
1: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत और सेशल्स की रक्षा और सुरक्षा एक दूसरे से जुड़ी हैं। श्री मोदी ने कहा कि भारत डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना में अपने अनुभव को सेशल्स के साथ साझा करेगा। प्रधानमंत्री ने सेशल्स में यूपीआई भुगतान प्रणाली लागू करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर होने पर प्रसन्नता व्यक्त की।
0: हम डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में भारत के सफल अनुभवों को सेशल के साथ साझा करेंगे, और मुझे प्रसन्नता है कि आज यूपीआई को सेशल में लागू करने के लिए एमओयू किया जा रहा है।
1: इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी को पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास में नेतृत्व के लिए सेशल्स के सर्वोच्च सम्मान गार्जियन ऑफ द ब्लू होराइजन से सम्मानित किया गया। बाद में प्रधानमंत्री मोदी ने सेशल्स की नेशनल असेंबली को संबोधित किया। प्रधानमंत्री मोदी पूर्वी अफ्रीकी द्वीप राष्ट्र सेशल्स की 3 दिवसीय यात्रा पर कल वहां की राजधानी विक्टोरिया पहुंचे। सेशल्स यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने मॉरिशस के प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन चंद्र राम गुलाम से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने भारत और मॉरिशस के बीच चल रहे सहयोग पर चर्चा की। उन्होंने भारत द्वारा दिए गए विशेष आर्थिक पैकेज को लागू करने में हुई प्रगति की भी समीक्षा की। गृहमंत्री अमित शाह ने आज गुजरात के गांधीनगर में पीएम फैमिली केयर ट्रैकर की पायलट परियोजना का शुभारंभ किया। ये एकीकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म जन्म पंजीकरण संख्या या आभा आईडी से जुड़ी एक विशिष्ट आईडी का उपयोग करके गर्भावस्था से लेकर 18 वर्ष की आयु तक लाभार्थियों के स्वास्थ्य पोषण और शिक्षा पर नजर रखेगा। इस अवसर पर श्री शाह ने कहा कि पिछले 12 वर्षों में देश के स्वास्थ्य क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण बदलाव हुए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा कल नई दिल्ली में केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण परिषद के 16वें सम्मेलन में समग्र शिशु बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार ये कार्यक्रम जन्म से 3 साल तक के बच्चों की बेहतर देखभाल के लिए शुरू किया जा रहा है। इस कार्यक्रम के तहत बच्चों को घर और समुदाय स्तर पर स्वास्थ्य सेवाएं मिलेंगी। कार्यक्रम में प्रसव के बाद माताओं के मानसिक स्वास्थ्य की जांच, बच्चों के शुरुआती विकास पर नजर और डिजिटल माध्यम से स्वास्थ्य सेवाओं की निगरानी भी की जाएगी। भारत ने कराची में हुई हालिया घटना के संबंध में पाकिस्तान के लगाए आरोपों को स्पष्ट रूप से खारिज करते हुए उन्हें निराधार बताया है। मीडिया के सवालों के जवाब में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने आज कहा कि दूसरों पर उंगली उठाने के बजाय पाकिस्तान को आत्मनिरीक्षण करना चाहिए और अपने क्षेत्र में मौजूद आतंकी ढांचे के खिलाफ ठोस कार्रवाई करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को आतंकवाद को अपनी राज्य नीति के साधन के रूप में इस्तेमाल करने की प्रवृत्ति से छुटकारा पाना चाहिए। पाकिस्तान के कराची में सिंध रेंजर्स के कंपाउंड पर आतंकवादियों के एक बड़े हमले में पैरामिलिट्री फोर्स के जवान मारे गए थे। महिला 2020 क्रिकेट विश्व कप में लंदन के लॉर्ड्स मैदान में ऑस्ट्रेलिया ने भारत को 6 विकेट से हरा दिया है। भारत के 171 रन के लक्ष्य को ऑस्ट्रेलिया ने 19 ओवर में 4 विकेट खोकर हासिल कर लिया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Amrit Bhushan. Prime Minister Narendra Modi today said India envisions an Indian Ocean where maritime security is ensured alongside economic prosperity and where partnership is based not on size but on mutual respect and trust. He said India's vision is to make the Indian Ocean an ocean of opportunity.
0: Meri Seychelles ki yatra ka sandesh spasht hai. Bharat aise